तुम सीधे रास्ते पर हो, और अगर वो तुमसे झगड़े तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को खूब मालूम है। अल्लाह कयामत के रोज तुम्हारे दरमियान उन सब बातों का फैसला कर देगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के इल्म में है, सब कुछ एक किताब में दर्ज है। अल्लाह के लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत कर रहे हैं जिनके लिए न तो उसने कोई सनद नाजिल की है और न ये खुद उनके बारे में कोई इल्म रखते हैं। इन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। और जब इनको हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं तो तुम देखते हो कि मुनकरीन हक के चेहरे बिगड़ने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अभी वो उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो उन्हें हमारी आयात सुनाते हैं। उनसे कहो, मैं बताऊं तुम्हें कि उससे बदतर चीज क्या है? आग। अल्लाह ने उसी का वादा उन लोगों के हक में कर रखा है जो कबूल हक से इनकार करें, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सामने कराम प्रोग्राम पल्स ऑफ द कुरान यानी कुरान के मोती के आज इस समंदरी सफर में आपका स्वागत है। हमारी आज की गुफ्तगू का ताल्लुक है एक जुमले के साथ, यानी इंसान कभी एक बात कह देता है, शायद उसकी नीयत में कोई बुराई नहीं होती, शायद वो महज मजाक कर रहा होता है, शायद उसने वो माना सोचे ही नहीं होते जो सामने वाले ने समझ लिए। लेकिन फिर शैतान दरमियान में आता है। कुरान हमें इसी खतरे से खबरदार करते हुए फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुल लिइबादी यकूलु लती हिया अहसन إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا। मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो वही बात कहें जो सबसे बेहतर हो, क्योंकि शैतान उनके दरमियान फसाद डालता है। जरा तरतीब देखिए, पहले जबान की हिफाजत का हुक्म, फिर फौरन शैतान का जिक्र। क्यों? क्योंकि अक्सर फसाद सिर्फ उस जुमले से नहीं बनता जो कहा गया। असल आग उस वक्त भड़कती है जब शैतान इस जुमले के गिर्द माना शुभे, पुरानी यादें और बदगुमानियां जमा करने लगता है। आपने एक बात कही, सामने वाले के दिल में वसवसा आया, उसने ये क्यों किया और लोग क्यों हंसे, क्या ये मुझे निशाना बना रहा था, शायद वो पहले से मेरे बारे में यही सोचता है। और फिर शैतान कई साल पुराने वाकयात भी उसे एक जुमले के साथ जोड़ देता है। जो बात चंद सेकंड में खत्म हो सकती थी, अब वो दिल में पूरी दास्तान बन जाती है। फिर दिल भरता है, दूरी पैदा होती है, मोहब्बत टूटती है, और कभी बरसों बाद दोनों फरीक बैठते हैं तो मालूम होता है कि असल झगड़ा तो था ही नहीं, एक गलत फहमी थी जिसे वक्त, खामोशी और शैतान ने मिलकर हकीकत बना दिया। समझ कर जब हम कुरानी हिदायत की बात करते हैं तो याद रखिए, ये किसी ऐसे वजूद की नसीहत नहीं जो इंसान को दूर से देख रहा हो, ये उस खालिक की हिदायत है जिसने इंसान को बनाया है। वो दिल की तहों को जानता है, वो जानता है कि एक लफ्ज किसी जगह चुभता है, वो जानता है कि हसद, अदम तहफ्फुज, अना और पुरानी चोटें किस तरह एक मामूली बात का मफहूम बदल देती हैं। कुरान कहता है, अला यालमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर, क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, वो निहायत बारीक बीन, पूरी खबर रखने वाला है। अब आयत के अल्फाज को और गौर से देखिए कि अल्लाह ने पहले तो ये नहीं फरमाया कि अच्छी बात कहो, फरमाया अल्लती हिया अहसन, वो बात कहो जो ज्यादा उम्दा, ज्यादा बेहतर, ज्यादा पाकीजा, ज्यादा महफूज और ज्यादा नरम हो। यानी गोया सिर्फ इतना काफी नहीं कि मेरी बात टेक्निकली गलत हो, असल अदब यह है कि अगर एक ही बात कहने के कई तरीके हों तो मैं वो तरीका चुनूं जिसमें दिल कम जख्मी हो। अगर एक लफ्ज दो माना रखता है और दूसरे माने से गलत फहमी पैदा हो सकती है तो उसे छोड़ दो। अगर एक जुमला मजलिस में कहकहा तो पैदा कर दे लेकिन किसी एक इंसान के दिल में सुई की तरह चुभने का इम्कान हो तो वो जुमला अपने सीने में दफन कर दो। हर हंसी कीमती नहीं, कभी मजलिस की चंद सेकंड की खुशी किसी इंसान के दिल पर बरसों का जख्म छोड़ जाती है। लिहाजा अपनी जबान को रोक लेना बाज़ औक़ात खामोशी नहीं होती, ये इबादत है। कितने ताल्लुकात सिर्फ इसलिए महफूज रह गए कि एक इंसान ने वो जुमला कहने से पहले रोक लिया जो वो कह सकता था। कभी वो लफ्ज़ जो आपने नहीं कहा एक पूरे रिश्ते को बचा लेता है। फिर यहाँ इंसाफ का दूसरा रुख भी देख लीजिए, अब क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ बोलने वाले पर है? नहीं, چونکہ جس طرح زبان پھسل سکتی ہے اسی طرح دل بھی بدگمانی میں پھسل سکتا ہے. جس طرح ایک شخص غلط لفظ چن سکتا ہے اسی طرح دوسرا شخص صحیح بات کا غلط مطلب بھی نکال سکتا ہے. یہی شیطان کو دوسرا دروازہ ملتا ہے. آپ نے ایک جملہ سنا پھر آواز کا لہجہ یاد کیا.

फिर चेहरे का तअस्सुर, फिर ये देखा कि कौन हंसा, फिर 10 पुराने वाकयात जहन में लाए, फिर खुद ही मुकदमा कायम किया, खुद ही गवाह बने, खुद ही जज बने और आखिर में वो फैसला सादिर कर दिया जो बोलने वाले ने कभी कहा ही नहीं था। कुरान इस रास्ते को भी खुला नहीं छोड़ता। वाकया इफ के ज़मन में अल्लाह ताला फरमाता है, लौला इज़ समअतुमुहु वन्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरा, जब तुमने वो बात सुनी तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने ही लोगों के बारे में अच्छा गुमान क्यों न किया। कितनी खूबसूरत ताबीर है ना, बिअन्फुसिहिम खैरा, वो या दूसरे मोमिन के बारे में हुस्न ज़न अपने ही बारे में हुस्न ज़न है। एक ईमानी मुआशरा ऐसा होना चाहिए जहाँ आदमी अपने भाई की बात को पहले बेहतरीन मुमकिन माना पर रखे, न कि बदतरीन माना की तलाश में निकल पड़े। क्या बरसों की मोहब्बत एक बेहतियात जुमले से ख़त्म हो जानी चाहिए? क्या एक लम्हे की लग्जिश 10 बरस की वफादारी को मनसूख कर दे? कुरान कहता है, या अय्युहा लज़ीना आमनु जतनिबु कसीरन मिन अज़्ज़न इन बाद अज़्ज़न इस्म, ईमान वालों बहुत से बदगुमानों से बचो क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। इसलिए बात ऐसी नहीं कि इंसान हर लफ्ज़ का हिसाब लगाता फिरे, हर लहजे को तराजू में तोले, हर खामोशी का खुफिया मतलब तलाश करे, हर नज़र से कोई फैसला अक्स करने की कोशिश करे। मोमिन का दिल इससे बड़ा होना चाहिए। वो जानता है कि इंसान से लग्जिश हो सकती है, ताबीर में कमी आ सकती है, लहजे में सख्ती आ सकती है, लेकिन हर खता अदावत नहीं और हर बेहतियाती साजिश नहीं, उसने जन भी इबादत है। कुरान यहाँ किसी एक फरीक को मुजरिम और दूसरे को मुकम्मल बेकसूर करार नहीं देता, बल्कि दोनों दरवाजों पर पहरा बिठाता है। बोलने वाले से कहता है, यकूलु लतीही अहसन, सबसे बेहतर बात कहो, और सुनने वाले को सिखाता है, अपने भाई के बारे में खैर का गुमान रखो। यूं जबान की भी तरबियत हुई और कान की भी, लफ्ज भी पाक और इंटरप्रिटेशन भी, और फितना दोनों तरफ से बंद हो जाता है। तब शैतान को बीच में कदम रखने की जगह नहीं मिलती। अब एक मंजर अपने सामने रखिए। फर्ज कीजिए आप किसी छोटी सी कंपनी में एक आम मुलाजिम हैं। आपके खिलाफ झूठी शिकायत कर दी जाती है, आपको मुलाजमत से निकाल दिया जाता है, आपकी शोहरत भी बर्बाद, महीनों रोजगार भी नहीं मिला, घर के अखराजात मुश्किल हो गए, आप जगह जगह नौकरी ढूंढते हैं। फिर साल गुजर गए, वक्त बदलता है और एक दिन वही कंपनी आपके जेर इंतजाम आ जाती है। जिन लोगों ने आप पर जुल्म किया था वो आपके सामने खड़े हैं। अब इख्तियार आपके हाथ में है, आप क्या करेंगे? इंतकाम, तजलील, वही जायका उन्हें भी चखाएंगे या कुछ और? कुरान हमें एक ऐसे बच्चे की दास्तान सुनाता है जिसके साथ अपने ही भाइयों ने साजिश की, उसे कुएं में फेंका, फिर वो मामूली कीमत पर फरोख्त हुआ, गुलामी में गया, अजीज मिस्र के घर आजमाइश आई, फिर झूठा इल्जाम, फिर जिंदान, फिर कैद खाने में भी एक साथी उसे याद रखने का वादा करके भूल गया। एक के बाद एक दरवाजा बंद होता गया, लेकिन अल्लाह की तदबीर खामोशी से अपना काम करती रही। और फिर वही यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिसे कभी कुएं में डाल दिया गया था, मिस्र के इख्तदार व इख्तियार के मनसब पर पहुंचे, लोग उनके पास हाजत लेकर आने लगे, और एक दिन उन्हें आने वालों में उनके भाई भी थे, वो भाई जिन्होंने उनके बचपन को जख्म बना दिया था। अब वो सामने खड़े थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ताकत थी। वो पूछते हैं, हल आलिम तुम मा फअलतुम बि यूसुफ व अखीहि इज़ अंतुम जाहिलून, क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादानी में थे? वो हैरान होकर कहते हैं, इन्नक लअंत यूसुफ, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? फरमाया, अना यूसुफ व हाज़ा अखी क़द मन्नल्लाहु अलैना, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरी दास्तान का राज एक जुमले में खोल देते हैं, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाहा ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, जो तक्वा इख्तियार करे और सब्र करे, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करता। सैयद इकराम यूसुफ अलैहिस्सलाम के इम्तिहान में हमें दो बड़े इम्तिहान दिखाई देते हैं, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें कशिश, ख्वाहिश और शहवत है, दूसरा ऐसा इम्तिहान जिसमें दर्द, जुल्म और महरूमी है। पहले इम्तिहान में इंसान को तकवा चाहिए, दूसरे इम्तिहान में सब्र। अजीज मिस्र के घर दरवाजे बंद हैं, फितना सामने है, बज़ाहिर दुनियावी रुकावट कम है। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? माज़ा

0: FM 107 Time Check.
1: जॉन, क्या सुबह के 6:01 हो चुके हैं?
2: Yes sir.
1: क्या हम आज के वीकेंड शो के लिए तैयार हैं?
2: Yes sir.
1: क्या पब्लिक आज के शो के लिए तैयार हैं?
2: Yes sir.
1: क्या पब्लिक आज की कहानी के लिए तैयार है?
2: Yes sir.
1: नो इधर नो बोलना है. कितनी दफ इतना रिहर्सल करके आया था मैं रात में, पूरी रात बिठा के रिहर्सल कर ये नतीजा आया है. एनीवेज गुड मॉर्निंग, मैं ऐसे लग बढ़ता हूँ.
3: शासिदा रेडियो.

0: आपने क्या बात भाई साहब, ये फरदांद मैंने नाम सुना है, फरजाम मैंने पहली मरतबा सुना है, क्या मतलब होता है इसका मेरे को प्लीज बताना। एक मैसेज है कमाल भाई का, वालेकुम अस्सलाम कमाल भाई क्या हाल है। और मैसेज आया है गुड मॉर्निंग कबीर अंकल फ्रॉम दनीन एंड रतवा, दोनों को बहुत बहुत सारा प्यार, आई कीप वॉचिंग योर वीडियोज, दोनों के माशाल्लाह बोथ आर फैंटेस्टिक एंड कॉन्फिडेंट एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी वीकेंड टू बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से दोनों को ही। मैं कभी अगर वीडियो बनाया ना मैंने स्टोरी क्या किसी का, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब मैं चाहता हूँ बच्चे मेरी वीडियो में रहे, मतलब मजा आ जाता है। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज किया है सलमान भाई ने, सलमान भाई क्या हो रहा है पार्टी, तौफीक साहब वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है, हेलो हेलो हेलो। आजा भाई क्या रहा था, क्या कह रहा था, दिमाग से उतर गया, हाँ याद आ गया। तो मैं ना आज एक एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी गहरी बात हो सकती है, लेकिन इसको आप ज़्यादा सीरियस बनाना नहीं, देखो सीरियस बनाओगे तो मैं भाई फिर बताऊँ फिर मुझे कॉल काटनी पड़ जाएगी और फिर मैं कॉल काट की बहाना बनाऊंगा, ओह ये तो कॉल कट गई, ओफो सॉरी तो इसलिए सीरियस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। एक कॉल आ रही है सवेरे सवेरे, उठा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: अरे माशाल्लाह तौफीक साहब आपकी सुबह सुबह जो आवाज होती है थी कड़क, बस क्या
1: बोल, जबरदस्त।
0: मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप बताइए तौफीक साहब क्या चल रहा
1: है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज सुन रहा था, हाँ। मैं बोले चलो मैं भी आवाज चेंज करके सलाम बोल दूं।
0: क्या बात है तौफीक साहब, लेकिन आपके नंबर से आप पकड़े जाते हैं नया, क्या
1: एक नया बात सुनी, सर्वर बायनिकल बोला,
0: क्या बोला,
1: अपने बालों का स्टाइल चेंज किया।
0: हाँ भाई कब का रे आपका भाई, एकदम स्मार्ट ही हो रहा,
1: वो कपड़ा कपड़ा निकाल दिया,
0: कब का भाई एकदम स्मार्ट ही हो रहा भाई आपका, उधम काट रखा भाई, बस मॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, बाकी सब चल रहा
1: मैं तो समझो तो मजाक कर रहा है,
0: नहीं नहीं
1: हो जाए ना,
0: नहीं नहीं भाई नहीं भाई, एफएम 107 का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ जाके देखिए, आपके भाई का वीडियो भी है तौफीक भाई, कैसी बातें कर रहे हो भाई।
1: अच्छा
0: जी भाई,
1: नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा डायरेक्ट,
0: डन डन डन तौफीक भाई, बिल्कुल भाई, ऑलवेज वेलकम भाई, ऑलवेज वेलकम,
1: शुक्रिया शुक्रिया
0: भाई। मैं ये कह रहा था तौफीक भाई, क्या कह रहा था यार भूल गया मैं, हाँ आप मैसेज करते हैं दो फिर भाग जाते हैं, इसकी क्या वजह है मुझे बताइए।
1: कुछ नहीं बस लोग कभी कभी कुछ आंसर नहीं मिलता है बस, चलो इसलिए मैसेज तो लाजम करूंगा।
0: ठीक है तौफीक भाई यार, अब ये सोचा स्वीट हार्ट, मुझे पता है बहुत ही क्यूट किस्म के इंसान है, ख्याल रखिए तौफीक भाई अपना यार, ऐसे ही रहिए,
1: शुक्रिया शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। तौफीक भाई के बाद सुम्बुल बहन ने मैसेज किया, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड बहना क्या हाल है, कल तो आपने कुछ नहीं किया, कल शांति रखी है आपने पूरे दिन में, और फरजाम को मुझे मतलब पता लग गया है, इट्स वर्दी, अच्छा वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों को बहुत सारा प्यार फरदान और फरजाम को माशाल्लाह। अच्छा हाँ, तो मैं सवाल क्या पूछा था, सवाल ये पूछा था कि क्या चीज़ें अभी भी ओल्ड स्कूल अच्छी लगती हैं, ओल्ड स्कूल का मतलब है कि थोड़ी सी पुराने तौर तरीके से करने में ही सही लगती हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि कुछ चीज़ें पुराने तौर तरीकों से अच्छी लगती हैं, फॉर एग्जांपल किसी से लड़ाई करना और उसको मना लेना, आज के टाइम पर आपको लंबे लंबे मैसेज लिखने पड़ते हैं या फिर लंबे लंबे मैसेजेस देख के उसका रिप्लाई करना पड़ता है, वो थोड़ा सा न्यू स्कूल है, उसमें मज़ा नहीं आता, उसमें मनाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें आपके असली जज्बात सामने नहीं आते, अगर आपने इमोजीज नहीं लगाए हैं उसमें तो सामने वाला हो सकता है उसे गलत इंटरप्रेट कर ले, आपकी टोन ना समझ में आए, समझ रहे, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज भी कौन सी चीजें हैं जो पुराने तौर तरीके से ही अच्छी लगती हैं। सुमुल बहन ने मैसेज किया है कि आई लव टीचिंग इन ओल्ड वे, मुझे भी, मैं बहन इस बात में मैं आपको ये हूटर आपने अग्री अर्न किया है, वेरी नाइस, आई कंप्लीटली अग्री विद यू बहन, खुद एक टीचर हैं तो उन्होंने बताया, देखो ओल्ड स्कूल वे में बच्चों को पढ़ाने का तरीका एकदम बढ़िया है, आई काइंड ऑफ अग्री विद यू बिकॉज आई थिंक वो जो तरीका है उसमें जो लर्निंग का प्रोसेस है हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो लगे आज के ज़माने के हिसाब से, मगर वो ज़्यादा रूटेड रहता है। भारी बात कही है बहन मैंने यहाँ मुझे कुछ स्टूडियो में रखना पड़ेगा मेरे पीठ थपथपाने के लिए, क्या बात कही है कबीर भाई ऐसा कहने के लिए मगर कहते हैं प्लीज़ इम्प्लीमेंट कराओ, काश मैं करा सकता बहन, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। और मैं यही पूछ रहा हूँ, ओल्ड स्कूल वे में कौन कौन सी चीज़ें आज भी अच्छी लगती हैं पुराने तौर तरीके से। एक भाई ने मैसेज किया है कि भाई पुराने तौर तरीके से आज भी मनाना ज़्यादा बेहतर है, ये इफ्तिकार भाई ने मैसेज किया, इफ्तिकार भाई थैंक यू, आई कम्प्लीटली एग्री भाई, किसी को मनाना ना ये सोशल मीडिया पर मज़ा नहीं आता, उसमें बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है, सामने वाला आपकी

0: नहीं समझा, फिर पता चला आपने तो बहुत प्यारी बात कह दी आपने, लेकिन आखिर में इमोजी नहीं लगाया आपकी बात गई, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो सामने से ना इंसान टोन समझ पाता है, कई चीज़ें होती हैं एक्सप्रेशन से जुड़ी हुई होती हैं, वो सामने समझ में आती हैं, वो ऐसे नहीं समझ में आती मैसेजेस में। तो आई थिंक दैट इज़ वन वे जो आज भी ओल्ड स्कूल होना चाहिए। एक भाई ने मैसेज किया है, भाई आज भी पढ़ाई जो बहन कह रही हैं एकदम सही है, आज भी पढ़ाई ओल्ड स्कूल वे में ही होनी चाहिए। मैं क्या वही तो कह रहा हूँ, मैं अग्री करता हूँ इस बात से। जकी भाई कह रहे हैं समर वेकेशन मनाना, अरे जकी भाई यू अर्नड इट ब्रो, यू अर्नड इट मेरा भाई, यू अर्नड इट, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। एक्चुअली पता समर वेकेशन अभी भी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अब वो वाली बात नहीं रही, होता ना कि आपको एक मेमोरी रहती है कहीं पे जाने की कि भाई नानी के घर जाएंगे या कहीं जाएंगे, तो वो मेमोरी इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे भी जाके फ़ोन ही चलाना है तो वहाँ की जो कोर मेमोरी है वो किसी की नहीं होती। आजकल तो मैंने नहीं सुना भाई कोई बच्चा बात कर रहा हूँ मुझसे, कितने सारे बच्चों का मैंने इंटरव्यू भी लिया, कोई जिक्र तक नहीं करता भाई उसका कि मैं नानी घर गया था। वहाँ पर जाके भी इट्स ऑल अबाउट फ़ोन, विच आई अंडरस्टैंड आज का ज़माना है, वो आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, एक हद तक ही कर सकते हैं बिकॉज वेकेशन है, आप उनको फ़ोन नहीं देंगे तो मुँह बनाएंगे, फिर फिर आप उनसे लड़ेंगे तो बहुत कुछ होगा। बट आज भी अगर समर वेकेशन ओल्ड स्कूल तरीके से होते तो आई थिंक इंसान थोड़ा कम स्ट्रेसफुल रहता, ऐसा मुझे लगता है। नॉट जस्ट फॉर द किड्स, आई बिलीव माँ बाप के साथ भी ऐसा ही सीन है। एक कॉल आते हुए कट गई, सुम्बुल बहन ने मुझे कॉल करी, कॉल फ़ौरन काटती, लगता है उन्हें दूसरी कॉल आ गई एनीवे तो या यही मेरा सवाल है बिकॉज ओल्ड स्कूल तरीके से जो चीज़ें होती हैं पुराने तौर तरीके से, वो आज भी कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए या आप करते हैं, ये मैं जो हूँ जानना चाहता हूँ। एक भाई ने बहुत कमाल का मैसेज किया, पहले मैं ज़रा कॉल ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या भाई साहब इस बात पे क्या बात है बहुत बढ़िया मैन, मजा आ गया हाँ तो अब बताइए आप, आज पहले तो ये बताइए कल सब कुछ ठीक रहा, कल आपने सच तो नहीं बोल दिया कहीं पे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: आई एम रियली हैप्पी। तो बहन क्या क्या कहना चाहेंगे अब ओल्ड स्कूल पढ़ाई की, आपने खुद मैसेज किया है कि ओल्ड स्कूल तरीका अच्छा है, व्हाई?
1: जब तक एक चपेड़ नहीं पड़ती है ना तब तक बच्चा लाइन पे नहीं आता यार प्लीज।
0: हां ओके
1: कसम से एज अ टीचर मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ जो है ना बंधे हुए बस।
0: पर ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका आना आपको सही लगता है कि वो हटा दिया जाए? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव इस बारे में?
1: यार आपकी जो बात है ना कि बच्चे रूट्स उनको अपने बेसिक्स पता होते हैं, रूट्स पता होते हैं ओल्ड एज में, अब वो नहीं है, अब उनको एक टॉपिक दो दंडाट से खलास
0: दो मिनट में सर्च करके छाप देंगे
1: और बच्चे यार हमारी अम्माएं हमें दो तीन चपेड़े क्या मारती थी कि हम लाइन पे आ जाते थे। आजकल के बच्चे इतने सेंसिटिव हैं, उनको डांटो वो क्या बोलूं मैं नहीं बोल सकती।
0: मुझे लग रहा है कि आप काफी ढीठ बच्चा थी मतलब बचपन, मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ और क्या
1: नहीं, जब तक चपेड़े नहीं पड़ती है तब तक आपके पास मेडल्स नहीं आते, ऑनर्स नहीं आते। और आप देख लेंगे कि जितने भी सक्सेसफुल बंदे हैं उन्होंने अपनी अम्मा अब्बा की चप्पलें लाते घुसे सब खाए
0: अच्छा ओके हाँ वो चीज तो है बट
1: और हार्ड वर्क करा है उन्होंने तो बहुत सी चीजें हैं मतलब जो रूटेड होनी चाहिए।
0: वो क्या है कि अभी मुझे भी ये भी लगता है ना कि आसानी सब चीजें सब्जेक्ट मिल जाते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए या नोट्स बनाने के लिए, तो अच्छी बात भी है पर बुरी बात मुझे ये भी लगती है कि दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ रहा है उसमें मतलब
1: नहीं, नहीं, है ना।
0: पर टीचरों के लिहाज से क्या है, टीचर भी तो है ना, आप भी तो दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ता होगा ना आपको?
1: हमें देना पड़ता है।
0: अरे क्यों देना पड़ता?
1: बात बच्चे की सेफ्टी की होती है, टीचर्स की सेफ्टी की नहीं होती, बच्चा पैसा ही
0: बोल रहा है। पतली गली से कैसे निकलते हैं मैंने आपसे सीखा है बहुत बढ़िया पॉइंट टू बी टेकन संबुल बहन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और पुरानी चीजों में जैसे कि पहले एसीज नहीं होते थे और टेरेस पे जाके सोना और फिर बारिश आ जाती थी, टेरेस से नीचे भागो वो वाला सीन
0: है ना, मुझे भी मैं इसी बारे में अगला डिस्कशन करने वाला था पर आपने अच्छा किया ये पॉइंट मेंशन किया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल इन्फॉर्मेशन। आजकल तो बारिश हो जाए नहीं नहीं नहीं बाहर भीग जाओगे तो ये भी है,
1: गंदे हो जाओगे, जर्म्स आ जाएंगे।
0: और आजकल तो मैंने एक और चीज देखी, आई डोंट नो ये लास्ट बात है, आपने नोटिस किया हो, टॉयज को लेकर भी अभी मां बाप थोड़े हो चुके हैं, माय गॉड इसका जो मटेरियल है इट्स नॉट

0: गुड फॉर किड्स यार.
1: आपको बताऊं, मैं एज अ मदर मैंने अपने बच्चों को आज भी फुल वे के तरीके से उनको रेज कर रही हूँ.
0: nice.
1: भी एग्जाम होता है, टीवी बंद.
0: हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड.
1: तो ये आपको पता है, जो हमारे घर में ना जब हम लोग, मतलब ठीक है, बहुत लिमिटेड टाइम होता था टीवी देखने का उस टाइम, वो केबल वाला सिस्टम था. तो हम ना, हम और भाई बहन, एक भाई को दरवाजे पे खड़ा कर देते, हम टीवी देखते थे आवाज बंद करके, अम्मी तो नहीं आ रही है, तो खड़ा है वहाँ पे देखता है, और भाग जा भाग जा, अम्मी आ रही है, टीवी बंद, सब पढ़ने बैठ गए. ये सीन होते था.
0: ये बच्चों को लगता है मामा को पता नहीं, लेकिन पता होता है.
1: हाँ. आवाज बंद करके.
0: वेरी नाइस. कुछ चीजें ना ओल्ड स्कूल अच्छी लगती है. मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा दूं, कहीं ये बात सिर्फ स्कूल तक महदूद ना रह जाए. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, कुछ चीजें आज भी पुराने तौर तरीके से की जाए तो बड़ी कमाल की लगती है, कभी कभार कर लेनी चाहिए. कुछ चीजें आप भी कर रहे होंगे पुराने तौर तरीके से. मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी बात करूं, तो कभी हम दिल्ली विल्ली जाते तो हमने वहां पे एसी वेसी नहीं लगा रखा भाई, कोई शौक नहीं हमें एसी का. वहां पे हम क्या करते हैं, कई मरतबा छत पे चले गए भाई, कूलर सेट है वहां पे, कूलर की हवा में जो नींद आती है उसका कोई कंपटीशन नहीं है. आप ले लीजिए जितनी मर्जी लग्जरी आपको चाहिए लगा लीजिए, लेकिन छत पे चारपाई लगा के और कूलर ऑन करके जो नींद आती है वो आपको एसी दे ही नहीं सकता. मैं इस बात पे अपने लिए ही बजाना चाहूंगा, लिख के दे रहा हूं मैं. इफ यू हैवंट ट्राइड दिस, और आप यहीं पे रहे हैं पूरी जिंदगी, तो आपने शायद ट्राई भी नहीं किया होगा. पर अगर आप कभी ट्राई करेंगे, जो कूलर की नींद में, जो पंखे की हवा में नींद आती है, वो आपको शायद एसी नहीं दे पाएगा. दैट इज व्हाट आई फील. वो आज भी मैं करता हूँ. ये एक ओल्ड स्कूल तरीका जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ. एक मैसेज है अबू अहमद साहब को, लिखते हैं, पुराना टाइम जब दिल से पढ़ाते थे, अभी तो अक्सर क्या पे क्या मतलब है, क्या मतलब है मैं समझा नहीं. एक मैसेज, गुड मॉर्निंग भाई, ओल्ड स्कूल तरीके से क्या क्या करते हैं. भाई ने मैसेज किया है, ये हमारे मीत भाई हैं, मीत प्रोसेसन जैन. मीत भाई कह रहे हैं, कार के स्पीडोमीटर ओल्ड स्कूल गेज वाले लगते हैं इंस्टेड ऑफ डिजिटल. भाई भाई भाई भाई भाई भाई, बहुत सॉलिड बात की है भाई. आगे लिखते हैं, लड़ाई झगड़ा ओल्ड स्कूल वाला अच्छा लगता था, अभी तो ये सोशल मीडिया पर लड़ाई होती है. और उसका लिखते हैं, शॉपिंग ऑफ अप्लायंसेस शोरूम में अच्छी लगती थी, मोल भाव करके, ऑनलाइन मज़ा नहीं आता. भाई यू डिजर्व इट. क्या सॉलिड बात कही है भाई ने, क्या सॉलिड बात कही है भाई. ये चिकन कह रहा हूं, भूख लग गई. किचन के अप्लायंसेस शोरूम में जाके लेना, वो जो उसकी कीमत बढ़ा देते हैं ना, मतलब आपके दिल में आपकी वो कीमत बढ़ जाती है कि हाँ मैंने कुछ लिया है. आप एक छोटे से छोटी चीज भी अगर लेंगे ना वहां जाके, शोरूम से उठाएंगे, आपको फील आती है भाई कुछ लेके आया हूं मैं, कुछ लेके आया हूं मैं. ऑनलाइन फील नहीं है ब्रो. आई नो लग्जरी है, ईजी है, आ जाता है, लेकिन वो बात नहीं है भाई. मैं अग्री करता हूँ. और ये जो आपने कहा ना कि स्पीडोमीटर आज भी वो ओल्ड स्कूल वाला जो गेज लगा होता है वो अच्छा लगता है, मैं वही रखता हूँ भाई. डिजिटल मुझे भी समझ में नहीं आता, वो अच्छा लगता, फील आती कि हाँ ये तो गाड़ी है डेफिनेटली भाई. बहुत सा पॉइंट था. एक मैसेज है, भाई फिर कब जा रहे, किधर जा रहा है मैं मोहसिन भाई, किधर, मई तो इधर ही छे, मई किधर जाएगा. एक बार मैसेज किया है भाई, सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. इधरीस नाम है इनका. इधरीस भाई कैसे मेरा भाई. और आगे लिखते हैं, भाई कबीर आज भी ओल्ड स्कूल तरीके से गाड़ी चलाना पसंद है, मैं मैनुअल यूज़ करता हूँ. एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छा मैंशन किया कि क्या कूलर की हवा में अच्छी रहती. वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, बात ही कुछ और है उसकी. समझा नहीं पाऊंगा मैं किसी को जो यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, शायद उनको मौका भी ना मिले, क्योंकि कतर में अगर आप छत पे चले गए बस चले ही गए तो फिर आप भरतनाट्यम सीख जाएंगे. इतनी गर्मी लगी. एक मैसेज है, दूसरों की बारातों में नाचना. भाई भाई भाई भाई आसिफ भाई, अग्री मेरा भाई. आज भी ये ओल्ड स्कूल तरीका बहुत कमाल का है. आपके घर के सामने से बारात निकल रही है, आपने नाचना शुरू कर दिया, आपको मतलब नहीं है किसके लड़के की शादी है, किसका फूफा नाच रहा है, आप चले गए और बिंदास नाच रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स भाई. इसका मजा ही कुछ और है, लगता है कि हाँ मेरे मोहल्ले में हो रही है शादी. मैं तो आपको बताऊँ, पिछली छुट्टी में जब मैं गया था तो मेरे सामने एक ट्रक था बाकायदा. मैं अगर उसका वीडियो पोस्ट कर दूंगा ना, आप हंसते हंसते आप मतलब दीवाने हो जाओगे. उसमें वीडियो में क्या था भाई, वो ट्रक को व्हीली करा रहा था. वो आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आपको आप देख के डर जाओगे. ठीक है, पूरा डिस्को बना रखा था उसने और वो व्हीली मार रहा था वो, और मैं भाई निकल के बाहर उसके साथ नाचा हूँ मैं जम के. वो कह रहा भाई ये है कौन.

पर फुल मैं तैयार था, बट आपको ऐसी ऐसे ना दूसरे की बारात में नाचने के लिए कॉस्ट्यूम चाहिए होती है. मतलब अगर आप ठीक ठाक आपने पहन रखा है, जूते वूते डाल रखे हैं, तो चल जाएगा काम. मेन यूनिफॉर्म का हिस्सा है जूते. चप्पल में आप थोड़े ऑड लगेंगे, जूते पहन के चले जाओ, नाचो किसी और की बारात में. दिस इज वेरी ओल्ड स्कूल. एक मैसेज है, बैंक की लाइन में वेट करके ट्रांजेक्शन करना इज सो सेटिस्फाइंग. अब तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में ट्रांजेक्शन करते वक्त जो माइक्रो सेकेंड्स तक मिनिएचर हार्ट अटैक आता है, क्या पैसे गलत जगह चले गए, क्या हैक तो नहीं हुए, क्या पैसे हवा में तो नहीं चले गए. ये बात हिदायत भाई, यू डिजर्व इट भाई. आई अग्री भाई. ये जो पुराना तरीका ना ट्रांजेक्शन का, लाइन में लग के ओए होए होए होए भाई, हाई फाइव भाई, हाई फाइव. एक मैसेज है इसरा बहन का, वो लिखती हैं, ओल्ड स्कूल डेज, वो दिन याद आते हैं जब एक साथ फैमिली बैठते थे, सारे दिन बातें करते थे, आज ये हुआ आज वो हुआ. अब बैठ के बस मोबाइल यूज़ करते हैं, नो कॉन्वर्सेशन, बिकॉज देर इज़ मोर बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली, नो मोर बॉन्डिंग फैमिली, नाउ देर इज़ नथिंग. मैं बहन अग्री करता हूँ, सैडली यू डिज़र्व दिस. बिल्कुल, पर बात सच्ची है, कड़वी है, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़. मोहसिन भाई कह रहे हैं, आप कब जा रहे हैं मैनीक्योर पेडीक्योर कराने? ये जो कल इन्होंने ये तीर छोड़ा है प्रिंस भाई ने, भाई मैं कह तो रहा हूँ, बहुत शर्मिला हूँ ये सब करवाने के लिए. मैं बैठ के किसी से नाखून नहीं कटवा पाऊंगा भाई. एक मैसेज है फराज भाई का, सलाम भाई, पुरानी मोहब्बत की शादी में बिरयानी खाना, ये क्या बात है फराज भाई, कंप्लीटली एग्री मेरा भाई, कंप्लीटली एग्री. यही तो बात फराज भाई, हैव यू डन दिस? मैं आपको शक की निगाह से देख रहा हूँ, आपने किया है मुझे ऐसा लग रहा है. व्हाट अबाउट ये जो आपने लिखा है ना भाई साहब, ये मैं बोल नहीं सकता हूँ हुसैन अहमद साहब, लेकिन मैं कितने अच्छे से ये बोलना चाहता हूँ, लेकिन कोई अच्छा तरीका मिल नहीं रहा है हुसैन भाई, जो आपने लिखा है ओल्ड स्कूल वे. बट आई कंप्लीटली अग्री. आपके लिए हल्का सा सुनाई दी आपको. और जकी भाई कहते हैं, एग्जाम्स की तैयारी दूसरों दोस्तों के साथ. भाई मेरे पास एक किस्सा है इससे जुड़ा हुआ, लेट मी टेल यू. पहली बात तो बहुत बढ़िया बात कही आपने जकी भाई. और ये एग्जाम्स की तैयारी दोस्तों के साथ करने के लिए हम लोग जाते थे, मेरा एक दोस्त था वासिल और एक दोस्त था सलमान, ठीक है, रियल स्टोरी. तो मैं गया सलमान के घर वासिल, और मैं हम दोनों ज़्यादा सीरियस नहीं थे पढ़ाई को लेके, क्योंकि हमें लगा अरे कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा. लेकिन हमारा दोस्त सलमान जो था वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, वेरी वेरी स्टूडियस टाइप बच्चा. हम उसके घर गए और उसकी अम्मी अब्बा को हम खास पसंद नहीं थे, उन्हें लगता ये दोनों जो है ना, इन दोनों ने बिगाड़ रखा हमारे बच्चे को. बट एनीवे, हम उसके घर गए और हमने कहा साथ में पढ़ाई करेंगे. 10 मिनट पढ़ाई के बाद हमने कहा भाई नहारी खाते हैं. तो हमने नहारी मंगाई, फिर नहारी खाते खाते पढ़ाई करने की कोशिश करी. कोशिश इज द की वर्ड. उसके बाद वो नहारी सोफे पे गिर गई भाई, सोफे पे फैल गई नहारी, क्योंकि आपको याद है वो पन्नी में आती थी नहारी, वो नहीं देते थे. मतलब अभी तो बाकायदा बर्तन प्लास्टिक के गद्दे के बर्तन देते, उस टाइम पे नहीं भाई, पन्नी में नहारी थी सारी तरी सोफे पे. ओ हो हो, उसके बाद जो हम भागे पीछे धूल उड़ाई थी भाई. और जो सलमान भाई की देह पटक हुई है उस टाइम पे, अगले दिन

0: As golden days, we as kids or as youth, we all neighbors were having kitty party or kitty meeting, you can say. But nowadays, kids don't know who their neighbors are, nor they're interested. They are always busy in phone. Sadly, I believe those were the golden days. मैं completely आपकी बात से agree करता हूँ भाई. बच्चों को पता ही नहीं है पड़ोसी है कौन. बड़े होने के बाद अगर उनके घर में कोई बच्चा है तो मुलाकात हो गई, पता लग गया ना, तो भाई कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है. एक मैसेज है भाई, रात को छत पे जाके स्टैंड वाले फैन में सोना, आज के एसी में मज़ा नहीं है. भाई यही मैं एग्जैक्ट कह रहा था उसमें भाई. और वो जो कूलर की या पंखे की हवा है, आपको याद है शादी वाला पंखा, हम उसे शादी वाला पंखा कहते हैं दिल्ली में. वो क्या होता, बड़ा सा होता उसका फ़ैन. उसे हम शादी वाला पंखा कहते हैं क्योंकि शादियों में लगता था वो. और हमारे अब्बा ने क्या किया था, वो जो नॉर्मल कूलर होता ना, उसका पंखा होता था प्लास्टिक का या पता नहीं कौन सा मटेरियल होता था, वो पंखा उसका निकाल के और एग्जॉस्ट फैन लगा देते उसके अंदर भाई. हवा बढ़ाने के लिए. वो इंजीनियरिंग उसका तोड़ी नहीं है. और विनेश भाई, थैंक यू सो मच भाई. विनेश भाई, कंप्लीटली एग्री विद यू. जो आपने बात की कि नेबरों को तो अदा बते नहीं है. एक मैसेज है आसिफ भाई का, कह रहे हैं ये बच्चा बड़ा होकर गजब करेगा. आई कंप्लीटली एग्री. वो जो बच्चा था ना, आई एग्री. मोहसिन भाई कह रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग. जाकिर भाई कहते हैं क्यूट बॉय माशाल्लाह. और लिखते हैं ऐसे बोलने मेरे बच्चे भी ले जाएँ सुबह नहीं उठा जाता. नहीं उठा जाता ना, कह रहे मेरे बच्चों को भी ले जाएँ सुबह नहीं उठा जाता. एक कॉल आ रही है. अस्सलामुअलैकुम. अरे भाई क्या हाल है आपके जैस भाई, किधर चलिए?
1: भाई
0: आज तो मजे आ रहे हैं भाई. तो आप बताइए, देखो मैं, मेरा सवाल आपने शायद नहीं सुना होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ. कौन सी वो चीज है जो आज भी पुराने तौर तरीके से ही मजा आता है उसमें?
1: पुराने तौर तरीके से
0: जैसे देखो लोगों ने बताया कि भाई छत पे जो है आज भी अगर पंखे की हवा में चारपाई पे लेट के सोया जाए तो वो नींद का कॉम्पिटिशन नहीं है. वो साम भाई भी एग्री कर रहे हैं. ये एक पुराना तरीका.
1: पुराना तरीका वो याद आ रहा भाई साहब, जब गर्मी होती थी लाइट चली जाती थी, ऊपर जाके लेटते थे और कभी बारिश पड़ जाती थी ना, भागना भारी पड़ता था भाई.
0: हम तो भागने की कोशिश भी नहीं करते थे भाई, हम तो भीग के जाएंगे.
1: ना ना भाई साहब, हम बहुत भागने की कोशिश करते थे, बड़ा डिफिकल्ट मामला रहता था भाई साहब वो.
0: अच्छा, आपके साथ फिर उल्टा मामला है, क्योंकि हम तो भाई वो वाले कि भीगना ही है, एक बूंद भी गिरी तो हम रुक जाते थे, अभी भिगाओ मुझे पहले, उसके बाद जाऊंगा.
1: ना भाई साहब,
0: शरीफ रह गए
1: यार. सुना यार, बच्चा तो बड़ा, ये तो भाई सब कुछ कह रहे थे कि बड़ा होकर कमाल करेगा, वो तो अभी से धमाल कर रहा.
0: हाँ ये बच्चा भाई, कॉन्फिडेंस देखा आपने? मैंने सीधा पूछा 60 में से कितने कह दिया उसने, 40 तो ले आऊंगा मैं खींच गाज के.
1: 40 तो नॉर्मल भाई.
0: हाँ मैं बता रहा हूँ, इस संडे को संपर्क जरूर साधूंगा मैं इनसे, वापिस जानूंगा कि कितने नंबर का करके आया.
1: जब हम इनकी उम्र में था ना, जब भाई साहब हम इनकी उम्र में था, हमें पता ही नहीं था कहाँ होता है खाना पढ़ाई.
0: खैर कोई बात नहीं, अभी भी वक्त गया नहीं, अभी भी सीख सकते हैं आप. और देखो मैं अभी ज्ञान दूं आपको, जैसे कुछ कॉलर्स देते हैं, आप सुनना ध्यान से. टेक वन एक्शन. तो क्या होता है जयेश भाई, ये हमारे जिंदगी में दूसरा चांस आता है सीखने का, तो हमें सीखना चाहिए. कैसा लगा मेरा ज्ञान? अभी ऐसा ज्ञान कोई और देगा अच्छा लगेगा, इसलिए मुझसे ही ले लो, क्या दिक्कत है.
1: और बताओ सही भाई साहब, आप क्या है ना, सोशल मीडिया बहुत कुछ सिखा रहा है
0: ना. वो तो है, अग्री करता हूँ. नहीं ज्यादा मत सीखिए, इतना भी सीखने की जरूरत नहीं है जैस भाई. लिमिट में सीखना चाहिए थोड़ा सा.
1: अरे कल मेरे तुम्हें दिखाया ना स्क्रीनशॉट, मेरे साथ स्कैम करने चला था.
0: हाँ हाँ हाँ, वो पता लगा मुझे. वीडियो कॉल करके आपसे मांग रहा था ना क्यू आई डी. भाई पब्लिक को बताता हूँ, जब भी आप कोई वीडियो कॉल करके आपसे बोले लाओ अपनी जरा कत आई डी बताओ, मत देना. इट्स ऑलवेज फेक.
1: वो मुझसे पूछ रहा, मैंने कहा तेरा नाम बता पहले, तो मैंने कहा तेरी आईडी देगा. मैंने कहा साले तू मुझे जानता
0: है. नहीं भाई, बी वेरी वेरी केयरफुल, कोई मसला नहीं है. अगर कोई डाउट भी हो तो पूछ लिया करो, मगर बस बी वेरी वेरी केयरफुल जस भाई. और कोई तरीका है जो ओल्ड स्कूल आपको अच्छा लगता है, आज भी कोई पुराना तौर तरीके से ऐसा कुछ है?
1: अरे हाँ, वो 26 जनवरी 15 अगस्त बड़ा याद आ रहा था.
0: अरे भाई छब्बीस जनवरी को सुबह उठाते थे घर वाले झांकी देखने के लिए, झांकियां देखो.
1: अरे हम तो झांकियों के चक्कर में जाते थे, हम तो जाते थे सबसे पहले तैयार होके ना, जाके बैठ जाते थे कि हाँ भाई जो हो रहा करते रहो.
0: हाँ
1: इधर को पहले
0: भाई वो 15 अगस्त को मिलती थी टॉफियां बढ़िया वाली, और तैयार हो जाता था प्रॉपर झंडे के वाले कपड़ों में, मजा आ जाता था भाई. उसकी बात ही कुछ और थी,
1: पहले के भाई पहले का जमाना ही अलग था. अभी का क्या, अभी तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं.
0: कोई बात नहीं जैसे भाई, पता लगता रहेगा आपको. पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान के आपने कॉल करी, बहुत प्यार आपको अगेन.

0: ओके भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, जब डन डन डन
1: डन मेरा भाई डन।
0: ओके भाई,
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और इनके बाद फराज भाई ने मैसेज किया, कोई प्रिंस भाई को ढूंढो, मैनीक्योर पेडीक्योर करवा के फ्री हो गए हो तो। एक कॉल आ रही है, रुकिए जरा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एकदम टनाटन। आप बढ़िया, आप सुनाइए।
2: सब बढ़िया। वो बच्चे के पेरेंट्स ने बेशक उसको बोला बेटा 50 प्लस लाने, आप फालतू में 40 पे आ गए
1: भाई। वो बच्चा मुझे अपने जैसा लगा भाई। मुझे पता है वो अपने दिमाग में क्या लेके चल रहा है, जब उसने मेरे 40 बोलने पे हाँ कह दी। कह रहा हाँ इतने तो ले आऊंगा।
2: बेशक उसके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा 50 तो आने चाहिए। वो छोड़ हो गया भाई, कम्युनिटी ने बोल दिया 40 तो आ जाएगा बस, बढ़िया
1: भाई। उसका फ्रस्ट्रेशन मुझे अपनी याद दिला था, मुझे सच में लगा ये बिल्कुल मेरे जैसा, मैं भी बचपन में ऐसे ही था भाई, और मुझसे कोई ऐसे बात करता तो मैं भी 40 ही कहता, तो मैंने इसलिए उससे 40।
2: बच्चे माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट है, हमारे टाइम में तो नहीं, इस तरह नहीं होता था, नहीं कर पाते थे।
1: भाई, तो आपके हिसाब से भाई क्या है ओल्ड स्कूल, आपको क्या पसंद है, आज भी पुराने तौर तरीके से क्या करना अच्छा लगता है?
2: यार वो भी भाई बात, तलहा भाई बात कर रहे थे ना, रात को जब लाइट जाती थी या ऊपर फैन में सोने का, खासतौर पे जब समर वेकेशन होते थे ना, वो लॉन्ग समर वेकेशन, उसमें रात में, और अगर कभी बारिश आ जानी ना तो वो ऊपर ही चादर लेके लेटे रहना कि यार चलो अभी हो सकता है रुक जाएगी फिर चलो, या अगर चलते चलते फैन में लाइट चली जाएगी तो चादर गीली करके ना तो वो हवा तो ठंडी लगेगी ना।
1: अरे क्या बात है भाई, ये देसी बना, ये अच्छी बात है, अपने एडमिट कर लिया, मैंने भी किया भाई, इसका अलग ही मजा भाई।
2: ये जो हम 90s वाले हैं ना, उन्होंने सब एक्सपीरियंस किया है, असल में उन्होंने ये दुनिया को ना मैनुअल तरीके से चलते चलते ऑटोमेटिक
1: वो जो पता है, रात में छत पे सोते सोते एक दो बूंदे गिरी, अब आदमी आंख बंद किए हुए सोच रहा है कि रुकेगी नहीं रुकेगी, चलो मैं तो सो जाता हूँ। और वो अपने दिमाग में खेल रहा है कि पता नहीं होगी नहीं होगी।
2: बिल्कुल
1: थैंक यू सो मच।
2: अलग ही मजा होता था, और कभी सुबह सुबह अगर बारिश आनी तो वो भी एक अलग,
1: हमें हमारे लिए बारिश का मतलब होता है कि भीगना ही भीगना है, देयर इज नो चांस कि हम उससे दूर भागेंगे, भीगना ही है
2: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ तो वो जिद आजकल
2: नहीं, वो ये 26 फरवरी सॉरी जनवरी वाला क्या सीन, वो सब, आपके
1: हाँ जो हमारा वो रिपब्लिक डे होता है ना, तो हम क्या करते थे कि सुबह सुबह हमें उठाया जाता था कि बेटा देखो टीवी पे झांकियां दिखाएंगे अभी, तो हमारे माँ बाप में हालांकि छुट्टी होती थी स्कूल की, लेकिन सुबह सुबह उठा के बिठाते थे, देखो चलो झांकी देखो। देखो
2: नहीं, हम लोगों के तो वो इंडिपेंडेंस डे पे सुबह जो साइकिल को रेडी करना, साइकिल के ऊपर वो फ्लैग लगाना, ये वो, उसका भी एक अलग ही मजा होता था।
1: हाँ वो भाई वो तैयारी, साइकिल को पूरा सजा देना वो पीछे से आगे तक, उसका मजा ही कुछ और था भाई, वो डेडिकेशन नजर आता था उस टाइम पे।
2: कल तो सुबह उठ के लोग कहते हैं चलो यार स्टेटस
1: कुछ और ही थी यार। तो अभी कुछ करते हैं आप, कुछ ऐसा ओल्ड स्कूल फॉलो करते हैं कोई तौर तरीका अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेके, या नहीं कुछ भी नहीं?
2: हाँ मैं अभी तक यानी कि मैनुअल चीजें नोट करना, नोट पैड पे, यानी कि एक तो वो दूसरे नोट पैड मोबाइल के नहीं, यानी कि मैनुअली चीजों को नोट करना, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से लिख नहीं ना लेते वो चीज आपको ज़ेहन मशीन नहीं होती है,
1: भाई
2: भूल जाते हैं।
1: सेम है भाई, हाई फाइव इसी बात पे, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ, मैं ये मानता भी, जैसे आपने कहा
2: चीज एक ऐसी है कि जो मैं अभी तक इस पे शिफ्ट नहीं हो पाया, यानी कि अगर कोई चीज मैंने अपने आप को याद रखनी है रिमाइंडर के तौर पे, मैंने जब तक मैं वो नोट पैड पे मैनुअली नहीं लिखूंगा,
1: खुद लिखने से ज्यादा जल्दी याद होती है वो, एक तरीके से एक मसल मेमोरी होती है ना।
2: वो अब आप नोट पैड पे बेशक आप टाइप करके भी लिखेंगे ना, वो आपको उस तरह याद नहीं रहेगी।
1: करेक्ट भाई, ये मैं भी फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज आई स्टिल डू इट।
2: इस पे मैं नहीं शिफ्ट कर पा रहा, अभी तक नहीं कर पा रहा।
1: नहीं जरूरत भी नहीं भाई शिफ्ट करने की, यही यही सबसे बढ़िया ओल्ड स्कूल तरीका है भाई, कोई भी चीज माइंड में रखने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है, तो अच्छी बात है भाई। बट थैंक यू सो मच भाई, आपने कॉल करी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार भाई। ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और भाई की बात जो है, कुछ मैसेज पढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, सर्दियों में रात में ठेले से मूंगफली खाना, ओए आते भाई ये तो आपने जो बात छेड़ी है भाई। और रात में सिर्फ मूंगफली नहीं, वो जो उबले हुए अंडे देते थे ना हमारे, तो रात में उबले हुए अंडे मिलते थे, लाइट चली गई बाहर चले गए अंडे खाने। तो बस हमें लिखते हैं, खत लिखना, फ़ोन पे मैसेज टाइप करने में कुछ इमोशन नहीं होता।

मैं सही बता रहा हूँ, राइटिंग से आपको आधे जज्बात तो वहीं समझ में आ जाएंगे, और लिखते हैं सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं व्हाट्सएप पे, तो इंस्टेंट रिप्लाई आ जाते हैं, तो लिखते लिखते लड़ाई हो जाती है, सीन अनसीन हो गया तो नाटक अलग, नाराजगी भी हो तो खत लिखना वॉज वेरी थॉटफुल, अग्री। ये बहन आपके लिए एब्सोल्युटली राइट प्रिंस भाई, वालेकुम अस्सलाम। कुछ मैसेज जल्दी से पढ़ देता हूँ मैं, हैं कौन से अंकल ये मुमताज़ में समझा नहीं। एक मैसेज, कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, और क्या हाल चाल है भाई। मैं बोल रहा था जो पुराने ज़माने में जो मेले में जाते थे घर से 2 रुपये 5 रुपये मिलते थे, उनकी बात ही कुछ और थी भाई। आपके लिए भी क्या बात है भाई, सुबह के लिसनर्स एकदम मतलब कहर डा रहे हैं क्या मोहम्मद भाई, मैं एग्री करता हूं भाई। और हमें हिसाब पता होता था कि 5 रुपये में हम जो है लूट लेंगे मतलब। खाजा भाई लिखते हैं, सैयद खाजा साहब, ओल्ड फैमिली ट्रिप्स इन वैन बसेस हैव नो कंपैरिजन, दे वर ओल्ड स्कूल आउट ऑफ द वर्ल्ड। भाई सल्यूट सल्यूट सल्यूट सल्यूट, क्या बात कही है भाई। इनके बाद शहजादा सलीम, वालेकुम अस्सलाम, मैं आपके साथ शेखू। ये आसिफ भाई जो आपने लिखा है, दूसरा वाला पॉइंट मैं बोल नहीं पाऊंगा, पर पहला वाला पॉइंट बोल देता हूँ। लिखते हैं, अब्बा से 5 रुपये लेना और दुकान पर जाके खर्च करना और अपनी प्यारी अच्छा ओके। तो मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ जब 5 रुपये मिलते थे तो गेमिंग पार्लर हुआ करते थे, सिक्का डाल के गेम खेलने वाले, ठीक है। उसका भाई आज भी कोई तोड़ नहीं है। एंड एक बहुत अच्छी बात कही ताहिर मैंने, लिखते हैं, राइटिंग कार्ड्स बाय हैंड, एग्जांपल बर्थडे कार्ड्स एक्सेट्रा, दैट आई स्टिल डू, मच बेटर देन वन मैसेज, बोरिंग मैसेज। क्या बात है यार, उन्होंने अपने 17 साल की बेटी के लिए लिखा, वन ईयर क्लोजर टू व्हाट

0: एंड इससे पता लगता है कि आपको कुछ पड़ी है सामने वाले की। एक मैसेज है, टीवी देख रहे हो सब और चैनल खराब हो जाए, फिर एक बंदे को छत पर भेजा जाए एंटीना लगाने के लिए, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये चीज अग्री भाई। एंड एक मैसेज है फराज भाई का, अब क्या बजाए बजाते इंडिपेंडेंस डे पे, क्या अब बाजे बजते? हाँ वो मज़ा नहीं आता मेरे को, बाजे में मज़ा नहीं आता सीरियसली। उसमें मैंने मैसेज किया है, लिखते हैं कबीर भाई सलाम, वालेकुम सलाम। कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी हर चीज़ की चाम ही अलग थी। पहले पुराने वाले हैं हमेशा, पुराने वाले शोर हमेशा वैसे ही रहना चाहिए, हर बात मानने वाले। आगे लिखते हैं, बिजली जाने पर लाइटर या माचिस ढूंढना ढूंढने वाले ताकि लालटेन जला सके, तो आप ज़्यादा पुराने चलेंगे, मोमबत्ती तो ठीक था बहन। आगे लिखते हैं, पुराने कंप्यूटर जिसकी आवाज़ें आती थी देन इंटरनेट कनेक्ट होता था, वाली आवाज़ ना। इस बात पे क्या बात है, डायल अप नेटवर्क, डायल अप नेटवर्क। आगे लिखते हैं, आइसक्रीम वाले जब गली से गुजरते तो आइसक्रीम का अपना ही क्रेज़ होता था, अम्मा से पैसे मांगना। आपको पता आइसक्रीम वाले की आवाज़, इफ़ यू डोंट नो, वो जो आवाज़ होती थी आइसक्रीम वाले की बड़ी पर्टिकुलर होती थी, मैंने कई मरतबा निकाल के सुनाई है आपको, फिर भी सुना देता हूँ मैं। तो उसमें होता था कि आइसक्रीम वाला आता था और उसका एक कैरेक्टर होता था, वो नॉर्मल आदमी नहीं होता था, वो दूर से ही, और वो आवाज़ लगाता था एक टोन में जो शायद इंडिया पाकिस्तान में एकदम सेम है, आइसक्रीम। ये आपको आवाज़ अगर याद है तो आप जिए भाई। और कह रहे हैं माज भाई, लव लेटर्स दोस्तों के थ्रू पहुंचाना, भाई मेरी कॉपी थी माज भाई, कॉपी भाई। और ताहिर भाई कह रहे हैं, फ्लाइंग द नेस्ट, मैं स्लेइंग मैंने कहा आज का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लिविंग फॉर यूनिवर्सिटी नेक्स्ट इंशाल्लाह, एंड ही इज़ प्योर मीट लवर सो लोकल बुचा, वेरी नाइस। बहुत क्रिएटिव है यार ताहिर भाई, जलता हूँ मैं यार आपसे। एक मैसेज है, HBD का मतलब हेपेटाइटिस बी टाना। अबे अबुद भाई। इनके बाद इरफान साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? पंखा एंड ब्लैक एंड वाइट टीवी यहाँ पर दिखाई, मुझे बताना फिर बात करता हूँ, अभी तो नॉस्टैल्जिक ट्रेंड सेट है। मुझे भी चाहिए भाई, मुझे VCR चाहिए। मणि भाई वालेकुम अस्सलाम। और एक मैसेज है सैयद खालिद साहब का, ओल्ड फैमिली ट्रिप्स का तो मैंने बोल दिया, ओल्ड कीपैड्स वाले फ़ोन मुझे चाहिए भाई, अगर कोई बढ़िया कंपनी फ़ोन बनाए ना ओल्ड कीपैड वाली, मैं फ़ौरन रख लूँगा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मिसिंग LIC डायरी एंड कैलेंडर्स, मुझे वो स्लैम बुक बहुत याद आती है भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, ट्रैफिक पुलिस से बचने का जो मज़ा रहा जब लोग के हाथ में कैमरा दे दिया। हाँ शिव भाई, आगे रहते जब तीन दोस्त एक बाइक पर रहते थे और पुलिस स्टॉप करना और उनको कट मार के आगे जाके जोश दिखाना, ये आज भी होता है शिव भाई, बस मैं अग्री एडमिट नहीं करना चाहता हूँ। क्या शाम में मिस करते हैं आपको? मणि भाई थैंक यू भाई, बहुत सारा प्यार आपको। एक मैसेज है, ये मुना ने कहा है, मैंने नहीं। अरे रहन दो माजू, सब पता है मुझे, सब जानता हूँ मैं। समीरा बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मेरे घर में यहाँ पर आज भी स्टैंडिंग फ़ैन है, AC से ज़्यादा फ़ैन यूज़ होता है, TV बच्चों को सिर्फ फ्राइडे मिलता है, और समर में मोस्टली हम सब साथ में कैरम खेलते हैं, एंड आई नेवर स्टॉप माई किड्स फ्रॉम प्लेइंग इन द रेन। और जब तक शादी में क्या है, क्या ना हो शादी में मज़ा नहीं आता, बट बाकी सारे पॉइंट्स के लिए समीरा बहन दिस इज़ फॉर यू भाई। आज जो आपने बात कही है, जो मेरा सवाल था ना उसका एक्चुअल आंसर बहन ने दिया है। मैं ये कह रहा था आज भी कौन से ओल्ड स्कूल तरीके हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, पुराने तौर तरीके, एंड आई कम्प्लीटली एग्री बहन, यू जस्ट स्लेड इट, क्या बात है, क्या बात है। मैं सर्दियों में VCR पर मूवी देखना, सब पता है मुझे जैस, आज भी वो जो किराए पे तुम CD लेके आए थे, कैसेट लेके आए थे, वह वापस नहीं दिए तुमने पैसे। और एक मैसेज है, अंकल कबीर FM 107, क्या स्वीट, आयशा इकरम ने मुझे फ़ोटो बना के भेजा है, एंड दिस इज़ सो स्वीट, बहुत प्यारा पोस्टर है, एंड आयशा स्कूल के लिए तैयार है आज तो, मतलब चिड़ी भी नहीं है, अच्छा बढ़िया है। हाई ब्रो, ओल्ड स्कूल सेटिंग TV एंटीना करेक्ट है जी, मैं आपके साथ हूँ, आज भी इफेक्टिव है, बच्चों को क्या थप्पड़े। तो ये आप करें जकी भाई, आर यू इंटू थप्पड़े स्टिल, या फिर आप सॉफ्ट प्रिंटिंग की तरफ हैं? प्लीज़ लेट मी नो। बाकी साजी मैं एक कॉल उठा लूँ उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई।
0: अरे कॉल पे ये कौन आया दिले में हुई हलचल? इरफान भाई क्या हाल है?
1: अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। KBR
0: 500 mg लो सुबह के लिए, शाम तक एकदम सेट है मामला। तो इरफान भाई मुझे बताइए, कोई ऐसा ओल्ड स्कूल चीज है जो आप आज भी कर रहे हैं, यू स्टिल फॉलोइंग समथिंग व्हिच इज ओल्ड स्कूल?
1: ऑनेस्टली ये जो ग्रीटिंग कार्ड्स का लिखने वाला सिस्टम है ना, मुझे भी लिख के ऐसे किसी को विश करना, ग्रीट करना मुझे अच्छा लगता है,
0: और
1: मैं उसको फॉलो करता हूँ आज भी।
0: अरे वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। तो आप मतलब बर्थडे वगैरह के कार्ड्स वगैरह बनाते हैं? देते हैं मतलब।

0: एग्जैक्टली और मुझे जारी बात है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हैंडराइटिंग भी थोड़ी बेहतर है अच्छी है कह सकता हूँ तो मुझे
1: लेट मी बी द जज ऑफ इट
0: या आप देख सकते हैं मैं आपको भेजूंगा
1: बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा
0: और इसके अलावा मुझे ओल्ड स्कूल में वो जो कैमरे रील के थ्रू जो पिक्चर्स ली जाती थी ना फिर उसकी एक एक्साइटमेंट होती थी डेवलप करवाने की हाँ यार फिर हम उसको बैलेंस ही रखते थे कैमरा के हर ओकेजन पे चलो आप कैमरा बाहर निकालेंगे और फिर किसी शादी ब्याह में
1: गिनती भाई गिनती रखनी पड़ती थी ना रील की गिनती
0: अच्छा उसका ऑनेस्टली उसका एक किस्सा मुझे याद आ गया कि एक बार हमारे पास जो कैमरा था वो रील डलवा के रखी थी और हम अपने कजन की किसी मेहंदी वगैरह में गए थे तो मेरे कजन ने कहा कि मुझे तस्वीरें लेनी है तो उसने कुछ तस्वीरें ली भी उसके बाद एक दो दिन के बाद वो हम उसको देख रहे थे पिक्चर्स ही नहीं आ रही थी हमारी बाद में हमने सोचा कि शायद हमारा कैमरा फुल हो गया जब उसको डेवलप करवाया तो उन दोनों मेरे जो कजन थे अभी तो यूएस में है और उन दोनों की बावलों वाली तस्वीरें और उन्होंने हाथ उठा के और ये करके वो करके सारी तस्वीरें तकरीबन 20-25 तस्वीरें तो उन्हीं की होंगी तो जब डेवलप करवाने गए उसके पैसे भी जाया हो गए और तो ये उसकी एक्साइटमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगी तो आजकल तो जारी बात है
1: बट आजकल आप द ओनली थिंग यू फॉलोइंग ओल्ड स्कूल इज राइटिंग कार्ड्स राइट
0: एग्जैक्टली
1: उसके अलावा कुछ अब यूज करें उसके अलावा कुछ तौर तरीके जो आपके घर में
0: उसके अलावा ऑनेस्टली मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है लेकिन जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ लेकिन ग्रीटिंग कार्ड्स का तो डेफिनेटली आई डू दैट
1: बढ़िया यार ये अच्छी आदत है
0: हाँ ये होनी भी चाहिए थोड़ा सा थोड़ी से बंदे में क्रिएटिविटी होनी चाहिए
1: करेक्ट
0: ये मोबाइल पकड़ के हर जगह आप बैठे रहते हैं वो भी सही नहीं है
1: नहीं नहीं बिल्कुल सही नहीं है आप जो है गुस्सा करें मैं तो कह रहा हूँ आपके साथ
0: हूँ आपका क्या है ओल्ड स्कूल का
1: मेरा मेरा मेरा ओल्ड स्कूल ये है कि मैं आज भी नोटपैड्स भरता हूँ मैं आज भी अपने हाथों से सब कुछ लिखता हूँ चाहे वो कहानी हो रैप हो मेरे दिमाग में कोई ख्याल आता है मैं टिश्यू पेपर लिख देता हूँ कॉपी के पीछे भी लिख देता हूँ तो मेरी आज भी आदत है तो मैं उसको मैं अवॉइड करता हूँ कि फ़ोन और ये सब ना यूज़ करूँ व्हेन आई एम इनटू समथिंग मैं कुछ शो तैयार कर रहा हूँ तो आई राइट इट विद माय हैंड सो मुझे याद ज़्यादा रहता है
0: अच्छा देखिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि लिखी हुई चीजें हमेशा याद रहती है आजकल जमाना वो जो स्टिकी नोट्स का है या स्टिकर्स आप लगा देते हैं आपकी याददाश्त के लिए तो वो भी जबरदस्त है
1: पर भाई इरफान भाई मेरी राइटिंग बहुत गंदी है भाई इसलिए मैं बस वो छुपा के रखता हूँ
0: ठीक है फिर आप उससे ट्यूशन लें
1: क्या कर्सिव राइटिंग है क्या आपकी जो लिटा के लिखते हैं लोग वो वाली राइटिंग है क्या आपकी
0: अच्छा ऑनेस्टली मैं कह सकता हूँ कि यानी एक होता है ना इंसान कॉन्फिडेंट होता है मैं कह सकता हूँ कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है
1: भाई
0: आई विल सेंड यू पर्सनली
1: आप तो देखूंगा भाई मैं इरफान भाई अब मैं जज करूंगा आपको बिल्कुल आंटी की तरह आप मुझे भेजो ठीक है
0: ओके ब्रदर
1: ठीक है मेरा भाई इरफान भाई बहुत प्यार भाई थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ और इरफान भाई की बात एक मैसेज है गुड मॉर्निंग कबीर भाई हैंड वाला पंखा जो बिजली ऑफ होते यूज करते थे व्हिच इज स्टिल यूज्ड इन पाकिस्तान देयर इज लोड शेडिंग इशू ये हाथ वाला पंखा क्या बात है भाई क्या याद दिलाया है तो आगे रहमत भट्ट साहब के लिए और बाकी जिंगल का टाइम आ गया तो मैं सवाल ये पूछा था कि कोई ऐसी ओल्ड स्कूल चीज है जो कोई पुरानी तौर तरीका है जो आप अभी भी फॉलो कर रहे हैं जस्ट लेट मी नो

0: FM 107 टाइम चेक।
1: भाई साहब घड़ी में हो रहे हैं 7:02 एंड यू नो आप भी मेरा 7:02 प्लीज आप देते ही हैं 7:02 वैसे तो, बट हैप्पी वीकेंड।

0: वेक अप। मैं जी दोहा वाला कबीर, और मैं ये पूछ रहा था आपसे कि कोई ऐसी चीजें जो आप अभी भी पुराने तौर तरीके से करना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई अब तो सब कुछ एडवांस हो गया जी, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी आ, तो कुछ चीज ऐसी होती है जो पुराने तौर तरीके से करने में मजा आता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम आज भी लिखना पसंद करते हैं, अपने हाथ की लिखाई पसंद करते हैं, हमें नहीं पसंद कि हम डिजिटली कुछ टाइप करें। कुछ लोग ये भी कहना है, समीरा बहन ने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो कह रही है आज भी जब वेकेशन होते हैं तो हम लोग बच्चों के साथ बैठ के कैरम खेलते हैं, विच इज अमेजिंग। बहन आई गिव यू कंप्लीट फुल क्रेडिट, ये क्या बात कही आपने, दिस इज इंस्पायरिंग टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स। और उन्होंने ये भी लिखा है कि लोग शादी में डीजे या साउंड सिस्टम यूज करते हैं, पहले शादियों में हैदराबादी मरफा बजता था। ये मरफा क्या होता है मुझे पता नहीं है, इज देयर अनदर नेम फॉर समथिंग एल्स, प्लीज मुझे ज्ञान देना, हैदराबादियों जज नहीं करना मेरे को। एक कॉल आ रही है, पहले तो कॉल उठाएं, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है आसिफ भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया एकदम झकास। आसिफ भाई
1: क्या रे, सुबह सुबह क्या लेके आया रे?
0: क्या लेके आया रे? मैं आलू है रे, मैं कुछ लेके नहीं आया। तो आसिफ भाई क्या कुछ ऐसा है जो पुराने तौर तरीके से आज भी फॉलो करते हो कि नहीं?
1: रजनीकांत को सुबह सुबह देख कर बोलना ए क्या रे,
0: ए क्या रे। यार ये डबिंग बता, मुझे बहुत अच्छी लगती थी जो पुरानी डबिंग होती थी ना।
1: मैं कट्टर फैन हूं भाई साउथ मूवी का। मैं मतलब हम लोग कैसा पहले मतलब देखने का साउथ मूवी और उसकी स्टाइल मारने का, और अभी अभी तो मतलब पब्लिक बहुत मारने लगी है, तो हम लोग ऐसा मानेगा ए क्या रे,
0: क्या रे,
1: नहीं आया रे।
0: अभी पता मेरे दिमाग में अटका रहेगा, और अब मैं ये करने वाला हूँ भाई, मैं पूरे दिन ये यूज करने वाला हूँ। मैं ऐसा ही करूंगा यूज इसको। वेरी गुड, ये आपने मेरे दिमाग में बीच में डाल दिया।
1: आपको याद है मतलब हाँ। पुराने क्या बोलते हैं उसको, हम जो साइकिल के जो टायर होते ना भाई,
0: हाँ।
1: उसको गली गली में घुमाना, गली गली में घुमाना।
0: ओके।
1: आइसक्रीम वाला आया तो आइसक्रीम लेके उसका भाग जाना।
0: हाँ तो पर आज भी क्या करते हो? ये तो पुरानी चीजें हैं, आज भी कुछ पुराने तौर तरीके से फॉलो करते हो? नहीं क्या
1: भाई, कुछ नहीं फॉलो करते अभी, कुछ नहीं फॉलो करते भाई अभी, बस कबीर भाई को फॉलो करते हम लोग बस।
0: अरे मेरा भाई फॉलो करो इसी बात में भाई साहब, आज भाई के लिए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई,
0: थैंक यू भाई।
1: एक चीज, एक और चीज,
0: हाँ बोलो ना।
1: एक क्या रे, खुशी गिरी करने वालों को रे।
0: भाई ये दिमाग में अटका रहेगा आज पूरे दिन में, ये क्या रे। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत प्यार, ओके अल्लाह हाफिज। तो आसिफ भाई ने मेरे दिमाग में जो अटका दिया अटका रहेगा। बाकी दो लोगों के बीच में अगर राइटिंग कंपटीशन हो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन जीतेगा। इरफान भाई ने अपनी राइटिंग भेजी है, भाई क्या जबरदस्त राइटिंग है यार, इतनी क्लीन राइटिंग। आज सच में दो लोगों की राइटिंग देख के मुझे जलन हो रही है भाई। इस उम्र में आके इन लोगों ने मुझे झुलसा दिया। इनके बाद ताहिर भाई की राइटिंग, बाप रे ताहिर भाई, ये आपने खुद लिखा है ये? यार ये कैसी राइट, कैसे कर रहे हैं आप दोनों भाई? और वो कह रहे हैं फॉर राइटिंग कॉम्पिटिशन विद योर अदर कॉलर। इरफान भाई ताहिर भाई में कॉम्पिटिशन होगा ना, दोनों फर्स्ट आएंगे भाई, चांस ही नहीं है। आप दोनों में से मैं चूज ही नहीं कर पा रहा कि कौन फर्स्ट और सेकंड है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप दोनों की राइटिंग एक नंबर है यार, माशाल्लाह। मैं आप दोनों की दूसरे की राइटिंग भेजूँ? You should see each other's writing because you will like it. तो मैं ताहिर भाई की राइटिंग जो है भेज रहा हूँ इरफान भाई आपको, और इरफान भाई आपकी राइटिंग जो है मैं भेज रहा हूँ ताहिर भाई को, because both of you should actually see each other's writing and आपको पता होना चाहिए कि भाई competition टक्कर का है। बहुत क्लीन राइटिंग है माशाल्लाह दोनों की है। मैं पहले इस उम्र में आके किसी की राइटिंग से मुझे जलन हो जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था। थैंक यू सो मच। और एक मैसेज है, हमें भी देखना है। अच्छा ठीक है, तो मैं जो हूँ ये भेज देता हूँ आपको, आप भी देखिए, क्योंकि अगर मैंने अपनी राइटिंग भेज दी तो आपको ऐसा लगेगा ये राइटिंग तो नहीं लग रही कि पेपर पे कोई मच्छर उड़ा था और आपने उसको मार दिया। बोला ये क्या है, ये ए लिखा हुआ है, ये तो मच्छर है, हाँ मतलब ए लिखा हुआ है। हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? फरद भाई वालेकुम अस्सलाम, भाई खैरियत कर भाई, आप जो रैप है क्या मिल सकता है? बिल्कुल मिलता है फरद भाई यार, कैसे आप, क्या मिल सकता है, रिक्वेस्ट नहीं भाई, दे दो ये बोलने का। मैंने कबीर भाई हॉलीडेज़ में जब गांव जाते थे सब कुछ ओल्ड स्कूल, थोड़ा सा आज भी है, लकड़ी के चूल्हे भाई, मोहिन भाई केरोसिन के चूल्हे।

नीम के दातून और शादी में नो केटरिंग सब खुद से मेजबानी भाई भाई भाई इस सादगी के लिए भाई सादगी के लिए भाई लकड़ी के चूल्हे पे जो रोटी अगर आपने खाई है जिंदगी में ना आपको दुनिया में किसी होटल की रोटी नहीं चलेगी मैं लिख के दे दे रहा हूँ आपको और ये मोइन भाई ने जो बात कही ना भाई साहब ले गए भाई एक मैसेज है ब्रो कैन यू सेंड मी बोथ राइटिंग अच्छा मैं भेज दूंगा भाई कोई टेंशन नहीं मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई ओल्ड स्कूल तरीके में नानी के घर में जाना और बैलगाड़ी में बैठ के आम के बाग जाना और वहाँ तोड़ के आम खाने ये अभी भी कर रहे हैं आप बैलगाड़ी पे भाई साहब आई एम इम्प्रेस्ड राइट नाउ इफ़ यू आर डूइंग इट राइट नाउ अभी भी जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम जी माल गिता मुझे आपकी राइटिंग देखनी है क्यों देखनी है हॉरर मूवी देख लो उससे बढ़िया मोहसिन भाई मेरी राइटिंग नहीं आप मेरा शो सुनना छोड़ दोगे शो ही सुनना बंद कर दोगे की राइटिंग इसकी है ये सुबह वाले की है अरे बंद करो इसका शो और ये मैसेज क्या है सैयद हमजा साहब ने असलाम कबीर वालेकुम अस्सलाम भाई लिखते हैं राइटिंग का बस क्या कहें बस आपकी तरह डॉक्टर बनते बनते रह गए आगे लिख रहे हैं ओल्ड रूटीन इज अम्मी कहती थी डोंट गो आउट विदाउट ब्रेकफास्ट ये मेरे घर पे भी आज भी फॉलो होता है भाई ब्रेकफास्ट के बिना ना ना ना ना ना ना ना फरद भाई कह रहे हैं भाई इसका जवाब दो वॉइस नोट में वो इंतज़ार कर रहा है कल से कबीर भाई ने कुछ निकाले हाँ आई एम रियली सॉरी यार पर अभी अभी भेजता हूँ गाना चला गया एक दो वॉइस नोट्स हैं वो भी मैं सुन लेता हूँ बट अरे मेरी राइटिंग का क्या करोगे भाई ताहिर भाई के लिए मैसेज क्या है इरफान भाई लिखते ताहिर गोइंग टू विन इट्स कैलीग्राफी ताहिर भाई कैन यू प्लीज सेंड मी नॉर्मल हैंड राइटिंग ताहिर भाई अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग दिखा दो भाई वो कह रहे हैं ये तो कैलीग्राफी है मेरे को आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा है भाई कह रहे हैं हैंड राइटिंग तो भेजें ठीक है मैं गाना चला के सबसे पहले यही कर देता हूँ मुझे लगा ये तारीफ कर रहे हैं ताहिर भाई की इरफान भाई तो कॉम्पिटिशन में उतरा है कह रहे क्या है कैलीग्राफी भेज रहे हो असली राइटिंग भेजो तो बताऊं ज़्यादा बनो कहते हैं न्यूज़पेपर में लिपटे हुए जैम परांठे अरे ये देखिए आप जो गलत तार छेड़ दिए आपने मैं अभी भी मोना बहन मैं आज भी ऐसा करता हूँ आप पूछ सकते हैं अपनी सहेली से या क्या है मैं खुद की मेरी खुद की राइटिंग बहुत ख़राब है भाई आपकी जितनी भी ख़राब हो मेरे से ख़राब राइटिंग आपकी नहीं हो सकती आप उस लेवल पर पहुँच ही नहीं सकते भाई आपके भाई का लेवल ही अलग है भाई लेवल है आपका भाई जो है राइटिंग की दुनिया का जुगनू है भाई सिर्फ रात में नजर आती है राइटिंग जब अंधकार होता है

0: प्यार में चमको जैसे जुगनू।
1: गुड मॉर्निंग। 7:13 बाय द क्लॉक। जुगनू बात कहां से कहां निकली थी, अब सीधा वहां पहुंच गई जहां पे मैंने सोची नहीं थी, राइटिंग तक बात पहुंच गई। बताइए, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे कोई ऐसी कोई ओल्ड स्कूल चीज है, कोई ऐसा पुराना तौर तरीका है जो अभी भी आप फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी समीर बहन ने उन्होंने एक और मैसेज किया, वो लिखती है गेम्स लाइक नेम प्लेस एनिमल थिंक चार चिट्टे हाँ चोर राजा मंजरी चोर सिपाही और दे हैं वाटर बलून से मारना वी स्टिल प्ले ऑल विद दिस किट। समीरा बहन यू आर डूइंग द परफेक्ट मॉम थिंग आई थिंक। ये मतलब ये एडमरेबल है, समझ रही हैं आप, ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। ये तो आपको मैं एक सजेशन दूँ समीरा बहन, इफ़ यू डोंट माइंड, मेरा सजेशन ये है प्लीज़ मतलब आप ऑब्वियसली कैमरे के फ्रंट से आप बिना शोइंग योर फेस ऑफकोर्स कुछ वीडियो बनाइए, लोगों को बताइए, बिकॉज कतर में ऐसे कॉन्टेंट की बहुत ज़रूरत है बहन, एंड आई एम प्रिटी श्योर यू कैन डू इट। सो जो ये वाला कॉन्टेंट है ना, ये अगर आप बनाएंगे ना, मैं जानता हूँ ये ऐसा हिट जाएगा ना और लोगों को पता लगेगा। ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, मेरे सजेशन है, फ्री का है, लेना है लीजिए, वरना फिर थैंक यू कह के आगे बढ़ जाइए। हैं इरफान भाई को मैंने दोनों की राइटिंग भेजी। इरफान भाई देखो कितने तेज़ हैं, कह रहे हैं तो AI है। ताहिर भाई आपकी आपकी राइटिंग को उन्होंने AI बता दिया ये, और कह रहे हैं अभी 5 मिनट में अपनी राइटिंग भेज रहा हूँ, भेज लो भाई आपस में ही बिल लो। एक मैसेज आया भाई का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक डॉक्टर साहब से ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, मेरी बहुत ख़राब है, सिर्फ कंपाउंडर डॉक्टर ही जानते हैं, बाकी तो सिर्फ देखिए या भाई अगर आप मेरी राइटिंग देखेंगे तो आपको मेरे अंदर एक डॉक्टर का पोटेंशियल नज़र आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ है मेरे अंदर। और मोइन भाई ने मुझे मोटिवेशन दिया है। मोइन भाई क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी राइटिंग है कोई बात नहीं बुरी होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि क्रिएटिव लोगों की हैंडराइटिंग कीड़े मकोड़े जैसी होती है। तो मतलब मुझे इन्होंने ट्रोल भी कर दिया और ये भी कर दिया कि तुम क्रिएटिव आदमी हो। और कह रहे हैं कोई और इरफान होगा, हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं ताहिर भाई वो वाले इरफान नहीं जिनको रिकॉर्डिंग भेजी थी, सॉरी आपकी राइटिंग भेजी थी, ये दूसरे वाले इरफान है, इरफान अली, ये वाले इरफान नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। इरफान भाई थैंक यू सो मच। हाँ एक मैसेज है, आज भी हमारे घर में लालटेन यूज़ होती है। हैं उजैर भाई लालटेन यूज़ होती है आज भी, और इन्होंने अपने हाथों से लिखा है RJ कबीर FM 107 दिल से देसी। भाई आई विल टेक दिस इन माई फ़ोन, बहुत अच्छा लिखा है आपने, कैलीग्राफी टाइप है, मज़ा आया मेरे को। एक मैसेज है, सरवर भाई का नॉस्टैल्जिक लुक में कैसे दिखेंगे इमेजिन करें, इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, सरवर भाई से उनकी 2017 की फ़ोटो मांग लेना। अगर सरवर भाई की 2017 वाली फ़ोटो आपने मांग ली, आपको यकीन ही नहीं होगा ये वही बंदा है जो अभी अभी आया हुआ है। एक काम कीजिएगा, जब उनके शो में जाएंगे ना आप, तो उनसे पूछेगा कि अपने 2017 की फ़ोटो दे दो, मैं बता रहा हूँ आपकी आंखें इतनी बड़ी हो जाएंगी, देख के बोलेंगे आई ये कौन है। एक मैसेज, चाय की टपरी से चाय पीना, आज लोग कैफे जाते हैं क्लब सैंडविच खाने के लिए, आई विल गो टू द नियर बाय टपरी फॉर चाय एंड वो प्लास्टिक के जार में रखी बिस्किट्स वेन एवर आई एम इन इंडिया, ऑल्सो रेलवे वाली पूरी भाजी टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। आई कंप्लीटली अग्री, यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व सिद्रा बहन, यू वेरी वेल अर्न इट, मैं अग्री करता हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ ये जो कैफे वाला सिस्टम है ना, आई अग्री कि थोड़ा फैशनेबल है, लोग जाना पसंद करते हैं, AC चाहिए, पर वो जो टपरी पे खाने का मज़ा है नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। मैं अभी भी कहता हूँ जो ठेले के खाने होते हैं ना, उनकी क्वालिटी इसलिए भी ज़्यादा है कि वो फ़ौरन बना रहे हैं, फ़ौरन बेच रहे हैं, उनका सिस्टम ही नहीं है भाई स्टोर करने का, कोई राइम और रीज़न नहीं है, एंड दैट इज़ वाई वो बहुत बढ़िया होता है। पर मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लोग अल्ट्रा मॉडर्न हो चुके हैं, तो मेरी कोई सुनेगा नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूं। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स नोट्स एंड स्टैम्प्स काउंट्स एज ओल्ड स्कूल, बिल्कुल दिस इज़ काउंटेड एज ओल्ड स्कूल एंड वेरी गुड, कि अगर आप कुछ कलेक्ट करते हैं, आजकल जनता कलेक्ट कुछ कर ही नहीं रही है, अगर इफ यू हैव कलेक्टेड कॉइन्स या कुछ भी भाई गुड जॉब, वेरी भाई बहुत सारा प्यार क्या। एक मैसेज दिखा दो ना राइटिंग, भाई कहां भी पेन नहीं है मेरे पास।

नीले मोहसिन भाई एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग जहां से भाई, गुड मॉर्निंग भाई, बहुत प्यार। बाकी एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग, आई एम स्टिल यूजिंग पॉकेट रेडियो कैसेट रेडियो लिसनिंग सॉन्ग्स। क्या बात करो, आज भी वॉकमैन चला रहे हो क्या भाई? भाई मेरे को भाई फोटो भेजना भाई, मैं मुझे ऐसी विंटेज चीज़ें बहुत पसंद है। इफ़ यू डूइंग इट राइट नो भाई, बहुत बढ़िया है। मलिक वकास साहब कहते हैं सरोवर भाई ऑलरेडी इन 80s ही जी रहे हैं। नहीं, आप उनसे मांग के देखिएगा 2017 की फ़ोटो उनकी, अगर आपको शॉक वैल्यू चाहिए। आगे लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड। डब्बे का खाने का कोई मैच नहीं कर सकता, अग्री भाई। लेते हैं, मैं आज भी करेंसी और कॉइन कलेक्ट करता हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी भी देती है। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस, ये इनकलकेट करना बड़ा ज़रूरी है। और एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, ईद कार्ड लिखना पोस्ट करना आज भी करते हैं आप? क्या बात कर रहे हो यार माजिद भाई, इफ़ यू आर डूइंग इट स्टिल, बहुत बढ़िया बात है। ताहिर भाई कह रहे हैं AI इन एक्शन, अरे मुझे फिर मैसेज खोलना पड़ेगा पूरा, ये अभी भी चला नहीं पाऊंगा मैं। ताहिर भाई लिखा है, माई राइटिंग इज़ ओनली गुड फॉर कार्ड्स एंड कैलीग्राफी प्रोजेक्ट्स, नॉर्मल हैंड राइटिंग इज एग्जैक्टली एज माई पैशन इज़ नोन फॉर। तो ताहिर भाई क्योंकि पेशे से थोड़ा नहीं, पूरे मेडिकल फील्ड में, तो कह रहे हैं मेरी नॉर्मल राइटिंग बहुत ही बुरी है। ताहिर भाई नाउ आई एम डाउटिंग यू, आप जानबूझ के पूरी राइटिंग में लिखते होगा दवाइयों के नाम आज डॉक्टर साहब पकड़े गए आप, आज मेरे को आप बताओ ये जानबूझ के लिखते हो क्या आप? नाउ आई एम डाउटिंग यू। एक मैसेज है भाई का, भाई राइटिंग मुझे भी भेज दें प्लीज, मैं नकल उतार के भेजता हूँ कह रहे मुझे भी भेज दें राइटिंग, मैं नकल उतार के भेजता हूँ अभी के भी। इरफान भाई के लिए बहुत बढ़िया भाई, और ये वॉकमैन कैरी करते हुए इन्होंने अपने वॉकमैन की फोटो भेजी है भाई ने। भाई आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आज की तारीख में कोई वॉकमैन यूज़ कर रहा है भाई, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है भाई बहुत प्यार आपको। एक मैसेज है, रोड साइड खाना हाइजीनिक नहीं होता जुबान को घुमा के, है सिद्धार्थ भाई ये कुछ सटल तरीके से कुछ कह गई यहाँ, मैं शायद पकड़ नहीं पाया इस चीज़ को। और इरफान भाई कह रहे हैं फ्रॉम, अरे दो इरफान हो गए एक तो भाई, मैं क्या बताऊँ, दोनों ही पाकिस्तान से हैं, अब मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, रैप का वेट कर रहे हैं दुआ वाले कबीर भाई, कौन सा रैप, कीड़ा रैप पाजी। एक मैसेज है, तलहा भाई फ्रॉम अलखोर, मेरी बेगम के पास स्टैम्प्स और कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स के कलेक्शन है, इट्स थर्ड जनरेशन। क्या बात करो भाई, उनके नाना करते थे, फिर उनकी खाला, अब हमारी बेगम, बीच से शेल्स कलेक्ट करना आज भी है। माशाल्लाह भाई, तो आप सिर्फ बताने के लिए रखे हैं, आप भी कुछ करते ये मैंने शादी करके एक रिपोर्टर रखा है, इसका नाम चला, ये रिपोर्ट करता रहेगा मैंने क्या कलेक्ट किया है क्या नहीं। एक मैसेज है, आई हैव 3 ऑडियो कैसेट्स फ्रॉम 2003। भाई साहब वेरी गुड, वेरी गुड। हरी भाई बता रहे हैं उनके पास आज भी 3 ऑडियो कैसेट्स हैं 2003 से, और आज भी बस टेप रिकॉर्डर नहीं, आई थिंक यू शुड गेट वन भाई। एक मैसेज है, तो डॉक्टर है ना आप, डॉक्टर स्टोरी वाला आवाम की ट्रैवल का बोर्डम का सर्जन मेरा भाई बहुत प्यारे आया भाई को। एक मैसेज है, यू कैन फॉरवर्ड इट टू दैट इरफान अली, हाँ इरफान अली को भेज देता हूँ, ये दूसरे वाले इरफान है IRF वाले, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक मैसेज है, आज भी हमारे घर में नारियल के छिलके से पानी गर्म करते हैं, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत, यू डिजर्व दिस, अग्री भाई, ये हॉर्न जो है डिजर्व करना आसान काम नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल जाता, ये मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। सिद्धार्थ बहन कह रही है, जुबान घुमा के बोलो साउथ दिल्ली की लेडीज जैसा, अच्छा वैसा वाला हाइजीनिक नहीं होता भैया, हमारे यहाँ भैया नहीं चलता, सो जो साउथ दिल्ली का माहौल है उसमें यही करती हैं वो आजकल के ना, हाइजीनिक नहीं होता भैया, इट्स रियली अनहाइजीनिक यार, आई कॉन्ट गो देयर। क्या ब्रो, माउंटेंस पे हाइकिंग, क्या है माउंटेंस पे हाइकिंग और ट्रैकिंग करते हुए कॉन्स कलेक्ट करके लाना, व्हेन आई यूज्ड टू बी इन इस्लामाबाद, मुझे लगा आज कौन से पहाड़ पे जा रहे हैं यार, मैं टेंशन में आ गया कह रहे इरफान भाई वो हैं जो मुजाहिद भाई के दोस्त हैं, अब और कॉम्प्लिकेटेड कर दो, वो इरफान भाई नहीं, वो वाले जो मुजाहिद भाई के दोस्त हैं, दूसरे वाले इरफान अली हैं, मैं फंस जाऊंगा भाई, इतना कॉम्प्लिकेशन मत लाओ। प्रिंस भाई कह रहे हैं, कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स एंड ओल्ड फाउंटेन पेन समटाइम्स, प्रिंस भाई आपकी तो बात ही अलग है भाई। एक भाई कह रहे हैं, सलाम VCR है आज भी, अ फ्यू मैरिज कैसेट्स, क्या बात है, क्या बात करो यार, इनके पास आज भी अपनी शादी की कैसेट है और VCR भी है, डिजर्व्ड इट भाई। एक मैसेज है, आज के बच्चे पॉडकास्ट सुनते हैं, हम पुराने लोग FM 107 सुनते हैं, पंच लाइन पे पंच लाइन, क्या बात है मेरा भाई, क्या बात है। और एक भाई लिखा है, 1980s की घड़ी है उनके पास, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता। ताहिर भाई कह रहे हैं, जस्ट वन इट मे हैव सम हिंट ऑफ नॉर्मल राइटिंग समवेयर। ताहिर भाई इसमें आपकी नॉर्मल राइटिंग ढूंढना बहुत मुश्किल है, ये सारी की सारी राइटिंग आपकी है भाई, बहुत डेंजर राइटिंग है आपकी भाई, कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव है आप, 10

गुना आगे निकला हुआ ये आदमी। ओके सो 666-221-07 नंबर है और अब जो है आपको मजे कराएंगे कहानी से पहले ना थोड़ा सा होना चाहिए ना किधर गया भाई। तो आप जो लोग गाड़ी में है ना आप उनको मजा आने वाले रेडी आप। मैं हमेशा इस गाने के जरिए वाटर पार्क ले जाता हूँ लोगों को और आज वीकेंड भी है तो मैं बस चाहता हूँ कि आप ना टेंशन फ्री रहें। तो ये गाना आपके लिए भाई पर साथ में करना पड़ेगा ओहो, इसका जो गाने का ओहो पार्ट है ना वो साथ में करना है ठीक है। रेडी हैं आप? वॉल्यूम बढ़ गई है 22 तक ले जाओ वॉल्यूम, कम से कम 22 तो होनी चाहिए भाई, मजा नहीं आता। बढ़ा के रेडी साथ में भाई गाड़ी में एक साथ करना है भाई, पूरे दोहों को पता लगना चाहिए कि गाड़ी में क्या चल रहा है। अभी आएगा वो पॉइंट। हाँ

Omega. Happy weekend. हाँ जी मजे आ गए. चल सागी ना, मैं वही कह रहा था. मैं कहा भाई आज आपका वीकेंड सेट कर देंगे. लगना चाहिए ना आप हमारे शो में भाई, फील आनी चाहिए, उसके बिना मजा नहीं है. 666-2107 पे आई रियली होप कि आपको मजा आया हो तो बता दीजिएगा. मैं भाई यही चाहता हूँ, आप खुश रहें यार. सीरियस बातें हम करते को नहीं भाई. एक मैसेज है, रीड ऑन एयर नहीं कर सकते. क्या लिखा है इन्होंने? मेहर भाई बहुत खतरनाक मैसेज किया आपने. और मैसेज क्या आसिफ भाई लिखते हैं, तो भाई कबीर भाई इतनी एनर्जी लाते कहाँ से भाई? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का नाम तो बताओ भाई. मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं, खाली पेट एनर्जी.

इसके बाद करूंगा ब्रेकफास्ट में। एक मैसेज आया है, मजा आ गया भाई, दिन बना दिया। निखिल भाई बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच। और एक मैसेज आया, चस करा दी भाई आपने, ये मैसेज किया माजिद भाई ने। फरत भाई कह रहे हैं दिन बना दिया भाई हमदान को, आप रियली वो काफ़ी खुश वाला है जैसे कि। अच्छा ओके रियली भाई, हमदान भाई को बहुत सारा प्यार, आई थिंक इज़ अ लोकल गाय, मुझे बताना। और रोजर दैट, क्या बात है, मुजाहिद भाई ने वीडियो बना के भेजा, अरसलान भाई ने मैसेज किया है, बाकायदा वीडियो बनाया है गाना चलते हुए। एंड एक मुझे मैसेज आया, इनका नाम है सोनिया इदरीस, ये लिखती है मेरे पास कह रहे मेरे पास 1974 का हस्बैंड है। बहन आपके लिए, क्या आप जीत गई बैकअप। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह भाई, इश्तियाक उस्मानी साहब ने बाकायदा वीडियो भेजा मुझे, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और एक भाई के पास बहुत पुराना कंसोल है भाई, ये कितने में दे रहे हैं आप, इसको तो सेल पे डालो आप पहली फुर्सत में। इरफान भाई का भी मौज आ गई। एक भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग कबीर भाई, मेरे बाबा की दुकान में आज भी 20-25 साल पुराना टीवी है भाई, फोटो खींच रखना उसकी, है बड़ा कीमती है मैं बताऊँ आपको। क्या है भाई, भाई मैं अपने रूम में नाच रहा था। आई एम रियली हैप्पी भाई, गए जियो मेरे शेर, मज़ा आ गया। चलो अच्छी बात है भाई, मज़ा आना चाहिए। उज़ैर इकबाल भाई थैंक यू सो मच। वैसे ये सैड सॉन्ग है पता भाई, मुझे पता है सैड सॉन्ग है, दिल जला के रोशन कीता मैं तेरी रावण हूँ, तो ये तो मतलब ऑब्वियसली सैड है। कोई गल नहीं वीरे। अच्छा अब मैं बताऊँ आपको कहानी आने वाली है, ठीक है। आज की जो कहानी है इट इज़ क्वाइट सिनेमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इस पर एक मूवी भी बनी है, इस पर एक मॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा चुकी है, वन ऑफ द मेजर स्टोरीज एवर टोल्ड। और इसमें मेरे नेपाली भाइयों को बहुत मज़ा आएगा सुनने में, स्पेशली क्योंकि उनसे भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है ये कहानी, तो मज़ा तो आएगा। पर क्योंकि मज़ा कम नहीं होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप कहानी से पहले ना वार्म अप हो जाए आपका, तो आई होप आपकी गाड़ी में वॉल्यूम बिल्कुल सही बराबर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीकेंड का फील रहे आपको, ये जहन में रहना चाहिए कि यार सुबह कबीर जो है मज़े करा के गया था। ठीक है, रेडी हैं आप राउंड टू के लिए? सो राउंड टू फाइट, तैयार हो जाइए, इसके बाद सीधा कहानी आएगी। बट बिफोर दैट आप देखो सारे नॉस्टैल्जिया वाले 90s वाले कैसे साथ में गाते हैं अपनी गाड़ियों में। 6 2107 गिरने नहीं देंगे भाई साहब वॉल्यूम को, गिरने नहीं देंगे। 7:30 भाई तक क्लॉक, लेट्स गो।

आप जानते हैं मैं गाने के विषय बिल्कुल क्यों नहीं बोला, मैं जानता हूँ आखिरी वाला अलाप लगा रहे होंगे लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोग आखिरी वाला अलाप लगाए बिना उन्हें चैन आएगा ही नहीं है, गाना ही ऐसा भाई। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना सुबह सुबह आपको मजा आना चाहिए, लगना चाहिए वीकेंड है, लगना चाहिए कि हाँ कबीर है सुबह। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू दैट फील कि आप बढ़िया रहें, टेंशन फ्री एकदम। पर अब थोड़ी सी भाई साहब देनी पड़ेगी टेंशन, क्योंकि अब वक्त है कहानी का। एक मैसेज पढ़ दूं पहले मैं, एक मैसेज, कबीर ब्रो एनर्जी का राज है वो हर सुबह बिस्किट खाते चाय में डुबोगे भाई। बिल्कुल अग्री अग्री अग्री अग्री आसिफ भाई, बेहतरीन लिखा है माजिद भाई ने, बहुत सारा प्यार। अच्छा अब जो है कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। सो आज की जो स्टोरी है इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, ये एक जर्नी है, ये समझ लीजिए ये कहानी नहीं एक सफ़र है, और इसमें आपको मेरे साथ चलना है। ठीक है, तैयार हैं आप? और जितने मेरे भाई बंधु हैं जो नेपाल से हैं वो प्लीज़ शाउट आउट टू यू एज वेल। तो ये कहानी आपके लिए तो ज़रूर है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी है और एक कहानी में तीन चार कहानी है। ओके, वीकेंड स्पेशल शुरू करते हैं। सो इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता है ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, इट्स अ रियल स्टोरी और बहुत बहुत अलग किस्म की कहानी है ये। तो शुरू करते हैं, वॉल्यूम ज़रा बढ़ा ली जाए क्योंकि इसमें लगेगा वक्त आपको, इस कहानी के साथ रहना है आपको। चलो सो जस्ट बी विद मी थ्रू आउट द स्टोरी, क्योंकि ये बीच से सुनने वाली कहानी नहीं है। तो आज का जो किस्सा है द वीकेंड स्पेशल स्टोरी, आज के किस्से को सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं साल 1996, 1996 10 मई, और बहुत ही खास जगह माउंट एवरेस्ट। अगर आप देख पाते 10 मई को 1996 को, तो मैं आपके सामने एक पिक्चर प्रिंट कर देता हूं कि उस दिन क्या था। तो 10 मई 1996 माउंट एवरेस्ट अगर आप रात के 12 बजे देखते, उसके ठीक बाद आपको बहुत अनईजी सा फील होता, आपको नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता, लेकिन इसी खूबसूरत नज़ारे से आपको डर भी लग रहा होता, क्योंकि इस दिन तैयारी कर रहे थे एक दो नहीं पूरे के पूरे 30 क्लाइंबर्स जो चढ़ाई करने वाले थे माउंट एवरेस्ट की, दे वर गेटिंग रेडी। तो बहुत पब्लिक थी, सब अलग अलग एक्सपेडिशंस करते हुए आए थे, एंड सब अलग अलग दिन की जगह इस ही दिन एग्जैक्ट डे पे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाले थे। अब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में कुछ खास बातें, इसकी चढ़ाई जो है ना, तो इसमें कई पॉइंट ऐसे आते हैं जो बड़े डेंजर होते हैं, तो वहां पे अगर जरा सी भी देरी हो गई तो वो जरा सी देरी पूरी की पूरी जिंदगी डिलीट कर सकती है आपकी। एवरेस्ट पे चढ़ते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से आते हैं जहां एक एक करके ही आप चढ़ सकते हैं, अगर आप ग्रुप में भी हो इट डजेंट मैटर, आपको एक एक करके ही चढ़ना पड़ेगा, वो मजबूरी है, वो हिस्सा है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं हिलेरी स्टेप, हिलेरी जो स्टेप है वो 40 फुट

का एक बड़ा सा पत्थर है, बर्फीला, और ये जो पत्थर है ये आता है 28,700 फीट पे। जस्ट इमेजिन कि कितनी हाइट की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर आप सोचिए 30 लोग एक साथ यहां से चढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, माउंट एवरेस्ट पे लग जाएगा ट्रैफिक, हाईएस्ट माउंटेन पे ट्रैफिक। सोच पा रहे हैं आप हाउ डिफिकल्ट एंड डेंजर वुड दैट बी। और इतनी ऊंचाई पर लाइन में रुक जाना, ये वैसा नहीं है जैसे जमीन पर रुकना होता है। इतनी ऊंचाई पर अगर लाइन में लोग रुके हुए हैं तो समझ जाइए कि धीरे धीरे उनकी जान निकलती चली जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो वो साथ में लेके जाते हैं उसके बावजूद बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका जो दिल है वो इतनी हाइट पर धड़केगा तेज, 140 बीट पर मिनट लेगा, क्योंकि ये दिल आपको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। आपका जो खून है वो धीरे धीरे थिक होता चला जाएगा, गाढ़ा होता चला जाएगा, और दिमाग धीरे धीरे शट डाउन होने लगेगा। तो एक आम इंसान अगर सोचे कि कल कोई सोच रहा हूं मैं कल माउंट एवरेस्ट चला जाऊं, ये इम्पॉसिबल है, इट कैन नॉट बी डन। माउंट एवरेस्ट का एक और हिस्सा आता है जिसे डेड जोन एरिया भी कहा जाता है, और ये तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। बहरहाल 11 मई बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है एवरेस्ट की चढ़ाई में, ये सारे के सारे लोग तैयार हो रहे थे। एक खबर बहुत बुरी खबर आई थी, और वो खबर थी कि मौसम बिगड़ने वाला है। एक दिन बाद बिगड़ेगा लेकिन बिगड़ने वाला है, और ये तूफान हिट करेगा बिल्कुल टॉप माउंट एवरेस्ट के। आई नो अभी अब कहानी में पूरी तरह से उतरे नहीं है, पर ये समझाना मेरे लिए जरूरी है। तो अगर आप थोड़ा सा स्लाइड बोर हुए भी तो प्लीज सुनिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है ये। अब ऐसे में क्लाइंबर्स जो है ना, यहाँ पे उनका काम क्या है, क्योंकि तूफान आने वाला है तो जल्दी जल्दी चढ़ना है, जल्दी जल्दी उतरना है इससे पहले तूफान आ जाए। 30 क्लाइंबर चढ़ाई के लिए निकले, और इनमें एक बंदा था जिसका नाम था बेक वेदर्स। ये 49 साल के थे, 49 ईयर्स के थे, और ये एक पैथोलॉजिस्ट थे पेशे से, और डैलस टेक्सस के रहने वाले थे। बेक जो थे वो काफ़ी फिट थे और ठीक ठाक एक्सपीरियंस था उन्हें, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मोटिव बना लिया था कि मैं इस एवरेस्ट की चढ़ाई तो करके रहूँगा, फुल तैयारी करके आए थे वो। और उन्होंने टारगेट दिया था अपने आप को दुनिया के सातों कॉन्टिनेंट के सातों बड़े बड़े समिट पे चढ़ने का, पहुँचने का। उनमें से ये था माउंट एवरेस्ट, जो उनके लिए गोल्ड मेडल की तरह था। अब चढ़ाई के लिए बेक वेदर ने कॉन्टेक्ट किया रॉब हॉल्स को। समझने की जरूरत है रॉब हॉल्स कौन है। रॉब हॉल्स एक कंपनी चलाते हैं और बहुत मेजर कंपनी है, उनकी आज भी कंपनी है। और रॉब एक बहुत लेजेंडरी नाम है, बहुत बड़ा नाम है माउंट एवरेस्ट पे अगर आप चढ़ने के लिए जा रहे हैं। 5 दफा वो खुद चढ़ चुके थे, तब तक 5 दफा चढ़ चुके थे, एक लेजेंडरी स्टेटस। तो मतलब अगर कोई खुदा का बंदा आपको एवरेस्ट पर चढ़ाने में भरोसेमंद है तो वो रॉब है। रॉब की जो टीम थी उसमें भी एक बंदा था जो पोस्टल वर्कर था, डग हैंसन। ये भी दूसरा अटेम्प्ट कर रहा था, और सबके सब जैसे मैंने कहा भीड़ भड़क्के के साथ चढ़ने को तैयार थे। एक जापानीज बिजनेस वुमेन थी यासुके नाम्बा, एक जर्नलिस्ट था जॉन, ये सब एक साथ थे। तो भाई रात के 12 बजे के बाद अब चढ़ाई शुरू हो रही है, और चढ़ते चढ़ते अभी मौसम खराब नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद बेक और बाकी 30 क्लाइंबर्स ने अपने आप को पुश किया और बोले रॉब सर बहुत थकावट हो रही है अभी, क्या हम रुक सकते हैं। रॉब ने कहा नहीं हम रुक नहीं सकते, बिकॉज ही न्यू कि टाइम नहीं है भाई, जल्दी चढ़ो जल्दी उतरो। कंडीशंस थोड़ी टफ थी लेकिन मैनेजेबल थी, एग्जैक्टली जैसा रॉब ने सोचा था अपने दिमाग में, क्योंकि वो लीडर है, वो सबको लेके चढ़ रहे हैं। प्लान सिंपल है, समिट तक पहुंचना है आफ्टरनून से पहले पहले, 2 बजे से पहले पहले सब कर लेना है, और फिर वापस आना है। कैंप 4 एक नीचे की तरफ है, वहां रुक जाना है अंधेरा होने से पहले पहले। तो ये उनके दिमाग में प्लान था। अब आप जरा इमेजिन कीजिए इस पहाड़ी को रात के 12 बजे के बाद, बर्फ है चारों तरफ, और ऐसे में आप हैं बेक वेदर्स। बेक वेदर्स को अजीब सा फील होने लगा, उसको धुंधला धुंधला नजर आने लगा। उससे लगा कि भाई या तो ज्यादा ठंड के चलते मुझे ऐसा लग रहा है, या मुझे बुखार चढ़ा, या हालत खराब हो रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था। जब ये लोग 27,000 फीट पे पहुंच गए तो बेक जो था उसे लगा भाई अब मुझे सच बोल देना चाहिए रॉब को, क्योंकि अगर मैंने अभी भी नहीं बताया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब उसे सामने चीज नजर ही नहीं आ रही थी।

थी, सब कुछ जज करना मुश्किल हो रहा था। 27,000 फीट पे वहां पे देखा गया, एक और प्रॉब्लम सामने आई। वहां पे ना फिक्स्ड रोप्स लगी होती हैं, नेविगेशन में मदद करती हैं, पर वो वहां पे थी ही नहीं। अब उन्हें सेट करना है तो टाइम और वेस्ट होने वाला है, तो एक घंटा जो कीमती वक्त है वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से बैक जो दिख नहीं रहा है उसे, उसने रैप रॉब को बोला, सर मुझे दिख नहीं रहा है। तो रॉब पहले हैरान हुआ, तुम्हें दिख नहीं रहा? तो बोला, नहीं रॉब अब मुझे दिख नहीं रहा है। तो रॉब ने कहा, ओके ओके ओके, क्या करें? उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, उसको बोलता हूँ तो रुक जा। तो उन्होंने बोला, बैग तुम्हें काम करो, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ वापस, फिर हम दोनों साथ में नीचे उतर जाएंगे, वो दैट भी ओके? तो बैग ने कहा, हाँ ओके। अब चॉइस ही नहीं है, ब्लाइंड थोड़ी चढ़ाई करेगा वो, एक गलत कदम और खेल खत्म। तो उसने बोला, तुम वेट करो, वैसे भी कुछ देर में सूरज निकलने ही वाला है, और शायद तुम्हें अच्छा फील हो, बेटर फील हो, तुम्हें दिखने लग जाए, यू नेवर नो, पर मैं वापस तब तक आ जाऊंगा। तो बैग भी एकदम आराम से, ये एक तरीके की बालकनी थी हिमालयस की, सॉरी माउंट एवरेस्ट की, जिस पे वो वेट कर रहा था। अब वो कुछ भी और नहीं कर सकता, उसके पास बस अपना ही साथ है, वो बैठ गया वहां पे। मगर आप सोच रहे होंगे कि बैक वेदर्स अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि उसे दिख नहीं रहा? तो बैक वेदर्स ने 18 महीने पहले एक सर्जरी करवाई थी आंखों की, जिसे रेडियल केराटोटोमी कहते हैं। ये बेसिकली करीब की नज़र को ठीक करने की एक सर्जरी होती है। इसमें सर्जन क्या करते हैं, आंखों पे ना कॉर्निया पे इंसिजन्स लगाते हैं, एक किस्म का, जैसे वो साइकिल देखिए आपने, साइकिल के पहिए पे जो स्पाइक्स लगे होते हैं, स्पोक्स, वो आंखों पे ऐसे धीरे धीरे लगाते हैं, ये कट्स होते हैं, तो कॉर्निया को चिपका देते हैं, थोड़ा फ्लैट कर देते हैं, जिससे नज़र थोड़ी बेहतर हो जाती है। ये मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट टू द स्टोरी। तो सर्जरी एकदम परफेक्ट हुई। दिक्कत क्या थी कि उस टाइम में, उस दौर में लोगों को पता नहीं था कि इससे नज़रें खराब भी हो सकती हैं। अगर ऑक्सीजन आंखों को ना मिले, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आंखें सूज भी सकती हैं। अब वो तो माउंट एवरेस्ट पे, तो कहां से ऑक्सीजन मिलेगा? तो आंखें सूजने लगी और इसलिए उसे दिखना धीरे धीरे बंद हो रहा था। जाने अनजाने में एक मेडिकल मिस्ट्री लेकर बैक वेदर पहुंच गया था माउंट एवरेस्ट पे, और उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि ये बीमारी एक्टिवेट भी तब हुई जब वो 27,000 फीट पे पहुंच गया था। अब कुछ नहीं दिख रहा, एकदम ब्लाइंड वो बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि रॉब आएगा उसको ले जाएगा, रॉब आएगा उसको ले जाएगा। पर रॉब के साथ भी अलग मसला था, वो आगे निकल तो चुका था लेकिन हिलेरी स्टेप, आपको बताया था ना 40 फीट का पत्थर, वहां पे जाके देखा तो वहां पे भी नेविगेशन के लिए रोप्स नहीं थी। अब यहां पे और टाइम वेस्ट होना है, अब ऑक्सीजन लोगों का जा रहा है, वक्त जा रहा है, सब कुछ खर्च हो रहा है और इस बीच जान भी जा रही है। टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, 2 बजे से पहले सब कुछ कर लेना है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। ये लोग डेथ जोन में पहुंच गए थे माउंट एवरेस्ट के। रॉब ये जानता था कि लोगों को वापस मैं भेज सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं भेज रहा था, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट वजह है। रॉब को देने पड़े थे सबको, मतलब अगर रॉब आपकी मदद करेगा तो आपको रॉब को देने होंगे $65,000 $65,000 उस टाइम पे। तो सबने उसे इतने इतने डॉलर्स दिए थे, कुछ लोग तो अपने घर बार गिरवी रख के आए हुए थे। अब उनको वो कैसे बोल दे कि नहीं नहीं आगे खतरा है, वापस चलो नीचे जाओ, हम नहीं चढ़ रहे, कैसे कह दे वो? तो इस गिल्ट में कि मैंने इन लोगों से $65,000 लिए, अब मैं इन्हें कैसे बोल दूं कि तुम वापस लौट जाओ, जबकि इनका सपना है माउंट एवरेस्ट चढ़ना। तो इसीलिए वो एक अलग सी जिद और गिल्ट में, आदमी बुरा नहीं है पर गिल्ट में, वो सबको कहता रहा, हाँ चलो लेट्स कंटिन्यू। तो क्लाइंबर्स पहुंचे टॉप पे, 1 बजे पहुंचे, फिर कुछ पहुंचे 2 बजे, फिर कुछ पहुंचे टॉप पे 3 बजे, फिर उनके खुद का एक बंदा पहुंचा डग हैंसन शाम को 4 बजे। रॉब इस वक्त ऊपर ही थे और वो सबको देख रहे थे, सब बड़े खुश थे, उनकी आंखों में नमी थी, सबके सपने पूरे हो गए माउंट एवरेस्ट के टॉप पे। पर इस जश्न में एक चीज नोटिस नहीं की रॉब ने, वो ये कि धीरे धीरे बर्फ सरक रही थी। 4 बजे के आसपास तो कम थी, लेकिन 5 बजते और फिर 6 बजे के करीब सब कुछ बदल गया। हवाएं जो पहले
धीरे धीरे चल रही थी, वो लगता ना सीटी बज रही।

ये वैसी वाले हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर आवाज इनकी बहुत तेज हो गई और स्पीड ऐसी थी जैसे भागती हुई ट्रेन। 112 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हवाएं चल रही थी एंड द गस्ट ऑफ विंड वाज मोर देन 150। ऐसा लग रहा था जैसे हरिकेन आया हो। ऊपर से मसला था विजिबिलिटी का, एक पल भी आगे चलने वाला बंदा दिख रहा है, दूसरे पल वो गायब हो जा रहा है। अब ये क्लाइंबर्स जो हैं, जो अपनी डायरी में लिख रहे थे, वो बता रहे थे, उनका एक्सपीरियंस आपको बताता हूं ताकि इमेजिनेशन में आसानी हो। ऐसा लग रहा था उन्हें जैसे वो एक दूध की बॉटल में है, हर जगह सफेद सफेद, कुछ भी नहीं दिख रहा। तूफान जो एक दिन बाद आने वाला था, कुदरत है, पहले आ गया। अब रॉब जानता था कि मामला बहुत सीरियस हो चुका है, क्लाइंबर्स में अभी हिम्मत भी नहीं है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उतरना भी है, अंधेरा भी होने वाला है, ब्लिजर्ड भी चालू है। डग हैंसन जो रॉब की ही टीम का बंदा था, वो पूरा बिखरा हुआ था, उसका सप्लीमेंट ऑक्सीजन भी खाली हो चुका था, टांगें जवाब दे चुकी थी और ब्रेन शट डाउन हो रहा था। रॉब ने पूरी कोशिश करी कि उसे ले जाए, लेकिन कोशिश थी बस, वो डग की हेल्प करना चाहता था मगर नहीं कर पाया। नीचे बालकनी में बैठा बेक, उसे मत भूलिएगा, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। बेक वेदर्स नीचे ब्लाइंड बैठा हुआ है, 10 घंटों से वो बैठा रहा वहां पे कि रॉब अभी आएगा। उसे नहीं पता कि ऊपर क्या चल रहा है, क्योंकि उसे दिख भी कुछ नहीं रहा है। बेक वेदर्स के साथ एक कंडीशन होने लगी थी, उसे गर्मी लग रही थी इस तूफान में, उसे लग रहा था मुझे गर्मी क्यों लग रही है, और अपनी जैकेट को खोलने लगा। दरअसल जो उसे लग रहा था ये हाइपोथर्मिया था, क्योंकि जब इंसान को हाइपोथर्मिया हो जाता है, हाइपोथर्मिक हो जाता है ज्यादा ठंड की वजह से, सो आपका दिमाग जो है वो बंद होने लगता है, बॉडी का कोर टेम्परेचर गिर जाता है और ब्रेन शट डाउन होता है। एक इंफॉर्मेशन वो देता है जाने से पहले कि बॉडी गर्म फील कर रही है, मगर ही वॉज फ्रीजिंग टू डेथ। बैक की जान जा रही है और उसे खुद को नहीं पता। जब वो ऐसे तड़प रहा था नीचे, तो एक बंदा उसे आता हुआ दिखा इस तूफान में, उसका नाम था माइक ग्रूम। ये दूसरे ग्रुप के साथ था, लेकिन इसके ग्रुप में 10 क्लाइंबर्स थे, ये सब नीचे भागते हुए चले जा रहे थे। माइक रुका, उसे दिखा ये बंदा यहां अकेले क्यों बैठा हुआ है, और उसने बोला कि भाई मैं आपकी मदद कर दूं। तो माइक ने देखा, उसे मदद करने की कोशिश करी, पर उसने देखा कि वो जवाब ही नहीं दे रहा। उसने बोला नहीं मैं ठीक हूं, और उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, वो कह रहा था नहीं आई एम फाइन। माइक नीचे चला गया, उसे पता ही नहीं उस बंदे की तो जान जा रही है, तूफान में दिख भी कुछ नहीं रहा था। और वक्त बीतता चला गया, एंडलेस वाइट, चारों तरफ जहां देखा जाए वहां नजरें बस सफेद सफेद। कुछ लोगों को तो अंदाजा हो चुका था कि वो खो चुके हैं। एक ग्रुप महज 65 फीट दूर था क्लिफ से, मतलब 65 फीट समझ लीजिए, अगर वो थोड़ा सा और आगे जाते तो हो गया था काम। ये उस पॉइंट पे थे जिसे कैंगशुंग फेस कहा जाता है, ये भी माउंट एवरेस्ट का एक बहुत ही डेडली हिस्सा है। तूफान अब धीरे धीरे थोड़ा सा थमा और लोगों को जो फंसे हुए थे उन्हें कैंपिंग की लाइट्स नजर आ रही थी, 400-500 फीट दूर। तो लगभग ऐसा लगा कि कंडीशन ठीक है, तो कुछ लोग तो बेहद स्ट्रांग थे, वो तो भाग भाग कर डेस्परेशन में पहुंच गए कैंप 4 में, बाकी फंसे रह गए। जो पहुंच गए उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारे लोगों की जाने जा चुकी हैं। इस बीच एक बहुत ही बहादुर बंदा था, अब समझ रहे हैं तीन कहानियां एक साथ चल रही हैं। बीच में फंसा है बैक वेदर्स, ऊपर है रॉब जिसकी टीम में आया था बैक, और नीचे एक टीम पहुंची हुई है। इस टीम में था एक रशियन बंदा, इसका नाम था एनाटोली बुकरीव। इस बंदे की तारीफ करनी पड़ेगी, ये बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के चढ़ाई करके माउंट एवरेस्ट तक पहुंच चुका था बिना इसके। जब वो कैंप 4 वापस आ गया और उसे पता लगा कि कुछ लोग ऊपर फंसे हुए हैं, इसने एक पल नहीं सोचा कि मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं। उसने बोला नहीं मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगा कि मैंने लोगों को ऐसे छोड़ दिया। उसने अपना हेडलैम्प तैयार किया और चढ़ने लगा वापस, जबकि खुद भी एग्जॉस्टेड था। वो इस बर्फीले तूफान में वापस 26,000 फीट पे गया गुप अंधेरे में, और बुकरीव ने कई बार टर्न्स लिए वापस ऊपर नीचे।

सोचा मैं इसे लेके नीचे जा नहीं सकता हूँ, जो लोग चल फिर सकते हैं उन्हें तो फिर भी नीचे ले जा सकता हूँ, इसे मैं घसीट के कैसे लेके जाऊंगा। तो उसे वहां उसे छोड़ना पड़ा, उसे पता था ये वैसे भी नहीं बचेगा, और बैग को वहां पे छोड़ के बुकरीव वापस नीचे चला गया। सुबह 6 बजे के करीब अनाउंसमेंट हुई कि एक बंदा ऊपर शायद बचा नहीं है, उसका नाम कंफर्म नहीं है लेकिन वो बिल्कुल नहीं बचा पाया उसे। फिर 6 बजे कैनेडियन डॉक्टर, इनका नाम था स्टुअर्ट हचिनसन, ये भी रॉब की टीम में थे, मतलब सेम टीम में जिसमें बैग था, और ये भी उसी जगह से निकले। जब निकले तो इन्हें भी नजर आया बैग, बर्फ में अब पूरी तरह से दफन, सिर्फ उसका हाथ बाहर था, उन्हें दिख रहा था। उन उसके पास गए, उसके चेहरे की तरफ देखा और क्लियरली वो कह सकते थे कि ये बच्चा नहीं है, कंडीशन बेहद ख़राब है, चेहरे पे फ्रॉस्ट बाइट्स हैं, उसका जो सीधा हाथ है वो हिल तक नहीं पा रहा है। उन्होंने अपने मेडिकल करियर में कभी ऐसा देखा ही नहीं था कि कोई इंसान ऐसे भी उसकी पल्स चल रही है लेकिन बचेगा नहीं। बैक की जो करोडेड पल्स होती है, जो सबसे आखिरी पल्स होती है जिंदगी जाने से पहले, वो बस काम कर रही थी, आखिरी आखिरी काम कर रही थी। हर मेडिकल दलील ये कहती है कि बैक बच नहीं सकता, बस वो एक बॉडी है। और स्टुअर्ट जो खुद एक डॉक्टर थे, वो उसे वहाँ छोड़ के कैंप 4 की तरफ चले गए, बिकॉज ही न्यू कि ये बच नहीं पाएगा। और ये दूसरी बार था कि जब बैक वेदर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि वो जिंदा नहीं बचा है, और इस बार ये इन्फॉर्मेशन 6:30 बजे के करीब 11 मई 1996 ये खबर पहुंची बैक वेदर्स की वाइफ के पास, पीच वेदर्स, और उन्हें बताया गया कि आपके हस्बैंड इज नो मोर। और एक इन्फॉर्मेशन ये गई कि उसे हम बचा नहीं सकते, मतलब ही इज लिविंग द लास्ट, ही इज टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस ले रहा है, और वो हाइपोथर्मिक कोमा में है, तो उसे लाना नामुमकिन है। ये जब खबर दी गई तो पूरी तरह से बैक वेदर्स की वाइफ टूट चुकी थी, मगर किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। जिस बंदे को उन्होंने 2 मरतबा कह दिया है कि ये बचा नहीं है, कुछ होगा उसके साथ। शाम के 4 बजे के करीब बैक वेदर्स, उसकी आंख खुली, जो कि अपने आप में एक करिश्मा था, उसकी जब आंख खुली समझ में नहीं आया, उसे लगा मैं घर पे तो नहीं हूं। उसने जब आंख खोल के देखा तो उसे ऐसा लगा अपनी फैमिली को देख पा रहा है, उसकी वाइफ को, अपनी बेटी मैक को, अपने बेटे बब को, एनी अंडरस्टूड, जैसे ये आवाजें उससे कह रही हूं कि उसे घर पहुंचना पड़ेगा। बैक वेदर्स अपनी जिंदगी में सीवियर डिप्रेशन का शिकार था। जब वो कॉलेज में था, महज 20 साल का था, तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई ब्लैक कलर का डॉग उसे धीरे धीरे खा रहा है, इस कदर वो बीमार था। मिड 30s में आके उसकी बॉडी उसका साथ देना छोड़ रही थी, इसलिए डिप्रेशन से लड़ने के लिए वो ये सब पहाड़ पे चढ़ना, ये सब करना शुरू कर चुका था। 40 का हुआ तो माउंटेनियरिंग करने से उसे सुकून मिलता था, डिप्रेशन कम लगता था, ये उसका ऑब्सेशन बन चुका था। मगर इस बीच वो अपने घर वालों से दूर रहने लगा था। वो सुबह उठता था, 4 बजे ट्रेनिंग करता था, हॉस्पिटल जाता था, पैथोलॉजिस्ट था तो घर आता था, लेट हो जाता था, 8 बजे सो जाता था, घर पे किसी से बात भी नहीं करता था। मैग जो उसकी बेटी थी, मैग, वो ये कहती थी कि उसने कभी अपने पापा को जिसे सुना ही नहीं, जमाने हो गए, और बेटा तो नोटिस भी नहीं करता था क्योंकि बाप कहते पता ही नहीं होते थे। इनफैक्ट इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले इसकी और उसकी वाइफ की, बैक की शादी टूटने वाली थी। उसकी वाइफ ने डिसाइड कर लिया था कि जब भी माउंट एवरेस्ट से वापस आएगा वो पेपर साइन करवा लेगी और हम दोनों अलग हो जाएंगे। मगर अभी बैक ये सब सोच रहा था, उसे आधी चीजें पता भी थी और आधी चीजें नहीं भी। उसे अपनी फैमिली नजर आ रही थी, उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश करी तो ऐसा लगा जैसे कोई लकड़ी का हिस्सा हिला रहा है, एंड फिर उसने उठने की कोशिश करी, एक ब्लाइंडिंग पेन हो रहा था और ऊपर से ही वॉज लिटरली ब्लाइंड, उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था। उसने अपने आप को उठाने की पूरी कोशिश करी और गिरता पड़ता आगे गया और अपने आप को एक चीज लगातार बोलता गया, मैं ठीक हूं, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं ठीक हूं, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं ठीक हूं, मैं पहुंच जाऊंगा, और वो आगे बढ़ता गया, रुका ही नहीं। इनफैक्ट उसकी हिम्मत उसे एक ऐसी जगह पर ले गई जहां पर नामुमकिन है किसी ऐसे बंदे का आगे बढ़ना जिसे दिख ना रहा हो। कैंप 4 300 यार्ड दूर था, 26,000 फीट पे, वो आंखें बंद ऑलमोस्ट होने के बाद भी पहुंच चुका था। लोगों ने दूर से देखा, एक बंदा चलता हुआ आ रहा है, ये कौन है?
फिर किसी ने कहा ये तो

तो वो बैक फेदर्स, ये वही है ना, उसकी टांगे लिटरली चलते हुए पोर्सिलिन डॉल की टांगे होती ना वैसी लग रही थी। और वो वहां पे पहुंचा, जैसे ना तैसे पहुंच पाया, सबके सब शॉक थे जैसे उन्होंने लिटरल भूत देख लिया हो, ये नामुमकिन था, ये सारे ट्रेंड थे। उन्होंने जल्दी जल्दी उसे कहा क्या हो टेंट में, टेंट में उसे लेके गए, उसे डबल डबल कपड़े पहनाए, उसको लिटरली टेंट में ले जाके स्लीपिंग बैग्स में रखा, उसे गर्म पानी दिया, सब कुछ किया। ये वही शख्स था जिसकी बनने की खबर ये लोग दे चुके थे, पर क्या कहानियां खत्म हो जाती, क्या बच गया बैग? नो, मेडिकल असेसमेंट जरूरी है, टेंट में से घर भी तो ले जाना है। और इस वक्त ये लोग जो टेंट में थे, इन्होंने कहा यार इसे हम ले जा तो नहीं पाएंगे, बचा तो लिया है, हम इसे ले कैसे जाएंगे, इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ तो इन लोगों का ये दिमाग चल रहा था कि बचा तो लिया, ले जा नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ बैक की बीवी, जिसे हल्की सी उम्मीद थी कि उसका पति बच सकता है, वो हार नहीं मान रही थी। उसने सेनेटर्स को कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करते करते वो पहुंच गई स्टेट गवर्नमेंट के पास, यूएस एम्बेसी इन काठमांडू नेपाल। अब बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए था, और ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर बहुत मुश्किल है इतनी हाइट पे पहुंचना, हवा जो होती है वो थिन हो जाती है, तो सबने मना कर दिया, हर पायलट ने कहा जी हम तो नहीं जा रहे। मगर फिर और यहां से नेपाली भाइयों ध्यान देने की जरूरत है, 13 मई 1996 एक पायलट था रॉयल नेपाल गोल्फ क्लब का, लेफ्टिनेंट जनरल मदान खत्री छेत्री। लेफ्टिनेंट जनरल मदान खत्री जो थे वो मेंबर थे ऑफ वॉरियर कास्ट ऑफ नेपाल, अपने हर एक चीज पे फख्र करने वाले। एम्बेसी वालों ने इन्हें इंफॉर्मेशन दी कि लेफ्टिनेंट जनरल मदान, क्या आप ये कर पाएंगे मिशन? एंड विद इन अ सेकेंड मदान सर ने कहा कि ये मैं करूंगा। और अगला जो सीन है वो बिल्कुल हॉलीवुड पिक्चर जैसा है। लेफ्टिनेंट जनरल मदान खत्री ने सारा यूजलेस सामान, जितना भी कम कर सकते थे वजन हेलीकॉप्टर का, सारा सामान बाहर फेंक दिया। इनफैक्ट मिनटों के हिसाब से फ्यूल लेकर हेलीकॉप्टर में भरा, और को पायलट को भी कहा कि किसी को आने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं खुद करूंगा। वो काम करने वाले थे जो किसी ने भी कभी नहीं किया था, तूफान में सीधा -50 डिग्रीज, और वो अपने हेलीकॉप्टर को लेके वहां पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जो पूरी तरह से कांप रहा था। उन्होंने देखा कि जमीन पर लोगों ने निशान बना रखे हैं बताने के लिए कि कहां पे ये उतर सकता है, लेकिन उतार भी नहीं सकते। एंड उन्होंने जमीन से बेहद करीब कैलकुलेशन करके हेलीकॉप्टर को पहुंचाने की पूरी कोशिश करी, और वो हेलीकॉप्टर से चिल्ला रहे थे ओनली वन पर्सन। वो क्रिटिकल कंडीशन में ये बता रहे थे। दूसरी तरफ लोग जो छोड़ के चले गए थे बैक को, वो भाग गए। उन्होंने कहा ये जिंदा बचेगा नहीं, बस अभी से गर्म वर्म पानी दे दिया है, ठीक है, बट दे न्यू कि ये बचेगा नहीं, इवेंचुअली ही विल डाई। तो वो जा चुके थे, मगर उस वक्त जब हेलीकॉप्टर में पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल मदान खत्री, तो उन्होंने देखा कि 3-4 लोग हैं, उनमें से एक बंदा जो है वो चलता हुआ आया और हेलीकॉप्टर में बैठ गया। वो टुक ऑफ भी कर गए, पर उन्हें पता लगा कि जो बंदा हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है ये ताइवानीज क्लाइंबर है, ये बैक वेदर नहीं है जिसके मिशन पे वो आए हैं, क्योंकि बैक वेदर एक अजीब ही आदमी है। बैक वेदर इतनी बुरी तरह से हालत में था, ये उसके बचने का मौका था, हेलीकॉप्टर आया था उसे लेने के लिए, पर उसने कहा नहीं, ये बेचारा बहुत देर से वेट कर रहा है, क्योंकि एक और बंदा था जो बहुत क्रिटिकल हालत में था। बोला सर इसे ले जाइए। एंड ले जाया गया। जब उसे उतार दिया गया तो लेफ्टिनेंट जनरल मदान को बताया गया, सर आप जिसको लेके आए हैं ये वो नहीं है, वो तो बैक वेदर्स वहां पर है। अब कंडीशन ये थी कि कैसे जाएं वो वापस, सिर्फ उनके पास 9 मिनट बचे हैं, जहाज में फ्यूल इतना ही है और कोई चारा नहीं है, तो या तो वापस ना जाएं, मान लें कि वो बचा नहीं है, या तो फिर एक और रिस्क लें। एंड इतने कम विंडो में लेफ्टिनेंट जनरल मदान खत्री वॉज रेडी। उन्होंने हेलीकॉप्टर को वापस तैयार किया, बोले नहीं, ये मिशन मैं पूरा करके ही रहूंगा। और वो वापस अपने जहाज, अपने हेलीकॉप्टर को लेकर पहुंचे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट हेलीकॉप्टर लैंडिंग एंड रेस्क्यू एवर कंप्लीटेड, लेफ्टिनेंट जनरल मदान खत्री छेत्री को दिया गया ये। वो पहुंचे
और उन्होंने लिटरली जान बचाई बेक वेदर्स की, जो अपने आप में कुदरत का करिश्मा है। लेफ्टिनेंट जनरल मदान खत्री को नेपाल में एक अवार्ड होता है, नेपाल तारा खिताब, ये उन्हें दिया गया, नेपाल का तारा, हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल एट डैलस जहाँ पर पहुँचा दिया गया था बेक वेदर्स को, वहाँ पर सर्जरीज की गई, राइट आर्म के कुछ हिस्से को निकालना पड़ा, लेफ्ट हैंड का थंब निकालना पड़ा, बहुत मल्टीपल सर्जरीज करी, नोज को वापस जोड़ने की कोशिश करी सर्जन्स ने, स्किन को हार्वेस्ट करके इधर उधर चिपकाया गया। बैक जो था, लेकिन वो लगातार जोक्स मार रहा था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट ठीक होने के बाद बेक वेदर्स पैथोलॉजिस्ट की नौकरी पे वापस भी गए। 4 महीने के अंदर रिकवर करने के बाद डिप्रेशन वॉज गॉन। उन्होंने इनफैक्ट इंटरव्यू में ये बोला अपना, एक लिटरली हाथ खोने के बाद भी, कि मुझे पता है बहुत खुशी है, मैं ज़िंदगी में इतना खुश कभी रहा ही नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए सबसे ज़रूरी था। उनकी शादी जो टूटने वाली थी वो भी नहीं टूटी। 2015 में उनकी शादी इनफैक्ट कामयाब रही, वो दादा भी बने। 2 बार जो बंदा डेड अनाउंस कर दिया गया था उसके बाद ही सर्वाइव्ड, ही सर्वाइव्ड एंड उसके बाद ही इज सो हैप्पी। इन्होंने कहा कि जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो आती हैं और बड़ी जरूरी होती हैं, तो यूं समझ लीजिए कुछ जो दिक्कतें हैं जिंदगी में वो जरूरी हैं, होंगी बुरी, बहुत बुरी होंगी, लगेगा कि सह नहीं सकते, लेकिन वो जरूरी है। तो ये थी कहानी बेक वेदर्स की, एंड ऑफ कोर्स ये कहानी साथ में लेफ्टिनेंट जनरल मदान खत्री की भी है। रिस्पेक्ट टू हिम फॉर डूइंग व्हाट ही डिड। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं 666-22-107 पे, 666-22-107 पे। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो। इस कहानी बहुत बहुत मेहनत लगी है मुझे, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। अब आपका फीडबैक बाकी है, स्टे ट्यून्ड।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक 8:07
2: एंड आज की कहानी मेरी पर्सनल फेवरेट है तो आई होप आपको भी उतनी अच्छी लगी हो बिकॉज आई फील ये कहानी सब चीज़ सम अप करती है अगर आप एक प्रॉपर हिम्मत वाली कहानी और कुछ मोटिवेशन चाहते हैं इससे बढ़िया कहानी नहीं हो सकती भाई इससे बढ़िया कहानी हो ही नहीं सकती सो 666-22-107 नंबर है 666-22-107 एक गाने के बाद मिलते हैं फिर आपके फीडबैक्स और आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी पर ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी लगी तो लगी कैसे ठीक है मिलते हैं गाने के बाद 8:08 में दो हवाला कभी रफ होने 7 प्लस क्या हो ऐसी है मेरी वाइफ क्या दिल से तैसी

0: हाँ जी, क्या हाल है? सब बढ़िया। एंड एक बहुत ही कमाल का मैसेज आया मेरे पास, मैं सबसे पहले मैसेज पढ़ दूँ वो। आई जस्ट गॉट टू नो कि मुझे हमारे ही बीएन स्पोर्ट्स से मैसेज आया। क्या बात है यार, आई एम रियली रियली हैप्पी। एक मैसेज आया, द स्टोरी जस्ट नाउ नरेटेड बाय आरजे कबीर अबाउट हिमालयन माउंटेनियरिंग बैक फेदर इज अमेजिंग एंड सो मोटिवेटिंग दैट आई कुडंट स्टॉप लिसनिंग। आई रीच्ड माय ऑफिस व्हाइल द स्टोरी वाज स्टिल ऑन इन माय कार रेडियो, सो आई सर्च्ड फॉर इट लाइव ऑन माय मोबाइल फोन एंड स्विच्ड ऑन टू माय मोबाइल। जस्ट फिनिश्ड लिसनिंग टू इट एज द स्टोरी टेलर सेड आई सेव्ड द नंबर एंड सेंडिंग दिस मैसेज टू थैंक्स टू एफएम 107 एंड द टीम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग सच नाइस इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग रियल स्टोरीज। इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई रियली लव्ड इट। व्हाट एन एनर्जेटिक किक स्टार्ट ऑफ द डे। आई एम शाम्भवी हर्ष, आई एम फ्रॉम इंडिया। शाम्भवी जी, इन केस यू लिसनिंग टू मी राइट नाउ, थैंक यू सो मच। एंड सबसे अच्छी बात यू वर्किंग इन बीएन स्पोर्ट्स, सो ये तो हमारे पड़ोसी हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। बड़ा अच्छा लगता है कि अपने लोग भी सुन लेते हैं, मैसेज करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू ट्यून इन मोर। एक कॉल आ रही है, उसके बाद मैसेज लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: सलाम, के हाल है?
0: बढ़िया भाई, एकदम चूरमा चारमा ले रहे हो भाई।
1: भाई आपकी कल वाली लुक देख के ना,
0: हाँ जी भाई,
1: मेरे भी दिमाग में न्यू ही आ रहा था। अलग ही है वाइब,
0: अलग ही है वाइब,
1: हाइप मेरी।
0: हाँ जी भाई, कल मैंने कहा चलो आज यार क्या कौन टाइप करेगा बैठ के। और बताइए गाबा भाई, क्या चल रहा है?
1: कबीर भाई, एक चीज और आ रही थी यार दिमाग में,
0: बोलो ना, बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो।
1: यार कबीर भाई, इतनी अच्छी यार लुक है आपकी, तो मैं पूछना चाहता हूँ इतने सालों से आप जादू बने क्यों घूम रहे थे भाई?
0: बस एक हर किसी की जिंदगी में एक वक्त आता है, देखिए वही मामूली सा वक्त नहीं, वही वक्त समझ लीजिए आप, बाकी तो सेट है भाई सीन। और बताओ क्या चल रहा है भाई बाकी जिंदगी में?
1: बाकी जिंदगी में वही कबीर भाई, डेली रूटीन।
0: डेली रूटीन
1: जी। और आपको ये दीदी ने मैसेज किया था ना अभी, संभवी हर्ष ने,
0: जी जी जी
1: जी, वो भी हमारे फैमिली रिलेशन ही है उनके साथ में, शायद वो मेरे को सुन रहे हो अभी।
0: अच्छा ओके, नाइस है भाई, नाइस।
1: जी जी जी, आना जाना है उनके साथ में,
0: पर मुझे पता नहीं था कि हमारे, हाँ ओके, आई डिडंट नो दिस, तो मुझे ही पता लगा। मैंने कहा बड़ा अच्छा लगता है यार कोई आस पड़ोस का मैसेज करता है, इट फील्स नाइस, तो अच्छी।
1: मुझे भी अभी पता चला,
0: चलो अच्छी बात है, आपने भी फिगर आउट कर लिया मेरे साथ। कहानी सुनी वैसे आपने?
1: कहानी मैं कबीर भाई वही है ना, मेरा थोड़ा सा काम की वजह से ना यार गाड़ी से बाहर अंदर होना पड़ता
0: है। चूक गए पार्टी, आप बहुत बढ़िया कहानी से चूक गए भाई, मैं सही बता रहा हूँ आपको।
1: ओहो हो, अभी कहाँ सीने में मारोगे गोली या कहाँ पे मारोगे
0: भाई? मैं बता के थोड़ी मारूंगा बट मैं भेजूंगा गाबा भाई सुन के, मैं संडे को आपसे एग्जाम लूंगा भाई, सुन ले।

0: करना एक बारी, वक्त निकाल के सुन।
1: हाँ ठीक है ठीक है कबीर भाई, मैंने वहां तक सुना था जो वो लम्हे रिमिक्स सॉन्ग चल रहा था ना।
0: अरे तो बहुत पहले की बात हो गई, तो ये तो सालों पहले की बात,
1: थोड़ा सा बिजी हो गया था भाई मैं।
0: अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात,
1: सालों पहले की,
0: सालों पहले की बात है। ठीक है भाई, सुनिएगा मेरे भाई, बाकी फिर मैं इस कहानी को डिस्कस करके फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है।
1: नहीं कुछ और नहीं पूछना आपने?
0: नहीं यही तो
1: जो पहले क्वेश्चन चल रहा था उसके हिसाब से।
0: पहले क्वेश्चन ये था मेरा कि कोई ऐसी चीज है जो अभी भी आप पुराने जमाने के तौर तरीके से करते हैं, अभी भी करते हैं।
1: कबीर भाई एक चीज है अभी भी हमारे घर में है, वो
0: क्या?
1: जैसे आपको पता है अभी तो वेट करने के लिए डिजिटल कंडा आ गया है, सही है ना?
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: उससे पहले जो दुकानों में था वो नीचे रख के उसके ऊपर वट्टा रख के
0: मजे में
1: उसका वेट करते थे।
0: फील दी भाई, वो फील दी भाई।
1: और उसके पहले एक और था जिसको हाथ से पकड़ के दोनों तरफ उसके प्लेट होती थी।
0: हाँ।
1: एक तरफ वट्टे रखते थे, एक तरफ चीज रखते थे कोई ना कोई।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
1: अगर भाई आपके पास कोई वट्टा भी मिसिंग होता था ना, तो उसकी उसके ही पैरलर पत्थर का उतने ही वेट का वट्टा बंदा अरेंज कर लेता था।
0: हाँ, अब इतनी मेहनत कोई करेगा भाई? आज अब भी करते हैं आपके आपकी तरफ कोई करता
1: भाई? अभी भी हमारे पास पड़ा है वो, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, क्योंकि उसकी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होती कबीर भाई, आपको पता है। उसको चलाने का तजर्बा कबाड़ी वालों के पास ही है प्रॉपर।
0: हाँ ओके ठीक है, ये मुझे चलो हाँ। ये नॉलेज दे दी आपने, ये नहीं पता था मुझे, थैंक यू भाई ये बताने के लिए।
1: आपने बेचा नहीं कभी सामान?
0: हाँ ऑफ कोर्स मेरे भाई, ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स भाई, लेकिन मैं अभी
1: तो उनके पास तो
0: अभी नहीं होता ना, ऐसा इसलिए पूछ रहा था मैं।
1: हाँ अभी तो उनके पास डिजिटल है, मगर फिर भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके पास वो कंडा अभी भी होता है।
0: अच्छा ओके चलो ठीक है, ये तो पता
1: तो वो कंडा अभी भी एंटरटेनमेंट के पर्पज से भाई कबीर भाई हम लोग कभी यूज करते हैं उसको, अभी भी वो हमारे घर में है। कभी जैसे आम ले लिए रेडी वाले से
0: हाँ।
1: या सेब ले लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए उसको यूज करते हैं हम।
0: हाँ
1: भाई हम लोग अपने कंडे में जोखेंगे इसको।
0: बढ़िया भाई, गाबा जी ऐसी साथ दे रहो भाई, और थैंक यू सो मच भाई, क्योंकि मुझे अभी बढ़ना पड़ेगा आगे मेरे भाई, बहुत सारे मैसेज मुझे पढ़ने, वरना शो छोटा पड़ जाएगा, पर थैंक यू सो मच भाई कॉल करने के लिए, थैंक यू भाई।
1: ओके बाय, लव यू, हैप्पी वीकेंड भाई,
0: हैप्पी वीकेंड भाई, हैप्पी वीकेंड। अच्छा मैसेज है, ऐसे याद करते, स्टोरी बहुत अच्छी थी लेकिन अब कितनी बार पढ़ने के बाद ऐसे याद करते हैं। मैं एक बार भाई अगर तसल्ली से पढ़ ली मैंने कहानी तब तो कोई टेंशन नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे मतलब मुझे डेट्स वगैरह याद रखनी पड़ती हैं, जगह याद रखनी पड़ती है, बाकी आपका भाई कर लेता है। इमेजिनेशन ठीक ठाक है भाई आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम करम से। इरफान भाई ने मैसेज किया है, क्या यार कबीर भाई क्या स्टोरी सुनाई, एवरेस्ट चढ़ने का सपना था वो भी टूट गया, अब तो नेपाल के नाम से भी डर लगने लगा है, एवरेस्ट तो दूर की बात है। नहीं भाई अभी बहुत हाईटेक हो चुका है मामला, पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आप ये नहीं कह सकते कि कल सुबह उठ के मैं चला जाऊँगा, ऐसा नहीं होता भाई, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस है। एंड शामोवी जी मैं ज़रूर भेजूंगा आपको, नॉट टू वरी, यू विल गेट द स्टोरी डेफिनेटली, इनफैक्ट डेली वाली स्टोरी मिलेगी आपको। यूसुफ भाई ने मैसेज किया, आज की स्टोरी पूरी सुन पाया, गुड वन, सर्वाइवल स्टोरी, बेचारे में इतनी हिम्मत के वापस आया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई उसकी जगह होता तो श्योर जान से हाथ धो बैठता, डेफिनेटली भाई, ऊपर से दिख भी नहीं रहा था उसको, ही डिजर्व टू गेट द ब्रेवरी अवार्ड एंड हाई सिविलियन अवार्ड एंड ही गॉट इट आई बिलीव। इस इंसिडेंट के बाद हाउ इज़ हिज पर्सनल लाइफ? ही हैज़ डन ग्रेट इन हिज़ लाइफ भाई, दोनों मतलब जो लेफ्टिनेंट जनरल मदान साहब थे वो भी एंड एंड हिम ऑल्सो, वो अपनी जॉब पे वापस लौटा एंड दादा वादा बना, बढ़िया जिंदगी जी भाई ने। बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट नरेशन इज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। एक फलक जी के मैसेज है, फलक जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? एंड एक मैसेज है सेम हेयर, आई एम लिसनिंग टू द स्टोरी ऑन ऐप इवन आफ्टर रीच्ड ऑफ इट, वाज सो एंगेजिंग, थैंक यू भाई। आज तो भाई साहब मेडल लेके जाएगा भाई आपका। जैस भाई लिखते हैं, भाई सच में मज़ा आ गया, जज्बा हिम्मत और जिंदगी, थैंक यू थैंक यू। एंड एक भाई ने लिखा है, वेरी ब्रेव स्टोरी, थैंक यू एंड व्हाट अ स्टोरी, आई एम टोटली शॉक्ड ही इज अलाइव। मैं भी इतना ही शॉक था, मुझे लगा बच कैसे गया भाई ये। एक मैसेज, ये कहानी है हिम्मत और बहादुरी की, बेहतरीन मिसाल पेश करती है, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार आपको। जमाल शेख साहब भी कह रहे हैं स्टोरी भेजेगा एंड भेजूंगा। शहद सलीम कहते हैं, ब्रिलियंट रेस्क्यू ऑपरेशन, अप्रिशिएट हेलीकॉप्टर पायलट, ये सब एक साथ खिचड़ी बना के इन्होंने भेज दिया मुझे। एक मैसेज है, क्या बात है भाई मज़ा आ गया, सैयद हाशमी रजा साहब का मैसेज है। और उसके बाद फरद भाई लिखा है, भाई नंबर वन स्टोरी थी लास्ट वीक तक, क्या लास्ट, अच्छा लास्ट तक बांध के रखा आपने सबको, थैंक यू भाई, लॉट्स ऑफ लव भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, कहानी बहुत अच्छी लगी, फरीद फ्रॉम सऊदी अरेबिया, एंड नाइस लिखा है, एक भाई लिखा है भेज देना, ठीक है। तो अब मैं ज़रा कॉल वगैरह ओपन कर देता हूँ क्योंकि मैंने उसको बंद कर दिया था। ओके कबीर भाई, ऑलवेज लव योर स्टोरी, आई मिस इट टुडे, प्लीज़ शेयर। मैं भाई चैनल भेज दे रहा हूँ कयूम पारकर साहब, और आ जाना उस पर। एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।

0: हम भैया तमाम हम दिए भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई
1: मजा आ गया भाई मजा आ गया भाई
0: मजा आ गया आज भाई पूरा प्रॉपरली शुरू से ना एंड तक घुसा रहा भाई
1: ओके तो कब जा रहे हैं फिर
0: भाई हिला नहीं है गाड़ी में से बिल्कुल भी
1: कब जा रहे हैं फिर नेपाल कब जा रहे हैं फिर चढ़ाई के लिए भाई
0: आप तो बिल्कुल बिना जानने का भाई बिना रूट भी ना पकड़ेंगे
1: अब तो रेत के टीले से भी डर लगेगा नहीं चढ़ मैं नहीं चढ़ा रेत के टीले पे
0: भाई अब ना चढ़ना कहीं भी
1: नहीं नहीं पर भाई
0: छत भी चढ़ते भी डर लगेगा
1: अच्छा मैंने बताया नहीं इस पे एक मॉक्यूमेंट्री है मूवी ही समझ लीजिए 2015 में रिलीज हुई थी वो एवरेस्ट के नाम से है तो अगर किसी को देखनी हो आपको भी देखनी हो तो देख सकते हैं बहुत बहुत बेहतरीन
0: मैं तो जरूर देखूंगा भाई मैं तो जरूर देखूंगा
1: डेफिनेटली वो शायद नॉर्मल कहीं पे मिल जाएगी उसके लिए कोई ऐसी जगह जाने
0: नहीं दोनों को भाई साहब दोनों की हिम्मत को सलाम भाई क्या दोनों ने जज्बा दिखाया
1: है ना
0: पायलट साहब का तो अलग ही लेवल भाई
1: भाई पायलट साहब तो सीधा हीरो थे
0: भाई
1: मैं जानता नहीं कि लोग कभी नेपाली रेजिमेंट से मिले या नहीं मिले जितने लोग नेपाल से सुन रहे हैं भाई इनसे मिल लेंगे ना आपको लगेगा कि इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है आप उनसे बोलेंगे ना ये यहाँ पे जो है आग जलानी है वो जला के दिखा देगा आपको बर्फ में भी तो ये अलग लेवल का होता है
0: भाई अब तो जिन अगर किसी भाई को नेपाली भाई को पता भी नहीं होगा ना उनको भी पता चला होगा उनका अंदर भी जो है ना खून वाले मार रहा होगा कि यार हम भी
1: नहीं भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ आई हैव सीन देम मैं मिला हूँ उन लोगों से तो मुझे पता है कि इनका थोड़ा अलग ही हिसाब किताब होता है तो इसलिए मुझे कहानी बड़ी खास लगी भाई
0: नहीं बहुत जबरदस्त भाई जबरदस्त मजा आ गया कसम से
1: थैंक यू मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको पसंद आई यही चाहिए था हमें भाई और
0: नरेशन आपका जो नरेशन है भाई जो आपका नरेशन है वो सबसे अलग है क्योंकि कहानी किधर लेके जानी है कहाँ नहीं लेके जानी है कहाँ हाई करना है कहाँ लो करना है वो सबसे अलग रहता है
1: भाई सबसे मुश्किल यही पार्ट होता है भाई सबसे मुश्किल यही पार्ट रहता है कि कहाँ से किधर मोड़ू मैं कि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे
0: हाँ ना वाकई में आज सस्पेंस भाई साहब आपका जो है ना हाई लेवल कराया है क्योंकि आज जो है ना सबसे अलग क्योंकि कहानी में एक के बाद दूसरा ट्विस्ट तीसरा ट्विस्ट है
1: थैंक यू मेरा भाई आज तो मजा आ गया भाई मेरा भी दिन सेट हो गया
0: हाँ
1: मुझे बोला है कहानी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि मिस कर दी किस तरह की मैं बताऊं नावी भाई आपको मिले है नावी भाई कैसे बात कर दी एक मैसेज है कबीर भाई गुड मॉर्निंग आपके हौसले को सलाम जो आप इस तरह की कहानी मैं बनाता नहीं हूँ भाई ये कहानी असली कहानी है मेरी जान बनाई नहीं है मैंने ये असली कहानी है उन बेचारों पे वो मत करो यार कि बना रहे वो असली कहानी है बेचारों की दिशा मैं लिखा है यार जब कैंप पहुँचने वाला था मुझे लगा कि आप मारने वाले हेलीकॉप्टर वाला मरने वाला है बट हैप्पी एंडिंग बाय द वे वो ग्रुप लीडर का क्या बना ग्रुप लीडर जो रॉब था उसकी ज़्यादा डिटेल्स उसमें थी नहीं बट आई थिंक ही सर्वाइव्ड कहानी अभी उसको थोड़ा बैक सीट पर रखा गया बिकॉज उसने दिशा ने भाई डिसीजन बहुत ख़राब लिया था तो आई थिंक ही सर्वाइव्ड आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम तो इसलिए मैंने उसको कहानी में उतनी तवज्जो दी जितनी उसकी ज़रूरत थी आर्य वंसारी साहब लिखते हैं ग्रेट स्टोरी भाई लव यू प्राउड टू बी अ नेपाली मुस्लिम ऑफकोर्स भाई एवरीबडी शुड बी प्राउड ऑफ देयर ओन कंट्री एंड वेरी गुड एक कॉल आई है अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग
1: अरे माई गॉड गुड मॉर्निंग क्या हाल है भाई
2: बढ़िया बढ़िया आप कैसे हैं
1: मैं बढ़िया हूँ क्या चल रहा है भाई
2: कुछ नहीं बस ऑफिस निकल रही थी आपकी आवाज़ सुन ली हमने सोचा आपसे बात कर लेते
1: बिल्कुल अच्छा किया ये करना चाहिए दिन ऐसे अच्छा जाता डॉक्टर भी यही कहते हैं अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं हाँ
2: कल ही डॉक्टर ने बोला था ना
1: हाँ और क्या ये बड़ा जरूरी है आप PACC में जाएंगी तो मेरा पोस्टर लगा है वहाँ पे कि ये दवाई लें 500 mg की अरे फलक लेकिन आज की कहानी सुननी चाहिए थी पता है आज तुम्हारे मतलब की कहानी थी
2: नहीं यार कभी अभी लेकिन कमेंट सुन के तो मुझे समझ में आ गया कि बहुत अच्छी रहेगी एंड इफ इट इज रिलेटेड टू नेपाल तो ऑफ कोर्स मुझे सुननी है
1: नहीं सुनना यू विल लव इट एंड इसके अलावा ना जब कहानी सुन लोगी तो बाद में कभी मौका मिले वीकेंड पे कभी तो 2015 में एवरेस्ट नाम से एक बाकायदा मॉक्यूमेंट्री है वो बैठ के देखना यू विल लव इट बहुत जबरदस्त है तो इमेजिनेशन को एक विजुअल इमेजरी भी मिल जाएगी ठीक है फलक हेलो कबड्डी फलक गई फलक तक चली गई हूँ फलक तक एक मैसेज है काफ़ी दिन से मिस कर रहा था ये वही नहीं नहीं नहीं वो नहीं है जिशन भाई वो नहीं है जिशन भाई आवाज़ सेम है बंदा सेम नहीं है वो सॉरी बंदी सेम नहीं है 666-22-107 नंबर है कहानी के बारे में कुछ कहना चाहे अभी भी कह सकते हैं आप एंड व्हाटएवर यू फील लाइक मैं तो आपको देखो

कुछ करा कराऊँ आज, ठीक है? आज आपको फील होना चाहिए वीकेंड पर है और आप मेरे साथ हैं. And, hey, Jesse B, my boy. Yeah. Happy weekend party. मौज करा देंगे भाई आज आपको.

0: चस आ जाएगी वीकेंड है, मतलब फील आ जाएगी प्रॉपर। एक कॉल हमसे ड्रॉप हो गई थी, हम पे इल्ज़ाम है, हम इस बात को जरा साबित करते हैं कि हमारी गलती नहीं है, तो हमने कॉल लगा ली है। अस्सलाम वालेकुम मिलोट, मैं बेकसूर मिलोट, मैं था ही नहीं जब कॉल ड्रॉप हुई मिलोट।
1: अच्छा
0: मुझे नहीं पता था
1: यार, ये क्या बेइज्जती है, मुंह पे फोन काट दिया।
0: बताइए, ये मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, इल्जाम नहीं मेरे पे। हाँ जी, नाम होगा आपका फलक घर पे।
1: अब मैं मान गई।
0: वेरी गुड। तो हाँ जी फलक जी, मैं ये कह रहा था आपको, सबसे पहले तो हैप्पी वीकेंड। और क्या मतलब आज का वीकेंड का क्या प्लान है आपका?
1: आज शायद दाल बाटी खाने का प्लान है।
0: आज आपका दाल बाटी का प्लान है? आप ये भी तो कह सकती थी कि पूछ भी सकती थी, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए।
1: अखलाक तो आप ही रहे ना,
0: अखलाकी तौर पे हैं क्या? हेलो।

0: एक्सक्यूज मी, क्या क्या क्या था ये? अच्छा, मेरे भी पर्चा फटेगा इस चीज का।
1: आप भूल गए, आप दाल भाटी खिलाने वाले हैं।
0: हाँ, वो तो ऑब्वियसली। देखो, पर अभी मुझे एक बात बताओ, पब्लिक को अपने बारे में ये बताओ कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत जल्दी आने वाला, लोग सुनने वाले हैं, बहुत जल्दी फलक के बारे में जानेंगे, तो कुछ टीजर देना चाहेंगे, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप एक शो में आने वाली हैं?
1: मैं जिस शो में आने वाली हूँ उसको कहते हैं व्हाट वाज दैट कैफे,
0: उसको क्या कहते तो बता दूं, फलक को बहुत जल्दी कैफे 107 में आप सुनेंगे। बहुत सारी बातें हैं फलक की, उसमें फलक ने जो है जो भड़ास निकाली, वैसे आपकी बहन ने भी भड़ास निकाली दूसरे शो में, अगर आपको पता ना हो तो।
1: नहीं, भड़ास ही निकाली आई थी, आई डोंट थिंक भड़ास निकाली। आपने उसको जेंजी के बारे में क्वेश्चंस पूछा, जेंजी के बारे में
0: बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से बताया, प्राउड, यू शुड बी प्राउड ऑफ हर। आज उसको मेरी तरफ से दाल बाटी, ठीक है?
1: अच्छा, मुझे नहीं,
0: मैंने आपके बाद ऑफ कोर्स, मतलब कैसी बात कर दी फलक जी आपका। तो आज की कहानी जरूर भेजूंगा फलक, और जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, मैं ये पूछ रहा था लोगों से कि कोई ऐसी चीज है जो आज भी पुराने तौर तरीकों से करती हो तुम, ओल्ड स्कूल वे में, कुछ ऐसा है? डू यू फॉलो समथिंग?
1: मैं तो सब कुछ ओल्ड स्कूल वे में करती हूं यार।
0: जैसे
1: कि छत में झाड़ू नहीं लगाना सुबह उठ,
0: सुबह उठते के साथ ही तुम सबसे पहले झाड़ू उड़ लगाती हो, राइट?
1: सुबह, हाँ, सुबह सुबह
0: very nice
1: करके सबसे पहले घर साफ करना, झाड़ू लगाना,
0: वेरी नाइस।
1: हाँ, दैट्स वन थिंग। एंड खाना जो बनाते हैं, आई फॉलो द ऑथेंटिक, यू नो, इंडियन वे, दैट आपने खाया ही है।
0: क्या बात है यार, ये तो मतलब प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि बहू होने का सर्टिफिकेट दे रही है। वेरी गुड।
1: हाँ, मेरी मेरी अम्मा को ना बहुत ही है कि लड़कियों को सब कुछ आना चाहिए, लड़कियों लड़की ऐसी होनी चाहिए कि कोई उंगली ना उठा सके, तो उन्होंने ना बहुत ही अपनी अपनी अम्मा वाली सारे क्वालिटीज देती हैं।
0: She must be really really proud of you, and होना भी चाहिए। फलक है भाई, we are really proud of you, फलक, all the best for the rest of the day, और फिर मिलते हैं जरूर, ठीक है?
1: हाँ, और सबको अस्सलाम वालेकुम, have a good weekend।
0: क्या बात है,
1: थैंक यू कबीर,
0: ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। तो फलक के बाद एक मैसेज आया है हमारे पास, एक और हमारी बहन, इनका नाम है हफ्सा, वो कहती हैं कि ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग, ओके, एक मैसेज है, ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग अभी भी कर रही हैं आप, मतलब हफ्सा बहन, रियली? एक मैसेज है, भाई मेरा हाथ पैर अभी भी कांप रहा है, ठंड उनको लग रही थी, बॉडी मेरी कांप रही थी, वाह क्या स्टोरी थी, हैट्स ऑफ टू यू भाई, थैंक यू सो मच इरफान भाई, दैट्स इट्स सो नाइस ऑफ यू टू से। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वरकातहु।
0: अरे शेखू, क्या हाल है तुम्हारे?
2: पेट्रोल पंप पे जहाँ पना खड़े हैं, और कतार में, और फ्यूलिंग के नंबर नहीं आया अभी तक।
0: टंकी फुल करा रहे हो, अनारकली से मिलने जाना है क्या?
2: बिल्कुल बेशक, दुरुस्त फरमाया, जहाँ पना आपने, क्योंकि कल वीकेंड है, तो आज सारी चीजें हिफाजत से रख ली जाए, ताकि कहीं कल कुछ दिक्कत नहीं हो।
0: इस कहानी में मुझे लगता है सलीम को चुनवाना पड़ेगा मुझे। सलीम बहुत ज्यादा तेज हो रहा है इसमें। वैसे मेरे भाई, आज की कहानी सुनी आपने, कैसी लगी भाई ये बताइए आप?
2: बहुत जबरदस्त, और मुझे सबसे ज्यादा है ना, रेस्क्यू ऑपरेशन जो था ना, तो पायलट की बहादुरी और दिलेरी और इतना कॉन्फिडेंस कि एक ट्रिप आने के बाद फिर जाना और फिर वापस सही सलामत आ जाना, तो ये बहुत यानी ब्रिलियंट, बहुत जबरदस्त जो हिम्मत दिखाई ना, बहुत यानी कितनी मतलब फिकर और कितना बड़ा मतलब एक जजमेंट और कॉन्फिडेंस
0: तो आपको जा रहे हैं सलीम, आप कब जा रहे हैं पहाड़ पे बताओ?
2: मेरे को इंशाल्लाह मेरी जाने की तमन्ना है,
0: अच्छा,
2: मेरी कोशिश है कि मैं जाऊंगा इंशाल्लाह।
0: नहीं भाई, जाओ यार, बढ़िया जगह,
2: हमेशा की तरह कहानी है ना, सुपर डुपर, हमेशा की तरह, नो डाउट,
0: क्या बात,
2: सारी टीम, सारे FM 107 की टीम को एक्सीलेंट वाला है, स्पेशल वाला है, अप्रिशिएट
0: है, थैंक यू सो मच,
2: तमाम जो इतना फीडबैक देते हैं ना, तमाम
0: बहुत बहुत प्यार मेरे भाई को शेखू, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखा जाए,
2: इजाजत दीजिए, नंबर आ गया है,
0: इजाजत है, अल्लाह हाफिज,
2: अल्लाह
0: हाफिज। और मैं कुछ मैसेज पढ़ता हूँ, तला भाई को कॉल करता हूँ, एक मैसेज है, ओल्ड स्कूल थिंग्स स्टिल लिसनिंग टू रेडियो, क्या बात है, मत भाई खेल खेल गए भाई आप, जीत गए भाई, जीत गए। एक मैसेज है भाई, क्या लिखा है अफसर भाई ने, लिखती है 100% तो नहीं पर 80% यस, हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमें पाला है वही वैल्यूज दिए, वही बेस्ट है, वही देने की कोशिश है। बहन ऑल द बेस्ट टू यू। और बाकी प्रिंस भाई ने मैसेज किया, ब्रो स्टोरी कमाल की थी, आवाज़ धमाल है, बहुत सारा प्यार भाई। कोई कॉल आ रही है, रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या हाल है भाई के?
3: अल्हम्दुलिल्लाह वीर भाई, अल्लाह का करम है। आप बताइए आपकी क्या हाल है, कहानी?
0: बस अभी अभी पहाड़ी पे से नीचे उतर रहा हूँ भाई, बस उतरने ही वाला हूँ। बताइए क्या हाल है?
3: मतलब आपको भी नहीं दिख रहा है?
0: मुझे भी नहीं दिख रहा भाई। नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा भाई। कैसे लगी कमाल भाई कहानी आपको?
3: कहानी तो जबरदस्त है भाई। एक कहानी आपने मालूम है, बहुत पहले सुना था,
0: एक
3: एक्सीडेंट होता है, बंदा बच जाता है,
0: yes, yes,
3: उसके
0: yes.
3: बाद जो है शेर के बारे में जो पूछ जाता है तो भी बच जाता है, पानी में गिरने के बाद भी। तो भाई इसकी नसीब उससे अच्छी थी,
0: इसका तो बहुत भारी था भाई, इसको तो दिख भी नहीं रहा था। ये तो बिल्कुल ही अलग सीन था इस भाई के साथ, तो इसलिए ये कहानी ज्यादा ज्यादा एक्साइटिंग।
3: कहानी तो बहुत जबरदस्त है। और भाई आज की जो आपने जो सवाल जवाब थे ना, वो और अच्छे थे भाई। पुरानी दिनों को याद करा दिया। हम लोग तो भाई बाद में कभी कभी जो है जब खेत करते है ना गेहूं के, तो हम लोग खेत में ही सोते थे, और उस टाइम पे चांदनी रात वाकई में पूरा जो नजारा दिखता था।
0: अभी भी करते हैं आपके? मतलब अभी थोड़ा कम कर दिया, अभी मौका
3: अभी
0: मिलता?
3: पता नहीं कबीर भाई, जमाना हो गया कम से कम 25-25 साल,
0: तो मौका नहीं मिलता अभी गाँव जाने का, मतलब ये फील लेने का वापस?
3: नहीं भाई।
0: अरे यार,
3: बस बम्बई गए, बम्बई से वापस गए, वापस 14 साल हो गए मेरे गाँव गए हुए भाई।
0: अरे नहीं यार कमाल भाई, ऐसा मत करो यार, अब जाओ, ये तो अभी तो कब प्लान है फिर?
3: अब रिटायरमेंट लेने के बाद जाएंगे।
0: ये भी सही है, ये भी सही है, पर जाना जरूर,
3: क्योंकि दोनों घर बंद पड़ा हुआ है ना। मैंने कहता है ना कि जाने के बाद उसको रिपेयरिंग करो, फिर छोड़ के आ जाओ। तो अब जब रिटायरमेंट लेंगे ना, तो वहीं रिपेयर करेंगे, घर को बनाएंगे, फिर वहीं जो है सेटलमेंट होंगे कुछ दिनों के लिए।
0: नहीं, मैं एग्री करता हूँ, ये बहुतों के प्लान्स होंगे। और आपका जो प्लान 14 साल, तो बहुत हो गया भाई टाइम, मतलब बीच में एक बार भी नहीं जाना तो बहुत बड़ी बात है कमाल भाई।
3: भाई 14 साल पहले भी कितने दिन के लिए गया था मालूम है?
0: कितने दिन? तो फिर उसको तो गिनो ही मत, फिर काय को गिन रहे, मत गिनो भाई। बट प्लान बनाइए मेरा भाई, जाइए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी इस बार ये करने वाला हूँ, थोड़ा सा जाऊंगा।
3: दूसरी चीज़ जो है, बचपन की जो आप बता रहे थे, हम लोग जो है जो खाट के ऊपर जो है तकिया लगा के जो है घर वालों को बेवकूफ बना के जो रात में निकल जाते थे।
0: अच्छा, निकले आप?
3: वो चीज है यार, बहुत यार भाई, उस टाइम बहुत हरकत की है, किसी गाँव में किसी का पेड़ में जो है कुछ भी लगा रहे, बचता नहीं था।
0: जिम्मेदारी ने शरीफ बना दिया आपको, मुझे लग रहा है।
3: हाँ, बस जिम्मेदारी ने शरीफ बना दिया।
0: क्या बात है, ये तो डायलॉग।
3: स्कूल से भाग के हम लोग साइकिल वायर खड़ा करते थे, स्कूल से भाग के हम लोग जाके मूवी देखते थे।
0: हाय कमाल भाई, यार आपकी आवाज से लगता नहीं, बताए आप इतने हरकत करते होंगे, अभी ऐसा लगता है कमाल भाई बड़े सुंदर आदमी।
3: बहुत, अब तो भाई हरकत, अब तो देखने का दिल नहीं करता कि कौन हरकत कर रहा है, देख लो बस।
0: आपके लिए सवाल आए आसिफ भाई, पूछ रहे हैं आसिफ भाई, पूछ रहे हैं कमाल भाई।
3: हाँ बोलो ना।
0: मुंबई में किधर किधर जाते हो ये पूछ रहे हैं?
3: मुंबई कुर्ला कसाई वाला,
0: कुर्ला। अब बताइए क्या करते हैं आप?
3: हाँ तो वही बता रहा हूँ कि अब जो है उतना वो नहीं रहता है भाई, बस देख लेते हैं। एक चीज और है कि कोई कुछ हरकत करता तो फट से नजर में आ जाता है। ये एक अपने अंदर खासियत है,
0: खुद ट्रेंड है ना उस चीज के लिए।
3: इतना ट्रेंड है,
0: इतना ट्रेंड है ना इसलिए। पर आपको कहानी अच्छी लगी उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई, क्योंकि लंबी कहानी थी आज की, तो मैं डर रहा था।
3: कहानी लंबी नहीं, कहानी मतलब आपने जितनी भी कहानियां सुनाई सब मतलब की भाई।
0: थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत प्यार कमाल भाई, हमेशा की तरह। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई।
3: ओके कबीर भाई,
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और मैसेज तो मैं अभी लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को ये गाना चलाना पड़ेगा, फिर मिलते हैं 666-22-107 पर एक गाने की बात, ठीक है? फिर ज़रा एक तलावा कॉल भी की जाएगी और ख़बरें भी तो देनी है, वो ज़रूरी है। जो मैं लिख के लाया वो ना चलाऊँ है, वो ना बोलूँ। और इसमें बोहिमिया, मैं बड़े चेक टेंगल लेता हूँ बोहिमिया के। बोहिमिया चेक, घर दे बार में देगी छिपकली। मैनू मैसेज करो व्हाट्सएप ते 666-22-107 च।

0: Wake up. Hey, तो हवाला में कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह.
0: Wake up.
2: भाई सब तो पहला जी न्यूज बताने बहुत जरूरी है. तो पहली खबर जो है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में जो कि ओपन हो चुकी हैं. बेसिकली ये होने वाली है फॉर 20th कतर साइंटिफिक एक्सेलेंस अवार्ड के लिए जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में होंगी. ये अवार्ड जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कमेटी की तरफ से उन्होंने इस बारे में अनाउंस भी कर दिया है और जो विनर्स हैं आर ड्यू टू बी अनाउंस्ड, मतलब उनका नंबर बाद में आएगा, फरवरी की 1 तारीख अगले साल की 2027, और अवार्ड सेरेमनी रखी जाएगी अगले साल के अप्रैल 18 तारीख को. तो बहुत आगे की सोच ये है और आपको बताना बड़ा जरूरी है. इसके अलावा दोहा तैयार है होस्ट करने के लिए 4th इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये 21 सितंबर को रखी गई है. इसकी कोशिश ये है कि एकेडमिक्स, रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स जो गवर्नमेंट सरकार का हिस्सा हैं वो इसमें हिस्सा लें, साथ में प्राइवेट सेक्टर के लोग आएँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा लें. और ये जो इवेंट है 2026 का, इसका नाम रखा गया है फ्रॉम एक्शन टू इम्पैक्ट, measuring the societal impact of responsible practices in sustainable development. भाई जुबान घूम गई पूरी मेरी. और इसे organize किया है by Doha Institute for Graduate Studies in cooperation with the International Islamic University Malaysia, Qatar National Library और the Regional Network for Consulting and Arab Journal of Social Responsibility. ओके, इसके बाद एक पार्टनरशिप के बारे में बात करूंगा. ये पार्टनरशिप है कतर रेल और विजिट कतर के बीच में. And इन दोनों की पार्टनरशिप विल डेफिनेटली हेल्प इम्प्रूव विजिटर एक्सेस टू इवेंट्स, क्योंकि आसानी रहेगी ना, दोनों साथ मिलकर बताते रहेंगे. और हमेशा बताया भी गया है कि जब भी कोई भी इवेंट होता है तो स्पेशली आप सुनते हैं कि अभी मेट्रो फ्री है, चले जाएं आप. और यही कोशिश आगे भी है ताकि टूरिस्ट के लिए आसानी रहे. एंड इट नॉट ओनली प्रमोट्स टूरिज्म मगर पब्लिक को भी लगे कि यार कंट्री में इधर उधर घूमना काफ़ी आसान है जब इवेंट्स चल रहे हैं. तो आपको ट्रैफिक पूरी तरह से इग्नोर करके स्किप मार के आप सफ़र कर सकते हैं. एंड अगेन इसके बारे में जो है पोस्ट किया है बाकायदा, तो आप इनकी पेज पर देख सकते हैं. बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन है, आने वाले इवेंट्स की भी बातें की गई हैं. विजिट कतर और कतर रेल दोनों की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस को देख सकते हैं. इसके अलावा कतर की मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी ने अरेंज किया है एक पूरा सीरीज ऑफ वेनिस एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स को लाइनअप किया है वर्ल्ड क्लीन अप डे 2026 के लिए. इसका मकसद रहा है कि पब्लिक को क्लीनलीनेस और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताया जाए, लॉज के बारे में आगाह किया जाए क्या सही है क्या गलत है. और ये एक्टिविटीज़ जो हैं 19 सितंबर तक चलेंगी, तो दो दिन और हैं. एंड इस कोशिश में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन साथ में आएंगे और बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो कम्युनिटीज का हिस्सा हैं, जो काफ़ी अलग अलग इवेंट्स में भी वॉलंटियरिंग कर चुके हैं. इसके अलावा इन कोऑपरेशन विद कतर टेलीविजन, तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने लॉन्च किया एक स्पेशल प्रोग्राम. याद हम कुछ दिनों पहले इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या कंटेंट होना चाहिए, और पता नहीं शायद हमारी बात सुन ली गई है, बट डेफिनेटली सुनी गई है, बहुत अच्छी तरीके से सुनी गई है. मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका टाइटल है रूल ऑफ लॉ. ये बेसिकली एक पार्टनरशिप है जिसका मकसद है कि जो लीगल कल्चर है और अवेयरनेस है लोगों को, कुछ राइट्स, कुछ ड्यूटीज़, लीगल प्रोसीजर्स के बारे में पता नहीं होता. लोग इधर उधर जाते हैं, 10 मुँह हैं 10 बातें, किसी को एक फंडामेंटल चीज़ शायद ना पता हो. हमारी भी कोशिश रहती है पुलिस और अवाम जो हमारा शो है उसके ज़रिए कि बताया जाए आपको. तो वैसे ही कतर टेलीविज़न पर एक शो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ से जिसका टाइटल ही है रूल ऑफ लॉ, और बताया जाए कि भाई क्या रूल्स हैं सिटीजन्स के लिए, रेसिडेंट्स के लिए क्या लीगैलिटीज़ होती हैं, सब कुछ फॉलो किया जाए. तो बहुत ही बेहतरीन कोशिश है. एंड आज की जो लास्ट कॉल है वो मैं लगा लेता हूँ. ये कॉल जा रही है मिस्टर तलहाकू. एक सेकेंड तलबाई माई आपको खोल खरदा सी. एक सेकेंड, ये मैंने क्या मिक्स कर दिया? साउथ और पंजाबी मिक्स कर दी. तो कॉल अस्सलाम वालेकुम मिस्टर तला, क्या हाल है? क्या हूँ बोहिमिया से मिला रहा हूँ. बोहिमिया कैसा लगा आपको?
3: बोलता मैं कुछ?
2: हाँ नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट इज ओके.
3: और बताइए मेरे सुन के.
2: हाँ तो तला भाई क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाह रहे थे आप?
3: भाई नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा था. मैं तो चाह रहा था क्या बात सुनी सुबह सुबह.
2: अरे भाई
3: सुबह सुबह तुमने क्या लगा रखा है?
2: कहानी सुनी वैसे आपने? नहीं सुनी
3: यार. मतलब एक बात बता तुम मुझे, तुम तुम्हें सुकून है नहीं है जिंदगी?
2: नहीं, मैं सिर्फ मतलब की बात करता हूँ, मतलब याद रहे।
3: वो तो मुझे पता।
2: आपने वो मीम देखा ना, आई डोंट वांट पीस, आई वांट प्रॉब्लम्स।
3: बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब बंदा कभी जमीन पे रखते हो, कभी तुम आसमान में पहुंचा देते हो, कभी तुम पहाड़ों में पहुंचा देते हो, मतलब सुकून नहीं है जिंदगी में।
2: तो किस पे बिठाऊं, स्कूटर पे?
3: जहाज पे।
2: जहाज पे? फिर जहाज वाली कहानी भी तो आसमान की हो गई है?
3: नहीं नहीं, जहाज पे भाई, समझ, जहाज जहाज पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, जहाज पे बोल रहा हूँ।
2: अच्छा, नू कह रहो तला बहुत तेज हो रहो, बहुत तेज हो रहो तला तुम।
3: नू कह रहा हूँ, तुम ना रहे हो
2: कितना तेजी से जाओगे,
3: जितने बातें कर रहे हो।
2: और तला
3: डार्क ह्यूमर नहीं समझ रहे ना यार।
2: है क्या
3: कह रहा हूँ, डार्क ह्यूमर नहीं समझ रहे?
2: मैं बिल्कुल समझता हूँ भाई, मैं डार्केस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमर भी समझता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट।
3: मैं पीछे लगवा दूंगा, कल जो मैंने तुम्हें भेजी है ना पिक्चर, वो पीछे लगा दूंगा मैं, बहुत सारे हैं मेरे पास।
2: I know. इसलिए तो मैं तहजीब और तमद्दुम से आपसे बात कर रहा हूँ। कैसे हैं तला भाई?
3: लाइट कटवानी लाइट चाहिए नहीं चाहिए?
2: एक तो
3: याद है पिछला भागा?
2: मुझे अच्छे से याद है भाई, मुझे भाई एक दिन
3: का नंबर भी याद है।
2: अरे नंबर बदलने का समय आ गया है, समय आ गया है।
3: पहले अपना मोबाइल नंबर बदलो, मीटर नंबर तो नहीं बदल सकते, मीटर नंबर तो हो ही रहेगा
2: भाई यार।
3: अब क्या करेगा बच्चे?
2: वो मैंने सुना, मैंने सुना था कि पुलिस डॉक्टर वकील से दोस्ती अच्छी नहीं है, लेकिन ये बिजली विभाग वालों से भी दोस्ती अच्छी नहीं है भाई। ये आज पता
3: लगा रहा हूँ, घर को तंदूरी सा महसूस कराया, मेरा नाम तला नहीं
2: महसूस हो गया था भाई। ये ठंड में करना आ रहा तब चलेगा, अभी कोई जरूरत नहीं है।
3: अगले साल करूंगा मैं मई में।
2: अच्छा टाइम,
3: जून में करूंगा।
2: अच्छा टाइम
3: इंशाल्लाह,
2: बिल्कुल सही। छुट्टी तभी लेनी है, समझ में
3: आया। भाई
2: छुट्टी भी जाना पड़ेगा।
3: थैंक यू
2: तला भाई। और क्या क्या सीन है वीकेंड का, क्या प्लान है वीकेंड का
3: भाई? वीकेंड का यार आपके भाई का, मैं सोच रहा हूँ सिडनी वगैरह होके आ जाऊँ।
2: कहाँ होके आ जाऊँ?
3: बाकी तो सिडनी वगैरह चला जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह होके आ जाऊँ मैं सोच रहा हूँ।
2: अच्छा,
3: कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि कल जो नाखून फ्लैक्स हुए ना, तो आज मैं सोच रहा हूँ मैं भी कुछ अलग फ्लैक्स करूँ।
2: जाइए आप, मैं तो कह रहा हूँ माउंट एवरेस्ट जाइए आप, फ्लैक्स ही करना, इससे बड़ा फ्लैक्स क्या होगा? हो सकता है आप मेरी

0: कहानियों में आप आए
1: बस आगे तुम ही होंगे, जिसका जिसका ऑक्सीजन खत्म नहीं हो गया था।
0: हाँ
1: वो तुम ही होंगे।
0: आपको मैं उसका रोल दूंगा जो ऊपर चला गया था ना लोगों को लेके पहाड़ी पे, वो उसका रोल दूंगा। रॉब भाई, आपका नाम रॉब भाई?
1: नहीं नहीं, मुझे बीच का बंदा रखो जो कम से कम वापस आने जैसा भी रहे।
0: मैं तो कहूंगा आज सरोवर भाई को ये बोला जाए, रॉब भाई कैसे हो, रॉब भाई पहाड़ से नीचे कब आओगे, ये पूछा।
1: माइकल जो है ना, सरोवर भाई को माइकल है, शूट कर रहा है इन दोनों बस बेहतरीन। एक बार मैं एक हकीकतन माइकल से मिला हूँ भाई, उसकी वो तीन किलोमीटर पहले उसकी तोंद मिली है मुझसे, उसके बाद माइकल मिला है मुझसे।
0: ये माइकल वाले कैरेक्टर होते हैं भाई, ठीक है माइकल।
1: माइकल यकीन कर, माइकल ने ना मुझे सरोवर भाई का याद करा दी। मैंने कहा यार माशाल्लाह यार, इसके अंदर 3 साल का कोच पड़ा हुआ कसम से, इस टाइम पे इकट्ठा
0: इकट्ठी ये लाइन में यूज करूंगा
1: भाई। बकायदा कोच का टूटा चलता हुआ दिखा मुझे, बकायदा आंखें ढूंढी मैंने उसकी भाई, आंखें गए तेरी कल्लो के अंदर, आंखें दबी हुई है, आंखें निकाल अपनी।
0: डेंजर हो रहे हो, डेंजर हो रहे हो तला भाई, डेंजर हो रहे हो। ये आपके लिए मैसेज आया है कि कह रहे हैं कि तला भाई को बोलो सुबह हो गई, उठो उठो, ये अजहर उस्मानी साहब कह रहे हैं।
1: उठाऊं भाई, मैं गरीब आदमी भाई, रोजी रोजी का सवाल है, नौकरी पे निकलना सुबह सुबह।
0: अजहर भाई ये 4 बजे से भी उठेंगे, टाइम लगेगा भाई। ठीक है
1: हाँ, माइकल हूँ ना मैं,
0: माइक मैं आज मैं रॉब बनाऊंगा, आज मैं रॉब भाई बोलूंगा, रॉब भाई पहाड़ पे से कबूतर रहे हैं। ठीक है
1: आज रॉब भाई से बोलेंगे, रॉब भाई बोगी खा के दिखाओ।
0: ठीक है चलो तला भाई, टाइम भी हो गया मेरे इजाजत लेने का, तो बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल
1: रखो भाई। निकलो तो आप बस बर्दाश्त नहीं होगा, तुम 2 दिन सुकून की
0: जिंदगी। मैं भी भाई, मैं तो नंबर ब्लॉक कर रहा हूं, ये जो आखिरी में 973
1: है, लव इज भाई। भाई तू कर क्या रहा है, मैंने कर दिया है अभी भेज रहा हूं बंदों को, बिजली काटो इसकी 2 दिन के लिए।
0: कैसे तला भाई, चाय पियेंगे क्या? ओके भाई अल्लाह हाफिज़, चलो बोलते हैं अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और बाकी सारे मैसेज जो भी मुझे आए, थैंक यू सो मच। एक भाई ने तो मुझे बहुत प्यारा मैसेज किया, मैं उनका मैसेज नहीं पढ़ूंगा तो फिर ये ज्यादती है। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? अरे इनका मैसेज, हाँ तो भाई ने कहा है कि कबीर भाई चाह गए, नो डाउट दोहा वाला कबीर का शो इज थेरेपी। लिख लो भाई, आपका शो एक मैंडेटरी चैप्टर रहेगा आरजेइंग सीखने के लिए। आपको पता भी कितनी भारी बात कह गए आप भाई, मैं इस मैसेज को कलेजे से लगा के रखूंगा जो आपने बात कही है, और ये इनफैक्ट मैं जो हूँ ना अपने आरजे वाले ग्रुप में डालूंगा मैं। ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, आप सीधा संडे को मिलेंगे। और सरोवर भाई को अगर कुछ कहना चाहो उनको बोल देना, रॉब भाई पहाड़ से नीचे भी आ जाओ। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि आप बेहद बेहद ज़रूरी है। मा सलामा।

0: Qatar का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
3: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ।
4: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 RJ फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: शो सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है स्टे सेफ ड्राइव सेफ। एफएम 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
0: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम सलाम करते हैं उन पहलवान को जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया की कुश्ती की तारीख का एक अजीम नाम था। एक ऐसा पहलवान जिनके सामने बड़े से बड़े चैंपियन भी उतरने से पहले सोचता था। नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श, लेकिन दुनिया उन्हें गामा पहलवान के नाम से जानती है और उनका टाइटल था रुस्तम-ए-ज़माना। दोस्तों, गामा पहलवान की पैदाइश 1878 में पंजाब के गांव जबवाल में हुई। उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहां कुश्ती सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक रिवायत थी। उनके वालिद मोहम्मद अजीज बख्श खुद एक मशहूर पहलवान थे और उन्होंने बचपन ही से गामा की ट्रेनिंग शुरू कर दी। गामा का कद जो था वो तकरीबन 5'7" का, लेकिन उनकी जिस्मानी कुव्वत और स्टैमिना देखकर बड़े बड़े पहलवान हैरान रह जाते थे। कहा जाता है कि अपने लंबी करियर के दौरान गामा ने हजारों दंगलों में शिरकत की और उनकी अनबीटन रेप्यूटेशन ने उन्हें लेजेंड बना दिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में गामा ने जोधपुर के एक स्ट्रेंथ कंपटीशन में अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल एबिलिटी का सबूत दिया। इस कंपटीशन में सैकड़ों पहलवानों ने हिस्सा लिया था और गामा ने सबको मुतासिर किया। That was the talent, an inborn talent that he had. फिर जब वो जवान हुए तो उनका मुकाबला अपने वक्त के मशहूर पहलवान

इम्बख्श सुल्तानीवाला से हुआ। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ जो बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन इस ड्रॉ ने गामा की शोहरत को कम नहीं किया, बल्कि लोगों को यकीन हो गया था कि ये नौजवान पहलवान मुस्तकबिल में दुनिया के सबसे बड़े चैंपियंस को चैलेंज करेगा, और यकीनन उन्होंने किया। फिर आया सन 1910, गामा लंदन पहुंचे जहां उनका मकसद था दुनिया के बेहतरीन रेसलर्स को चैलेंज करना। उन्होंने यूरोपीय और अमरीकी पहलवानों के खिलाफ मुकाबले किए और अपनी स्ट्रेंथ और टेक्निक से सबको हैरान कर दिया। उनका सबसे मशहूर मुकाबला स्टैनिलॉस सिप्सको के साथ हुआ, जो उस वक्त दुनिया के सबसे मशहूर हैवीवेट रेसलर्स में शुमार होते थे। गामा ने सिप्सको को चैलेंज किया और पहले मुकाबले में उन्हें गिराकर अपनी सुपीरियर रेसलिंग एबिलिटी का सबूत दिया, और यह मुकाबला बाद में दोबारा हुआ जहां गामा की जीत ने उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन को और मजीद मजबूत कर दिया। दोस्तों, गामा को बाद में टाइगर का टाइटल भी दिया गया, एक ऐसा टाइटल जो उनकी फाइटिंग स्टाइल और शिकार की तरह ओपोनेंट पर झपटते हुए अंदाज को जाहिर करता था। लेकिन गामा की कुव्वत सिर्फ कुश्ती के रिंग तक महदूद नहीं थी, उनका ट्रेनिंग रूटीन भी किसी आम इंसान के लिए सोचना मुश्किल है। अब जरा सुन लीजिए, वो रोजाना हजारों बैठक और दंड लगाते, कुश्ती की प्रैक्टिस करते और अपने स्टैमिना को बरकरार रखने के लिए सख्त फिजिकल ट्रेनिंग करते थे। उनकी डाइट भी कुछ उनकी स्ट्रेंथ की तरह मशहूर थी, दूध, बादाम, मक्खन, गोश्त और दूसरी गजाई चीजें उनके रोजमर्रा के खाने का हिस्सा थी। यानी उनके फिजिकल स्ट्रेंथ का एक मशहूर वाकया मैं आपको बताऊं कि बड़ौदा जो शहर है इंडिया में, गुजरात में, उससे जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने एक बहुत भारी पत्थर उठाया था और ये पत्थर बाद में गामा के नाम से मंसूब कर दिया गया और उनकी लेजेंडरी स्ट्रेंथ की निशानी बन गया। 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने गामा पहलवान को सिल्वर मेस यानी चांदी का गुर्ज भी तोहफा किया, और गामा की शोहरत का असर सिर्फ साउथ एशिया तक नहीं रहा। मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली भी गामा के ट्रेनिंग मेथड से मुतासिर थे और उन्होंने गामा की एक्सरसाइजेस को अपनी ट्रेनिंग में शामिल किया। लेकिन गामा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू उनकी इंसानियत थी। गामा पहलवान ने अपनी जिंदगी में जो मकाम हासिल किया, वो आज भी कुश्ती की दुनिया के लिए एक मिसाल है। रुस्तम हिंद, रुस्तम जमाना, और एक ऐसा नाम जो रेसलिंग की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा, गामा पहलवान। कहते हैं आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, एक ऐसे चैंपियन की कहानी जो सिर्फ अपनी ताकत की वजह से अजीम नहीं बना, बल्कि अपनी मेहनत, डिसिप्लिन, हिम्मत और इंसानियत की वजह से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। गामा पहलवान, रुस्तम जमाना। अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें।

0: खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
1: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
0: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
3: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
4: Assalamu alaikum, main Duha wala Kabir FM 107 pe and welcome to another Tech Update. अब वक्त है सबसे पहले तो आपको कुछ वेबसाइट्स बताने का जो बहुत ही कमाल की हैं। मैं इन्हें आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लैंग्वेज में बोलूंगा हिडन जेम। तो हिडन जेम आपको देने वाला हूं मैं। एंड लास्ट वेबसाइट इज क्रेजी। उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाला हूं, जिसके बारे में रिव्यू करना ही पड़ेगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, हालांकि मैं खुद कंसोल गेमर हूं। ओके, लेट्स बिगिन विद द वेबसाइट्स।
3: टेक अपडेट। टेक अपडेट।
4: Okay, so website number one on the list is a very interesting website, और ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली जिनके स्पेशली घर पे बच्चे हैं। तो इसका नाम है POWcoloring.com. POW coloring, COLORING coloring.com. इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो फ्री कलरिंग वेबसाइट है ये। मैं फ्री बोल रहा था, फ्री कलरिंग वेबसाइट। तो फ्री कलरिंग वेबसाइट है। इस पे बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड हर चीज आपको मिलेगी। आप बच्चों को, अगर आप सच में वो खाना नहीं खा रहे हैं, उनके हाथों में फोन जाना ही चाहिए, तो आप उन्हें ये एक्टिविटी दे सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेक्टिव, वेरी वेरी हेल्पफुल। और ड्राइंग के साथ साथ कलरिंग करने में जो मजा आता है ना इसमें, भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा था इस वेबसाइट को आपको बताने के लिए, एंड मुझे बहुत अच्छी लग गई। मुझे लगा यार इसमें तो मेरा टाइम बीत सकता है, बढ़िया वाला मजा आ गया भाई एकदम। तो आई एम प्रीटी श्योर बच्चों को तो डबल मजे आएंगे ही आएंगे। सो ट्राई दिस वन आउट। मैं बता देता हूँ, POW coloring.com। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक और मेजर सिखाने वाली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट का नाम है musica.com। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। MUSICCA MUSICCA.com। अब इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको म्यूजिकल नोट्स, कॉर्ड्स, म्यूजिकल थ्योरीज, एक एक चीज आप डिटेल में खुद पढ़ सकते हैं। ये अपने आप में एक मुकम्मल टीचर है और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत कमाल की वेबसाइट है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मतलब मैं ये हर किसी को रिकमेंड करूंगा अगर किसी को सीखना है कि म्यूजिकल नोट्स कैसे रीड किए जाते हैं, क्या होते हैं, स्पेशली वो लोग जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना फोन नंबर किसी वेबसाइट पे देने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ ओटीपी के लिए अपना नंबर दूंगा तो दिक्कत ना हो जाए। तो इस वेबसाइट का नाम है receive-sms.io receive-sms.io। इस वेबसाइट पे जाके आप एक टेम्पररी नंबर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री। और उसके बाद उस नंबर को यूज करके आपको अगर किसी वेबसाइट पर डर लग रहा है अपना नंबर अपलोड करने के लिए, तो आप ये वाला नंबर डाल के ओटीपी मंगा सकते हैं। वो ओटीपी वेबसाइट पे ही आपको नजर आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से एक प्रीमियम नंबर भी ले सकते हैं। उस प्रीमियम नंबर को लेके आप व्हाट्सएप पर भी यूज कर सकते हैं। That's how good it is. तो मुझे बहुत ही कमाल की चीज लगी। If you want to be much, much, much safer, तो ये वेबसाइट आपके लिए है। ठीक है? Now the review of the product, जो मुझे मतलब बुला रहा है अपने पास। Alright, so news में and product of the week में बात करूंगा मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसने आके गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला दिया है, कपा दिया है ये कहूंगा मैं। ये जो है DLSS 5 है। जब से ही आया है और जब से इसका यूसेज होना शुरू हुआ है गेमिंग के मामले में स्पेशली, तो सब कुछ अलग दिखने लगा है। लोग हर गेम पे DLSS 5 लगाकर देख रहे हैं कि कितना रियलिज्म आ सकता है। ट्रस्ट मी, रियलिज्म तो भर के आ रहा है भाई, भर के आ रहा है, पर हर गेम पे अच्छा नहीं लग रहा भाई, हर गेम पे अच्छा भी नहीं लग रहा। बिकॉज गेम्स लाइक ओनिमुशा जो अभी इसी साल रिलीज हुआ, इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में रिलीज हुआ, उन पे ये DLSS 5 लगाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली, ये सिर्फ उन गेम्स पे अच्छा लग रहा है जिनका थोड़ा सा वक्त बीत चुका है। मगर अगर करंट गेम्स की बात की जाए तो क्रिमसन डेजर्ट पे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। और अगर पीसी गेमर्स ने अभी तक ट्राई नहीं किया DLSS 5, थोड़ा सा कॉस्टली है, पर अगर आपने पीसी बना लिया तो ऑब्वियसली आपने बहुत खर्चा ऑलरेडी कर लिया है, तो इतने से खर्चे से कुछ नहीं होगा। रमेश बाबू ट्राई करके जरूर देखिएगा, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा। दिस वॉज टेक अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे साइनिंग आउट।
3: टेक अपडेट, टेक अपडेट।
5: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
6: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
5: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
7: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
5: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
7: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
2: की। आप सुन रहे हैं FM 107।
8: FM 107।
0: दिल से देसी।
9: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते रहते हैं। और आज भी हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं द हाई मॉम फैमिली स्कैम, यानी कि फैमिली इमरजेंसी फ्रॉड। ये स्कैम दोस्तों कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। ये स्कैम बहुत ही मतलब बेकार कह ले या बहुत ही मतलब लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, निंदनीय है। एक लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो निंदनीय है, क्योंकि ये सीधा माँ बाप के अपने बच्चे के लिए जो प्यार और फिक्र है ना उसका गलत फायदा उठाता है ये फ्रॉड। इसलिए ये बहुत ही बेकार और गलीज किस्म का है। इस फ्रॉड के अंदर क्रिमिनल्स बड़े बड़े चैटिंग प्लेटफॉर्म्स या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्कैमर किसी भी रेंडम या टारगेट किए गए पेरेंट को एक अनजान फोन नंबर से मैसेज भेजते हैं। मैसेज की शुरुआत बहुत ही इमोशनल और सिंपल होती है, जैसे कि हाय मॉम या हाय डैड, मेरा पुराना फोन खो गया है, पानी में गिर गया है, टूट गया है, इसलिए मैं ये नए वाले नंबर से ना टेम्परेरी नंबर लिया है, इससे मैसेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरा पुराना नंबर डिलीट मत करना, पर अभी के लिए ये नंबर सेव कर लो, है ना। जिनके पेरेंट्स जो है अलग रहते हैं, जिनके बच्चे अलग रहते हैं, एक शहर में नहीं रहते, तो उनके लिए ये जो स्कैम है ना, स्कैमर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है माँ बाप को भी स्कैम करना और बच्चों को भी स्कैम करना। वैसे माँ बाप जब भी ये मैसेज पढ़ते हैं तो उनका दिल अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद होता ही है। वो बिना सोचे समझे रिप्लाई दे भी देते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। बस स्कैमर को यही मौका चाहिए होता है। जैसे ही पेरेंट रिप्लाई करते हैं, स्कैमर कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाता है और बहुत ही जल्द असली मुद्दे पर आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने अभी जो बचे हुए पैसे थे उसका ये नया फोन खरीद लिया क्योंकि फोन खराब हो गया है, या किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी का बिल भरने के लिए वो आपसे कहता है, या फिर दोस्तों का उधार चुकाना है। दुनिया भर के जो ड्रामे हैं वो स्कैमर्स बताता है ताकि माँ बाप से पैसे वसूले जा सके, या उनका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, कार्ड खराब हो गया है। स्कैमर्स इतने प्रेशर के साथ बातें करते हैं कि पेरेंट्स डर जाते हैं और सोचते हैं कि उनका बच्चा किसी मुसीबत में फंस गया है। वो बिना किसी लंबी जांच पड़ताल के उस अनजान नंबर पर बताए गए बैंक अकाउंट या UPI आईडी में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ समय बाद जब उनकी बात उनके बच्चे के असली नंबर पर होती है, तब उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन इस तरह के धोखे से भी बचा जा सकता है, इसके भी तरीके हैं। वो चार तरीके क्या हैं जिससे आप बच सकते हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं और उम्मीद है कि इस तरह का स्कैम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। किसी भी तरह के स्कैम से बचने का सबसे पहला तरीका है असली नंबर पर कॉल करना, ईमेल पर मैसेज करना, है ना, डायरेक्ट उस शख्स से बात करना जिस शख्स के लिए कोई फ्रॉडस्टर आपसे बात कर रहा हो या आइडेंटिटी चेंज करके बात कर रहा हो। जैसे ही आपको किसी नए नंबर से बच्चा बनकर कोई मैसेज आए या कोई बात करे बिना उनसे चैट बढ़ाए, फौरन अपने बच्चे को पुराने और ओरिजिनल फोन नंबर पर कॉल लगाएं और आप हमेशा से जो जानते हैं उस नंबर पर कॉल लगाएं। अगर वो नंबर स्विच ऑफ है या बिजी है तो उनके दोस्तों को, हॉस्टल वार्डन को या उनके साथ रहने वालों को, उनको कॉल लगाएं, तब आपको क्लियर होगा। उसके अलावा पहचान की भी जांच, आइडेंटिटी की टेस्ट, उस नए नंबर पर चल रही चैट में कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो सिर्फ आप और आपके बच्चे के बीच में ही है, जैसे उनके बचपन के किसी किस्से के बारे में या घर के किसी रूल के बारे में। स्कैमर कभी भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, वो पकड़ा जाएगा और आपको पता हो। पैसा भेजने में जल्दी ना करें, किसी भी अननोन नंबर पर इमोशनल बातें सुनकर फंड ट्रांसफर बिल्कुल ना करें, इमरजेंसी के वक्त भी हमेशा दिमाग से काम ले, दिल से बिल्कुल नहीं। वॉइस नोट भी मांगे, ये भी एक तरीका हो सकता है, ऑल्दो आपको 100% वॉइस नोट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनसे कहें कि वो आपको एक शॉर्ट वॉइस नोट भेजें जिसमें वो अपना नाम ले। अगर स्कैमर कोई बहाना बनाए कि माई खराब है तो समझ जाइए कि ये 100%

0: rubare le batterie. Su telefono 107 del C dei C. Scam Alert.
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।
4: हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों आज के इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ द राइज ऑफ कैशलेस लिविंग एंड आर वी रेडी। देखिए आज के इस डिजिटल दौर में दुनिया तेजी से कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है। कैशलेस सोसाइटी से मुराद ऐसी सोसाइटी है जहाँ लोग फिजिकल कैश यानी नोट्स और कॉइन्स कम इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल पेमेंट मेथड्स ज्यादा यूज करते हैं। इन मेथड्स में डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मोबाइल वॉलेट्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है और कहीं ना कहीं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स शामिल हैं। टेक्नोलॉजी ने पेमेंट को इतना आसान बना दिया है कि अब शॉपिंग, बिल पेमेंट्स और मनी ट्रांसफर सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। पहले लोग अपने वॉलेट्स में कैश रखते थे और हर ट्रांजेक्शन के लिए नोट का इस्तेमाल करते थे यानी फिजिकल करेंसी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज मोबाइल फोन ने एक डिजिटल वॉलेट बना दिया है। लोग QR कोड स्कैन करके पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपने बैंक अकाउंट्स को मोबाइल ऐप के जरिए मैनेज करते हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट समझते हैं कि फ्यूचर में कैश का रूल या फिर रोल और कम हो सकता है। देखिए कैशलेस लिविंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कन्वीनियंस, है ना। जब आपके पास कैश ना हो तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ये कितना कन्वीनियंट है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, सुपरमार्केट में हैं, कोई ऑनलाइन स्टोर है, पेमेंट करना कितना आसान हो जाता है। सिर्फ कार्ड स्वाइप किया और आपका काम हो गया। इससे टाइम बचता है और ट्रांजैक्शन प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। एक और एडवांटेज है सिक्योरिटी। आज किसी के पास ज्यादा कैश हो तो भाई चोरी वोरी का भी तो खतरा बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे कैशलेस करेंसी का ये अपना अलग ही फायदा है। लेकिन हाँ, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं और अकाउंट पासवर्ड और सिक्योरिटी फीचर्स से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ्रॉड्स और स्कैम्स बढ़ भी रहे हैं, इसी वजह से लोग जो हैं वो डिजिटल पेमेंट को कैश के मुकाबले सिक्योर भी समझते हैं और कुछ लोग इसे अभी भी सिक्योर नहीं समझते। लेकिन हाँ, कैशलेस सिस्टम बिजनेसेस के लिए भी बेनिफिशियल है। उसका बड़ा फायदा ये है कि जब पेमेंट्स डिजिटली रिसीव होते हैं तो कैश हैंडलिंग का बर्डन कितना कम हो जाता है। एक सोशल एस्पेक्ट रखती है, हर शख्स के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट एक्सेस या फिर डिजिटल लिटरेसी नहीं होती। सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर ऐसे लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, कभी कभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। अगर पूरी सोसाइटी कैशलेस हो जाए तो शायद लोग फाइनेंशियल सिस्टम से टेम्परेली एक्सक्लूड भी हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल एजुकेशन और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी कैशलेस वर्ल्ड में पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ डिजिटल पेमेंट यूज करना काफी नहीं है, बल्कि यूजर्स को अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करना, बजट मेंटेन करना, सेविंग गोल सेट करना, मोबाइल एप्स चेक करना, ये सब बहुत रिस्पॉन्सिबली करना है। आज क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसीज की डिस्कशंस भी कैशलेस फ्यूचर को और ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। बस आखिर में मैं यही कहूंगी कि देखिए कैशलेस लिविंग ने कहीं ना कहीं कन्वीनियंस को, स्पीड को, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया है। डिजिटल पेमेंट्स की वजह से डेली लाइफ बहुत आसान हो गई है, लेकिन इसके साथ ओवर स्पेंडिंग, साइबर सिक्योरिटी रिस्क और डिजिटल लिटरेसी के चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि कैशलेस सोसाइटी आ रही है या नहीं, बल्कि ये कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियली अवेयरनेस स्मार्ट बजटिंग और ऑनलाइन सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दें

साबित हो सकता है। वेल चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक

0: जी जी जी जी जी लेकिन कल की जो बात हुई थी ना, वो एक हमारे भाई साहब ने बात की, वो बात हमने इस तनाजुर में की थी कि कोई कोई किसी किसी जगह में ऐसे लोग हैं जो अभी तक तालीम से महरूम है,
1: बिल्कुल है,
0: लेकिन बिल्कुल अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हो गया। हाँ बहुत ज्यादा हो गया। बहरहाल वो असमत भाई की, असमत अफरीदी भाई की जो बात थी ना कि कुछ अजला उनमें ज्यादा है कुछ में कम है, जो हमारे मर्दान सवाबी पिशावर नौशेरा इसमें बहुत ज्यादा है
1: तालीम
0: जी, बहुत ज्यादा।
1: सही सही। हाँ,
0: और मैं अपनी मैंने की कि मेरे बच्चे हसद करते हैं। मतलब ये कि दूसरे बच्चों को देख के वो कहते हैं कि हम लोग क्यों नहीं करते तालीम, हम क्यों कमजोर है दूसरे बच्चों से।
1: सही
0: तो
1: सही,
0: ये अच्छी बात थी,
1: बिल्कुल बहुत जबरदस्त बात है और ये बहुत अच्छी चीज है कि मतलब ना इस तरह से रुझान बढ़ रहा है लोगों का और अच्छी चीज है भाई, होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जबरदस्त,
0: बहुत शुक्रिया। मौजू क्या है?
1: अच्छा मौजू है आज का हमारा कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या वाकई चेंज लेकर आती है, ऐसे है ना? अभी मैंने बताया, मैं भूल गई।
2: बात ये है कि क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काम करती है या उसके लिए कुछ और भी आपको है करना जरूरी?
1: वो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग सॉल्व कर सकती है इश्यूज हमारे,
2: मसले से सोचने से हल हो जाते हैं?
0: नहीं नहीं, सोचने से तो मसले हल नहीं होते। अगर आप एक काम प्रैक्टिकली एक काम ना करे, फॉर एग्जाम्पल एक माशरा है उसको आप आगे कैसे लेके जा रहे हो, एक माशरे में कुछ खराबी है कुछ है, तो उसको सिर्फ बात करने से या सोचने से तो ठीक नहीं होता, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। और वो माशरा अगर उसमें कुछ खराबी है तो उसके साथ खुद को भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है उसको सही करने के लिए। हाँ चलो ठीक है, सही। अभी मैं भी असल में ड्यूटी में हूँ।
1: अच्छा अच्छा चलो ठीक है, चलें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रे जी, तो हमारे साथ खादिम भाई थे, वो कह रहे थे कि सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है उसके लिए। बिल्कुल जी। अच्छा तो हमारे साथ एक और कॉलर हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वाह,
3: अस्सलाम वालेकुम।
2: राग चल रहे थे गाने। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ?
1: जी सैयद भाई, क्या हाल है?
3: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो एक कंप्लेंट करना है, अभी आपके कंप्लेंट अमीशा मैडम की है, क्योंकि दो मैं अक्सर गाने बहुत कम प्ले कराता हूँ, कभी कभी बहुत वो रिक्वेस्ट जो आता है 4-5 का डेली, मैं हमको इतने गाने बोल रहा हूँ भाई, मेरी बहन प्ले कर दे कर दे, सब का कर रही है, मेरा ही नहीं कर रही, क्या मसला है? मैं कंप्लेंट करना है।
2: कौन कौन कौन कौन
3: भाई? तो अमीशा मैडम बहुत अच्छी सुन गया, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ?
2: के बारे में बोल रहे हैं,
1: हम समझे नहीं कि किसकी बात है।
2: हाँ, वो असल में पता है क्या होगा, वो इतनी ज्यादा वो ये सॉन्ग रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहे होंगे।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो वो होता जी, आवाज
1: जी जी आवाज आ रही है सईद भाई जी, आपकी आवाज आ रही है? क्या हो गया इनको, आपकी आवाज हमें आ रही है?
2: ब्लूटूथ शायद इनका कुछ।
3: हाँ जी
2: सईद भाई, असल में मसला ये होता है, ये आपको शायद देखने में ये लग रहा हो कि जो है ना मैसेजेस कम होंगे या क्या, वो मैसेजेस की एक भरमार आती है गानों की, जो हम लोग कुछ मैसेजेस देख पाते हैं कुछ नहीं देख पाते, या तो आप बिल्कुल शुरू में मैसेज करें, कुछ मैसेज आपका गुम हो जा रहा होगा उनसे। कुछ अल्लाह माफ करे, कोई पर्सनल इशू नहीं है, वो होता ये कि हमारे पास भी होता है कि इतने सारे मैसेज आते हैं, कुछ मैसेज बिल्कुल नीचे नीचे नीचे नीचे चले जाते हैं, तो वो मुझे नहीं पता उनका टाइम फ्रेम क्या है शो का, जितना उनका टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपका नहीं पहुंच पा रहे होंगे आपके सॉन्ग तक, आपकी फरमाइश तक।
1: चले हम बोल देंगे सईद भाई की रिक्वेस्ट अमीता लाजमी लेनी है।
2: हाँ
3: अब उनको हाईलाइट करते हैं। मैंने अर्ली में मतलब स्टार्ट होते ही कर रहा था, और मैंने उनको ये भी मैसेज किया, मैडम प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दीजिए कुछ, तो आप मेरा कॉल उठा देना, मैसेज कर दे, क्या मतलब है मेरा मेरा गाना।
1: अच्छा ये बताएं भाई, गाना कौन सा था आपका, ये बताएं आप।
3: अरे भाई वो परसों क्या पूछी, क्या वो अच्छे अच्छे गाने, वो बोली कैंटीन है ना, कैंटीन की कुछ याद दिला दो कॉलेज की, समझ रहे हैं?
1: अच्छा
3: हाँ, तो मैंने बोला चलो इनको ऐसी याद दिलाता हूँ कि फिर ये परेशान हो जाएंगे, मैंने बोला जान तेरे नाम का गाना प्ले करिए, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, समझे?
1: सही सही,
3: बहुत बेहतरीन गाना था। तो फिर वो कॉलेज जो बंद हो गया, खुल गया, पता नहीं कोई प्ले ही नहीं किया।
2: कॉलेज बंद हो खोलोगे खोलोगे कि चला भी गया।
1: ओह गॉड।
3: अभी जब कल का सुनिए, बोलते हैं कोई है, अब ऐसा कोई आदमी है कि आप हेयर स्टाइल उसका बना रहे हैं, उसके कपड़े पहन रहे हैं, बोला भाई हम तो पागल थे शाहरुख खान के पीछे, शाहरुख खान जो करा वही करते थे, उसके लिए मार भी खाए ना घर में, कॉलेज बंक करना वो करना दुनिया के मार भाई, इतना हमारे ना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था एमसेट का, पढ़ता शाहरुख खान के पिक्चर देखता था मैं, बहुत मार खाई मैंने।
1: अच्छा,
3: शाहरुख खान के लिए बोला भाई बाजी बाजीगर का टाइटल सॉन्ग प्ले कर दे मेरी बहन, हमारे पूरा शो हो गया, करी नहीं उसने, सब की करी मेरी नहीं।
1: आपसे चल रहा है कुछ चक्कर, कुछ इसका चल रहा है। क्या चक्कर है भाई,
2: वो जैसे ईमेल्स आती है ना, इसको फ्लैग कर दिया था मेरे ख्याल से, इनके मैसेज को फ्लैग कर दिया गया
1: है कि नहीं भाई इस सबका चलाऊंगी, इनका नहीं चलाऊंगी। क्या किया था सैयद भाई ये बताएं।
3: नहीं मैं तो खुद
1: कुछ तो किया है, कौन सी तो किया है,
2: कौन सी मुर्गी चोरी की थी उनकी।
3: अच्छा आप तो आप लोग प्लीज थोड़ा बोल देंगे, प्लीज प्लीज।
1: हाँ बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे।
3: डिस्टेंस कर रही है, मैं बोला ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, डिस्टेंस
1: चल रहा है।
2: खुला तादाद
1: ये थोड़ा गलत है। नहीं नहीं बिल्कुल बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे अमिता को कि भाई सैयद भाई का गाना जरूर चलाना है, उनका मैसेज भी पढ़ना है,
2: चाहे शो दो घंटे का क्यों ना करना पड़ जाए।
1: हाँ अभी आप क्या याद करेंगे, हम आपके लिए लगाते हैं अभी थोड़ी देर के बाद बाजीगर, ठीक है
3: जी। मैं सुना आपका क्वेश्चन पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में,
1: बिल्कुल बिल्कुल बाजीगर भी चल जाएगा आपके लिए।
3: बोथ ऑफ यू पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत जरूरी है, नेगेटिव थिंकिंग के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है और उससे बहुत मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और काम बनने वाले भी काम नहीं बनते हैं। अपने
2: सवाल ये नहीं है कि नेगेटिव के पॉजिटिव, सवाल ये है थोड़ा सा घुमाकर कि ये बताएं सिर्फ थिंकिंग से काम चल जाता है।
3: नहीं खाली सोच से तो कुछ नहीं होगा ना, सोच अच्छा करो तो अमल तो करना ही पड़ेगा,
2: तो थोड़ा सा प्रोसेस बताएं ना कि अमल करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए इंसान को, कोई टिप्स कोई टैक्स देना।
3: कोई भी एक आप चैप्टर शुरू कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो पहले तो पॉजिटिव थिंक करके और उसके ऊपर पूरी अपनी मेहनत करें और जुस्तजू के साथ करने की कोशिश करें पूरा पूरा, और अपने कॉन्फिडेंस अपने पर भी अल्लाह पे भरोसा रखिए, फिर अपने ऊपर भी भरोसा रखिए कि भाई इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा।
2: कुछ लोगों का ये भी होता है ना मसला, ये होता है कि चार दोस्तों में बैठेंगे गप्पे छप्पे मारी, हाँ मेरे पास ये आइडिया है, बातें करते रहेंगे, जिसके साथ बैठेंगे हाँ पता है मैंने फलानी चीज सोची है, मैं फलाना काम करूंगी, अरे भाई 36 दिन तक वो सिर्फ उसके बारे में बात ही करते रहेंगे, 3 साल गुजर जाएंगे उसके बारे में बात ही करते रह रहे होंगे, उनके साथ 6,000 लोग और वो काम खोल कर बैठ जाएंगे जिसके बारे में वो सिर्फ अभी बात ही कर रहे होंगे, फिर कहेंगे आखिर में आकर हमारा आइडिया चोरी कर लिया, उन्होंने खुद अपना एफर्ट नहीं किया होता।
3: बिल्कुल बहुत गलत है, खाली सोचने से कुछ नहीं होता है, अगर आपका क्वेश्चन ये है तो सोचने से क्या होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है भाई, हाँ काम करना है ना, प्रैक्टिकल करना है।
2: सही सही सही सही,
3: आपको तो प्रैक्टिकल करना है, मतलब उस पर अमल करना है, बोलने का मतलब अमल करना है ना, सोचने से सोच तो अच्छी रखो तो अमल भी तो करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
3: जी। अच्छा और एक क्वेश्चन है प्लीज, सॉरी मैडम से परसों में आप सुन रहा था आपकी बात, आप बोल रहे हैं एनाटॉमी पढ़िए, आप एनाटॉमी पढ़े डॉक्टर है आप?
2: एनाटॉमी मैंने पढ़ी तो है, अब देखिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है, डॉक्टर मेडिसिन भी पढ़ा है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस भी किया है और साइकोलॉजी भी पढ़ा है, पढ़ा हमने बहुत कुछ है, बस अब ये बात रहने दें, बहुत पढ़ते पढ़ते उम्र गुजर गई, बाल सफेद हो गए।
3: नहीं नहीं नहीं बाल तो सफेद नहीं हुए, अच्छे बाल है काले, मैं देखा माशाल्लाह।

0: बेटी साहब के साथ शेयर किया भाई, यार जैसा अपन मैडम से परसों सुना मैंने, बेटी हूँ बोल रहे थे एनाटॉमी पढ़, क्योंकि बच्चे एनाटॉमी पढ़ रही है, बोलते रहती है बुक्स के बारे में,
1: बुक्स भाई बहुत, और उनसे कहिएगा अपनी जो बुक्स खरीदती है ना ये अपने पास रखिएगा, ये इनका जिंदगी भर का एसेट है, उसको रद्दी में नहीं डालिएगा। डॉक्टर बनने के बाद भी चाहे आप कंसल्टेंट क्यों ना बन जाए, चाहे आप कहां तक भी क्यों ना पहुंच जाए, ये बुक सीने से लगा कर रखनी है।
0: तो मतलब आप MBBS की मैडम?
1: आई वुड रिफ्रेन, देखिए मैं कुछ ना कहूंगी, मैं क्वेश्चन मार्क हूँ लोगों के लिए, मैं अपने लिए भी एक क्वेश्चन मार्क हूँ।
2: बेसिकली इसने लिया था एडमिशन, लेकिन फिर ये बस
1: मैंने
2: मूड के मामला है, छोड़ दिया।
1: साढ़े तीन चार साल बाद जाके डिसाइड किया नहीं ये मेरी फील्ड नहीं है। आखिरी साल में बस यूं समझ लें, आखिरी साल में मैंने डिसाइड किया कि मेरी फील्ड नहीं है। वो आखिरी साल कम्प्लीट कर ले बेटा, वो मैंने कहा अब्बा अब छोड़ दो, मेरी फील्ड नहीं है, वो आखिरी साल, ये 70 मिनट मेरे अब्बा क्यों शाहरुख खान वाले आते, वो 70 मिनट वो एक साल आखिरी एक साल आज भी बोलते रहते हैं। नहीं मेरी वो मेरा जिस अपना एक प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम है जिस चीज में दिल नहीं आता ना, तो फिर वो
2: नहीं, वो नहीं, जब आपका नहीं हो तो फिर आप नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी बहन मतलब अगर मतलब सारे निकाल लिए थे तो एक और निकाल लेती, इसमें क्या जा रहा था,
1: नहीं होता फिर वो, मैं कुछ अलग बहुत अलग किस्म की बंदी थी वो, मेरा वो वाला मामला।
2: अच्छा मैंने भी एडमिशन लेके छोड़ा है, मैंने भी छोड़ा, लेकिन शुरू में छोड़ा,
1: नहीं मैंने बहुत आखिर में,
2: जी जी, क्योंकि वो मतलब वो नहीं चल पा रहा था उस तरह से, नहीं हो पा रहा था, तो मैंने भी छोड़ दिया था, लेकिन मैंने बिल्कुल शुरू में छोड़ दिया था।
1: मामला पता है क्या है सैयद भाई, मामला ये कि हम थे वो शोशा वाले फैशन डिजाइनिंग वाले बच्चे, जबरदस्ती जान पूछ कर एग्जाम भी फेल कर कर आए एंट्रेंस टेस्ट का, अब्बा ने फिर भी वापस एंट्रेंस टेस्ट दिलवाया, अच्छा भाई एक साल घर बिठाया, फिर भी जबरदस्ती अब्बा ने मेडिसिन में भेज दिया, हमने कवर भी कर लिया, अब्बा ने कहा चलो बच्चा चल पड़ा, लेकिन आप जबरदस्ती जिंदगी में अपने आप को कितना ही धक्का दे दोगे। तभी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उस वक्त शायद अगर मैं ये अब्बा से बोल पाती ना खड़े होकर कि अब्बा मुझे ये नहीं करना, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मैंने कभी बोला नहीं। अब जाके सोचती हूँ अगर उस वक्त धड़ल्ले से बोल देती ना अब्बा,
2: तो कुछ और कर लेती,
1: फिर कुछ और कर लेती। और हाँ वो चीज मैंने लाइफ में आगे जाकर जरूर की जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, लेकिन वो जो तीन साल साढ़े तीन साल मैंने जिंदगी के वेस्ट किए ना, मुझे ऐसा लगा वो वेस्ट में गए, वेस्ट नहीं कुछ सीखा ही, जारी बात है।
2: लेकिन
1: मजे की बात ये कि आज भी किसी का कोई डायग्नोसिस करो ना तो सच में बिल्कुल सही जाता है, मजाक ही रहा बोल रहे माशाल्लाह,
2: बस आइएगा नहीं इसके पास, इसको इस बात को ऐसे लीजिएगा, सही है, सीरियस नहीं होना है किसी ने,
1: हमारा कंपाउंडर वाला हिसाब है,
2: सीरियस कोई ना हो जाए,
1: सीरियस नहीं लेना लेकिन बस मैं तो हमेशा ये कहती हूँ भाई अपने, आज भी मैं तभी अपने बच्चों का भी शो करती थी, मैं हमेशा ये कहती थी कि जो आपको करना है ना एटलीस्ट डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स। आजकल के माँ बाप हमारे इतने अच्छे हैं, फैसिलिटेट करते हैं इस चीज को, अपनी सोच जरूर आगे रखो क्योंकि जो गलती आप कर गए हो वो आप नहीं चाहोगे दूसरे करें।
2: सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही जी सईद भाई, हो गई कन्फ्यूजन दूर? कहाँ है तो
1: फिर इनका ब्लूटूथ का कोई इशू हो गया। हाँ
2: जी जी जी जी जी जी,
1: मैंने कहा बोर हो गए बातों से।
0: हेलो
1: सईद भाई,
2: सईद भाई कहाँ चले गए भाई, क्या हो गया आपके साथ? ये अमिता को ऐसी कोई कॉल की होगी आपने,
1: ऐसे ही टूटा फूटा मैसेज आया होगा अमिता को भी।
2: अच्छा चलो, इनको बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, तो सैयद भाई माजरत, हम तो आपको मतलब चाह रहे थे बात करना, लेकिन कुछ मसला हो चुका है,
1: कहेंगे मुझसे तुम लोग को भय है।
2: हाँ, कहेंगे कि ये लोग देखो दोनों बैठी हुई है और मुझसे बात ही नहीं करी, मैं बोले जा रहा था, लेकिन खैर दुनिया गवाह है इस बात की कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। खैर जी आ जाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ, कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से क्या सोल्यूशंस निकल सकते हैं। अच्छा वो एक जो चीज होती है सफा, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको अगर देखो तो वो काफ़ी हद तक इससे मिलती है, लेकिन डेफिनेटली मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो डेफिनेटली वो मामला आपका कभी भी सॉल्व नहीं होगा जब तक आप कुछ करोगे नहीं। बहुत सारे लोगों का हमारे यहाँ मसला ये होता है कि उनको लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब करते की बारी आती है ना तो वो कुछ करते ही नहीं, वो पहला कदम ही नहीं उठाते।
1: मैं एक बात बताती हूँ, अक्सर औकात लोग पता है क्या करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करना बहुत इजी लगता है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल मेरा छोटा भाई है ना, वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो उसने 3 से 4 दफा वो बिजनेस स्टार्ट किया मावेश, और 3 से 4 दफा बंद कर दिया।
2: अच्छा
1: पता है क्या होता था, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है.
2: Exactly.
1: आपको हर मुश्किल का हल निकालना पड़ता है. जब तक आप अपनी चीज, अपनी दुकान जब तक आप मार्केट में लेकर ही नहीं आओगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा, ख्याल

0: में हर चीज अच्छी लगती है. वो दोस्तों के साथ चाय पे बैठते हैं ना, हाँ पता है 30 रुपए का सामान लेकर आऊंगा, 100 रुपए में बेचूंगा, एक महीने के जो है ना मुर्गियां अंडे देंगी, अंडे में चूजे निकलेंगे, चूजे जो है ना वो सोचने में बहुत ईजी लगता है. जब आप फैक्चुअल होकर उसको एग्जीक्यूट करते हो ना प्लान को, फिर बारी आती है आपके कंसिस्टेंट रहने की.
1: एग्जैक्टली.
0: और वो वन बाय वन प्रोसेस होता है जो इंसान उसके अंदर कंसिस्टेंट
1: रहने की बात है. फिर दूसरे उससे हटकर अक्सर ये होता है कि लोग सोच बहुत कुछ रहे होते हैं, पहला कदम नहीं उठा रहे होते. कम से कम तुम्हारे भाई ने उठाए.
0: डर डर डर
1: वही है. तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत प्यारा सोच रहे हैं, बड़ा फैसिनेटिंग है, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली काम नहीं होगा.
0: चार लोग आपके सामने दुकान खोलकर बैठ जाएंगे. वही उसी चीज़
1: कॉलर है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. जी कौन है हमारे साथ?
1: क्या हो गया
0: जी? कोई इंटरनेशनल इशू चल रहा है क्या?
1: कहीं हमारे साथ तो नहीं मसला?
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: हेलो.
2: वालेकुम सलाम.
0: जी कौन है हमारे साथ?
2: आसिफ अंसारी.
0: आसिफ भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: आसिफ भाई काफी टाइम बाद आपने कॉल की है.
1: नहीं कल तो की
2: नहीं,
1: थी.
2: मैंने
0: कल की थी.
2: कल की थी तो
0: मैं कहाँ गुम थी? फिर कल गुम हो गया. मैं तो सेट वाला गजनी हूँ, मुझे लगा
1: बोलने दो बहन.
0: आसिफ भाई बोले, कैसे हैं आप? जैसे कल थे बिल्कुल वैसे ही.
2: बिल्कुल फिट बात.
0: नहीं आसिफ भाई थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर होना चाहिए था. वीकेंड वीकेंड आसिफ भाई वीकेंड वीकेंड वाइब.
1: मैं सोच रही हूँ अच्छा हुआ तुम डॉक्टर नहीं बनी. पता चला इसको पेट में रख के ये जा वो जा ये जा वो जा, फिर पता चलता कहाँ गया कहाँ गया, फिर दोबारा ऑपरेट करना पड़ता. जी आसिफ भाई
2: क्या मौजू चल रहा है आज
0: भाई?
2: अभी मैंने जस्ट स्टूडियो.
0: मौजू ये चल रहा है कि क्या जिंदगी को या क्या बिजनेस को या लाइफ में कहीं पर भी सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी होती है या उससे आगे भी इंसानों को कुछ करना होता है?
2: पॉजिटिव थिंकिंग काफी तो नहीं होती, उससे आगे भी कुछ करना होता है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए आदमी को. तो इससे खुद को जो है थोड़ा सा मतलब अपने आप को भी मोटिवेट होता है कि यार आगे चल के ये होने वाला. जैसे मेरे साथ में मैं काम करता था रईस लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीन पहले. तो एक हमारे अकाउंट्स में थे केरला के अकाउंट्स मैनेजर. तो वो कोई भी बात उनसे अगर बताओ, जैसे मैनेजर ने कुछ बोल दिया या जीएम ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ बोल दिया, तो लेके आते थे उनसे कोई भी बात करो डिस्कशन करो तो सीधे बोलते थे ये चीज हटाओ, अभी बताओ क्या सीखने को मिला. ठीक है
0: सही.
2: तो उन्होंने बोला सीखने को क्या मिला तुम्हें कि आगे से ये गलती नहीं होगी, इसको पॉजिटिव ले जाओ, नेगेटिव रखो ही नहीं किसी चीज के लिए. क्योंकि कोई भी बंदा जब कोई बात करता है उसको दो वे में देखने की बजाय सिर्फ पॉजिटिव में देखो, आगे के लिए मेरे लिए क्या अच्छा हुआ. और इसी तरीके से लाइफ में है, अगर वाले साहब या घर वाले कुछ बोल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेना ही ज्यादा बेहतर होता है. जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं उस टाइम पे तो हमें बुरा लगता है कि हम किसी और जगह जा रहे हैं और ये लोग मना कर रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इल्म होता है इस चीज का कि आगे जाके कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि उनको फिक्र होती है हमारी. तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है रिश्तों में भी और लाइफ में भी और कारोबार में भी कि आने वाले टाइम पे ये हो जाए, अभी थोड़ा लॉस हुआ है लेकिन सीखने को क्या मिला, ये चीज बेटर है. कि आपको जो है पॉजिटिव थिंक रखोगे कि अल्लाह ताला ने ऐसा किया. फॉर एग्जाम्पल कोई भी हर आदमी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसमें ये कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया, हो सकता है हमारे लिए आगे चल के वो सही नहीं.
0: हाँ सही.
2: ठीक है. तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है इंसान को. जैसे रिश्ते भी अपने अच्छे रहते हैं, दोस्त हो या रिश्तेदार हो या घर के लोग हो, तो बेहतर ये है सोच समझ के पॉजिटिव थिंक रखोगे आप, कभी भी कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा और आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. उस टाइम पे तो थोड़ा बुरा लगेगा सारी चीजों को, यार उसने मुझे चार आदमी के सामने डांट दिया, लेकिन वो मेरे लिए क्या, शायद उसको इतनी मोहब्बत हो मुझसे इसलिए डांटा होगा.
0: सही.
2: तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है इंसान को.
0: सही. पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ इंसान को जो है वो अपना, वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है, वो भी करनी चाहिए भाई.
2: बस वो तो करनी ही है. 100%
0: ना भाई, ये आप बोल रहे हैं, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, मैं मेरे सामने मिसालें, बहुत करीबी करीबी लोग हैं,
2: अरे पॉजिटिव टच
0: से मस्त हो जाएंगे, वो सिर्फ सोचते रहेंगे।
2: अब वो ही है ना कि अल्लाह ताला ने दिया कि आप मेहनत, अल्लाह ताला ने कहा आप मेहनत करो, मेरा काम बरकत देना, मेरा काम। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना सामने खाना रखा हुआ है कि अल्लाह ताला उठा के,
0: कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई हमें चबा कर दे दो ये खाना, बने बनाए प्लेट मिल जाए।
2: ये चीज तो गलत है ना, करना तो अपने को है ही है, जब आप बरकत करोगे तभी बरकत होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर
0: देखा है लोगों को, भाई लोग एक जमाना था ना जब लोग ये मिसाल देते थे कि तुम्हें तो आम प्लेट में मिल जाए तो तुम वो चाह रहे हो, आजकल का हिसाब ही चल रहा है कि लोग कह रहे हैं वो आम चबावा और यूं करके वो मुझे दे दो,
1: डायरेक्टली ड्रॉअर खोलो और डाल दो,
0: बस ये वाला हिसाब।
1: ये मेरे बेटे का हिसाब है वैसे, मतलब छोटा जो बेटा है ना मेरा, उसका खाने के मामले में सीरियस नहीं, मैं उसको बोलती हूँ कि काश कुछ ऐसा होता है, कोई ऑप्शन ऐसा होता कि मैं डायरेक्टली जो है ना कहीं रख सकती होती तो मैं रख देती, तुम्हें ना खाना पड़ता। तो ये बाकी मतलब जो है ना प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उससे हट करना, मतलब जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही थी, तो उसमें अगर आप देखो तो आपका एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर जो है ना, वो जिंदगी में इतने बड़े चेंजेस लेकर आ सकता है, सिर्फ वो चीज। अच्छा, मुझे बहुत चिढ़ होती है इस बात से कि जब मेरे सामने ना कोई चीज कोई ना से शुरू करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है।
0: मेरे भाई को इतना खार आती थी इस बात से, अब मेरी भी ये सिचुएशन हो गई है उम्र के इस हिस्से में जाकर, अब वाकई में जब कोई ना से बात शुरू करता है ना, बच्चे भी कहते हैं ना ये हमसे नहीं होगा। मेरी बड़ी बेटी ना, मैंने उसको ट्रेन ऐसा किया, मैंने उसको पढ़ाया खुद ना, तो मैं उसको यही ट्रेन करती जैसे मेरे भाई ने मुझे पढ़ा पढ़ा के ट्रेन किया था, ये मत बोलो कि नहीं आता, ये समझ लो कि हाँ मुश्किल लग रहा है, ये एक अलग चीज है।
1: हाँ exactly, और हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है, हर जो सवाल है जितना ही मुश्किल क्यों ना हो लेकिन उसका कहीं ना कहीं जवाब मौजूद है।
0: जैसे ही आप कहते हो ना कि मैं ये नहीं कर सकता, आपने मैं आपको फीड कर दिया, पहले फीड कर दिया ना आपने कि नहीं हो सकता,
1: और नहीं हो सकता, और फिर आपका मतलब जो ना एक जो कहते हैं ना अल्लाह ताला कि आप तवक्कुल करो ना, तो तवक्कुल का मतलब है कि पूरा तवक्कुल, अब उसमें आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी वो थोड़ा सा कहीं पे डगमगाते हो, आपका एतमाद नहीं होता दुआ करते हुए, अक्सर दुआएं इसलिए कबूल नहीं हो रही होती तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन दुआएं बहुत कर रहे हैं, तवक्कुल कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं,
0: अपना एफर्ट,
1: ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, मतलब जिंदगी से एक दो कैरेक्टर मेरे सामने हैं इस किस्म के जो कि उनको लगता है कि वो दुनिया फतह करने के लिए आए, लेकिन आज तक
0: उंगली नहीं हिलाई उन्होंने,
1: उंगली नहीं हिलाई, वो दुनिया पता नहीं कैसे फतह होगी। खैर जी, हमारे साथ कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह, कैसे हैं आप दोनों बहनें?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं भाई?
3: जी अल्लाह का शुक्र जबरदस्त, और टॉपिक आज बहुत अच्छा था और डिस्कशन भी बहुत अच्छी हो रही है पॉजिटिविटी के हवाले से। तो मैं तो खैर आज आप दोनों की इजाजत से टॉपिक पे बात नहीं करूंगा।
1: अच्छा फिर
3: अगर आप दोनों इजाजत दें,
1: तो फिर आप
3: मैं एक और चीज के हवाले से बात करना चाहता हूँ जो हमारी जिंदगियों में बहुत पॉजिटिविटी ला सकती है, और वो है हमारे पाकिस्तानी ड्रामे।
0: पाकिस्तानी ड्रामे, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जो ना वो ऑफ ट्रैक हो गए पहले वाले बहुत।
1: अरे भाई तुम देखती नहीं हो?
0: हाँ, मैं
1: पहले तुम देखा करो, पहले उसके बाद फिर पहले मशवरा देना, उससे पहले नहीं देना। ओके चुप हो जाए, अब आप बोले भाई।
0: मैंने लास्ट जो देखा था ना वो था
1: मेरी ड्रामे की, आपकी कौन सी
0: किसकी, आपकी इज्जत था, किसकी इज्जत
1: वो भी आपने क्लिप्स के ऊपर देखा?
0: हाँ वो मैंने क्लिप्स के, क्योंकि मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं।
1: एग्जैक्टली जी भाई बोले आप।
3: जी तो मैं ये सोच रहा था कल से, बल्कि एक हफ्ते से सोच रहा था कि मैं विशान साहिबा का शो हो और उसमें पाकिस्तानी ड्रामों का जिक्र ना हो, सरासर ना इंसाफ।
1: वही मैंने कहा सवाल चुप हो जाओ, मैं सुन नहीं सकती हूँ ड्रामों के खिलाफ कोई भी बात।
0: बहुत मसला है ड्रामे देखना।
1: जी
3: तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि थर्सडे है और थर्सडे के दिन तो बनता है कि
1: तो थर्सडे, हमने तो हैप्पी वीकेंड भी नहीं बोला, मुझे अभी आपके बोला से याद आ रहा है। अच्छा
0: मैंने किसको सईद भाई को बोला था कि सईद भाई को किसको बोला था?
1: सही सही सही, मुझे तो ये याद ही नहीं है। देखो मतलब मेरी ऐसी दुनिया चल रही है इस वक्त,
0: खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, मुझे देखकर मावेश भी भेजनी है।
1: वो बेचारे,
3: मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा,
1: जी जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं आप कंप्लीट कर लें।
3: दो ड्रामों के हवाले से बात करना चाहूंगा।
1: जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
3: दोनों उमेर अहमद के हैं, उन्होंने लिखे हैं दर्रे निजात और आपकी इज्जत। तो इन दोनों ड्रामे ये ऐसे एक ऐसा टॉपिक है दोनों ड्रामों के हवाले से जो खवातीन के खवातीन को देखना बल्कि ड्रामे तो अक्सर खवातीन ही देखती है लेकिन ये दोनों देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।

0: को एक दफा फिर से हमारी तरफ से हैप्पी वीकेंड। हाँ। बिल्कुल भूल गई थी शुरू में, मुझे याद ही नहीं था कि वीकेंड है आज।
1: मैंने आज प्लान बनाए हुए ना, तो आज मेरे कमिटमेंट है आज। लोग कहते हैं ना ड्रामे नहीं देखती।
0: अच्छा, जबकि मुझे ये पता था कि कल छुट्टी है, लेकिन फिर भी मैं वीकेंड की खुशी महसूस करना भूल गई थी। अजीब सी बात है यार, ये कुछ अजीब चल रहा है तुम्हारे साथ। रखिए, अगर मैं तुम्हारी जैसी होगी सफा तो मैं क्या करूंगी,
1: तो बस
0: मैं तो कहीं ही नहीं रहूंगी।
1: अच्छा, आज मुझे आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि मेरा पिछले एक हफ्ते से बच्चों के साथ कमिटमेंट था। मैं बच्चों वाले मामले बहुत खुश रहती हूं। मुझे आप बड़ों से दूर कर दो, मुझे आप बच्चों के साथ रखो, मैं ऐसी खुश होंगी कि बस किसी को हद नहीं। मेरा असल में बच्चा पार्टी के साथ कमिटमेंट था आज का, तो आज इसलिए मुझे याद है वो।
0: अच्छा,
1: आज वीकेंड है।
0: चले जी, गुड, जबरदस्त। तो आप लोगों को यकीनन याद भी होगा और आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्लान भी किया होगा। जरूर कीजिएगा, जो भी अच्छा सा आप करना चाहते हैं, चाहे कोई मूवी देखें, चाहे अच्छा सा खाना खाएं, चाहे कुछ भी।
1: और ये चीज याद रखें कि पॉजिटिव माइंड हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारा काम होता है ऑन अ फैक्चुअल बेस।
0: तो बस इसके साथ ही सिंग इज किंग आपके लिए और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, बाय बाय।
1: सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

रे ला तहजन इन्नल्लाह माना। और सबसे बढ़कर बार बार अपने दिल से सवाल किया जाए, फमा वन्नकुम रब्बिल आलमीन, आखिर तुम्हारा अपने रब्बिल आलमीन के बारे में क्या गुमान है। समीन किराम, हुस्न ज़न बिल्लाह की अहमियत के बारे में हमारी गुफ्तगू हो रही थी और ये बहुत ही अहम एक कुरानी मोती है। अब बात को मजीद दूसरे पहलू की तरफ आगे बढ़ाएंगे। समीन किराम, इंसान की हकीकत ये नहीं कि वो कभी खता न करे। अल्लाह ताला जानता है कि हम फरिश्ते नहीं, हम बशर हैं, हमसे लग्जिश होती है, कोताही होती है, गुनाह सरजद होते हैं। हम में से कौन है जो अपने अमाल के हर गोशे को खोल कर देखे और अपने आप को बिल्कुल पाक पाए। हम सब अल्लाह के पर्दे सतर के मोहताज हैं। कितनी कमजोरियां ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने लोगों से छुपा रखा है, कितने गुनाह ऐसे हैं जिन पर उसने फौरन गिरफ्त नहीं की, कितनी लग्जिशों के बावजूद उसने दरवाजा बंद नहीं किया। इसलिए शरीयत हमें गुनाह से इज्तनाब, गुनाह से दूर रहने की ताकीद के साथ साथ ये भी कहता है कि गुनाह हो जाए तो वापसी का रास्ता क्या है। इस्तिग़फ़ार, तौबा, बुराई के बाद नेकी करना। कुरान कहता है इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई को उस तरीके से दफा करो जो सबसे बेहतर हो। और फरमाया इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यात, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। तो गुनाह के दाग धोने का तरीका भी अल्लाह सुभान व तआला ने हमें बता दिया है। हम सब खता करते हैं, हम सब कभी ना कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन सब बराबर नहीं होते। एक शख्स वो है जो गुनाह में उतरता है फिर उसमें रहने का फैसला कर लेता है, न शर्मिंदगी, न वापसी, न तौबा। और दूसरा वो है जो फिसलता ज़रूर है मगर उसी वक्त उसे अपने रब का मकाम याद आ जाता है। कुरान ऐसे लोगों की तस्वीर यूं खींचता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون। जब वो किसी भी हयाई का इर्तिकाब कर बैठते हैं या अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाह माफ़ कौन कर सकता है, और जानते बूझते अपने किए पर इसरार नहीं करते। यहाँ फ़र्क गुनाह होने और गुनाह पर जम जाने के दरमियान है। मोमिन की खूबी ये नहीं कि उसे कभी लग्जिश ना हो, मोमिन की खूबी यह है कि लग्जिश उसे अल्लाह से दूर ले जाने के बजाय अल्लाह की तरफ वापस ले आए। अब यहाँ शैतान की एक बहुत ख़तरनाक चाल समझना ज़रूरी है। कभी शैतान गुनाह की दावत देने वाले की शक्ल में आता है, लेकिन कभी वो अचानक वाइज भी बन जाता है। वो कहता है तुमने अभी गुनाह किया और अब नमाज पढ़ोगे, कितने मुनाफिक हो, इबादत किस मुंह से करोगे, कुरान पढ़ते हो और फिर भी नाफरमानी करते हो, लोगों के सामने नेक बनते हो। यहाँ मोमिन को समझना चाहिए कि गुनाह के बाद इबादत छोड़ देना शैतान को दूसरी फतह देना है। उसका जवाब ये होना चाहिए, हाँ मुझसे गुनाह हुआ है इसलिए मुझे अपने रब की और ज्यादा जरूरत है, मैं गुनहगार हूँ इसलिए सजदा छोड़ने के बजाय सजदा बढ़ाऊंगा, मेरे दिल पर दाग है इसलिए जिक्र से उसे धोऊंगा। शैतान चाहता है कि पहले लिबास गंदा करे फिर कहे अब उसे धोने का क्या फायदा। मोमिन कहता है दाग आया है तो धोना और भी जरूरी हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों पर फितनों के असर को एक नहायत गहरी मिसाल से बयान फरमाया। सही मुस्लिम की हदीस का मफहूम है के फितने दिलों पर एक एक तिनके की तरह पेश किए जाते हैं। जो दिल उन्हें कबूल करता जाता है उसमें एक सियाह नुक्ता पड़ता जाता है, और जो उन्हें रद्द करता है उसमें सफेदी और नूर बढ़ता जाता है, यहाँ तक के दिल दो तरह के हो जाते हैं। एक दिल ऐसा रोशन और मजबूत के फितना उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुँचाता, और दूसरा सियाह उल्टा हुआ बर्तन, अस्वद मुरबादन खलखूजी मुजखियन, ना मारूफ को मारूफ समझता है ना मुनकर को मुनकर सिवाय उसके जिसे उसकी ख्वाहिश कबूल करे। जरा एक उल्टे बर्तन का तसव्वुर कीजिए, आप उसमें पानी डालना चाहें मगर पानी ठहरेगा कहाँ, बर्तन ही उल्टा है। इसी तरह जब दिल मुसलसल गुनाह, ख्वाहिश और फितनों को पीता रहे तो एक वक्त आता है कि हिदायत उसके सामने आती है मगर अंदर नहीं उतरती। गुनाह इब्तिदा में बहुत छोटा लग सकता है, गोया सफ़ेद कपड़े पर राख का एक छोटा सा जर्रा। पहली मर्तबा दिल चौंकता है, ज़मीर कहता है कि ये गलत था, लेकिन अगर इंसान उसे साफ न करे बल्कि अगला दाग भी कबूल कर ले, फिर एक और, फिर एक और, तो आहिस्ता आहिस्ता दिल की हसासियत कम होने लगती है। पहले गुनाह के बाद नींद नहीं आती थी, फिर वही गुनाह मामूल बन गया, पहले झूठ बोलते हुए जबान

0: कांपती थी, फिर झूठ गुफ्तगू का हिस्सा हो गया। तो असल खतरा यह है कि गुनाह गुनाह महसूस होना बंद हो जाए, और जब दिल गंदगी से मानूस हो जाए तो अगली गंदगी पर एहतजाज भी नहीं करता, वो अपने मालिक को दलदल की तरफ खींचने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ पीछे रह जाएगा। इरशाद खुदावंदी है, यौम ला यनफउ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। उस दिन ना माल फायदा देगा ना औलाद, मगर वो शख्स कामयाब होगा जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम लेकर आए। तो असल सरमाया क्या हुआ? असल सरमाया वो दिल जो दुनिया से निकलते वक्त अल्लाह के लिए सही हो, इस पर गुनाहों के दाग आए जरूर हों मगर तौबा ने उन्हें मुस्तकिल शनाख्त न बनने दिया हो। एक खूबसूरत लफ्ज अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आया है, इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। तो अव्वाब यानी अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला। अव्वाब अरबी में उस शख्स को कहते हैं जो कसरत से अल्लाह की तरफ लौटता है, दुआ में, इबादत में, तौबा में, इताअत में, हर हाल में। इसका मतलब ये नहीं कि नबी अल्लाह से बार बार दूर होकर गुनाह में जाता था, बल्कि ये कि उसका दिल बार बार अपने रब की तरफ पलटता था। ये कितनी बड़ी मदा है, निअमल अब्दु, क्या ही अच्छा बंदा। तो बंदगी की अजमत यह है कि जैसे ही दुनिया खींचे लौट आओ, जैसे ही नफ्स भटकाए लौट आओ, जैसे ही मुसीबत आए लौट आओ, जैसे ही नेमत आए तब भी लौट आओ, यही अवाबियत है। हम सब अल्लाह सुबहान व तआला से दुआगो हैं कि या अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारी लग्जिशों के बाद हमें तेरी तरफ पलटने वाला बना, हमारे अमाल की इसलाह फरमा, हमें अपने सालेह बंदों में शामिल कर दे, और जब जिंदगी की रात गहरी हो तो हमें अपनी हिदायत के सितारों से रास्ता दिखाता रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के हल्के से तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
2: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi
2: What's up Ellie?

0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। डिस्टेंस आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा हो जो मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल ना करता हो। अगर कोई इस्तेमाल नहीं करता तो फिर ये समझा जाता है कि वो शायद इस जमाने में नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा मोबाइल या मुख्त जो डिवाइसेस हैं उन्हें इस्तेमाल करने से हमारी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों में खुश्की, धुंधलापन और सर दर्द शुरू हो जाता है, यानी हमारी आंखों पर बहुत ही ज्यादा उसके असरात देखने में आते हैं। इसी तरह जब हम डिवाइस पर या मोबाइल पर आप झुककर कोई काम करते हैं और झुककर देखते हैं तो उसमें कमर और गर्दन में दर्द जो है वो शुरू हो जाता है और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। और सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि हमारा जो मेंटल लेवल है या जो मेंटल हेल्थ है वो भी कंप्रोमाइज हो जाती है। ज्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल से डिप्रेशन ज्यादा होता है और इसी तरह आप अपने आप को अकेला भी महसूस करते हैं, यानी तन्हाई ज्यादा हो जाती है। अब बहुत सारे जो तजुर्बात किए गए, बहुत सारी रिसर्चेस की गई, उसमें देखा गया कि सोने से पहले जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी नींद की जो क्वालिटी है उसको खराब कर देता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि स्क्रीन टाइम को कम से कम करना है। हर घंटे के बाद हमें एक वक्फा लेना जरूरी है और रात को सोने से एक घंटा पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए। एक नौजवान हमेशा रात को देर तक मोबाइल इस्तेमाल करता था, उसका नतीजा ये हुआ कि सुबह स्कूल में वो ऊँगता रहता, पढ़ाई में पीछे हो गया और जब उसने मोबाइल का वक्त कम किया और नींद बेहतर हुई, इसके अलावा उसकी जो क्वालिटी ऑफ जो स्लीप थी वो बेहतर हुई, पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया। तो लिसनर्स, एक बहुत अहम बात है कि टेक्नोलॉजी हमारी सहूलत के लिए है मगर ये कि हमारी गुलामी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल को अपने वक्त का कैदी ना बनाइए और इसे सही मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए। और जब सही मकसद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे या जो तरीका है सही उस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे ना हमारी जो हेल्थ है वो कम्प्रोमाइज होती है, इसके अलावा आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो काम की सलाहियत भी आप देखेंगे कि बेहतर होती चली जाएगी। और सबसे अहम बात कि अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है। हेल्थ फॉर ऑल,
0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं।

0: वजारत दाखिला का कहना है स्टे सेफ ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है, सेफ रहें और खुश रहें। आपके जहन में वजारत दाखिला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है, वजारत दाखिला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं, तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।
1: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
2: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर, आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: दिल से देसी।
5: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
6: अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। अब वक्त है सबसे पहले तो आपको कुछ वेबसाइट्स बताने का जो बहुत ही कमाल की हैं। मैं इन्हें आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लैंग्वेज में बोलूंगा हिडन जेम। तो हिडन जेम आपको देने वाला हूं मैं, एंड लास्ट वेबसाइट इज क्रेजी। उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाला हूं, जिसके बारे में रिव्यू करना ही पड़ेगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, हालांकि मैं खुद कंसोल गेमर हूं। ओके, लेट्स बिगिन विद द वेबसाइट्स। ओके, सो वेबसाइट नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट, और ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली है जिनके स्पेशली घर पे बच्चे हैं। तो इसका नाम है POWcoloring.com, POW कलरिंग, COLORING coloring.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो फ्री कलरिंग वेबसाइट है ये। मैं फिली बोल रहा था, फिली कलरिंग वेबसाइट, तो फिली फ्री कलरिंग वेबसाइट है। इस पे बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड हर चीज आपको मिलेगी। आप बच्चों को, अगर आप सच में वो खाना नहीं खा रहे हैं, उनके हाथों में फोन जाना ही चाहिए, तो आप उन्हें ये एक्टिविटी दे सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेक्टिव, वेरी वेरी हेल्पफुल, और ड्राइंग के साथ साथ कलरिंग करने में जो मजा आता है ना इसमें, भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा था इस वेबसाइट को आपको बताने के लिए, एंड मुझे बहुत अच्छी लग गई। मुझे लगा यार इसमें तो मेरा टाइम बीत सकता है, बढ़िया वाला मजा आ गया भाई एकदम। तो आई एम प्रीटी श्योर बच्चों को तो डबल मजे आएंगे ही आएंगे। सो ट्राई दिस वन आउट, मैं बता

0: आने वाली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट का नाम है musica.com। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, musica, musica.com। अब इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको म्यूजिकल नोट्स, कॉर्ड्स, म्यूजिकल थ्योरीज, एक एक चीज आप डिटेल में खुद पढ़ सकते हैं। ये अपने आप में एक मुकम्मल टीचर है और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत कमाल की वेबसाइट है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, मतलब मैं ये हर किसी को रेकमेंड करूंगा अगर किसी को सीखना है कि म्यूजिकल नोट्स कैसे रीड किए जाते हैं, क्या होते हैं, स्पेशली वो लोग जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना फोन नंबर किसी वेबसाइट पे देने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ ओटीपी के लिए अपना नंबर दूंगा तो दिक्कत ना हो जाए। तो इस वेबसाइट का नाम है receive-sms.io, receive-sms.io। इस वेबसाइट पे जाके आप एक टेम्पररी नंबर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री, और उसके बाद उस नंबर को यूज करके आपको अगर किसी वेबसाइट पर डर लग रहा है अपना नंबर अपलोड करने के लिए तो आप ये वाला नंबर डाल के ओटीपी मंगा सकते हैं, वो ओटीपी वेबसाइट पे ही आपको नजर आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से एक प्रीमियम नंबर भी ले सकते हैं, उस प्रीमियम नंबर को लेके आप व्हाट्सएप पर भी यूज कर सकते हैं। That's how good it is। तो मुझे बहुत ही कमाल की चीज लगी। If you want to be much much much safer, तो ये वेबसाइट आपके लिए है। ठीक है? Now the review of the product जो मुझे मतलब बुला रहा है अपने पास। Alright, so news में and product of the week में बात करूंगा मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसने आके गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला दिया है, कपा दिया है ये कहूंगा मैं। ये जो है DLSS 5 है, जब से ही आया है और जब से इसका यूसेज होना शुरू हुआ है गेमिंग के मामले में स्पेशली, तो सब कुछ अलग दिखने लगा है। लोग हर गेम पे DLSS 5 लगाकर देख रहे हैं कि कितना रियलिज्म आ सकता है। ट्रस्ट मी, रियलिज्म तो भर के आ रहा है भाई, भर के आ रहा है, पर हर गेम पे अच्छा नहीं लग रहा भाई, हर गेम पे अच्छा भी नहीं लगा। बिकॉज गेम्स लाइक ओनिमुशा जो अभी इसी साल रिलीज हुआ, इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में रिलीज हुआ, उन पे ये DLSS 5 लगाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली, ये सिर्फ उन गेम्स में अच्छा लग रहा है जिनका थोड़ा सा वक्त बीत चुका है। मगर अगर करंट गेम्स की बात की जाए तो क्रिम्सन डेजर्ट पे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। और अगर पीसी गेमर्स ने अभी तक ट्राई नहीं किया, DLSS 5 थोड़ा सा कॉस्टली है, पर अगर आपने पीसी बना लिया तो ऑब्वियसली आपने बहुत खर्चा ऑलरेडी कर लिया है, तो इतने से खर्चे से कुछ नहीं होगा रमेश बाबू, ट्राई करके जरूर देखिएगा, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा। दिस वॉज टेक अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे साइनिंग आउट।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर आरजे महवेश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
3: जेन सी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते रहते हैं। और आज भी हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं द हाई मॉम फैमिली स्कैम, यानी कि फैमिली इमरजेंसी फ्रॉड। ये स्कैम दोस्तों कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। ये स्कैम बहुत ही मतलब बेकार कह ले या बहुत ही मतलब लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, निंदनीय है। एक लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो निंदनीय है, क्योंकि ये सीधा माँ बाप के अपने बच्चे के लिए जो प्यार और फिक्र है ना उसका गलत फायदा उठाता है ये फ्रॉड। इसलिए ये बहुत ही बेकार और गलीज किस्म का है। इस फ्रॉड के अंदर क्रिमिनल्स बड़े बड़े चैटिंग प्लेटफॉर्म्स या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्कैमर किसी भी रेंडम या टारगेट किए गए पेरेंट को एक अनजान फोन नंबर से मैसेज भेजते हैं। मैसेज की शुरुआत बहुत ही इमोशनल और सिंपल होती है, जैसे कि हाय मॉम या हाय डैड, मेरा पुराना फोन खो गया है, पानी में गिर गया है, टूट गया है, इसलिए मैं ये नए वाले नंबर से ना टेम्परेरी नंबर लिया है, इससे मैसेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरा पुराना नंबर डिलीट मत करना, पर अभी के लिए ये नंबर सेव कर लो, है ना। जिनके पेरेंट्स जो है अलग रहते हैं, जिनके बच्चे अलग रहते हैं, एक शहर में नहीं रहते, तो उनके लिए ये जो स्कैम है ना, स्कैमर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है माँ बाप को भी स्कैम करना और बच्चों को भी स्कैम करना। वैसे माँ बाप जब भी ये मैसेज पढ़ते हैं तो उनका दिल अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद होता ही है। वो बिना सोचे समझे रिप्लाई दे भी देते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। बस स्कैमर को यही मौका चाहिए होता है। जैसे ही पेरेंट रिप्लाई करते हैं, स्कैमर कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाता है और बहुत ही जल्द असली मुद्दे पर आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने अभी जो बचे हुए पैसे थे उसका ये नया फोन खरीद लिया क्योंकि फोन खराब हो गया है, या किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी का बिल भरने के लिए वो आपसे कहता है, या फिर दोस्तों का उधार चुकाना है। दुनिया भर के जो ड्रामे हैं वो स्कैमर्स बताता है ताकि माँ बाप से पैसे वसूले जा सके, या उनका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, कार्ड खराब हो गया है। स्कैमर्स इतने प्रेशर के साथ बातें करते हैं कि पेरेंट्स डर जाते हैं और सोचते हैं कि उनका बच्चा किसी मुसीबत में फंस गया है। वो बिना किसी लंबी जांच पड़ताल के उस अनजान नंबर पर बताए गए बैंक अकाउंट या UPI आईडी में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ समय बाद जब उनकी बात उनके बच्चे के असली नंबर पर होती है, तब उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन इस तरह के धोखे से भी बचा जा सकता है, इसके भी तरीके हैं। वो चार तरीके क्या है जिससे आप बच सकते हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। और उम्मीद है कि इस तरह का स्कैम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। किसी भी तरह के स्कैम से बचने का सबसे पहला तरीका है असली नंबर पर कॉल करना, ईमेल पर मैसेज करना, है ना, डायरेक्ट उस शख्स से बात करना जिस शख्स के लिए कोई फ्रॉडस्टर आपसे बात कर रहा हो या आइडेंटिटी चेंज करके बात कर रहा हो। जैसे ही आपको किसी नए नंबर से बच्चा बनकर कोई मैसेज आए या कोई बात करे, बिना उनसे चैट बढ़ाए फौरन अपने बच्चे को पुराने और ओरिजिनल फोन नंबर पर कॉल लगाएं, और आप हमेशा से जो जानते हैं उस नंबर पर कॉल लगाएं। अगर वो नंबर स्विच ऑफ है या बिजी है तो उनके दोस्तों को, हॉस्टल वार्डन को या उनके साथ रहने वालों को, उनको कॉल लगाएं, तब आपको क्लियर होगा। उसके अलावा पहचान की भी जांच, आइडेंटिटी की टेस्ट, उस नए नंबर पर चल रही चैट में कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो सिर्फ आप और आपके बच्चे के बीच में ही है, जैसे उनके बचपन के किसी किस्से के बारे में या घर के किसी रूल के बारे में। स्कैमर कभी भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, वो पकड़ा जाएगा और आपको पता हो। पैसा भेजने में जल्दी ना करें किसी भी अननोन नंबर पर इमोशनल बातें सुनकर, फंड ट्रांसफर बिल्कुल ना करें, इमरजेंसी के वक्त भी हमेशा दिमाग से काम ले, दिल से बिल्कुल नहीं। वॉइस नोट भी मांगे, ये भी एक तरीका हो सकता है, ऑल्दो आपको 100% वॉइस नोट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनसे कहें कि वो आपको एक शॉर्ट वॉइस नोट भेजें जिसमें वो अपना नाम ले। अगर स्कैमर कोई बहाना बनाए कि माई खराब है तो समझ जाइए कि ये 100% फ्रॉड है। दोस्तों ये कुछ तरीके हैं कि नए जमाने के जो नए स्कैम मैं बताता रहता हूँ उनसे आप कैसे बच सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो आज मैंने फ्रॉड के बारे में आपको बताया आपसे कभी नहीं होगा, कोई आपके पास मैसेज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो आपको बचना कैसे है ये आपको पता होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड में जहां पर हम नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी
3: स्कैम अलर्ट। Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर। आज हम सलाम करते हैं उन पहलवान को जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया की कुश्ती की तारीख का एक अजीम नाम था। एक ऐसा पहलवान जिनके सामने बड़े से बड़े चैंपियन भी उतरने से पहले सोचता था। नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श, लेकिन दुनिया उन्हें गामा पहलवान के नाम से जानती है और उनका टाइटल था रुस्तम ए जमाना। दोस्तों, गामा पहलवान की पैदाइश 1878 में पंजाब के गांव जबवाल में हुई। उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहां कुश्ती सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक रिवायत थी। उनके वालिद मोहम्मद अजीज बख्श खुद एक मशहूर पहलवान थे और उन्होंने बचपन ही से गामा की ट्रेनिंग शुरू कर दी। गामा का कद जो था वो तकरीबन 5'7" का, लेकिन उनकी जिस्मानी कुव्वत और स्टैमिना देखकर बड़े बड़े पहलवान हैरान रह जाते थे। कहा जाता है कि अपने लंबी करियर के दौरान गामा ने हजारों दंगलों में शिरकत की और उनकी अनबीटन रेप्यूटेशन ने उन्हें लेजेंड बना दिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में गामा ने जोधपुर के एक स्ट्रेंथ कंपटीशन में अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल एबिलिटी का सबूत दिया। इस कंपटीशन में सैकड़ों पहलवानों ने हिस्सा लिया था और गामा ने सबको मुतासिर किया। That was the talent, an inborn talent that he had. फिर जब वो जवान हुए तो उनका मुकाबला अपने वक्त के मशहूर पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ जो बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन इस ड्रॉ ने गामा की शोहरत को कम नहीं किया बल्कि लोगों को यकीन हो गया था कि ये नौजवान पहलवान मुस्तकबिल में दुनिया के सबसे बड़े चैंपियंस को चैलेंज करेगा, और यकीनन उन्होंने किया। फिर आया सन 1910, गामा लंदन पहुंचे जहां उनका मकसद था दुनिया के बेहतरीन रेसलर्स को चैलेंज करना। उन्होंने यूरोपीय और अमरीकी पहलवानों के खिलाफ मुकाबले किए और अपनी स्ट्रेंथ और टेक्निक से सबको हैरान कर दिया। उनका सबसे मशहूर मुकाबला स्टैनिलॉस सिप्सको के साथ हुआ जो उस वक्त दुनिया के सबसे मशहूर हैवीवेट रेसलर्स में शुमार होते थे। गामा ने सिप्सको को चैलेंज किया और पहले मुकाबले में उन्हें गिराकर अपनी सुपीरियर रेसलिंग एबिलिटी का सबूत दिया, और यह मुकाबला बाद में दोबारा हुआ जहां गामा की जीत ने उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन को और मजीद मजबूत कर दिया। दोस्तों, गामा को बाद में टाइगर का टाइटल भी दिया गया, एक ऐसा टाइटल जो उनकी फाइटिंग स्टाइल और शिकार की तरह ओपोनेंट पर झपटते हुए अंदाज को जाहिर करता था। लेकिन गामा की कुव्वत सिर्फ कुश्ती के रिंग तक महदूद नहीं थी। उनका ट्रेनिंग रूटीन भी किसी आम इंसान के लिए सोचना मुश्किल है। अब जरा सुन लीजिए, वो रोजाना हजारों बैठक और दंड लगाते, कुश्ती की प्रैक्टिस करते और अपने स्टैमिना को बरकरार रखने के लिए सख्त फिजिकल ट्रेनिंग करते थे। उनकी डाइट भी कुछ उनकी स्ट्रेंथ की तरह मशहूर थी। दूध, बादाम, मक्खन, गोश्त और दूसरी गजाई चीजें उनके रोजमर्रा के खाने का हिस्सा थी। यानी उनके फिजिकल स्ट्रेंथ का एक मशहूर वाकया मैं आपको बताऊं कि बड़ौदा जो शहर है इंडिया में, गुजरात में, उससे जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने एक बहुत भारी पत्थर उठाया था और ये पत्थर बाद में गामा के नाम से मंसूब कर दिया गया और उनकी लेजेंडरी स्ट्रेंथ की निशानी बन गया। 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने गामा पहलवान को सिल्वर मेस यानी चांदी का गुर्ज भी तोहफा किया और गामा की शोहरत का असर सिर्फ साउथ एशिया तक नहीं रहा। मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली भी गामा के ट्रेनिंग मेथड से मुतासिर थे और उन्होंने गामा की एक्सरसाइजेस को अपनी ट्रेनिंग में शामिल किया। लेकिन गामा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू उनकी इंसानियत थी। गामा पहलवान ने अपनी जिंदगी में जो मकाम हासिल किया वो आज भी कुश्ती की दुनिया के लिए एक मिसाल है। रुस्तम ए हिंद, रुस्तम ए जमाना, और एक ऐसा नाम जो रेसलिंग की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा, गामा पहलवान।
कहते हैं आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स एक ऐसे चैंपियन की कहानी जो सिर्फ अपनी ताकत की वजह से अजीम नहीं बना बल्कि अपनी मेहनत डिसिप्लिन हिम्मत और इंसानियत की वजह से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई गामा पहलवान रुस्तम ए ज़माना अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत खुश रहें सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट. मैं हूं आपकी आरजे महावश. इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की. यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है. आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें. कतरी दस्तरखान पर मिठाइयों का अपना एक खास मकाम है. खाना खत्म होने के बाद या किसी खुशी के मौके पर मीठी चीज पेश करना अपनाइयत और इज्जत का इजहार होता है. मिठाई सिर्फ जायके की चीज नहीं बल्कि मेहमान नवाजी और खुशी बांटने का एक प्यारा तरीका भी है. कतरी मिठाइयां आमतौर पर सादा अज्जा से तैयार होती हैं, लेकिन उनका जायका बहुत दिलकश होता है. चावल, दूध, खजूर, आटा, शहद, चीनी, जाफरान, इलायची और अरबी मसाले उनमें अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं. इन अज्जा की खुशबू और मिठास मिलकर एक ऐसा जायका पैदा करती हैं जो महफिल को यादगार बनाती है. लुकेमार खलीज की मशहूर मिठाइयों में से एक है. ये छोटी छोटी गोलियां नुमा होती हैं जो आमतौर पर आटे से बनाई जाती हैं और तलने के बाद शीरा या शहद डाला जाता है. बाहर से हल्की सी खस्ता और अंदर से नरम लुकेमात अक्सर कहवे के साथ पेश की जाती हैं। लुकेमात का ताल्लुक खास तौर पे खुशी के मौके से जुड़ा होता है. रमजान, ईद, घर की दावत या किसी खानदानी मुलाकात में ये दस्तरखान की जीनत बन सकती हैं। इसकी छोटी छोटी गोल शक्ल और मीठा जायका बच्चों और बड़ों सबको पसंद आता है. फिर साथ खजूर की मिठाइयां भी कतर के दस्तरखान का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। खजूर को कभी अकेला, कभी बादाम या दूसरे मेवे के साथ और कभी मिठाई के तौर पर पेश किया जाता है. खजूर की कुदरती मिठास की वजह से ये कम या ज्यादा सादगी

0: टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल शो विद मोहम्मद अमीज ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम 107 मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी पर 1:02 और इट्स अ गोल्ड शो आपका जाना पहचाना और ये स्पोर्ट्स का ही शो है और इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स राउंड अप भी पेश करता हूं मंगल को लेकिन इतवार और जुमेरात को इट्स अ गोल्ड शो और जितने भी लिसनर्स आप लोग मौजूद हैं कहीं ना कहीं भाई गमत और ट्यून इन करिए एफएम 107 बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ और अभी आज का जो सवाल है आप लोगों से मैं पूछूंगा जैसे तौफीक साहब पहले ही आप फोन पे मैसेज कर दिया आपने वालेकुम अस्सलाम तौफीक साहब लेकिन आज का सवाल जो है वो सुन लीजिएगा कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम है वो टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला उस बॉलर इंडिया और पाकिस्तान की जानिब कौन है आपको बताना है ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 666-222-107 पर और इसी शो पर इट्स अ गोल्ड शो आज वीकेंड है और वीकेंड में आप लोग स्पोर्ट्स से थोड़ा जुड़ जाइए और स्पोर्ट्स इज ऑलवेज अ वे ऑफ लाइफ एंड स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट फिटनेस और क्रिकेट की बात करूं तो क्या करूं कई जगह पे क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट एवरीवेयर देयर इज क्रिकेट और क्रिकेट के अलावा साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों अभी शुरू करते हैं कि स्पोर्ट्स हाईलाइट्स में क्या है क्रिकेट के बारे में आएंगे और सवाल जो है दोबारा दोहरा देता हूं और दोबारा जो है आप लोगों को बता देता हूं कि आज का जो सवाल है वो है कि हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट हाईएस्ट विकेट टेकर नेम दैट क्रिकेटर उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेकर सबसे ऊपर है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख में और टेस्ट क्रिकेट की बात करूं ओडीआई नहीं टी20 नहीं आपको उससे बताना बहुत आसान सवाल है 666-222-107 पर करिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन को और इट्स अ गोल्ड शो पर अभी बात करता हूं स्पोर्ट्स हाईलाइट ऑफ द वीक कब बहुत सारी चीजें हुई हैं दोस्तों थोड़ा सा तसल्ली रखिए थोड़ा सा सब्र रखिए और आप लोगों को बताता हूँ कि एक मेजर अनाउंसमेंट हुआ है फॉर्मूला 1 कैलेंडर को लेकर ठीक है ना 2027 का कैलेंडर जो है फॉर्मूला 1 कैलेंडर उसमें ये डिसाइड किया गया है कि कौन कौन से शहर में कौन कौन से मैं फॉर्मूला 1 रेसेस की जाएंगी तो उसमें कतर का नाम है कतर ऑलवेज 2021 आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला 1 कतर में होस्ट किया जा रहा है सिवाय एक साल छोड़कर जब वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था 2022 में अदरवाइज 2021 से कतर हैज बीन होस्टिंग फॉर्मूला 1 रेस सो अगले साल कतर का जो ग्रांप्री है जो रेस है फॉर्मूला 1 रेस है उसकी तारीख जो है 3-5 December तय किया गया है एंड लोसेल इंटरनेशनल सर्किट जो है इस मेजर स्पोर्ट को होस्ट करेगी एंड दैट इज द रेस जो जिसको हम कहते हैं कि द रेस ऑफ द रेसेस यानी सब कुछ आप लोगों ने देखा होगा हॉर्स रेसिंग कैमल रेसिंग कार रेसिंग मोटोजीपी लेकिन गाड़ियों की रेस भी आपने देखा लेकिन फॉर्मूला 1 इज नंबर 1 सो फॉर्मूला 1 रेस 3-5 December तक मुनक्किद होगी एट द लुसेल इंटरनेशनल सर्किट अच्छा कल यहाँ पे एक मैच खेला गया था फुटबॉल का एशियन चैंपियंस लीग 2 के ग्रुप सी मैच में और ये अहमद बिन अली स्टेडियम में खेला गया था अर रयान ने एक जबरदस्त कमबैक करते हुए अल फैज़ली क्लब को 4-3 goals से यानी 3 के मुकाबले में 4 goals से शिकस्त दी है एंड दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट विक्ट्री बिकॉज अगर देखें गराफा की हार हुई है एएफसी चैंपियंस लीग मेन टीयर पे यानी टॉप टीयर वाले जो एएफसी चैंपियंस लीग है उसमें इससे कुछ दिन पहले असद को हार मिली थी सो कल इस जीत से थोड़ा बहुत हमें लगा कि कतर फुटबॉल इज शोइंग अराउंड द एशियन कॉन्टिनेंट्स शोइंग अराउंड द एशियन कॉम्पिटिशंस दैट फुटबॉल इज नॉट जस्ट अबाउट अल सद अल दुहेल अल गराफा अल रयान इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अराउंड कतर स्टार्स लीग फाउंडेशन ने 2026-2027 सीजन के QSL कप के आगाज के लिए टेक्निकल कमेटी मीटिंग जो थी वो मुनक्किद की और ये कॉम्पिटिशन जो है 20 सितंबर से शुरू होगा यानी नेक्स्ट वीक से मान लीजिए मीन नेक्स्ट वीक से ही शुरू होने जा रहा है कतर बास्केटबॉल फेडरेशन का भी जो टूर्नामेंट है जो यू नो जो इवेंट है वो भी 10 अक्टूबर से शुरू है तो सीजन इज ऑन स्पोर्ट्स यू नो हर तरफ स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स आपको नजर आएंगे और इसी के साथ अंडर 17 वर्ल्ड कप भी है जो कि कतर में होने जा रहा है दोहा में होने जा रहा है 19 नवंबर से 13 दिसंबर तक और एक और चैंपियंस के टूर्नामेंट के बारे में बता दूँ वो है गल्फ क्लब चैंपियंस लीग 2026-2027 का तीसरा एडिशन जो है

है वो 13 अक्टूबर से, यानी फुल टू स्पोर्ट्स एक्शन इज देयर फॉर एवरीवन टू वॉच, गो विजिट, जो भी आपको पसंद है। और अभी इन दिनों कतर क्लासिक जो स्क्वाश टूर्नामेंट है वो अभी जारी है, एंड ये टूर्नामेंट भी आप जाके देख सकते हैं, कतर क्लासिक स्क्वाश चैंपियनशिप। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, और साथ ही साथ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका क्रिकेट में मशगूल हैं, यानी बिजी हैं, और वी आर एंजॉइंग द शो एंड वी आर एंजॉइंग द स्पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। आप भी शायद एंजॉय कर रहे होंगे। जिन्होंने भी ट्यून इन किया है लेट एफएम 107 के लिए, क्वेश्चन कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर का नाम बताइए फॉर टेस्ट क्रिकेट, नॉट ओडीआई, नॉट टी20। टेस्ट क्रिकेट को मैं हमेशा प्रिस्टीन और क्लासिक समझता हूँ, और टेस्ट क्रिकेट में ही अगर जो मतलब जो बंदा, जो खिलाड़ी, जो क्रिकेटर छा जाए, आई थिंक ही इज द बेस्ट। टी20 ओडीआई को मैं छोटा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। सो एनीवे, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, दोबारा रिपीट कर दूँ, चलिए कर देते हैं एक दफा। क्रिकेट में यानी टेस्ट क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर का नाम क्या है, आपको बताना है 666-22-107। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो। मैं इसी जगह पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: हाँ जी, दिल से देसी देसी लोग और दोबारा इस्तकबाल आप सभी लिसनर्स का FM 107 जो भी कोई सुन रहा होगा और उनके लिए एक सवाल है और सवाल ये है कि टेस्ट क्रिकेट की तारीख में इंडिया और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला उस बॉलर का नाम आपको बताना है 666-2107 पर। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो। और कुछ जवाब आ चुके हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी लिसनर्स इसमें जुड़े और बताएं कि कौन इंडिया और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले उस बॉलर के बारे में आपको बताना है। नाम आप लोगों का चाहिए और नाम के साथ साथ बताइएगा। अच्छा, एनीवे बात हो रही है क्रिकेट की, तो क्रिकेट से मुतालिक कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं। एंड पाकिस्तान और श्रीलंका, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आप लोगों ने ये सीरीज़ अगर किसी ने भी देखी हो तो आप लोगों को पता होगा कि सीरीज़ पाकिस्तान को 3-0 से हार मिली थी। लेकिन दोस्तों एक बात यह है कि इस सीरीज़ से पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ जो हमारे सामने आई तो वो है रजाउल्ला, जिनको एक हफ्ता पहले एजबस्टन टेस्ट में जाने से पहले उनको बिल्कुल इल्म नहीं था कि उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इन टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट इंग्लैंड और इंग्लैंड पहुंचना है। तो वो भाई साहब वो NCA यानी नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी लाहौर में वो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो तरबियत उनको दी जा रही थी, बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो जब घर वापस जाते हैं और तो उनके पास एक कॉल आता है कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठा के आप आ जाइए, कल आपको जाना है टू इंग्लैंड टू प्ले इन द थर्ड टेस्ट क्रिकेट टेस्ट मैच इन अगेंस्ट इंग्लैंड एट एजबस्टन इन बर्मिंघम। मज़े की बात है कि ताज्जुब की बात तो किसी को भी हो सकता है, रजाउल्लाह को भी लगा कि यार मैं कहाँ से, बड़ा ही मॉडेस्ट लड़का है, मर्दान से बिलोंग करता है ये लड़का। एंड वो जो है तो कहते ना बस सिंप्लिसिटी, डाउन टू अर्थ, एंड वो बोली बात हमें देखने को मिला। एंड अपने इंटरव्यू में टेस्ट क्रिकेट मैचेस के दौरान जो पोस्ट मैच में इंटरव्यूज में बड़ा ही सीधा साधा सा जवाब था कि बहुत ही सीधा लड़का है। एंड ही प्लेड अ गेम दैट डिफाइंड पाकिस्तान क्रिकेट्स इमेंस टैलेंट। देखिए सोचिए कहाँ पे था ये लड़का, पासपोर्ट लिया और फौरन पहुंच गया इंग्लैंड कि भाई आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट में खेलना है। और क्या बॉलिंग, और बॉलिंग तो छोड़िए, लोग ये समझ रहे थे कि ये बॉलर है। अदरवाइज देखा जाए कि पाकिस्तान जब अपने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने उतरे तो इन भाई साहब ने ऐसे ही जिस तरह की बैटिंग करा, मैंने दैट इज समथिंग एवरीबडी शेल शॉक्ड, मैंने ताजुब रह गए, हैरान कौन बल्लेबाजी और क्या बल्लेबाजी की। एक सिक्सर तो सीधा जो है होटल रूम में, जहाँ से बैट कर रहे थे एक स्टेडियम के बाहर होटल रूम में जाके गिरा। 9 sixes इन हिज इनिंग्स। और ये आज की डेट में ये ट्रेंडिंग है रजाउल्लाह। रजाउल्लाह ने सबको एक बात ना, उनकी जो जो इंटरव्यू से मैं जो सुना उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हार्डवर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, किस्मत जो है अल्लाह ताला के पास है। और उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ हार्डवर्क करता रहा और अल्लाह ताला ने उन्हें एक मौका दिया और उस मौके का सही फ़ायदा उठाया रजाउल्लाह ने। एंड रजाउल्लाह इज़ द बिगेस्ट प्राइज पोजिशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ्रॉम द थर्ड टेस्ट। पाकिस्तान को हार मिली नो डाउट, लेकिन द पॉजिटिव आउटकम वॉज द फाइंडिंग्स ऑफ रजाउल्लाह। सो ही इज़ अ ट्रेंड सेटर। एंड आज के शो में मैं तो सल्यूट करता हूँ रजाउल्लाह को। व्हाट अ बैट्समैन, क्या कमाल का बैटिंग किया। और बोलिंग वकार यूनुस, उन कहते हैं कि मेरा रोल मॉडल है यार, वकार यूनुस को फॉलो करते हुए उन्होंने इतना ये अपना सफ़र जो है यहाँ पे तय किया था। एंड फाइनली ही हैज़ डन व्हाट पाकिस्तान वॉज लुकिंग फॉर, कि एक बंदा तो निकल के आए कोई जो इंग्लैंड की बॉलिंग को इधर उधर कर दे, एंड दैट वाज रजाउल्लाह। अच्छा दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम की मेन सिलेक्शन कमेटी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली शॉर्ट फॉर्मेट यानी T20 और ODI सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और इसमें स्पिनर वरुण चक्रवर्ती नहीं है और ये थोड़ा सा स्ट्रेन की इंजरी की वजह से जापान के खिलाफ भी एक मैच होने जा रहा है।

सो इट्स अ हिस्टोरिक मैच है और इस मैच और एशियन गेम्स में भी क्रिकेट है, जैसे आप लोगों को बताया था मैंने भी अपने मैंने पिछले शो में भी कि एशियन गेम्स में क्रिकेट होने जा रहा है, T20 मैचेस होंगे, तो इस एशियन गेम्स और इस वन T20 मैच से वरुण चक्रवर्ती बाहर है और उनकी जगह विवराज निगम को स्क्वाड में रखा गया है। यंग बॉलर हैं फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश से। स्क्वाश में, कतर क्लासिक स्क्वाश में अभी जो हमें मैचेस देखने को मिले, पिछले दिन की बात कर रहा हूँ मैं, यानी बुध के रोज़ की बात कर रहा हूँ, और जो डिफेंडिंग चैंपियन थे न्यूजीलैंड के पॉल कोल, वो क्वार्टर फाइनल में हार गए और टूर्नामेंट से टाटा बाय बाय हो गया उनका। पाकिस्तान 9 अक्टूबर यानी अगले महीने 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमों को यू नो दे विल होस्ट एंड वहाँ पे मैचेस होंगे, ODI एंड T20 सीरीज। और एक फुटबॉल की न्यूज़ आप लोगों को शेयर कर दूं कि इंग्लिश लीग कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है टूर्नामेंट से बाहर है, ब्राइटन के हाथों 3-2 से हारने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब थोड़ा फोकस करते हैं कुछ रिजल्ट्स पर, हम देखते हैं कि आज QSL में मैचेस क्या क्या है। QSL यानी कतर स्टार्स लीग, एंड आज एक क्रिकेट के एक और मैच आपको बता दूं बिफोर आई मूव ऑन टू QSL, वो है दो मैचेस इनफैक्ट, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का आज तीसरा मैच होने जा रहा है शाम 5 बजे, और वहीं इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के दरमियान T20 मैच है रात 8:30 बजे। इंग्लैंड इज द मेजबान टीम और श्रीलंका इज अ विजिटिंग टीम, और इंग्लैंड 1-0 से इस सीरीज में आगे है। सो अभी हम फोकस करते हैं थोड़ा सा QSL पर। QSL यानी कतर स्टार्स लीग, जो कि कतर फुटबॉल का टॉप टीयर फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसमें हम देखेंगे कि मैचेस क्या क्या है और क्या क्या होने जा रहा है। तो ओवर अभी जो ओवरव्यू मैं आपको बताऊँ कि अलसद टीम जो है, अलसद क्लब जो है, दे आर द टॉप एंड दे आर द टॉप बिकॉज ऑफ ऑल द मैचेस दे हैव वन। सो दिस इज़ एक मिनट, ये थोड़ा सा आज का थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्लो है, बहुत सारी चीज़ें नेट्स जो हैं वह काफ़ी स्लो हैं। तो एनीवे मूविंग ऑन टू, बताता हूँ आप लोगों को, मूविंग ऑन टू अनदर न्यूज़, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बारे में हम बात कर रहे थे, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के सीरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देर इज़ अ हेल लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी है PCB की जानिब। एक ये भी एक बताया गया है कि हो सकता है कि आकिब जावेद को, जो नेशनल सेलेक्टर है, उनको बाहर कर दिया जाए, यानी उनको बर्खास्त कर दिया, बाहर करने का मतलब होता है कि बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन आकिब जावेद का ये कहना है कि ये सरासर ये सब फेक न्यूज़ है, मैं तो अपनी जगह पर हूँ, लेकिन देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कुकिंग अप। और PCB के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं एंड PCB के जो यू नो जो जितने भी उनके सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स हैं, शायद उनको कह दें कि आपका जो टर्म है वो पूरा हो चुका है, बिकॉज लूजिंग अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, इसलिए दे वांट टू ओवरऑल एवरीथिंग। और बहुत सारे दबाव हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स से, एक्सपर्ट से काफ़ी प्रेशर है कि हो क्या गया है पाकिस्तान क्रिकेट को, कोई भी परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे। सो दैट इज़ वॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ लुकिंग एट, कि अब सिस्टम को थोड़ा ठीक किया जाए, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सिस्टम थोड़ा सा बेटर हो, कुछ अच्छे प्लेयर्स आए जैसे रजाउल्ला आए, और इसी के साथ पाकिस्तान टीम की और मजबूती हो। सो दोस्तों अभी एक बता दूं कि QSL मैचेस जो है देर इज़ अ ब्रेक हैं, जैसे कि हमने बताया कि एशियन गेम्स शुरू होने जा रहा है 19 सितंबर से, तो देर इज़ अ ब्रेक ऑफ मैचेस, और ये फीफा का एक जैसे कहते हैं कि फीफा एक नो ब्रेक डालता है बीच में कि देर इज़ सम नेशनल एंगेजमेंट्स, नेशनल टीम जो है कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे, तो इसीलिए देर इज़ अ ब्रेक ऑफ QSL गेम्स। फिलहाल जो टेबल पर मैं नज़र रख रहा हूँ तो उसमें अलसद इज़ नंबर 1, 12 पॉइंट्स, जैसे मैंने कहा 4 मैचेस में चारों जीत के साथ 12 पॉइंट्स, और रायान कल की जीत के साथ 4 मैचेस में 10 पॉइंट्स, और शमाल जो है 4 मैच में 8 पॉइंट थर्ड पोजीशन, और अल अरबी जो है 6 पॉइंट लेकर चौथे पोजीशन। अल दोहेल जो है इस बार थोड़ा सा अल दोहेल पे नज़र रख रहा हूँ, क्योंकि अल दोहेल हमेशा से टॉप रहा है, अल दोहेल क्लब। सो 4 मैच में 1 जीत और 3 ड्रॉ, दैट इज़ नॉट समथिंग एक्सपेक्टेड ऑफ अल दोहेल क्लब, और 6 पॉइंट्स के साथ वो भी 5th पोजीशन पर है, अगर टेक्निकली देखें 5th पोजीशन पर हैं। सो दैट इज़ वॉट ऑल अबाउट। और सबसे लास्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया चारों मैचेस गंवा दिए हैं, यानी दे हैव लॉस्ट द गेम, लॉस्ट ऑल द मैचेस। गराफा हाल ही में जैसे मैंने बताया कि AFC चैम्पियंस लीग में दे लॉस्ट, तो यहाँ पर भी देयर परफॉर्मेंस इज़ नॉट रियली अप टू द मार्क, 4 मैच में सिर्फ 1 जीत 1 ड्रॉ और 2 डिफीट्स के साथ 4 पॉइंट्स के साथ 9th पोजीशन पर है। अल वखरा क्लब जो है न्यू सिंबल्स यानी न्यू लोगों के साथ इस साल मैदान में उतरे थे, लेकिन 4 मैचेस में

एक भी जीत नहीं, दो ड्रॉ और दो लॉसेस के साथ दो पॉइंट्स लेकर अभी 10th पोजीशन पर। तौफीक साहब आप तो वकरा के रहने वाले हैं, ये क्या हो रहा है? वकरा क्लब को थोड़ा देखिए आप। और कतर स्पोर्ट्स क्लब एक ज़माने में बहुत ही उम्दा क्लब हुआ करता था। कतर स्पोर्ट्स क्लब 4 मैचेस में 9 जीत 0-0 है और 2 ड्रॉ और 2 हार के साथ 2 पॉइंट्स एंड वो भी नीचे की तरफ 11th पोजीशन पर है। सो अभी ये इस मैराथन लीग है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, देखना होगा कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आगे के मैचेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे के मैचेस में कौन हारता है कौन जीतता है हमें देखना पड़ेगा। बार्सिलोना, अगर बात करूँ ला लीगा की स्पैनिश लीग, बार्सिलोना टॉप पोजीशन पर, रियल मद्रिद सेकेंड पोजीशन, एथलेटिको मद्रिद इस 3rd पोजीशन पर है। अब मूविंग ऑन टू लीग वन यानी फ्रेंच लीग, फ्रेंच लीग में हम देखते हैं कि LOSC वो है 10 पॉइंट लेकर सबसे टॉप है। मोनाको जो है वो है सेकंड पोजीशन पर, रेन जो है 10 पॉइंट्स लेकर 3rd पोजीशन पर हैं, पेरिस FC वो है 4 मैचेस में 8 पॉइंट्स लेकर 4th पोजीशन पर। अच्छा PSG जिसके बारे में हम बहुत शुरू से कहते आ रहे हैं कि नंबर 1 क्लब है, लेकिन यह कि प्रेशर है, UEFA चैम्पियंस लीग में भी खेल रहे हैं और लीग 1 में भी है, तो 4 पॉइंट्स में सिर्फ 5 पॉइंट्स के साथ दे आर लोअर डाउन द रैंक। नाउ मूविंग ऑन टू EPL यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग में अब नज़र डालते हैं कि EPL में क्या क्या पोजीशंस है। पोजीशंस ये है कि आर्सेनल जो डिफेंडिंग चैम्पियन है वो 4 मैचेस में 4 पॉइंट लेकर 12 पॉइंट्स, 4 में 4 जीत 12 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन, एंड मैनचेस्टर सिटी सेकंड, लीड्स इज 3rd, हल इज 4, ब्राइटन इज 5th, चेल्सी इज 6th, और मैनचेस्टर यूनाइटेड देखना पड़ रहा नीचे जाके इज ऑन द 13th पोजीशन, और वहीं टॉटनहम हॉटस्पर 17th पोजीशन, लिवरपूल इज 8th, मोहम्मद सलाह का फॉर्मर क्लब लिवरपूल इज ऑन द 8th पोजीशन। सो दोस्तों ये तो आज के जितने भी अपडेट्स थे मैंने आप लोगों से शेयर किया है, एंड अभी देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या आंसर्स भेजे हैं, देखते हैं। तौफीक साहब एक फ़ोटो शेयर करते हैं और उसमें अलवकरा स्पोर्ट्स क्लब का जो स्काफ है वो शेयर करते हैं, बहुत उम्दा तौफीक साहब, लेकिन टीम को बताइए कि थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है और अलवकरा जो है सही से जाने रहा। आपका जवाब ये जो था, क्वेश्चन क्या था ये पहले बता दूँ, क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे हाइस्ट विकेट टेकर बॉलर कौन है, और आप लोगों ने आपके अपने अपने जवाब दिए हैं। सदात अफरीदी साहब ने सही दिया है, बिल्कुल सही, एकदम ऑन द स्पॉट। एंड अबुसाद आपने सिर्फ इंडिया के बारे में कहा, इंडियन बॉलर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में आपने नहीं बताया है। अब्दुलरहमान नहीं, आपका जवाब बिल्कुल सही नहीं है, और भी कोई हैं तो आप बताते रहिएगा, अभी भी आपके पास कुछ वक्त है। तो दोस्तों जैसे मैं बताया था कि इंडिया और जापान के दरमियान एक हिस्टोरिक मैच होने जा रहा है, ये मैच जो है जापान में खेला जाएगा, एंड इस मैच में पहली मर्तबा जापानीज टीम जिसको आप सिर्फ फुटबॉल, रेसलिंग, ओलंपिक स्पोर्ट्स इसमें आप देखते आए हैं, वो क्रिकेट में दे विल पार्टिसिपेट, एंड ये मैच जो है टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जापान रिलेशंस के ऊपर। सो ये मैच इंपॉर्टेंट है, 22 सितंबर को ये मैच खेला जाएगा, एंड ये इसका नाम रखा गया है कि सुजुकी कप, सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड तोचीगी में खेला जाएगा। सो जापान इज ऑल्सो ज्वाइनिंग द बैंडवैगन ऑफ क्रिकेट, एंड जापानीज टीम विल बी सीन अगेंस्ट द इंडियन क्रिकेट टीम इन T20 इंटरनेशनल, पहली मरतबा जापानीज क्रिकेट टीम विल बी वॉच। आप लोग देख सकते हैं 22 सितंबर को ये मैच होने जा रहा है इन जापान, एंड 22 सितंबर जो डेट है वो कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम बात कर रहे थे कि हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हाईएस्ट विकेट टेकर में जिनका नाम है तो आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसमें मेहनत कर रहे हैं। इंडिया के लिए अनिल कुंबले, बिल्कुल सही जवाब जितने लोगों ने भी दिया है उसमें किस कुछ लिसनर्स ने कपिल देव का नाम दिया है, कपिल देव का रिकॉर्ड ब्रेक किया था अनिल कुंबले ने, 434 का वो रिकॉर्ड अनिल कुंबले ने तोड़ दिया था, 619 विकेट। और पाकिस्तान के लिए वासिम अकरम साहब 414 विकेट लेके सबसे टॉप पर हैं। सो दोस्तों करेक्ट आंसर इज इंडिया के लिए अनिल कुंबले और पाकिस्तान के लिए वासिम अकरम। और आज बता दूं इसी विकेट को लेकर, इसी बॉलर्स के बारे में बात करते करते आज जो है हैप्पी बर्थडे है रविचंद्रन अश्विन का, रविचंद्रन अश्विन जो है सेकेंड

हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडियन बॉलर्स की लिस्ट में. सो रविचंद्रन अश्विन अभी तो फॉर्मर क्रिकेटर है, अभी अब खेल नहीं रहे हैं, लेकिन ही इज द स्पिन बॉलर, ही वॉज अ स्पिन बॉलर, ऑफ स्पिन बॉलर, और वो अनिल कुंबले के जस्ट बाद में है, और कपिल देव कम्स मच लेटर. सो एनी वे, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर बींग अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस शो जिसका नाम है इट्स अ गोल. अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहे, सेहतमंद रहे, और अपने आप को बी स्पोर्टी, मेक स्पोर्टी, एंड दिस इज अ वीकेंड टाइम, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहिए. लेता हूँ यहाँ से अलविदा, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुश रहिए एंड सेहतमंद रहें. सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.

हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुल जमान के साथ जुड़िए प्रोग्राम

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी, वेलकम अलहन व सहलन, खुश आमदी, सलाम अलैकुम। स्टूडियो की घड़ी में 1:31
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
4: दोस्तों सलाम आदाब, अब वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, सर्वर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं और पूरे एक घंटे आपके साथ रहेंगे, यानी अभी से लेके 2:30 तक आपका और हमारा साथ रहने वाला है। और आज आज है वीकेंड
2: भाई, वाकई आज है ना दिया,
4: आपकी अकल के हिसाब से
2: आ गया है यार, मुझे वाकई एहसास नहीं हुआ, ये हफ्ता तो बिल्कुल पता नहीं चला, जबकि लोग कह रहे हैं
4: सर कि... हमसे पूछिए हमें कितना एहसास हुआ है,
2: जबकि वाकई
4: पता चला है।
2: वाकई लोग कह रहे हैं कि यार ये महीना नहीं गुजर रहा जैसे कहीं मार्च नहीं गुजर रहा था लोगों का, इस महीने भी लोगों की शिकायत रही, मगर मुझे तो यार वाकई आप बताइए एकदम से एक हफ्ता देखिए कब गुजर गया पता ही नहीं चला।
4: अरे मैंने कहा ना मुझे तो बहुत भरपूर पता चला, और खास करके 1:30 से लेके 2:30 तो इतना पता चला कि मैं क्या बताऊं।
2: आपको भी पता चल रहा है और वीकेंड है भाई, वीकेंड की वाइब होनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रोग्राम हमारा आपको तो पता ही है, घंटा आपके साथ रहने वाले हम दोनों, 4434377 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, 6662107 पे आप अपने मैसेजेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आज क्या हाल अहवाल है आपका, क्या खास है वीकेंड, कैसा गुजरने वाला है आपका और क्या नया होने वाला है। मोबाइल मेरा नया है तो जरा मुझे भी समझने में टाइम लग रहा ना दिया। हाँ ठीक
4: अच्छा,
2: है
4: okay.
2: खुल गए आ गए, पहुंच गए मैसेजेस तक हम लोग। तो भाई पूरे घंटे हम आपके साथ हैं, वीकेंड है आज, आज कुछ बातचीत ज्यादा टॉपिक वगैरह के हवाले से नहीं होगी। अब थर्सडे के थर्सडे मैंने और नादिया ने ये सोचा है कि हम लोग गेम वगैरह खेला करेंगे, लाइट रखा करेंगे, जरा वीकेंड है तो उस हिसाब से जरा सा चेंज भी जरूरी है। तो आगे अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते हैं आज पहला ट्रैक कौन सा है और उसके वापस आने के बाद आप
4: और मैं चाहूंगी कि सर्वर आप बताइए भी कि आज हम कौन सा गेम खेल रहे हैं जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो।
2: कौन सा गेम खेलना
4: है, कौन सा है?
2: हम बॉलीवुड खेलने वाले हैं जहां तक नादिया
4: ने
2: बॉलीवुड और उसके अंदर आपने आवाज पहचाननी होगी।
4: अब ये मुझे नहीं पता आवाज पहचाने के गाना पहचाना जाए क्या पहचाना जाए, चलो मैं पूछ लेते हैं लिसनर से
2: ठीक है
4: वो क्या पहचानना पसंद करते
2: हैं। ठीक है ये भी ठीक है, आप जब हमें कॉल करके बता रहे होंगे कि आपने क्या पहचानना है तो आप
4: नहीं, मुझे लगता है अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या पहचानना पसंद करेंगे और ये मैसेज आप करके हमें बताइए। नंबर है 6662107, हमें आप बताइए कि आप क्या आवाज सुनना चाहते हैं और वो पहचानना चाहते हैं, वो गेम चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए सॉन्ग्स प्ले करें एंड देन आप उन्हें पहचाने, मूवी पहचाने, या किस तरह का कौन सा चाहते हैं गेम, क्योंकि आप गेम को लेकर बात है तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें पूछ लेना चाहिए।
2: बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं और यहाँ पर हम अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
4: हाँ जी,
2: उसके बाद वापस आकर आपसे इंशाल्लाह ताला सिलसिला भी जारी रहेगा बातों का और गेम वगैरह भी खेलेंगे इंशाल्लाह।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जी वेलकम बैक हेलन, बस सहलन आ गए हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर। थर्सडे भाई, यौमुल खमीस वाइब्स जो है जरा अब होनी चाहिए, और उसी को देखते हुए पहले तो वेदर का हालचाल देख लेना। भी कुछ गर्मी आपको कम लगी आज या नहीं?
2: कुछ तो, चलिए मौसम का हालचाल ले लेते हैं।
3: वेदर का हाल 107 दिनाल।
1: और क्या हो रहा है वेदर का हाल, ये तो बताइए नादिया जी।
2: अच्छा, मौसम कैसा रहने वाला है? तो दोस्तों, आज भी अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है वो काफी गर्म ही रहेगा। आज ठीक ठाक गर्मी है, सही वाली।
1: क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ? एक्चुअली मोस्टली सनी, फील्स लाइक 44, और इस वक्त टेम्परेचर भी 44 इस वक्त पे। यार 1:30 बजे 2 बजने वाले, तो क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ? हवाएं जो है 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, ह्यूमिडिटी 15% पर है, और बारिश जो है वो होने बिल्कुल नहीं वाली है,
2: दूर दूर तक चांसेस नहीं है। तो बस अब बस कुछ ही टाइम मुझे लगता है ऐसा मौसम और रहेगा। अक्टूबर से तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा, फिर आप जो है ना भरपूर तरीके से आउटडोर एक्टिविटीज प्लान कीजिए। लोग अभी से जो है ना वो एक्साइटेड है कि हम जो है बकायदा बारबेक्यू प्लान करेंगे अक्टूबर लास्ट में, नवंबर में। तो हाँ, मौसम अब बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, और आप प्लान भी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, हम दोनों वापस आ चुके हैं। जैसे हमने आपसे जाने से, ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आज हम जो है वो सिर्फ गेम ही खिलाएंगे, सर्वर भाई खिलवाइए आओगे।
1: बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर कनेक्टेड है, आइए उनसे बात करते हैं, और पहले तो हाल अहवाल भी जानते हैं, फिर गेम तो खेलेंगे ही उनके साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: अहलन
2: अहलन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहजादा जी, कैसे हैं आप? आपने तो कहा होगा कि अंताक्षरी खिलवाइए, है ना?
4: जी, मैं ना इसके लिए,
2: ये तो आप मॉर्निंग से कह रहे हैं मुझसे।
4: जावेद साहब है ना, पार्टी साहब पेटिंग करेंगे,
2: और वो नहीं आया तो फिर कौन गाएगा?
1: जावेद साहब,
2: जावेद बाजवा जी।
1: अच्छा, ओ वो तो गए हैं मेरे ख्याल में, छुट्टी बता रहे थे।
2: हाँ हाँ, वो तो भी है। नहीं,
4: सरवर भाई भी है तो, है ना? सरवर भाई भी तो खेल सकते हैं ना, विल विद लिसनर।
2: अच्छा, सरवर भाई भी खेलेंगे?
4: यस यस।
2: तब तो जिस तरफ से खेलेंगे उधर का पल्ला भारी होगा भाई।
4: नहीं, ऐसे रखे ना 30 सेकंड या 1 मिनट 60 सेकंड वाला।
2: सरवर भाई तय कर लीजिए, चुके
4: दो दो लिसनर
2: बताइए, दो दो लिसनर।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, अंताक्षरी कोई नहीं खेलेगा यहाँ पे जब तक हम नहीं कहेंगे। हम आज बॉलीवुड के सॉन्ग्स जो हैं वो आपको पहचानने हैं, हम उसी

0: की तरफ जा रहे हैं, वॉइसेस भी हमारे पास मिला जुला है मामला, तो आप उसमें अपने देखिए कि कितनी महारत आपको हासिल हुई है, ठीक है?
1: हाँ, लेकिन जाइए थोड़ा पीछे एकदम से।
0: हाँ ठीक है,
2: आपको कह रहे पीछे चले जाइए, पीछे की तरफ सर,
0: 80 पे चले जाएं।
1: हाँ 80 के पीछे जाए, 80 के जी।
2: अच्छा इतने पुराने
1: पुराने
2: अच्छा तो इतने पुराने तो अभी तो हमने गाने, अच्छा चलिए आपके लिए वॉइसेस प्ले करते हैं, देखते हैं कि आप उन्हें पहचान पाते हैं कि नहीं। हाँ अब तो पहचान ही लेंगे, बहुत टाइम से मैं खिला रही हूँ खिला के। मैंने सर्वर भाई से इतना कहा कि कुछ और खेल लीजिए, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है इनको, समझ ही नहीं आ रहा सर्वर भाई को, बताइए सर्वर भाई।
1: सरोवर भाई जी अच्छा गाते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन आवाज है, सरोवर भाई की आवाज सुनाओ मैंने।
0: वो भी यही कह रहे थे, वो भी यही कह रहे थे
2: जैसी बात पे।
0: तो फिलहाल चलिए अब शुरू करते हैं आपके साथ, पहले तो आपसे गाने पे जनवा लेते हैं शहजादा भाई।
1: जी जी जी,
0: पहला ट्रैक आता हुआ आपकी तरफ
2: ये।
3: कहना है कहना है आज तुझसे, कहना है रहना है रहना है।
2: कैचअ कौन सा, ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें तो खुद ही था। चलिए दूसरा पहचानिए।

0: क्या रहा सब पास हो गया, टाइम भी पास हो गया अच्छा खासा आपका।
1: एक तो बता देते, सिंगर तो बता ही सकते हैं मेरे ख्याल में।
0: हाँ चलिए जो भी आपको पता चला।
2: जी जी मेरे सरवर भाई, मैं आप भूल गए शायद मुझे, मैं उस लीजेंड सिंगर जो है ना, जो रफी लता, मैं बस उन्हीं का दीवाना हूँ, बाकी मैं नहीं जानता खक्कड़ पक्कड़ को किसको भी।
1: तो चलिए अच्छा ये बताइए कि क्या आज इंतजाम है, वीकेंड किस तरीके से गुजारने वाले हैं?
2: वीकेंड तो अभी तक शाम तक कुछ है प्लानिंग, शायद मिल जावे। तौफीक भाई का इनविटेशन था।
1: अच्छा
2: तौफीक भाई का।
1: अच्छा, तो
0: अच्छा आपके कान खड़े हुए कि मुझे नहीं बुलाया,
1: क्या खास हो रहा है, ऐसा जानने की जरूरत है भैया हमें?
2: हाँ बिल्कुल, उन्होंने बड़े दो हफ्ते से बोला है, अभी देखो आज शाम तक क्या रिजल्ट निकलता है, कुछ अगर होगा तो इंशाल्लाह देखो जो जो फ्री हो गए जो जो है साथ में हमारे गावा साहब है और रईस भाई है।
1: क्या बात है यार, अल्लाह ताला आपके वीकेंड को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाए, हमारी यही गुजारिश और ख्वाहिश, गुजारिश तो नहीं है, गुजारिश तौफीक भाई से कि किसी तरह हमारे वीकेंड को अच्छा बनवा देते आप। हेलो शहजादा भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही,
0: आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। हेलो, तो चलिए यहाँ पर तो फिर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो,
3: हाँ जी अलीगढ़ वाले की हाल चाल जी।
1: एहलेन एहलेन, गावा भाई आ गए हमारे साथ, कैसे हैं गावा भाई? हैप्पी वीकेंड।
3: सेम टू यू जी, आप दोनों को भी।
1: कैसा रहा अभी तक का दिन?
3: ओके रिपोर्ट सर।
1: ओके रिपोर्ट, कुछ खास?
3: जी जी,
1: वीकेंड के हवाले से
3: तो कुछ नहीं है। हाँ शाम को होगा सरवर भाई,
1: शाम को खास है,
3: ज्यादा भाई बता रहे थे।
1: अच्छा क्या बात भाई, पूरी टीम माशाल्लाह से एक साथ है, कुछ खास हो रहा है?
3: इनिशिएट तौफीक भाई ने लिया है, काफी दिन से वो कह रहे हैं मिलने को।
0: अच्छा,
3: और देखते हैं आज हो जाए,
0: वाओ,
3: या कल में हो जाएगा पॉसिबल।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा बहुत सारे लिसनर्स कह भी रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा नाम एग्जैक्टली कौन, बट कोई तो बोल रहा था कि ऐसा होना चाहिए, हम लोगों को ना एक मीटअप होना चाहिए सारे लिसनर्स का। तो चलिए ये तो अच्छी बात है कि आज आप फाइनली आप सब लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होंगे।
3: जी बिल्कुल, और जावेद भाई अभी यहीं पे हैं सरवर भाई।
1: अच्छा,
3: उन्होंने जाना है, पाकिस्तान जाना है बस कुछ दिनों के बाद में।
1: हाँ राइट, हमें वही ध्यान था कि वो जाने वाले हैं। चलिए भाई तो रेडी गावा भाई गेम खेलने के लिए?
3: भाई मैंने एक सवाल पूछना था आपसे।
1: हाँ हाँ बताइए।
3: आपने भी क्या नया सेब वाला फोन लिया है जो नया लॉन्च हुआ है?
1: नहीं यार, मैं हम सेब कहाँ खा पाते हैं गरीब लोग, अब सेब तक की औकात कहाँ हमारी भाई, ये तो आप मैडम से पूछिए, मैडम बताइए।
3: मैं वही बता रहा हूँ, मैडम ने आपको नहीं बताया?
1: अच्छा
0: अच्छा, मुझे भी अभी पता चल रहा है।
1: मैडम ने खरीद लिया आपको पहले पता है?
3: मैडम ने चोरी चोरी जिन लोगों ने एडवांस में बुक किया था ना।
0: अच्छा चुरा लिया मैंने।
3: टॉप में 10 बंदों का नाम था, उनमें मेरे ख्याल से मैडम का नाम भी है।
1: हाँ नहीं वो तो होगा, मैं खुद मैडम को देने की भी जरूरत नहीं पड़ती अपना नाम, वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में होता है। अब वो डिपेंड करता है मैडम किस हिसाब से फारिग है, उसमें वो 1 2 3 4 5 से नीचे फिर भी नहीं जाता।
3: मगर मैडम आपको नहीं बताएंगे।
0: अच्छा कितनी अच्छी बात है, माशाल्लाह मुझे छोड़ के सबको पता है, ये कमाल की बात है। हाँ ये अपने

0: में काफी बड़ी बात है कि मुझे ही नहीं पता, बाकी सबको सब पता है। नाइस,
1: हमको सबसे पहले पता है।
0: अच्छा तो आज के जो मैंने गाने निकाले, अरे भाई
2: वाह वाह नादिया, क्या बात है,
0: ऐसे गाने कोई जिंदगी में पहचान के बता।
2: चलिए तो शुरू करते हैं काबा भाई के साथ।
0: मैं खुद भी सोच रही
1: हूं नादिया जी, मेरे को सच में पुराने गानों की नहीं है नॉलेज।
2: हां तो नहीं सुनवाते हैं ना आपको हम, आपके परेशान
0: हो रहे हैं। कोई कह रहा है हमें नई के नहीं है, कोई पुराने
1: नहीं है। नहीं नहीं मेरे को नहीं है पुराने गानों की नॉलेज।
2: अच्छा चलिए
1: ट्राई कर लो, कोई बात नहीं है, अगर आपने खेलना है ये खेल मेरे साथ, मैं रेडी हूँ जी।
2: चलिए
0: खेलने के लिए कह रहे हैं, मैं जबरदस्ती हूँ तो तैयार हूँ, नहीं लेकिन हूँ।
2: चलिए ठीक है,
0: गाने क्या बजेंगे और आप क्या पहचानेंगे मुझे भी आइडिया नहीं है, बट लेट्स स्टार्ट, है ना, देखते हैं शायद कोई पहचान ही ले। तो आपका टाइम स्टार्ट करते हैं अब।

0: बाजीना पास पास पास बाजी
1: तू ही मेरी सब है सुबह है
2: आवाज पहचान गए आवाज पहचान
0: नहीं ये नहीं पता ना दिया
2: नहीं पहचाना
0: नहीं
1: है जो इरादे बता दूं तुमको शर्मा
2: ये भी गया
1: कहना है आज तुझसे कहना है
0: नहीं पता जी
3: यार कमोन यार गाबा भाई यार कमोन
1: चल फिक्र लो गोली मार यार है दिल जिंदड़ी दे चार
2: होले होले थैंक गॉड आपने पहचान लिया ये आवाज पहचानी किसकी है ये तो म्यूजिक है
3: बताइए किसकी आवाज है
2: ये आवाज बताइए
1: वैसे अपना ही साया देख के तुम जाने जाने
3: भाई कह रहे मेरी
2: पहचान पाया
0: नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं
2: बिल्कुल भी नहीं अच्छा ये
3: यार ये तो बहुत हिट म्यूजिक है यार कौन गाबा भाई यार तुम हो
2: का थीम, सुरंग, थीम।
3: किसी सुरंग वगैरह में रह रहे हो आजकल कहाँ हो
2: ये थीम नहीं पहचान पा रहे हैं आप ये तो इतनी हिट है
0: नहीं नहीं मैं ऐसे टाइम नहीं खराब करूंगा नहीं पहचाना
3: चलिए आपका स्कोर हुआ है 1 क्या बात है तानिया
2: क्या बात है क्या
3: तानिया हमारी तरफ से आपको गावा भाई
2: वैसे बात कहीं मुश्किल था पहचानना हां नहीं
3: अच्छा अच्छा आपने फिर भी कोशिश तो करी है और चलिए साहब तो इंशाल्लाह ताला आपका वीकेंड अच्छा गुजरे और आपसे संडे में मुलाकात और बात होगी से आप भाई
2: इंशाल्लाह ओके जी
0: सरवर भाई आप नहीं फ्री हो आज या कल में
2: आज तो फ्री है भाई चले क्यों नहीं हाँ बोलते हैं
3: हुकुम कीजिए गावा भाई क्या क्या करवाना चाहते हैं आप मुझसे
0: वो करते हैं फिर शाम को करेंगे हुकुम बस इतना बता दो आप फ्री हो ना
2: है मैं बता रही हूँ फ्री है
0: चलिए ठीक है डन हो गया जी
3: यही फ्री है आप तो जो बता रही है
2: नहीं नहीं मैं अरे आप फ्री नहीं आपने मुझे अभी बताया कि आज तो मैं फ्री हूँ
3: मैंने आप सबसे पहले आके आप ही को बताई है बात
2: और कह रहे थे आज किसी ने दावत वावत नहीं रखी मैंने कहा हाँ आज तो मिस हो गया
3: चलिए साहब ऑलराइट थैंक यू हैप्पी वीकेंड गाबा भाई और यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए नादिया
2: हेलो सलाम अलैकुम
4: जी कैसे हैं आप
2: हम दोनों खैरियत से हैं आप कैसे हैं
4: जी जी बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सरवर भाई अस्सलाम वालेकुम
3: मैंने साहब आपका सलाम पहले ही दे दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कैसे हैं खैरियत से हैं
4: अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार कॉल किया था तो आप नहीं थे और नाजिया जी थी उधर आप भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह
3: चलिए साहब अहलन व सहलन नाम क्या बताया भाई ने
4: शफीक
3: शफीक भाई क्या बात है साहब
2: शफीक जी ऑलराइट
3: तो क्या कहते हैं शफीक भाई रेडी हैं गेम खेलने के लिए
4: हाँ जी रेडी है
2: अच्छा
4: और असल में मैं इतना बच्चों को छोड़ने जाता हूँ स्कूल हमारे तो रेडियो पे ये चलता है इसमें कभी कभी कॉल लग जाता है तो बच्चे लोग जरा सुन रहे हैं एक्साइटेड हो गए हैं
3: अच्छा बच्चे साथ में हैं अभी आपके
4: हाँ जी
2: नाइस चलिए फिर हम आपके साथ डायरेक्टली गेम स्टार्ट करते हैं देखते हैं आप कितने गाने पहचान पाते हैं देखते हैं हाँ
4: नए वाले प्ले करना
2: अच्छा नए प्ले कर यही चल रहा
3: सब नए हैं
2: पुराने चलाइए
3: गाने नए हैं तो सिंगर पुराने हैं पुराने गाने हैं तो सिंगर नए हैं नादिया साहिबा ने बहुत चुन चुन के निकाले हैं खास गाने
2: ऐसे निकाले हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहे पर चलिए निकाले हुए हैं फिलहाल स्टार्ट करते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब पास भी कर सकते हैं आप जल्दी जल्दी

0: ये भी किशोर कुमार है।
1: बिल्कुल सही।
2: सांस को ले दिलदार, चल फिक्र लो गोली मार।
1: ये गाना बताइए।
3: ये तो होले होले।
1: ओ बिल्कुल सही।
4: आसान है ये वैसे।
1: काफी आसान हो गया। तो फिर भी इन्होंने तीन पहचान लिया।
4: चलिए
1: क्या बात है, जबरदस्त। बहुत ही अच्छी कोशिश आपकी।
4: बहुत ही बढ़िया।
3: जो मैं पहचान नहीं पाया वो मैंने कभी सुना ही। कौन से लैंग्वेज थे? अरबिक थे या
1: पश्तो था? पश्तो था। और पहला जो था ना वो था कश्मीरी एक सॉन्ग।
3: अच्छा जी।
1: हाँ लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं लोग। चलिए खैर कोई नहीं।
3: हम लोग हिंदी के अलावा कहाँ सुनते हैं मैडम? तो ये पश्तो डिफिकल्ट है हमारे लिए।
1: अच्छा चलिए।
4: आप इंडिया से हैं?
3: जी जी, इंडिया बॉम्बे से हूँ मैं।
4: ओके ओके
1: ओके। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके पार्टिसिपेशन के लिए। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ऑल राइट। यहाँ पर आई थिंक एक छोटा सा
4: ब्रेक लेते हैं। एक एक और लिसनर को कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद।
1: हेलो,
5: वालेकुम। फजल बात कर रहा हूँ मैं।
4: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं फजल साहब? खैरियत से?
5: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
4: कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
5: काफी बिजी गुजरा सर।
4: अच्छा?
5: अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा गुजरा। यानी बिजनेस की इंक्वायरी काफी ज्यादा है और मैं पहुँच कम पा रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह।
4: अल्लाह ताला आसानी करे। तो चलिए गेम खेलने के लिए रेडी?
1: मुझे लगता है आपसे जो है ना मैं वॉइसेस पूछ लेती हूँ और वो भी स्पोर्ट्स पर्सन के। हम शायद आपको गाने पहचानने में शायद मुश्किल आए।

0: ट्राई करिए, है ना। टाइम आपके पास है 30 सेकेंड्स, और इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है तो पास आप कह सकते हैं मुझे। चलिए जी, तो हम आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
1: मैं जितने दिन भी वहाँ रहा था ना, तो होटल में मैं ठहरा हुआ था, खाना मेरा सौरभ की तरफ से आता था, क्योंकि जी ऐसा मेहमान नवाज है, ऐसा जबरदस्त इंसान है ये।
0: पास।
2: मेरा सारा कप्तानी करियर रिंजी भाई के साथ रहा है, मैं जितना फैन हूँ उनका बैटिंग का, उतना उनकी पर्सनालिटी का, इंसान जैसे रिंजी भाई रहे हैं।
3: दुनिया के जो बेहतरीन रेस्टोरेंट है वो यहाँ पे है, खूबसूरत है, छोटा है, साफ है।
4: इतनी
3: कम? ये तो बहुत कम हो गई।
4: अजहर के अलावा, अजहर और सचिन के अलावा बहुत कम लोगों को मैंने देखा है लाइफ।
3: अच्छा
0: अच्छा,
3: चलिए साहब कोई बात नहीं,
0: अल्लाह ताला
3: आपका वीकेंड अच्छा करे और इंशाल्लाह ताला खुश रहिए। इंशाल्लाह संडे में आपसे मुलाकात होगी।
4: मैं आपके लिसनर्स के साथ।
0: जी जी बताइए।
3: प्रमोशन नहीं होना चाहिए बस?
4: नहीं नहीं, प्रमोशन नहीं होगा, डोंट वरी, प्रमोशन कुछ नहीं करूंगा। देखिए, मैं आपके लिसनर्स के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि कतर में आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी,
3: ये प्रमोशन हो रहा है शफीक साहब, फजल भाई,
4: प्रमोशन नहीं हो रहा है।
3: अरे हम इस हवाले से बात ही नहीं कर रहे हैं सर, आज आज सिर्फ गाने, आज लाइट मूड है और मोड में भी हम इंशाल्लाह ताला संडे।
4: मैं ये गानों के ताल्लुक से बोलना चाहूंगा कि मैं रेडियो में आपके रेडियो का बहुत बड़ा फैन हूँ
3: जी, बहुत शुक्रिया।
4: जब भी मेरा मूड डाउन होता है मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता हूँ, कार में आके बैठ के आपका रेडियो चालू कर लेता हूँ और 5 मिनट में मेरा मूड जो है आपको।
3: बहुत बहुत शुक्रिया साहब, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर रखे और खुश रखे। इंशाल्लाह संडे मुलाकात होती है आपसे, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आई थिंक यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए और वापस आते हैं तो कुछ और गाने, कुछ और बातें और आपका साथ। यहाँ पर फिलहाल जो है अमेजिंग सा ट्रैक एंजॉय करते हैं, स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: सिर्फ अलकाश चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर.
1: FM 107 टाइम चेक. टाइम चेक.
2: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. लीजिए साहब, बजे दो बजके सही दो मिनट.
0: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी, देसी.
3: तो एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आज, सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं. 2:02. और यस, आज हमने थर्सडे में रखा है कि बिल्कुल कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस हल्की फुल्की आपसे बात होगी. और अगर आप चाहते हैं गेम खेलना तो बस वो भी खेलेंगे, अगर नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं. क्योंकि हम समझ रहे हैं कि भाई वीकेंड में ना कोई भी नहीं चाहता कि अपने सहन पर बहुत ज़्यादा हम जोर डालें. तो अब फाइनली जो गाने मैंने निकाले हैं वो मिक्स्ड है, कॉम्बिनेशन है, नए भी हैं, पुराने भी हैं. जैसे लोग आते हैं और कह रहे हैं कि नया चलाइए, तो हमने कहा चलिए नया आपके लिए चलेगा, जो पुराने पसंद करते हैं उनके लिए पुराने चलेंगे. तो इस हिसाब से और जो जो गाने सुनना चाहते हैं वही बता दीजिए, हम वही चला देते हैं. इससे आसान और सही बात और क्या हो सकती है. तो बस वैसे आपकी बाय द वे क्या प्लानिंग है वीकेंड की?
2: मेरी कह रही है नादिया
3: जी. जी जी, आप
2: अरे यार आपने पूछा मेरे लिए ये प्लान, आपने
3: ये काम करती जा रही हूँ तो जरा आप कुछ बताएंगे.
2: ये काम मुकम्मल हो गया, आपने मुझे पूछ लिया. यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक चैंपियन हमारे साथ ज्वाइन करें और अगर वो उठा लेते हो तो अच्छी बात है. यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी हैं, कनेक्टेड है हमारे साथ.
3: ओके,
2: आसिफ भाई हमारे साथ हैं, कासिम भाई हमारे साथ हैं, कहते हैं सरोर भाई नेस्ट्रोलॉजी के लुक में कैसे दिखेंगे आप, इमेजिन करें प्लीज. नादिया जी का तो देख लिया है हमने वाला लुक. सरोर भाई आपको फ्रेम बना के भेजता हूँ. क्या बात है भाई,
3: चलिए हमें भी दिखाइएगा. हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं,
2: कॉल ड्रॉप हो चुकी है. अच्छा। इतने दिन में वो कह रहे हैं कि नहीं भाई मेरी बात आप पहले करते. चलिए दूसरे कॉलर की जानिब बढ़ते हैं और आसिफ भाई से यहाँ हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, मैं मिला रहा हूँ उनको. ओके, ये नंबर सही मिला है ना, मैं देख लूँ एक बार और. हाँ भाई सही नंबर है और अगर हमारे साथ
3: हम उम्मीद करते हैं
2: कनेक्ट होते हैं तो अच्छी बात है,
3: है ना. हेलो,
2: अभी होने जा रहे हैं.
3: अच्छा,
2: नाजिया
3: होने वाले हैं, मुझे लगा
2: हो चुके हैं.
4: अस्सलाम
2: वालेकुम
4: भाई.
2: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु. खैरियत से आसिफ भाई?
4: बस आपकी दुआ है सरोर भाई, आप बताइए क्या हाल चाल
2: है. अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे.
4: पहले तो भाई आप आओ मेरे साथ में खाना खाने के लिए, मैं खाना खाने बैठा.
2: क्यों आप खाली मुझे खिलाएंगे, नादिया जी को नहीं खिलाएंगे खाना?
3: मुझे तो कोई पूछ नहीं.
4: नादिया जी, अरे सॉरी मैं जस्ट भूल गया था कि
2: आपसे पहले बनवाएंगे, आपसे पहले बनवाएंगे और फिर खाएंगे. है नादिया जी, तो
4: आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा?
3: ब्रेन ब्रेन
2: मुझे पता था यही कहेंगी. और भी बता दीजिए कुछ चीजें जो मैं खाता हूँ.
3: फिर तो पीते हैं.
4: उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भेजा?
3: इन्हें पसंद है क्यों, आपने कहा नहीं था कटाकट करके भेजा? कटाकट मुझे बहुत पसंद है.
2: आप जो बना दें यार आसिफ भाई वो अच्छा है हमारे लिए. क्या ऐसी बात है, जो कहेंगे वो खा लिया जाएगा, जो आप बना देंगे वो हमें अच्छा लगेगा. आप दिल से जो भी बना दें.
4: पर सर भाई आप बताइए क्या हाल चाल है, सब ठीक है?
2: अल्लाह का शुक्र है. तो चलिए गेम खेलने के लिए रेडी?
4: जी बिल्कुल खेलेंगे ना, क्यों नहीं.
2: चलिए नादिया जी.
3: चलिए जी, तो आपके लिए 30 seconds हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. गाना पहचानिए. अरे क्या हुआ, क्या क्या क्या क्या कह रहे
4: हैं? मेरे को नहीं मालूम था क्या गाना पहचानना है, मतलब आज गिनती वाला कुछ है.
2: अच्छा अच्छा, नहीं गाना पहचानना है
3: आज आपको. गाना पहचानना,
2: गाना पहचानिए. ठीक है,
4: एक मिनट में
2: रेडी हो जाता हूँ. अच्छी बात है.
3: ठीक है, चलिए अब वापस टाइम स्टार्ट करते हैं.

0: दिल लगाने की।
1: क्या जी, क्या था?
0: तुम कितनी हसरत है तुमसे दिल लगाने
1: की? नहीं वो नहीं है। अरे सुन नहीं रहा, बोल रहा है अपनी। अरे सुनिए तो, ये पहचान नहीं आप।
2: आप पहचानिए तो सही, इतने हिट गाने नाजिया चलाए सारे के सारे।
0: अच्छा ठीक है,
1: एक और चलाते हैं। ये पहचानिए, पहचानिए।
2: हिट सॉन्ग
1: क्या?
2: लोग हमें पीछे लाइन लगी हुई बताने के लिए, ये भी नहीं बता पाए।
1: अच्छा एक और चांस, एक और चांस।
0: आपको मतलब मुझे वो 190।
2: अरे सुन नाजिया भैया, नाजिया ये गाने खरीद के लाई है, कॉपीराइट लेके आई है, सारे चला के जाएगी आज, सुनना पड़ेगा आपको।
1: एक और सुनिए,
0: सुना दो गाने के लिए आप बैठे हमको। अरे
1: अरे आप सुनते तो है नहीं, खुद ही इतना बोल रहे, सुनेंगे तब आपको गाना समझ में
2: आएगा। सुनिए भाई, वो खरीद के लाई है, चला के ही जाएंगी।
1: अब आप एकदम एकदम शांत होके सुनिए पहले।
2: सुनिए सुनिए, चलो यार एक तो बता पाए। चलिए फाइनली
1: गॉड, आपने एक बताया,
2: एक का स्कोर हुआ भाई। आसिफ भाई क्यों इतना क्यों यार, के बता ही नहीं पाए।
1: जैसे आपने सुना ना, सुकून से आपको समझ में आ गया गाना।
0: भाई देखो ना, मतलब क्या अभी एक ट्रेंड चल रहा है, मतलब एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, लोग आगे जाते हैं मगर आज के जमाने में लोग पीछे जा रहे हैं, 1920 में पहुंच जाते
1: हैं। अरे भाई अभी तो,
2: अभी देखिए
1: अभी पीछे वाले लोग आए थे, अभी कह के गए थे कि हमें पीछे वाले गाने चलाओ।
2: सुनिए आप कह रहे हैं, अभी ट्रेंड देखिए कितना जबरदस्त चल रहा है इस वक्त, 80s का, उसी हिसाब से हम गाने भी चला रहे हैं
1: 80s के लिए।
0: अगर सरोवर भाई अगर आप अगर कभी ऐसा ट्रेंड करोगे तो आप कैसे दिखोगे?
2: मैं कैसा दिखूंगा? मैंने यार करके देखा नहीं है अपने आप को।
1: देखा तो था हम लोगों ने।
2: हाँ हाँ राइट राइट, हाँ हाँ नाजिया ने बनाया था, मेरा भी फोटो बनाया था नाजिया ने,
1: और हम लोगों ने देखा। फिर सर का इससे तो अच्छा मैं आज मिला, आज लगता हूँ ये नहीं डालूंगा।
2: नहीं एक्चुअली मैं उससे भी ज्यादा हसीन और हैंडसम था,
1: जो हुए इतने खूबसूरत, फोन झटक गया।
0: भाई आपको
2: शौक
0: तो लगा होगा, बोले यार ये कैसा था, मैं पहले ऐसा दिखता था?
2: नहीं नहीं, मैं भाई बहुत
1: कोई खास चेंज
2: आज
1: नहीं
2: भी
1: आया।
2: खैर अल्लाह का शुक्र है मैं हसीन हूँ, और मैं 10 साल पहले बेनतहा हसीन था,
1: आंखें चंदे आ गई
2: तो देखने में मुश्किल होती थी लोगों को, ऐसी बात नहीं है।
1: हम में से बहुत सारे ऑफिस के लोगों की तो आंखें टपक गई, नीचे गिर गई, इतनी खूबसूरती पहली बार देखी।
2: चलिए साहब हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड आसिफ भाई, हैप्पी वीकेंड, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं वेट नहीं कराना चाह रहा, चैंपियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए या
1: हेलो
3: जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: अरे वाह, ये तो मुबीन बुखारी जी आ गए। अब मुझे बताइए नए चलाऊं पुराने, मैं तो अजीब सी कंफ्यूजन का शिकार।
2: अरे ये तो चैंपियन आदमी, कुछ भी चला दे, कुछ भी चला दे, ये यूसुफ भाई हो गए, मुबीन साहब हो गए।
3: नहीं जब सब बेइज्जती करा के जा रहे हैं तो वीकेंड में मैं भी करा।
1: अरे बेइज्जती क्यों, क्यों कहां से
2: आपके और बिल्कुल। चलिए तो बिस्मिल्लाह, आज के प्रोग्राम की तो हो ही गई है, तो अब गेम की भी कर देते हैं।
1: चलिए बिल्कुल आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बिल्कुल सही, क्या बात है,
3: देखो मैंने देखा है।
2: वाह
1: क्या बात है,
3: ला ला ला।
2: ने गाना बताओ मोहिन भाई,
3: बस तेरा।
1: हाँ यस यस राइट
2: राइट, नेक्स्ट। अरे मोहिन भाई बहुत इजी है यार। Yes?
3: अरे सर गाना तो निकल ही रहा है, याद है मेरे को।
1: वापस से चलिए, वापस से, वापस
2: गले में, गले में दबा हुआ, उसी से मिलता जुलता है, गले में दबा हुआ गाना। अरे गले से मिलता जुलता,
3: याद है सर लेकिन नहीं याद।
2: गले
1: पास, अच्छा पास।

0: ये तो और भी यार हिट सॉन्ग है मोमिन भाई।
1: रिमझिम गिरे
2: साथ, क्या बात है,
0: पांच का स्कोर कर दिया भाई ने यार, पांच का स्कोर कर दिया भाई।
2: मोमिन जी आपने वाकई बहुत इम्प्रेस किया हम दोनों को, हमें तो लग नहीं रहा था कि कोई पहचान पाएगा इन गानों को।
3: अरे 1997 के गाने बजाओगे तो कोई ना कोई जीतेगा ना, बुला देंगे।
2: अभी शहजादा जी क्या कहेंगे, नए मत चलाइए पुराने चलाइए। तो हमने कहा
0: चलिए साहब एमबीबी बहुत शुक्रिया,
2: लेकिन मुझे नहीं लगता कि पांच से ज्यादा कोई पांच हाँ,
0: दूसरों को मौका देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एमबीबी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो दिस इज एमबीबी विद द स्कोर ऑफ 5
2: जो कि हाईएस्ट है।
0: भाई ने 5 का स्कोर किया और यहाँ पर हमारे साथ चैंपियन।
2: हेलो
3: बराए मेहरबानी नाजिया में मेरे लिए ना म्यूजिक स्टार्ट कर दिए जो मैं आपने चलाया था आशिफ भाई के लिए।
0: शहजादा भाई वापस आए कह रहे बराए मेहरबानी मेरे ऊपर भी इंसाफ कीजिए।
2: अरे शहजादा जी आपने तो आप ही ने तो ये शोशा छोड़ा था, छोड़ के आप निकल के गए। मैंने इतनी मेहनत से सारे एडिट किए पुराने, हद होती है आप नहीं बोल के पुराने चलाए कीजिए। मैंने कहा अच्छा चलो भाई इतनी मुश्किल से ढूंढना,
3: आप मेरे राउंड में नहीं चलाए ना,
0: मेरे राउंड में नहीं चलाए
2: तो अब अब हम तब तक हम अपने हिसाब से दूसरे लिए बैठे हुए थे, अब हमने कहा चलिए तो आप खेलना चाहते हैं
0: जो जिसमें चैंपियन है वही थोड़ी चलाएंगे।
2: एक चांस इन्हें और मिले, चलिए जरूर आपको एक और मौका देंगे।
0: हमारे सारे गाने
2: तो दूसरे भी तो हैं, जरूरी थोड़ी वही चलेंगे। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बिल्कुल सही
0: गाना बताओ, गाना कौन सा गाना बताइए है
3: किशोर कुमार।
0: नहीं गाना बताना है आपको, गाना कौन सा है
2: जल्दी बताइए, जल्दी।
0: अरे जल्दी बताओ गाना कौन सा है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड,
2: ये बजानी
0: अरे यार ये तो बताना चाहिए।
3: जरा देखो जरा ऐसी है,
0: क्या हो गया कोई
2: नहीं वापस से सुनिए, वापस से सुनिए।
0: यार क्या बढ़िया गाना है शेखू, कम ऑन यार। हाँ
3: सुनो जरा देखो कहीं,
0: हाँ तो शुरू क्या है। अरे वो तो यार लड़की की लाइन गा रहे हैं आप भी यार।
2: अरे गाने तो शायद मौका गा के
0: माना नहीं जाएगा ये जब तक सही नहीं बताएंगे।
2: अच्छा चलिए ये और बताइए, शायद ये पहचान ले आओ। पास। अच्छा ये तो पहचान ही लीजिएगा,
0: आज का आइंदा अगर आपने कहा ना कि मेरे जमाने के गाने लगाओ
2: ये पहचानिए,
0: आपका पासपोर्ट जब्त किया जाता है।
2: अच्छा ये पहचानिए,
0: क्या गाता था मैं ये गाना यार,
2: पहचाना ये गाना
0: नहीं पहचान।
3: म्यूजिक मुझे सुनाई नहीं दिया, म्यूजिक
2: मैंने सुनाई नहीं दिया, फिर सुनिए।
0: दोनों हाथों से पकड़े गए आज चीकू। नहीं
2: ज्यादा जी
0: नहीं, कौन सा वादा चाह रहे थे फिर ये बताइए कि मेरे जमाने के कौन सा आपने कमाल किया, दो गाने पहचाने वो भी बड़ी मुश्किलों से।
2: और एक गाना तो चल ही गया, गाना ही चल गया।
0: चलिए साहब दो मौके मिले आपको, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। आपका स्कोर हुआ है 2 का और अभी लेते हैं आपसे इजाजत, यहाँ पर दूसरे लिसनर चैंपियन हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
4: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब भाई।
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, कौन है हमारे साथ।
4: फैसल बात कर रहा हूँ।
0: फैसल
4: जी,
0: अरे वाह फैसल भाई, काफी दिनों बाद बात हो रही है मुझे लग रहा है।
4: बस जी काफी दिनों बाद।
0: तो कहाँ थे, कहाँ आप गायब थे भाई, तशरीफ क्यों नहीं ला रहे थे।
4: सर कॉल नहीं उठाते आप।
0: अच्छा ऐसा है क्या नाजिया। जवाब देने की इतनी रहती है नादिया को कि देखती ही नहीं है कि किस सिचुएशन में है खुद, बस जवाब दे रहा है किसी ना किसी तरह,
2: मेरी बात
0: काउंटर करना है कहते भी करके।
2: नाजिया नहीं उठाती। अच्छा ये सारा अपने आप ही संभाल रहे होते हैं, फोन वोन सारा मींस कंप्लीट फुल।
0: चलिए भाई फैजल भाई का वक्त क्योंकि कम है और लाइन लंबी
2: नहीं है,
4: ठीक है
0: फैसल पता है सुहेल फैसल भाई ना पचपन साल में ऐसा होता है नाजिया
2: आपका तो अस्सी में हाल आपका तो इट्टी में अच्छा चलिए सुनाते एक तो मुझे भी नहीं पता कि गाना चलेगा कि म्यूजिक चलेगा
0: ऐसे ही है अपने शो का चलना चाहिए बस गाना हो हम हो कोई
4: अगर गाना चल गया तो म्यूजिक बताना है ना
0: जो मर्जी आए वो हम उसी वक्त डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है
2: यही तो अच्छा खासा चल रहा है कि कभी गाना चल जाएगा चलिए देखते हैं
0: आज मैंने एक्चुअली इनको ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया ये हुआ है तो अब किधर भी जा रही है गाड़ी लेफ्ट राइट साइड
2: सर भाई जान के करते हैं कि ये जब फंसने का मौका हो तो इन्हें बिठा लो यहाँ पर मैं गाने वाने क्यों देखूं
0: बहुत अच्छे गाने निकाले जबरदस्त
2: भाई मतलब आपका मैं समझ रही हूँ खूब समझ रही हूँ मैं अच्छे से
0: वो कह रहे चलिए भाई खिलवा दिए
2: जो कुछ देखा जाए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके साथ और आपका टाइम स्टार्ट होता है सरवर मैं आपको तो अभी समझूंगी ढाई के बाद समझूंगी ढाई बजे के बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है अब
0: ओह माय गॉड
4: अपनी तो जैसे
0: आई वाह
2: बिल्कुल सही
0: नेक्स्ट
4: कहा था जो तूने
2: ये गाना ही लिया क्या मतलब
4: वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ
0: वादा करो जल्दी क्या धुने हैं यार बताओ यार फैजल भाई
2: टाइम भी अप होता हुआ एक और गाना सुना देते हैं तू तू है वही और तुझे तो मैं समझूंगी
0: तू तू है वही तू तू है वही
2: कितने गाने पहचाने
0: भाई ने चार पहचाने क्या बात है नॉट बैड नंबर टू पे आते हुए एमबीबी के बाद फैजल साहब अच्छा खेले यार
2: अच्छा खेला मजाक मजाक है चार
0: बॉलीवुड की नॉलेज है
4: सर ये सारे गाने तो जी बिल्कुल बिल्कुल सर क्या ये तो बचपन से सुने हुए गाने सारे याद आते हैं
2: थैंक गॉड आपने कह दिया कोई कह रहा है नए चलाओ कोई कहता पुराने चलाओ कोई कहता बीच वाले चलाओ समझ ही नहीं आ रहा है हमने का लिस्ट भेज दो वही चला लेते
0: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया हैप्पी वीकेंड हैप्पी वीकेंड हैप्पी वीकेंड एंजॉय एंजॉय बाय बाय और ये हुआ यहाँ पर ओहो कॉल ड्रॉप हो गई भैया उठाते उठाते तो ये एक और चैंपियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम ब्रेक ले सकते हैं ना
2: अगर ले ले तो हम सुन छोटा सा अगर ब्रेक ले ले तो गाने सही सेट कर
0: छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और वापस
2: देर से आपसे कह रही
0: हूं यूं गए और यूं वापस आए
2: बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं अभी

0: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर
1: एनर्जी आर
0: आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
2: राइट गाइस एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम खुशामदीद अ वेरी गुड आफ्टरनून आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर आज का हमारा जो गेम है मतलब आज के शो में हम सिर्फ और सिर्फ गेम ही रखे हैं हमने रखा है गेम और कुछ गाने आपको पहचानने हैं 30 सेकंड्स का आपको टाइम मिल रहा है लेट्स सी कि कितने लोग जो हैं वो हिम्मत
3: तीन लोगों ने यहां पर मुझसे कहा कॉल पे खेलने के लिए और मैंने तीनों को कॉल मिलाया इत्तेफाक से तीनों ने कॉल नहीं उठाया ये मेरी बात समझ नहीं आई यूसुफ भाई हैं साबिर भाई हैं और रजा भाई हैं आप तीनों क्या फोन कहीं रख के भूल गए इतनी देर में ऐसा कैसे हो गया भाई आप तीनों ने कहा और हमने कॉल रिसीव भी नहीं करी जो पीछे से कॉल हमें आ रही थी अपने आप बहरहाल अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि अभी हमारे पास दो मिनट हैं दो मिनट बाद ये वक्त भी खत्म हो जाएगा अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप 443-443-77 पे कॉल कर सकते हैं और अब यहाँ पर कुछ मैसेजेस एमबीबी के 50 मैसेजेस हैं जिसमें से खूब सारे स्टिकर हैं मेरे पास
2: भाई
3: वाह क्या बात है एमबीबी आसिफ भाई हमारे साथ कहना गाना बजा दिए अच्छा अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
3: गली गली अच्छा गाना बता रहे हैं वो जो
2: चला गली था
3: ओके आगे यहाँ पर और भी मैसेजेस हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गुड आफ्टरनून नाज़िर जी और सरवर भाई कैसे हैं आप दोनों होप वेल कहाँ थे आप हम आपको कॉल कर रहे थे आपने कहा कॉल गेम खेलने के लिए यूसुफ भाई हमारे साथ कहते हैं कैसे आप दोनों होप वेल एनर्जी आर दिल से देसी थर्सडे आफ्टरनून सबको विश कर रहे हैं यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई नाज़िया कैसी हैं आप दोनों मतलब कैसे हैं
2: हम
3: दोनों खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह फहद हमारे साथ और सॉरी भाई कॉल आ गई इसलिए आंसर नहीं किया तो क्या अब हम कर लें वैसे अब टाइम नहीं बचा है ये आखिरी बस हम ले सकते हैं इस वक्त भैया अपनी तरफ से हमने कॉल करने वालों को ट्राई किया कॉल नहीं उठी अब ये कॉल इनकी आ रही थी तो कनेक्टेड है हमारे साथ
2: हेलो
3: बोल क्यों नहीं रहे
4: हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई आ गए
2: क्या
3: यूसुफ भाई हमने तो आपको कॉल भी ट्राई किया था अभी
2: अच्छा चलिए कोई बात नहीं आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं और हम उम्मीद करें कि आप 5 से ज्यादा ही स्कोर करेंगे इंशाल्लाह चलिए ट्राई करते हैं आप चैंपियन तो रहे हैं हमेशा की तरह तो बस आपका टाइम जो है वो अब हम जी आप कुछ कह रहे
4: हैं
2: अच्छा ठीक है आपका टाइम स्टार्ट होता है अब बिल्कुल सही बिल्कुल सही
4: मिले
2: बिल्कुल सही बिल्कुल सही क्या बात बिल्कुल सही
4: रावण
2: बिल्कुल सही
3: क्या बात है ये तो बता ही देंगे आखिरी
4: ये दोस्ती हम नहीं छोड़
2: क्या बात है जबरदस्त
3: चैंपियन और मिला हमें आज यूसुफ भाई एज ऑलवेज भाई
2: कभी डिसअपॉइंट करते नहीं है और पुराने नए सारे गाने जो भी हो
3: एमबीबी कह रहे किधर है मैंने कहा 7 का स्कोर है आपको पीछे छोड़ दिया है 2 पॉइंट से एमबीबी
2: वाओ बहुत ही अमेजिंग खेला आपने जबरदस्त जैसा हम लोग कहते हैं ना आपको इस गेम में आप चैंपियन तो हैं
3: मोमिन भाई भी अच्छा खेल रहे हैं
2: वो भी बहुत अच्छा
3: साहब यहाँ पर
2: पुराने गाने थे
3: फिरोज शेख का हमारे पास मैसेज है अब हमें इजाजत लेते
2: हैं यूसुफ भाई शायद
3: अब हमारे पास टाइम नहीं बस कुछ मैसेजेस हैं तो वो हम ले लेते हैं
2: थैंक यू सो मच
3: हैप्पी वीकेंड हैप्पी वीकेंड थैंक यू सो मच तो भाई यहाँ पर अब कुछ मैसेजेस बस वो हम जल्दी से मेरे ख्याल में तो अब इतना टाइम
2: हाँ अभी तो हम पढ़ सकते हैं गाने ये जो निकल
3: ये हम ले जाएंगे जाते वक्त ओके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर और नाज़िया कैसे हैं आप दोनों और बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका शो डेली मैं सुनने जरूर बैठता हूँ शेख निजाम है हमारे साथ ओके अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई कैसे हैं आप और नाज़िया आप कैसी हैं उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे हैप्पी वीकेंड मेरी तरफ से और सभी लोगों को ये शहजाद भाई हमारे साथ पीछे से एक और मैसेज मुबीन भाई क्या कह रहे हैं मोमिन भाई हम सुन नहीं पाएंगे इस वक्त वॉइस नोट वेरी सॉरी अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई बहुत दिनों बाद सुना आपका आवाज़ मोहम्मद है हमारे साथ मैं तो बहुत दिनों बाद आपका मैसेज देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में तो पहली बार ही देख रहा हूँ मैं। एनी हाउ अब तो मेरे ख्याल एक महीना तो हो गया नाज़िया हमें प्रोग्राम करते हुए इस वक्त, या नहीं अभी?
2: अभी फर्स्ट अक्टूबर कहाँ आई है,
3: सितंबर से शुरू किया है तो तकरीबन भाई 20 दिन के करीब तो निकल ही गए समझिए। एनी हाउ आप रोज जब इस वक्त तशरीफ लाएंगे तो आप हमें मतलब मुझे और नाज़िया को सुन पाएंगे 1:30 से 2:30 तक। और फिलहाल अब हमें इजाजत ले लेनी चाहिए, आप सबको हैप्पी वीकेंड,
2: हैप्पी वीकेंड, और इंशाल्लाह आपकी हमारी मुलाकात होगी अब डायरेक्ट संडे को .130 पर। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, वीकेंड अगर है तो एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, एंड सुनते रहिए FM 107
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम अपने घरों की सफाई करते हैं, कमरा साफ करते हैं, लिबास साफ रखते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां गर्द जमा होती रहती है और अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। वो है दिल। किसी की बात दिल में रह गई, किसी की कामयाबी चुभने लगी, किसी पुराने इख्तिलाफ ने अंदर नफरत पैदा कर दी, किसी ने आगे बढ़कर कामयाबी हासिल की तो दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश उसके पास ये ना होता। अब इंसान बाहर से तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक नजर आता है, लेकिन अंदर आहिस्ता आहिस्ता दिल पर गर्द जमा होती रहती है। अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह, लोगों में सबसे अफजल कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मखमूमिल क़ल्बी सदूक़िल लिसान, हर वो शख्स जिसका दिल मखमूम हो और जबान बहुत सच्ची हो। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, सदूक़ुल लिसान तो हम जानते हैं, लेकिन मखमूमुल क़ल्ब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा अत्तक़ीयुन नक़ी ला इस्मा फ़ीही वला बग़ी वला ग़िल्ल वला हसद, यानी वो ऐसा मुत्तकी और पाक दिल इंसान है जिसके दिल में गुनाह की आलूदगी, किसी पर ज्यादती का जज्बा, कीना और हसद ना हो। सामईन किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस जुमले में जाहिर और बातिन दोनों को जमा कर दिया है। सदूक़ुल लिसान यानी सच्ची जबान और मखमूमुल क़ल्ब यानी साफ दिल। सिर्फ जबान का सच्चा होना काफ़ी नहीं अगर दिल में दूसरों के लिए जहर भरा हो, और सिर्फ ये कहना भी काफ़ी नहीं कि मेरा दिल साफ है जबकि जबान झूठ, गीबत, धोखे और बदकलामी से भरी हो। नबवी शख्सियत मुतवाजन है कि अंदर भी पाकिजगी और बाहर भी सच्चाई। यहाँ मखमूमुल क़ल्ब एक नहायत खूबसूरत लफ्ज़ है। अरबी में खममतुल बैत उस वक्त कहा जाता है जब घर को झाड़ू देकर साफ किया जाए। गोया मखमूमुल क़ल्ब ऐसा दिल है जिसे अंदर से साफ किया गया हो, जिससे कीना निकाला गया हो, हसद झाड़ा गया हो, जुल्म की ख्वाहिश को बाहर निकाला गया हो। सामईन किराम, हम ये नहीं कहते कि मैंने पिछले दिनों घर साफ किया था तो अब घर साफ करने की जरूरत नहीं। साल गुजर जाता है, दिल पुरानी बात को दोबारा जिंदा कर देता है। सामने वाला शायद भूल चुका हो, लेकिन हम हर मुलाकात में अंदर ही अंदर वही पुरानी फाइल खोल लेते हैं। तो ये गिल दिल को थकाता है कि किसी का नाम आ जाता है तो दिल सख्त हो जाए, उसकी कोई अच्छी बात भी सुने दिल कबूल नहीं करे, तो दिल में मुसलसल जहर पालने से बचा जाए। हुदूद रखी जा सकती हैं, मगर दिल को नफरत की आग में जलाना जरूरी नहीं। इसी तरह मजीद एक और कैद का जिक्र किया गया है, वाला हसद, हसद ना हो। और आप सब जानते हैं कि हसद ये है कि किसी दूसरे के पास नेमत देखकर दिल चाहे ये उससे छिन जाए। ये कैफियत इंसान को अंदर से खाती रहती है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे होगा। अगर हर दूसरे की नेमत हमें जलाएगी तो हमारी ज़िंदगी दूसरों की कामयाबियों की सज़ा बन जाएगी। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, वला बगी, यानी दिल में जुल्म और ज़्यादती का जज्बा न हो। यानी साफ दिल होने का मतलब सिर्फ नरम एहसास नहीं, ये दूसरों के हक की हिफाजत भी है। किसी से इख्तिलाफ है उसका हक मत खाइए, किसी से नाराज़ी है उस पर झूठा इल्ज़ाम न लगाइए, किसी ने आपसे ज़्यादती की जवाब में आप भी हद न तोड़िए। दिल की सफाई ये है कि नाराज़ी इंसाफ को न खा जाए। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगियों में उन्हें नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएं। اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجئے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर। आज हम सलाम करते हैं उन पहलवान को जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया की कुश्ती की तारीख का एक अजीम नाम था। एक ऐसा पहलवान जिनके सामने बड़े से बड़े चैंपियन भी उतरने से पहले सोचता था। नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श, लेकिन दुनिया उन्हें गामा पहलवान के नाम से जानती है और उनका टाइटल था रुस्तम-ए-ज़माना। दोस्तों, गामा पहलवान की पैदाइश 1878 में पंजाब के गांव जबवाल में हुई। उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहां कुश्ती सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक रिवायत थी। उनके वालिद मोहम्मद अजीज बख्श खुद एक मशहूर पहलवान थे और उन्होंने बचपन ही से गामा की ट्रेनिंग शुरू कर दी। गामा का कद जो था वो तकरीबन 5'7" का, लेकिन उनकी जिस्मानी कुव्वत और स्टैमिना देखकर बड़े बड़े पहलवान हैरान रह जाते थे। कहा जाता है कि अपने लंबी करियर के दौरान गामा ने हजारों दंगलों में शिरकत की और उनकी अनबीटन रेप्यूटेशन ने उन्हें लेजेंड बना दिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में गामा ने जोधपुर के एक स्ट्रेंथ कंपटीशन में अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल एबिलिटी का सबूत दिया। इस कंपटीशन में सैकड़ों पहलवानों ने हिस्सा लिया था और गामा ने सबको मुतासिर किया। That was the talent, an inborn talent that he had. फिर जब वो जवान हुए तो उनका मुकाबला अपने वक्त के मशहूर पहलवान रहीम बख्श सुल्तानीवाला से हुआ। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ जो बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन इस ड्रॉ ने गामा की शोहरत को कम नहीं किया बल्कि लोगों को यकीन हो गया था कि ये नौजवान पहलवान मुस्तकबिल में दुनिया के सबसे बड़े चैंपियंस को चैलेंज करेगा, और यकीनन उन्होंने किया। फिर आया सन 1910, गामा लंदन पहुंचे जहां उनका मकसद था दुनिया के बेहतरीन रेसलर्स को चैलेंज करना। उन्होंने यूरोपीय और अमरीकी पहलवानों के खिलाफ मुकाबले किए और अपनी स्ट्रेंथ और टेक्निक से सबको हैरान कर दिया। उनका सबसे मशहूर मुकाबला स्टैनिलॉस सिप्सको के साथ हुआ जो उस वक्त दुनिया के सबसे मशहूर हैवीवेट रेसलर्स में शुमार होते थे। गामा ने सिप्सको को चैलेंज किया और पहले मुकाबले में उन्हें गिराकर अपनी सुपीरियर रेसलिंग एबिलिटी का सबूत दिया, और यह मुकाबला बाद में दोबारा हुआ जहां गामा की जीत ने उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन को और मजीद मजबूत कर दिया। दोस्तों, गामा को बाद में टाइगर का टाइटल भी दिया गया, एक ऐसा टाइटल जो उनकी फाइटिंग स्टाइल और शिकार की तरह ओपोनेंट पर झपटते हुए अंदाज को जाहिर करता था। लेकिन गामा की कुव्वत सिर्फ कुश्ती के रिंग तक महदूद नहीं थी। उनका ट्रेनिंग रूटीन भी किसी आम इंसान के लिए सोचना मुश्किल है। अब जरा सुन लीजिए, वो रोजाना हजारों बैठक और दंड लगाते, कुश्ती की प्रैक्टिस करते और अपने स्टैमिना को बरकरार रखने के लिए सख्त फिजिकल ट्रेनिंग करते थे। उनकी डाइट भी कुछ उनकी स्ट्रेंथ की तरह मशहूर थी। दूध, बादाम, मक्खन, गोश्त और दूसरी गजाई चीजें उनके रोजमर्रा के खाने का हिस्सा थी। यानी उनके फिजिकल स्ट्रेंथ का एक मशहूर वाकया मैं आपको बताऊं कि बड़ौदा जो शहर है इंडिया में, गुजरात में, उससे जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने एक बहुत भारी पत्थर उठाया था और ये पत्थर बाद में गामा के नाम से मंसूब कर दिया गया और उनकी लेजेंडरी स्ट्रेंथ की निशानी बन गया। 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने गामा पहलवान को सिल्वर मेस यानी चांदी का गुर्ज भी तोहफा किया और गामा की शोहरत का असर सिर्फ साउथ एशिया तक नहीं रहा। मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली भी गामा के ट्रेनिंग मेथड से मुतासिर थे और उन्होंने गामा की एक्सरसाइजेस को अपनी ट्रेनिंग में शामिल किया। लेकिन गामा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू उनकी इंसानियत थी। गामा पहलवान ने अपनी जिंदगी में जो मकाम हासिल किया वो आज भी कुश्ती की दुनिया के लिए एक मिसाल है। रुस्तम-ए-हिंद, रुस्तम-ए-ज़माना और एक ऐसा नाम जो रेसलिंग की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा, गामा पहलवान।
कहते हैं आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, एक ऐसे चैंपियन की कहानी जो सिर्फ अपनी ताकत की वजह से अजीम नहीं बना बल्कि अपनी मेहनत, डिसिप्लिन, हिम्मत और इंसानियत की वजह से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। गामा पहलवान रुस्तम ज़माना। अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। अब वक्त है सबसे पहले तो आपको कुछ वेबसाइट्स बताने का जो बहुत ही कमाल की हैं। मैं इन्हें आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लैंग्वेज में बोलूंगा हिडन जेम। तो हिडन जेम आपको देने वाला हूं मैं। एंड लास्ट वेबसाइट इज क्रेजी। उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाला हूं, जिसके बारे में रिव्यू करना ही पड़ेगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, हालांकि मैं खुद कंसोल गेमर हूं। ओके, लेट्स बिगिन विद द वेबसाइट्स। ओके, सो वेबसाइट नंबर वन ऑन द लिस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट, और ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली जिनके स्पेशली घर पे बच्चे हैं। तो इसका नाम है POWcoloring.com, POW coloring, COLORING coloring.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो फ्री कलरिंग वेबसाइट है ये। मैं फ्री बोल रहा था, फ्री कलरिंग वेबसाइट, तो फ्री कलरिंग वेबसाइट है। इस पे बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड हर चीज आपको मिलेगी। आप बच्चों को, अगर आप सच में वो खाना नहीं खा रहे हैं, उनके हाथों में फोन जाना ही चाहिए, तो आप उन्हें ये एक्टिविटी दे सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेक्टिव, वेरी वेरी हेल्पफुल, और ड्राइंग के साथ साथ कलरिंग करने में जो मजा आता है ना इसमें, भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा था इस वेबसाइट को आपको बताने के लिए, एंड मुझे बहुत अच्छी लग गई। मुझे लगा यार इसमें तो मेरा टाइम बीत सकता है, बढ़िया वाला मजा आ गया भाई एकदम। तो आई एम प्रीटी श्योर बच्चों को तो डबल मजे आएंगे ही आएंगे। सो ट्राई दिस वन आउट। मैं बता देता हूँ, POW coloring.com, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक और मेजर सिखाने वाली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट का नाम है musica.com। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, musica.com। अब इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको म्यूजिकल नोट्स, कॉर्ड्स, म्यूजिकल थ्योरीज, एक एक चीज आप डिटेल में खुद पढ़ सकते हैं। ये अपने आप में एक मुकम्मल टीचर है और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत कमाल की वेबसाइट है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मतलब मैं ये हर किसी को रिकमेंड करूंगा, अगर किसी को सीखना है कि म्यूजिकल नोट्स कैसे रीड किए जाते हैं, क्या होते हैं, स्पेशली वो लोग जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना फोन नंबर किसी वेबसाइट पे देने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ OTP के लिए अपना नंबर दूंगा तो दिक्कत ना हो जाए। तो इस वेबसाइट का नाम है receive-sms.io, receive-sms.io। इस वेबसाइट पे जाके आप एक टेम्पररी नंबर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री, और उसके बाद उस नंबर को यूज करके आपको अगर किसी वेबसाइट पर डर लग रहा है अपना नंबर अपलोड करने के लिए, तो आप ये वाला नंबर डाल के OTP मंगा सकते हैं। वो OTP वेबसाइट पे ही आपको नजर आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से एक प्रीमियम नंबर भी ले सकते हैं, उस प्रीमियम नंबर को लेके आप व्हाट्सएप पर भी यूज कर सकते हैं। That's how good it is. तो मुझे बहुत ही कमाल की चीज लगी। If you want to be much, much, much safer, तो ये वेबसाइट आपके लिए है। ठीक है? Now the review of the product, जो मुझे मतलब बुला रहा है अपने पास। Alright, so news में and product of the week में बात करूंगा मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसने आके गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला दिया है, कपा दिया है ये कहूंगा मैं। ये जो है DLSS 5 है, जब से ही आया है और जब से इसका यूसेज होना शुरू हुआ है गेमिंग के मामले में स्पेशली, तो सब कुछ अलग दिखने लगा है। लोग हर गेम पे DLSS 5 लगाकर देख रहे हैं कि कितना रियलिज्म आ सकता है। ट्रस्ट मी, रियलिज्म तो भर के आ रहा है भाई, भर के आ रहा है, पर हर गेम पे अच्छा नहीं लग रहा भाई, हर गेम पे अच्छा भी नहीं लग रहा। बिकॉज गेम्स लाइक ओनिमुशा जो अभी इसी साल रिलीज हुआ, इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में रिलीज हुआ, उन पे ये DLSS 5 लगाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली। ये सिर्फ उन गेम्स में अच्छा लग रहा है जिनका थोड़ा सा वक्त बीत चुका है। मगर अगर करंट गेम्स की बात की जाए तो क्रिमसन डेजर्ट पे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। और अगर PC गेमर्स ने अभी तक ट्राई नहीं किया DLSS 5, थोड़ा सा कॉस्टली है, पर अगर आपने PC बना लिया तो ऑब्वियसली आपने बहुत खर्चा ऑलरेडी कर लिया है, तो इतने से खर्चे से कुछ नहीं होगा रमेश बाबू। ट्राई करके जरूर देखिएगा, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा। दिस वॉज टेक अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर एफ 107 पे साइनिंग आउट। टेक अपडेट, टेक अपडेट।
0: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते रहते हैं। और

0: आज भी हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं द हाई मॉम फैमिली स्कैम, यानी कि फैमिली इमरजेंसी फ्रॉड। ये स्कैम दोस्तों कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। ये स्कैम बहुत ही मतलब बेकार कह ले या बहुत ही मतलब लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, निंदनीय है। एक लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो निंदनीय है, क्योंकि ये सीधा माँ बाप के अपने बच्चे के लिए जो प्यार और फिक्र है ना उसका गलत फायदा उठाता है ये फ्रॉड। इसलिए ये बहुत ही बेकार और गलीज किस्म का है। इस फ्रॉड के अंदर क्रिमिनल्स बड़े बड़े चैटिंग प्लेटफॉर्म्स या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्कैमर किसी भी रेंडम या टारगेट किए गए पेरेंट को एक अनजान फोन नंबर से मैसेज भेजते हैं। मैसेज की शुरुआत बहुत ही इमोशनल और सिंपल होती है, जैसे कि हाय मॉम या हाय डैड, मेरा पुराना फोन खो गया है, पानी में गिर गया है, टूट गया है, इसलिए मैं ये नए वाले नंबर से ना टेम्परेरी नंबर लिया है, इससे मैसेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरा पुराना नंबर डिलीट मत करना, पर अभी के लिए ये नंबर सेव कर लो, है ना। जिनके पेरेंट्स जो है अलग रहते हैं, जिनके बच्चे अलग रहते हैं, एक शहर में नहीं रहते, तो उनके लिए ये जो स्कैम है ना, स्कैमर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है माँ बाप को भी स्कैम करना और बच्चों को भी स्कैम करना। वैसे माँ बाप जब भी ये मैसेज पढ़ते हैं तो उनका दिल अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद होता ही है। वो बिना सोचे समझे रिप्लाई दे भी देते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। बस स्कैमर को यही मौका चाहिए होता है। जैसे ही पेरेंट रिप्लाई करते हैं, स्कैमर कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाता है और बहुत ही जल्द असली मुद्दे पर आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने अभी जो बचे हुए पैसे थे उसका ये नया फोन खरीद लिया है क्योंकि फोन खराब हो गया है, या किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी का बिल भरने के लिए वो आपसे कहता है, या फिर दोस्तों का उधार चुकाना है। दुनिया भर के जो ड्रामे हैं वो स्कैमर्स बताता है ताकि माँ बाप से पैसे वसूले जा सके, या उनका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, कार्ड खराब हो गया है। स्कैमर्स इतने प्रेशर के साथ बातें करते हैं कि पेरेंट्स डर जाते हैं और सोचते हैं कि उनका बच्चा किसी मुसीबत में फंस गया है। वो बिना किसी लंबी जांच पड़ताल के उस अनजान नंबर पर बताए गए बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ समय बाद जब उनकी बात उनके बच्चे के असली नंबर पर होती है, तब उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन इस तरह के धोखे से भी बचा जा सकता है, इसके भी तरीके हैं। वो चार तरीके क्या है जिससे आप बच सकते हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं, और उम्मीद है कि इस तरह का स्कैम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। किसी भी तरह के स्कैम से बचने का सबसे पहला तरीका है असली नंबर पर कॉल करना, ईमेल पर मैसेज करना, है ना, डायरेक्ट उस शख्स से बात करना जिस शख्स के लिए कोई फ्रॉडस्टर आपसे बात कर रहा हो या आइडेंटिटी चेंज करके बात कर रहा हो। जैसे ही आपको किसी नए नंबर से बच्चा बनकर कोई मैसेज आए या कोई बात करे, बिना उनसे चैट बढ़ाए फौरन अपने बच्चे को पुराने और ओरिजिनल फोन नंबर पर कॉल लगाएं, और आप हमेशा से जो जानते हैं उस नंबर पर कॉल लगाएं। अगर वो नंबर स्विच ऑफ है या बिजी है तो उनके दोस्तों को, हॉस्टल वार्डन को या उनके साथ रहने वालों को, उनको कॉल लगाएं, तब आपको क्लियर होगा। उसके अलावा पहचान की भी जांच, आइडेंटिटी की टेस्ट, उस नए नंबर पर चल रही चैट में कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो सिर्फ आप और आपके बच्चे के बीच में ही है, जैसे उनके बचपन के किसी किस्से के बारे में या घर के किसी रूल के बारे में। स्कैमर कभी भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, वो पकड़ा जाएगा और आपको पता हो। पैसा भेजने में जल्दी ना करें, किसी भी अननोन नंबर पर इमोशनल बातें सुनकर फंड ट्रांसफर बिल्कुल ना करें। इमरजेंसी के वक्त भी हमेशा दिमाग से काम ले, दिल से बिल्कुल नहीं। वॉइस नोट भी मांगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। ऑल्दो आपको 100% वॉइस नोट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनसे कहें कि वो आपको एक शॉर्ट वॉइस नोट भेजें जिसमें वो अपना नाम ले। अगर स्कैमर कोई बहाना बनाए कि माई खराब है, तो समझ जाइए कि ये 100% फ्रॉड है। दोस्तों ये कुछ तरीके हैं कि नए जमाने के जो नए स्कैम मैं बताता रहता हूँ उनसे आप कैसे बच सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो आज मैंने फ्रॉड के बारे में आपको बताया, आपसे कभी नहीं होगा, कोई आपके पास मैसेज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो आपको बचना कैसे है ये आपको पता होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड में जहां पर हम नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
3: दिल से देसी।
4: स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी।
3: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों आज के इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूं द राइज ऑफ कैशलेस लिविंग। And are we ready? देखिए आज के इस

0: डिजिटल दौर में दुनिया तेजी से कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है। कैशलेस सोसाइटी से मुराद ऐसी सोसाइटी है जहां लोग फिजिकल कैश यानी नोट्स और कॉइन्स कम इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल पेमेंट मेथड्स ज्यादा यूज करते हैं। इन मेथड्स में डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मोबाइल वॉलेट्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है और कहीं ना कहीं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स शामिल हैं। टेक्नोलॉजी ने पेमेंट को इतना आसान बना दिया है कि अब शॉपिंग, बिल पेमेंट्स और मनी ट्रांसफर सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। पहले लोग अपने वॉलेट्स में कैश रखते थे और हर ट्रांजेक्शन के लिए नोट का इस्तेमाल करते थे, यानी फिजिकल करेंसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज मोबाइल फोन ने एक डिजिटल वॉलेट बना दिया है। लोग QR कोड स्कैन करके पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपने बैंक अकाउंट्स को मोबाइल ऐप के जरिए मैनेज करते हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट समझते हैं कि फ्यूचर में कैश का रूल या फिर रोल और कम हो सकता है। देखिए, कैशलेस लिविंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कन्वीनियंस, है ना? जब आपके पास कैश ना हो तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ये कितना कन्वीनियंट है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में है, सुपरमार्केट में है, कोई ऑनलाइन स्टोर है, पेमेंट करना कितना आसान हो जाता है। सिर्फ कार्ड स्वाइप किया और आपका काम हो गया। इससे टाइम बचता है और ट्रांजैक्शन प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। एक और एडवांटेज है सिक्योरिटी। आज किसी के पास ज्यादा कैश हो तो भाई चोरी वोरी का भी तो खतरा बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे कैशलेस करेंसी का ये अपना अलग ही फायदा है। लेकिन हाँ, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं और अकाउंट पासवर्ड और सिक्योरिटी फीचर्स से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ्रॉड्स और स्कैम्स बढ़ भी रहे हैं, इसी वजह से लोग जो हैं वो डिजिटल पेमेंट को कैश के मुकाबले सिक्योर भी समझते हैं और कुछ लोग इसे अभी भी सिक्योर नहीं समझते। लेकिन हाँ, कैशलेस सिस्टम बिजनेसेस के लिए भी बेनिफिशियल है। उसका बड़ा फायदा ये है कि जब पेमेंट्स डिजिटली रिसीव होते हैं तो कैश हैंडलिंग का बर्डन कितना कम हो जाता है। एक सोशल एस्पेक्ट रखती है, हर शख्स के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट एक्सेस या फिर डिजिटल लिटरेसी नहीं होती। सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर ऐसे लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, कभी कभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। अगर पूरी सोसाइटी कैशलेस हो जाए तो शायद लोग फाइनेंशियल सिस्टम से टेम्परेली एक्सक्लूड भी हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल एजुकेशन और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी कैशलेस वर्ल्ड में पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ डिजिटल पेमेंट यूज करना काफी नहीं है, बल्कि यूजर्स को अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करना, बजट मेंटेन करना, सेविंग गोल सेट करना, मोबाइल एप्स चेक करना, ये सब बहुत रिस्पॉन्सिबली करना है। आज क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसीज की डिस्कशंस भी कैशलेस फ्यूचर को और ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। बस आखिर में मैं यही कहूंगी कि देखिए, कैशलेस लिविंग ने कहीं ना कहीं कन्वीनियंस को, स्पीड को, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया है। डिजिटल पेमेंट्स की वजह से डेली लाइफ बहुत आसान हो गई है, लेकिन इसके साथ ओवर स्पेंडिंग, साइबर सिक्योरिटी रिस्क और डिजिटल लिटरेसी के चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि कैशलेस सोसाइटी आ रही है या नहीं, बल्कि ये कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियली अवेयरनेस, स्मार्ट बजटिंग और ऑनलाइन सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दें तो कैशलेस वर्ल्ड उनके लिए ज्यादा सेफ और बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वेल, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: सारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी
3: जब नई सोच और नए जज्बात टकराते हैं तो बनता है एक नया नजरिया द डिबेटेबल टेबल एक ऐसा शो जहां यंग डिबेटर्स अपने पर्सपेक्टिव से इंस्पायर करते हैं और हर डिस्कशन बन जाता है एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी द डिबेटेबल टेबल आरजे फजील और आरजे कबीर के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
4: अस्सलाम वालेकुम FM 107 पे मैं हूँ फजील इस्तकबाल आप सभी का इस शो में जिसका नाम है द डिबेटेबल शो जहां पर हम डिबेट करते हैं एक सवाल को लेकर वेल एक नया शो है जहां पर आप दो लोगों को सुनेंगे अपनी अपनी बात कहते हुए अपने पॉइंट रखते हुए एक ऐसे शो में जहां पर सवाल एक है लेकिन दो अलग नजरिए हैं और इन नजरियों को समझने के लिए दो लोगों का होना और दो लोगों की मुख्तलिफ सोच का होना बेहद जरूरी है कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा थॉट है जो हमारी थिंकिंग है जो हमारा नजरिया है वो परफेक्ट है लेकिन जब दूसरे का नजरिया दूसरे की आंखों से दुनिया देखते हैं तो जिंदगी थोड़ी अलग लगने लगती है और लगता है कि कुछ हमें भी सोच बदलनी चाहिए ऐसे में इस शो की जरूरत FM 107 में थी और यही वजह है कि हम इस शो को लेकर आए हैं जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल FM 107 पे फजील के साथ हैं और इस वक्त हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं एक का नाम है आलिया और एक का नाम है दृष्टि दोनों बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट हैं अपने थॉट और अपने थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज से इन्होंने काफी कुछ आज सोचा है प्रिपेयर किया है हमारे सवाल के अकॉर्डिंग क्या ये कुछ लेकर आए हैं इन सबसे पूछेंगे इन दोनों से पूछेंगे सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आलिया कैसी हैं आप
5: अस्सलाम वालेकुम मैं बिल्कुल ठीक हूं आप कैसे हैं
4: मैं बहुत अच्छा हूं दृष्टि आप कैसी हैं
6: मैं भी बिल्कुल ठीक हूं
4: तो आज का जो सवाल है दोस्तों मैं आपको बता दूं वो सवाल है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप एक बेटर ऑप्शन है या फिर एक ट्रेडिशनल जॉब तो आलिया आपका क्या थॉट है आपको क्या सही लगता है एक एंटरप्रेन्योरशिप होना या एक ट्रेडिशनल जॉब होना
5: मुझे लगता है कि दोनों अपने ही रीजंस के लिए अच्छे हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल जॉब सबसे ज़्यादा स्टेबल है सबसे ज़्यादा गारंटीड है उसमें सक्सेस होना तो मैं आज उसी के लिए अपने जो थॉट्स हैं उनको बोलना चाहूँगी और उसी के लिए अपने उसी के
4: अराउंड
5: जी अपने थॉट्स शेयर करना चाहूँगी
4: बेस्ट तो ऑब्वियसली दृष्टि आपको एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट लेना पड़ेगा और इसी की साइड लेनी पड़ेगी तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों अच्छी है
6: तो दोनों ही अपने अपने तरफ में अच्छे हैं क्योंकि अलग लोगों का अलग एक्सपेक्टेशंस और अलग लाइफस्टाइल होता है बट ऑफ कोर्स अगर एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आज जो भी जॉब्स है मार्केट में वो भी नहीं एग्जिस्ट करते सो ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप इज बेटर एंड स्टेबिलिटी की जब बात आती है तो एज वी कैन सी ऑल अराउंड द ग्लोब इतने सारे लेऑफ्स एंड कट ऑफ्स हो रहे हैं द बिगेस्ट कंपनीज वर्ल्ड वाइड सो ऑफ कोर्स जितने स्टेबल जॉब्स पहले रहते थे अब वो नहीं रह रहे हैं सो इट्स एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट की एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्वालिटीज सारे लोगों में आजकल हुए
4: दोनों के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप अगर है तो आज ये ट्रेडिशनल जो जॉब है लोग यू नो कार काम कर पा रहे हैं ओके तो मैं क्योंकि इन दोनों ने स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया है तो आलिया सबसे पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेडिशनल जो जॉब है इसमें क्या कमी क्या है क्योंकि ऑब्वियसली आप पार्ट तो ले रही हैं लेकिन फिर भी आपको क्या कमी नजर आती है ट्रेडिशनल जॉब में
5: बिल्कुल जो जैसे हम हमेशा देखते हैं जब भी रिसेशन आता है जब भी कुछ भी होता है तो हमेशा जो वर्किंग क्लास है उसको हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बिकॉज अगेन अगर आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं तो अगर कंपनी पे मार पड़ती है तो आप पे भी मार पड़ेगी बट मैं ये कह रही हूँ कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स पे जो मार पड़ती है वो ऑन अ वेरी लार्जर स्केल एंटरप्रेन्योर्स पे पड़ती है क्योंकि ट्रेडिशनल जॉब की जो वर्कर्स हैं सिर्फ उनके काम पर पड़ती है एंटरप्रेन्योर्स के पूरे एम्पायर पर पड़ती है वो तो उनके जो वर्कर्स हैं उनको उनके लिए टेंशन लेना चाहिए उनको अपने टैक्सेस पे करने चाहिए और जो रिसेशंस होते हैं उनमें नॉट ओनली उनकी जॉब्स जाती हैं बट उनको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं तो देयर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ डेट इसलिए मुझे लगता है जैसे दृष्टि ने कहा कि अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते तो जॉब्स नहीं होती. इन द सेम वे अगर जॉब्स नहीं होती तो एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते.
7: क्या बात.
5: क्योंकि अगर आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यू कांट ड्राइव इट अनलेस आपके यहाँ वर्कर्स होने हो, यू नो. तो अगर आपके यहाँ वर्कर्स ही विलिंग नहीं है कि काम करें तो आप अपनी कंपनी कैसे चलाएंगे.
4: दृष्टि आपका क्या व्यू है इस पे?
6: हाँ, तो ऑफकोर्स जो एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कंपनी के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इस एंगल से सोचें कि अभी मतलब एवरीवन हैज़ डिफरेंट नीड्स, तो सब कोई एक बिलियनर नहीं हो सकता और सब कोई मतलब एकदम पुअर स्टेट पे भी नहीं रह सकता है. देर आर मैनी मिडिल इनकम एंड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम लेवल्स इन अ फैमिली और इन द सोसाइटी. तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक बिलियन डॉलर कंपनी बनाओ और आप मतलब इतना ह्यूज एम्पायर सेटअप करो. ऑफकोर्स that is one side of it, but the other side of the coin is just small matlab digital companies ho gaye and marketing companies hai and just one man people are also entrepreneurs. Freelancing is also a form of entrepreneurship. So instead of working under a boss ya under a company jo hamesha aapko unke hi rules follow karne padenge, and of course agar aap koi law firm ko lo ya koi aise firm ko lo, but then अगर जो बॉसेस है उसमें उनमें जो वो बोलेंगे यू हैव टू फॉलो दैट. एंड अगर वो कोई गलती करे इवन इफ इट्स नॉट द एम्प्लॉयज फॉल्ट, एम्प्लॉयज को भी सफर करना पड़ेगा बिकॉज द होल कंपनी इज एट स्टेक. बट इफ यू आर मेकिंग योर ओन बिजनेस एंड इफ इट्स नॉट अ ह्यूज बिजनेस, अगर एक छोटा सा एम्पायर है, इफ इट्स अ वन मैन टू मैन शो, तो ऑल ऑफ योर मिस्टेक्स ऑल ऑफ योर सक्सेस आपके ऊपर है. यू कैन कंट्रोल द रिस्क लेवल एंड एवरीथिंग.
4: तो दोनों ने बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया. और एंटरप्रेन्योरशिप तब तक एक छोटा बच्चा है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, और बड़े होने के बाद वो अपने अब्बा की उंगली पकड़ के चलना सीख जाता है. उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप जब शुरुआत होती है तो बहुत छोटा है ना. आपको पता नहीं होता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा. और ट्रेडिशनल जॉब में क्या है कि एम्प्लॉय काम करता है और उसको किसी बात का रिस्क नहीं होता. उसको इस बात का रिस्क नहीं है कि कंपनी चले या ना चले. अगर नहीं चली तो दूसरी कंपनी है, चल गई तो अच्छा है, हमारे साथ भी इंसेंटिव, हमारे पास भी इंसेंटिव आएगा. दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे कुछ ही देर में, और फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और इस सवाल को आगे करेंगे कि ट्रेडिशनल जॉब बेहतर है या एंटरप्रेन्योरशिप बेहतर है. FM 107 पे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे कुछ ही देर में आलिया और दृष्टि के साथ. दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: तो दोस्तों एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल, जहां पर दृष्टि और आलिया अपना अपना साइड लेकर अपने अपने पॉइंट्स को बड़ी क्लियरली और बड़ी समझदारी से पेश कर रही हैं, हमारे सामने रख रही हैं। और जहां पर दृष्टि ने एंटरप्रेन्योर का साइड लिया है, वहीं पर आलिया ने ट्रेडिशनल जॉब का साइड लिया है। और अब लगातार छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और इन दोनों के पास बड़ा मुख्तसर सा टाइम होगा अपने लफ्ज को पिरोने में, एक सेंटेंस में, जहां पर एक सेंटेंस में ये बताएंगी कि क्या इनको स्ट्रेसफुल जॉब कौन सी ज्यादा लगती है, या फिर या क्या ऐसा है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी स्ट्रेसफुल है अगर ये खुद साइड ले रही हैं उसका, या ट्रेडिशनल जॉब स्ट्रेसफुल है। तो आप दोनों से ये सवाल है कि क्या आपको लगता है विच इज मोर स्ट्रेसफुल जॉब। आलिया
2: मैं पहले बोलूं? अच्छा हाँ। तो दृष्टि ने पहले इस ब्रेक से पहले उसने कहा था कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके जो सक्सेस है, उनकी जो फेलियर्स हैं वो सिर्फ उन पे डिपेंड करती हैं, राइट? एंड जो जॉब्स में काम करते हैं वो लोग उनकी फेलियर्स और जो सक्सेस हैं इट्स ब्लेम्ड ऑन बाय द एंटरप्रेन्योर्स, राइट? तो मुझे लगता है जैसे उसने कहा उसका ही लॉजिक उस पे यूज़ करने के लिए कि अगर एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ अपने फेलियर या फिर सक्सेस से सिर्फ अपने आप डील करते हैं तो मुझे लगता है उनको ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं और अगर आपने कुछ गलत किया तो आपकी गलती अल्टीमेटली उस कंपनी की हो जाएगी, राइट? तो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, आपका स्ट्रेस इज अ कंपनी स्ट्रेस, लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो यू आर योर कंपनी, सबका स्ट्रेस इज योर स्ट्रेस।
1: हाँ, ओके, करेक्ट।
2: तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो नॉट जस्ट इंडिविजुअली बट पूरी कंपनी का जो बोझ है आप पर है,
1: आप पर है।
2: और जब आप एक ट्रेडिशनल जॉब करते हैं तो आप नॉट जस्ट यूर जस्ट इंडिविजुअल है ना, आपको सिर्फ अपनी जॉब को स्टेबल रखना है। एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू टेक केयर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर जैसे दृष्टि ने कहा अगर आप स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर हैं तो आपकी कोई हेल्प भी नहीं है, आप सिर्फ पूरा बोझ अपने ऊपर उठा रहे हो।
1: तो दृष्टि अभी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
3: हाँ, सो आई डू अप्रिशिएट द टेक दैट आलिया टुक ऑन दिस, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी इसमें कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में चैलेंजेस होते हैं, बट एज शी ऑल्सो मैंशन कि पूरा कंपनी का स्ट्रेस सिर्फ आप पे है, बट इन अ ट्रेडिशनल जॉब आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है एज ऑफ टूडेज वर्ल्ड कि आपका जॉब आपके पास कल भी रहेगा, क्योंकि एज वी आर सीइंग अभी मैंने अगर कोई गलती किया इन अ ट्रेडिशनल जॉब रहते हुए मेरे पास ये कोई गारंटी नहीं है कि मेरा बॉस कल मेरे को नई नौकरी से निकाले।
1: आई वाह, मुझे भी इस बात का डर है। ओके, अब हम आगे बढ़ाएंगे और एक और सवाल है आप दोनों के लिए कि किस काम में या ट्रेडिशनल जॉब में ज्यादा रिकॉग्निशन है या एंटरप्रेन्योर होने में ज्यादा रिकॉग्निशन है?
3: हाँ, सो अगर आप एक ट्रेडिशनल जॉब में हो तो आप अगर कितना भी ओवरटाइम कर लो, कितना भी काम कर लो, एट द एंड ऑफ द डे आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जो सैलरी लिखा है या जो इंसेंटिव का मार्क लिखा है उतना ही आपको मिलेगा, इवन इफ यू डू द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन देयर। आपको ओनली अ सर्टेन पीरियड तक प्रमोशन मिल सकता है, सर्टेन लेवल तक, लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो पूरा जो भी आप करते हो उसका एग्जैक्ट रिकॉग्निशन आपको मिलता है, विच यू विल नॉट गेट इन ट्रेडिशनल जॉब। एंड एक बार सोच के देखते हैं कि अगर हर इंसान सिर्फ एक सेफ नौकरी चूज करता है तो दुनिया कैसी होगी, मतलब बिल गेट्स, रतन टाटा, ये सब जो एम्पायर सेटअप किए हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते।
1: क्या बात, क्या बात है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब आपकी बारी है और मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट देना होगा।
2: तो जैसे दृष्टि ने कहा कि जो एम्पायर सेटअप हुए हैं बाय बिल गेट्स और रतन टाटा, इन लोगों ने जो एम्पायर सेट करे हैं दैट वाज लॉन्ग बैक, है ना? और इसने ये पॉइंट उठाया था कि आज के जमाने में अपनी जॉब जो आप ले रहे हैं उसकी गारंटी नहीं है। तो हाउ डू यू हैव द गारंटी कि आपका जो सक्सेस है एज एन एंटरप्रेन्योर कैन बी रिलेटेड टू रतन टाटा या फिर बिल गेट सक्सेस जो सालों अरसों पहले हुआ था, है ना? तो आज के जमाने में आपको आज के जो प्रस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका एग्जाम्पल लेना चाहिए, बिकॉज वो जो आई एग्री जो उन्होंने एम्पायर सेट किए हैं that's huge, it's become up, like abnormally large, right?
1: ये thousands में से कुछ ही हैं जो हम
2: exactly करते हैं आज। और ये भी जो thousands में से एक हैं, इन्होंने जो सक्सेस किया जो उनको सक्सेस मिली वो भी दैट वाज इयर्स एंड इयर्स अगो सालों पहले हुआ था ये
1: सही.
2: और आप अगर आप देखें तो जो इकोनॉमी थी दुनिया की सालों पहले आज से कंपेयर करके वो इकोनॉमी बहुत बढ़ गई है. देयर इज सो मच मोर कंपटीशन है ना. बिल गेट्स वाज नोन टू बी द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर वन ऑफ द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ टेक कंपनीज है ना. आज उन जैसे 100 एंटरप्रेन्योर्स हैं तो आपको कैसे गारंटी मिलेगी कि अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो आप यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट बिल गेट्स हु हैव इयर्स एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और आप उनसे कंपीट कर रहे हो. और अगर आपको लगता है कि आप तो सक्सेसफुल होंगे विच इज अ ग्रेट अप्रोच आपको लगना चाहिए कि आप सक्सेसफुल होंगे.
1: चांसेस जो है वो उसके कम है.
2: चांसेस कम है एंड अगेन वो चांसेस पहले ज्यादा थे मतलब कम थे यू नो फेलियर के क्योंकि उस टाइम पे कुछ लोग नहीं थे.
1: करेक्ट.
2: अब जो है लोग ज्यादा बढ़ गए हैं पॉपुलेशन बढ़ गई है कंपटीशन बढ़ गया है जो रिसेशंस हैं वो ज्यादा हो रहे हैं इकोनॉमी ड्रॉप हो रही है. तो आपको कैसे लगता है कि आप इस कंडीशन में बीइंग अ वन मैन शो आप कैसे सब कुछ हैंडल करोगे.
1: भाई वाह मैं अभी डिलेमा में हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करूँ या फिर अपना कोई नया काम शुरू करूँ या अभी ये जॉब जो चल रही है वो मैं करता रहूँ. मैं दोनों में से कोई एक चूज करूंगा लेकिन ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा क्या दोनों नाव पे पैर रख के चला जा सकता आलिया और दृष्टि.
3: या ऑफ कोर्स आई मीन पहले आई वुड जस्ट लाइक टू आंसर जो आलिया ने बोला कि मतलब फेलियर्स बहुत होते हैं आजकल स्टार्टअप्स में राइट. सो हाँ कुछ स्टार्टअप्स ऑफ कोर्स फेल होते हैं लेकिन फेलियर का मतलब एंड नहीं है क्योंकि जो बिगिनर्स स्पेशली जो जस्ट स्टार्टेड न्यू है उन लोग के पास अगर थोड़ा भी रिसोर्स है तो उससे भी वो एक अपने लिए तो एटलीस्ट एक बहुत अच्छा और स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स एज वेल 80% ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस सर्वाइव द फर्स्ट ईयर एंड 78% ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल एज ऑफ टुडे. तो ऑफ कोर्स एज मैंने पहले भी बोला कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू कम अप विद अ बिलियन डॉलर बिजनेस बट इफ दे आर एबल टू स्टार्ट अपने लिए भी एक छोटा सा बिजनेस एंड दैट इज प्रॉफिटेबल फॉर देमसेल्फ तो दैट्स मोर देन इनफ इन माय
1: बिल्कुल opinion. यार देखो पेट में तो चाहिए दो रोटी है. मिलियन आ जाए बिलियन आ जाए क्या फर्क पड़ता है अगर 1000 भी आ रहे हैं कतरी रियाल मतलब कि 100,000 कतरी रियाल भी महीने में आ रहे हैं तो आपका काम बन गया है. जरूरी नहीं है कि मिलियनेयर और बिलियनेयर बनना है लेकिन दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रिसर्च करके आए क्योंकि परसेंटेज भी निकाला है दृष्टि ने तो लेकिन दोनों की जो रिसर्च है वो बड़ी जबरदस्त है. FM 107 पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दोस्तों अब ये सवाल आपकी तरफ है. इतना सब कुछ सुनने के बाद आप किसका पॉइंट लेंगे आप किसकी साइड लेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की या फिर ट्रेडिशनल जॉब की. इसके लिए जवाब देना होगा आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662210 एक छोटा सा ब्रेक वापस आएंगे और इस सवाल को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे FM 107 पे दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, पेपर पलटने की आवाज आपको आ रही होगी दोस्तों। इस्तकबाल है एक बार फिर से आप सभी का इस शो में और पूरी रिसर्च के साथ इस शो में आर्या और दृष्टि हैं और द डिबेटेबल टेबल इस शो का नाम है, जहां पर दोनों ने बहुत तरीके से बात करी है कि क्या ट्रेडिशनल जॉब बेहतर है या एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं दोनों तरफ में बिजी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दोनों नाव पे पैर रख के चला जा सकता है या नहीं। मुझे तो अब दोनों समझ में आ रहा है कि एक तरफ जॉब करके दूसरी तरफ कोई बिजनेस कर लेता हूं। तो चले नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, मैं आपको बता दूं कि आलिया ने साइड लिया है ट्रेडिशनल जॉब का और दृष्टि ने साइड लिया है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो अगला जो सवाल है वो मेरा दृष्टि से है कि आपको क्या लगता है दृष्टि, विच इज मोर सुटेबल फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए सबसे बेहतर क्या है कि क्या वो पहले जॉब शुरू करें ट्रेडिशनल या डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में कूद सकते हैं वो।
2: तो आज के स्टूडेंट्स एक्चुअली मतलब इतनी मेहनत करते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतने कोर्सेज करते हैं एंड डिग्रीज लेते हैं, बट एंड में उनके साथ क्या होता है, मतलब अगर वो सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो अक्सर इतने स्किल्ड लोग होने के बावजूद भी वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर वर्ल्ड टुडे। क्योंकि दुनिया में जॉब्स लिमिटेड है और इनोवेशन का कैपेसिटी भी बहुत कम है अगर आप मतलब सिर्फ सेम करियर पाथ फॉलो करोगे एज एवरीवन एल्स। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप चूज करते हैं जो स्टूडेंट्स, तो वो अगर एक स्मॉल स्टार्टअप ही स्टार्ट करे, लेकिन अगर या कोई क्रिएटिव सर्विस स्टार्ट करे, तो वो अपनी स्किल्स को इतना एक्टिवली ग्रो कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं रेडी होते हैं, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर और लीडर बनते हैं, जो आज के जमाने में हर कंपनी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो या
3: अगेन जो दृष्टि ने कहा था बिल्कुल सही है कि अगर आप एक ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा गारंटी नहीं सक्सेस की। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है, अगर आपको एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं? ओके, यू माइट से कि पापा देते हैं, मम्मी देती हैं, लेकिन उनके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं? तो जो आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ बिगिनर, योर प्राइमरी एम शुड बी कि आप फंड्स लो, आपको कुछ पैसा मिले ताकि आप अपना ही एम्पायर ज्यादा बढ़ाएं।
1: बिल्कुल।
3: सो इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट आपको देखते हैं हम कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं देते, बट दे गिव यू मींस टू गेट दैट फुलफिलमेंट, है ना। तो जो जॉब्स होती हैं, जो आप अगर आप कुछ काम करते हो और अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपके पास पॉइंट है क्या क्या काम करने का, है ना।
1: करेक्ट।
3: तो आपको उस फंड को लेना है, यू नीड दैट समथिंग टू गारंटी योर सक्सेस, क्योंकि इस दुनिया में पैसा ही चलता है।
1: बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप कर तो लेंगे लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए आपको एक जॉब करनी पड़ेगी और एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है।
3: एग्जैक्टली।
2: I would like to differ on that point actually, क्योंकि मतलब आपको शुरू करने के लिए कोई मैसिव इन्वेस्टमेंट या कैपिटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट एज आई मैंशनड वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मतलब स्टेटिस्टिक्स भी दिखाते हैं कि अगर आपके पास ये सही माइंड सेट और स्किल्स है तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, बिकॉज एज आई मैंशनड नॉट एवरी वन इज डेस्टिन्ड टू बी अ फाउंडर ऑफ अ बिलियन डॉलर स्टार्टअप। वो सिर्फ एक छोटी सी कंपनी के साथ, छोटे से कैपिटल के साथ भी, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रुप लेवल, हमने देखा है कि मतलब आज की दुनिया में भी जो AI फर्म्स है एंड जो बहुत सक्सेसफुल लोग भी है, उनके पास बहुत कम कैपिटल और एकदम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करने के बावजूद भी वो बहुत अपने आप को अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सो यू डोंट ऑलवेज नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल।
1: ये सवाल अच्छा, एक और मेरे जहन में आया जब मैं ये सवाल पूछ रहा था आपको, आपके जो जवाब थे, एक जवाब इसमें और एक सवाल और निकल के आता है, वो ये कि क्या ट्रेडिशनल जॉब के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्किल की जरूरत कैसी होती है, क्या किस काम में ज्यादा स्किल की जरूरत होती है, क्या ट्रेडिशनल जॉब में ज्यादा स्किल की जरूरत होती है आलिया?
3: हाँ,
1: या एंटरप्रेन्योरशिप?
3: ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा स्किल की जरूरत होती है एज अपोज्ड टू ट्रेडिशनल जॉब्स, बट दैट्स आल्सो समथिंग दैट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आप जब एंटरप्रेन्योर हो आपके पास स्किल्स जरूरी हैं, एंड अगेन एंटरप्रेन्योर्स नीड मोर स्किल। व्हाट डज दैट मीन? कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं दे आर more skilled than you if not the same as your skill level. So you are in a very compromising position. Kyunki agar aap entrepreneur ho, you require the skill set. And most people, jab wo in sab ye jo positive points dekhte hain, they just jump into it, hai na? They do it rashly. Kyunki unko lagta hai ki jo ye success stories wo dekhte hain, wo entrepreneurship mein ek very sort of nuanced approach dekhte hain.

0: है एज अपोज टू अ प्रैक्टिकल वन.
1: है
0: ना, तो अगर आप exactly jump in karte ho and if you haven't developed that mindset ya phir those skills yet, so you are competing against people who are so skilled that they might try to put you down. And studies actually show ki jo entrepreneurs hain, if they are actually successful, it doesn't matter, entrepreneurs are more likely to suffer depression twice the amount of normal people, kyunki they have so much stress on them because they are against people who are completely aware of what they're doing. और जो usually जो startup start करते हैं, जैसे as Drishti said, जो students करते हैं, again student life में आपको जो दिखता है, that is so different from the working life, right? जैसे अगर आप student,
2: सब कुछ बदल जाता है, leadership quality,
0: exactly जो आप students में student life में जो आप देखते हो, जो environment है आपका, the politics is nothing as compared to जो आप working class में देखते हो. तो यू डोंट हैव टू जंप इनटू इट डायरेक्टली. आई से कि आप ट्रेडिशनल जॉब्स देखें, यू गेन द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट पॉलिटिक्स एंड वर्किंग लाइफ इज एंड देन जंप इनटू दैट एनवायरनमेंट ऑफ कांस्टेंट कंपटीशन.
3: सो आपने अभी यहाँ पे दो पॉइंट्स उठाए थे, एक था अबाउट द स्किल लेवल दैट अ पर्सन रिक्वायर्स इन ऑर्डर टू डू अ स्टार्टअप एंड सेकेंड था अबाउट द स्ट्रेस दैट दे गो थ्रू, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द स्किल्स दैट दे रिक्वायर, है ना, तो ऑफकोर्स आई 100% एग्री कि अगर आप रैशनली नहीं सोचेंगे एंड अगर इफ यू जस्ट एज अ जम्प यू जस्ट गो इन टू एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स यू कैन मेक बिकॉज यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल सेट एंड प्लानिंग इन बिजनेस accumulation to actually start something on your own. So of course it's not for everybody, but as we see aaj ke zamane mein, as I mentioned before, the most of the students even who have graduated from such big universities are not getting jobs even though unke paas itne sare skill set hai and they have the skills that they require to become a good entrepreneur. So it's really important ki the student actually does a lot of planning beforehand, and agar aap rationally nahi sochenge then neither a traditional job nor an entrepreneurship will work. Either way, you have to do a lot of planning beforehand, right? So that's the first thing. And the second thing is about the stress that you mentioned, right? So ek aur statistic aapne jo dikhaya, I would also like to oppose that with one of my own. So in 2022, it was shown that 47% of Indian employees in traditional jobs reported a very high stress level. And is main stress level ka reason hota hai ki logo ke paas control nahi hota hai. So entrepreneurship exactly yehi प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि लोगों को अपना फ्रीडम और कंट्रोल ओवर देयर करियर वापस देता है. सो आपके पास अगर कंट्रोल है और डिसीजंस आपके हाथ में है तो रिस्क और स्ट्रेस दोनों है, लेकिन जो फ्रीडम है वो भी आपके हाथ में है. सो एज अपोज टू अ ट्रेडिशनल जॉब, दोनों में स्ट्रेस है, दोनों में फेलियर्स होते हैं, सक्सेस भी होते हैं, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, यू हैव द कंट्रोल ओवर योर लाइफ एंड नॉट अ बॉस एज इन अ ट्रेडिशनल जॉब.
1: मैं देखो क्या इंसान की फितरत होती है दोस्तों कि किसी एक का साइड ले ही लेता है वो, है ना. अब जैसे सास बहू में लड़ाइयाँ होती है ना, तो पति एक साइड ले लेता है कि कौन सही है. फिर भाइयों में लड़ाई होती है तो एक तीसरा भाई या माँ बाप कोई एक साइड ले लेते हैं. एक बड़ा बच्चा होता है घर में, एक छोटा बच्चा होता है, उनमें लड़ाई होती है तो एक साइड ले लेता है. अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किसका साइड लूँ. दोनों के जो पॉइंट है बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े ही वैलिड पॉइंट हैं. दोनों ने स्किल्स पर बहुत अच्छा यू नो कहा है. बिगिनर्स के लिए जो बातें कही हैं, रिकग्निशन के लिए जो बातें कही हैं, दोनों ने बड़ी स्ट्रॉन्ग बातें कही हैं. तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे FM 107 पे और वापस आएंगे, मजीद बातचीत करेंगे और देखते हैं कि क्या इन दोनों में से किसी एक का साथ मैं दूंगा या इन दोनों के पॉइंट से मैं राजी रहूंगा. ये कुछ देर में आपको पता चली जाएगा. FM 107, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका कुछ कहना है इस खास टॉपिक पर कि एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है या ट्रेडिशनल जॉब, वो आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 4434377. आप हमें कॉल करके बताएं. उसके अलावा एक और तरीका है, वो तरीका ये कि आप हमें सोशल मीडिया पर बता सकते हैं. हमारा FM 107 का सोशल मीडिया पेज है, इंस्टाग्राम पे है, हमारा पेज फेसबुक पे है और भी कई जगह हम सोशल मीडिया पे अवेलेबल है. सुनते हैं FM 107, एक छोटा सा ब्रेक.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: हबीबी इस्तकबाल आप सभी का FM 107 पे। और एक बार फिर से पेपर की आवाज आती हुई, दोनों की तैयारी ऐसी ना, पेपर पलट के देख रहे हैं कि क्या जो मैंने लिखा है, जो मैंने कहा है, जो मैंने बात सुनी है, क्या वो सब सही है और इस पर आगे मजीद क्या बोला जा सकता है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है इस खास शो में, जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल, इसका जो टॉपिक है आज का वो ये है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप सही है, बेहतर है या ट्रेडिशनल जॉब। आलिया ने अपना पॉइंट कहा है ट्रेडिशनल जॉब को लेकर, और वहीं दृष्टि ने अपना कहा है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। तो अब देखते हैं कि आगे इनके क्या थॉट हैं और क्या आपके लाइफ के डिसीजन चेंज करने में इनके थॉट काम आएंगे या नहीं, ये अब आप डिसाइड करिएगा। वैसे काफी मैसेजेस आ गए, हम लेंगे, लेकिन ये बता दें कि अभी जो सवाल करने वालों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि चाहे वो ट्रेडिशनल हो जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तो क्या ट्रेडिशनल जॉब में ग्रोथ है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप में कम ग्रोथ है या ज्यादा ग्रोथ है, इस पर क्या दोनों का कहना है FM 107 पे। दृष्टि आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ग्रोथ को लेकर क्या

0: कहना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में क्या ग्रोथ है?
1: हाँ, तो पहले एक ट्रेडिशनल जॉब के बारे में बात करते हैं, तो आपको स्टेबिलिटी देती होगी ये, लेकिन आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी देती है, जैसे फिक्स टाइमिंग्स है, फिक्स बॉस है, फिक्स सैलरी है, बेसिकली एक बॉक्स है जिसमें आपको फिट होना पड़ेगा. लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें आप डिसाइड करते हो कि कैसे, कब और कितना काम करना है अकॉर्डिंग टू हाउ मच मनी एंड हाउ मच स्टेबिलिटी यू रिक्वायर. तो दैट कंट्रोल इज इन योर हैंड्स एंड नॉट इन समवन एल्सेस. लेकिन एक जॉब में जो प्रमोशंस है और सैलरी हाइक्स है वो भी आपके बॉस के ऊपर डिपेंड करती है और उनके अप्रूवल पे ही होती है. तो ग्रोथ पाथ सिर्फ एक ही है और वो भी बहुत स्लो है. और एंटरप्रेन्योरशिप में लेकिन आपकी ग्रोथ बहुत अनलिमिटेड है, और द मोर यू इनोवेट द मोर यू अर्न. तो इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वर्क एंड नॉट अपॉन अ बॉस. तो लेट्स बी प्रैक्टिकल एज वेल. इन टुडेज वर्ल्ड कौन गारंटी दे सकता है कि आपकी जो नौकरी है वो कल भी रहेगी, एज आई मेंशन, क्योंकि एआई और ऑटोमेशन सब जॉब्स ले रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं हर इंडस्ट्री में, और जो जॉब आपको कुछ सालों पहले एकदम स्टेबल लगती थी वो कभी भी वैनिश हो सकती है. सो एंटरप्रेन्योरशिप ऑफकोर्स रिस्की है, आई एडमिट, बट एटलीस्ट द रिस्क इज इन योर हैंड्स एंड नॉट इन अ कंपनीज और इन अ बॉस. तो अगर आप फेल होते As I mentioned, वो आपके ऊपर है. So,
0: okay, so ये दृष्टि ने हमला कर दिया है आलिया. Entrepreneurship से ज्यादा इन्होंने इस बार ट्रेडिशनल जॉब पर बोला और नेगेटिव पॉइंट्स बताए. आपका क्या कहना है, आप इस पर क्या कहना चाहिए कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है?
2: अच्छा, तो इन्होंने मेरी साइड अटैक करी, अब मैं इनकी साइड अटैक
0: करूंगी. आई एम सॉरी, मैं आग लगा रहा हूँ. जी.
2: तो ओके, दृष्टि ने कहा कि जो आपके पास रिस्क है एज एन एंटरप्रेन्योर वो आप अपने हैंड्स में है ना. एंड शी मेंशनड हाउ कि इस दुनिया में यू कांट गारंटी कि आपकी जो जॉब है, जॉब जिस जॉब को देख रहे हो वो कल रहेगी भी नहीं.
0: करेक्ट.
2: तो मैं इसका ही लॉजिक अप्लाई करते हुए आपको बताना चाहूंगी कि जैसे पहले है ना, द रिस्क ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वाज लो है ना, एंड देयर वाज स्टिल लाइक प्रीटी मच सिग्निफिकेंट. तो इस दुनिया में अगेन यूजिंग हर लॉजिक, आपको क्या गारंटी है कि आपका बिजनेस चलेगा है ना. सो लुकिंग एट इट प्रैक्टिकली, लेट्स ले इट डाउन है ना, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड. तो एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क है, अगेन इट्स इन योर हैंड्स, बट है, एंड ओवर द इयर्स दैट रिस्क एड्स अप बिकॉज मेनी पीपल आर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स नाउ. और एज यू कीप गोइंग द होल risk factor of being an entrepreneur becomes so high. To jo risk hai, it keeps adding up. And as a job, as a prospective employee of a company or a corporation, aapko kaise pata, again, you have no guarantee of your stability in a job.
0: Correct.
2: But again, that guarantee is so much lesser than the guarantee of like succeeding as an entrepreneur. Hai na? So again, risk versus reward. The risk for entrepreneurship is really high. And the risk for jobs also is high. लेकिन वो जो रिस्क है वो entrepreneurship के रिस्क से बहुत ज्यादा कम है. So again, as Drishti said, that risk is in your hands. So you are accountable to everything because it's in your hands. As an employee, you are accountable to your boss. So he takes care of your risks या फिर जो भी आपका जो jobs है. And again, there are so many companies now जो ग्रोथ की बात करते हुए, देयर आर सो मेनी कंपनीज नाउ की प्रमोशंस देती हैं एज वी सी थ्रू आउट द इयर्स. लेकिन अब जो कंपनीज हैं अलोंग विद प्रमोशंस दे आल्सो ऑफर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो दे ऑफर कोर्सेज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स टू अगेन बी एन एंटरप्रेन्योर. सो इफ यू हैव द सपोर्ट, अगर आपके पास सपोर्ट है फ्रॉम अ वेल defined organization, then you can go for something as risky as an entrepreneurship in this world.
0: Okay.
2: Pehle to it was fine to go without anything, but now you have to go for a job that gives you the stability and the opportunity to build your own name.
0: वैसे मुझे आप दोनों के पॉइंट से एक पॉइंट समझ में आया कि ट्रेडिशनल जॉब में एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपकी नौकरी गई दूसरी जगह हम कोशिश करेंगे और उसके लिए चांसेस हैं. बट एंटरप्रेन्योरशिप में ये है कि अगर नहीं चला तो आपकी पोर्टफोलियो में जुड़ जाता है कि भाई पिछले पहले आपने जो काम किया है ना उसके लिए हम आपको फंड नहीं दे पाएंगे क्योंकि पिछला काम आपका, पिछला आपने जो इनोवेशन की थी वो आपकी नहीं चल पाई. एक पॉइंट मुझे ऐसा लगता है.
1: तो मेरे को एक्चुअली इस पे अपोज कर सकती हूँ क्या मैं? ओके, थैंक यू सो मच. सो बेसिकली आपने जो अभी कहा कि अगर आप फेल होते हैं तो स्टार्टअप में तो वो आपके पोर्टफोलियो में जुड़ जाता है, राइट? बट एज वी सी टुडे, अगर आप मतलब

0: शोज भी देखेंगे बिजनेस शोज में. सो दे एक्चुअली रियली इनवाइट एंड वेलकम द फेलियर्स, बिकॉज इफ यू आर ग्रोइंग फ्रॉम द फेलियर, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हैं तो इट्स नॉट रियली अ फेलियर. आप बहुत वैल्यूएबल लेसन सीख रहे हैं अबाउट योर बिजनेस. बट इफ योर जॉब लूजेस, देन इट इज एन इशू, बिकॉज यू प्रोबेबली डिड नॉट एडहियर टू द कंपनीज पॉलिसी, या आपने कुछ ऐसा इनसेन मिस्टेक कर दिया कि आपको जॉब से ही निकाल दिया गया. एंड यू ऑल्सो मेंशन कि अगर मेरी जॉब चली गई तो आई कैन जस्ट फाइंड अनदर वन. दैट इज वे इजियर सेड देन डन. मे बी इट वॉज पॉसिबल बिफोर कोविड, राइट? मे बी 6 years अगो. बट अब एज ऑफ टूडे अगर आपकी जॉब जाती है, देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड, एंड दैट एज आई मेंशन बिफोर इट इज द लीडिंग प्रॉब्लम इन आवर वर्ल्ड टूडे. कि यही माइंड सेट होता है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो आई फाइंड अ न्यू वन. बट इट्स वेरी वेरी अनलाइकली, क्योंकि देर आर नो जॉब्स इन द मार्केट विच विल एक्चुअली लाइक द चांसेस ऑफ यू फाइंडिंग अनदर जॉब एज सून एज यू लूज द फर्स्ट वन इज वेरी वेरी स्लिम. तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरी ये जॉब चली गई आई जस्ट गो टू अनदर वन. इट इज नॉट दैट ईजी, राइट? बट एटलीस्ट इफ योर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप फेल्स, आपके पास कोई और ऑप्शन है, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड यू मेक अप अ स्ट्रॉन्गर सेटअप द नेक्स्ट टाइम.
1: जितने लोग बाहर सुन रहे उनको एहसास हो गया होगा कि गेहूं के साथ घुन पिसता है और मैं मड़िया पिस रहा हूँ एफएम 107 पे. इन दोनों ने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाए हैं ग्रोथ को लेकर. एक और सवाल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में, क्योंकि कंपनीज और खासतौर पे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा काम कराते हैं कई बार. अच्छा, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, एविएशन इंडस्ट्री. अगर मिसाल के तौर पर अगर आप पायलट हैं तो आपके सोने से लेकर आपके उठने तक, खाने पीने तक हर एक चीज मॉनिटर की जाती है, ट्रैक की जाती है. तो ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ट्रेडिशनल जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों में से वर्क लाइफ बैलेंस हमें कौन देता है, ज्यादा सही बैलेंस किसका है, एंटरप्रेन्योरशिप का आपको क्या लगता है दृष्टि, या आलिया आपको क्या लगता है ट्रेडिशनल जॉब का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है?
2: मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल जॉब्स का ज्यादा है, क्योंकि
1: एज
2: दृष्टि सेड, जब आप एंटरप्रेन्योर हो यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि हाँ जब आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, है ना. लेकिन जब आप कर रहे हो एज अ बिजनेस, जब आप चला रहे हो, तो इट टेक्स टाइम टू रीच टू दैट पॉइंट. एंड एज शी सेड, यू डोंट वांट टू बी अ बिलियनर. बट अगेन, अगर आप एक स्मॉल स्टार्टअप हो, अगर आपके पास ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं है, तो आपको उन सब का काम करना पड़ेगा,
1: खुद का,
2: है ना. एंड उसका ही लॉजिक इस्तेमाल करने के लिए, बिकॉज शी केप्ट मेंशनिंग अबाउट हाउ यू कैन बी अ स्मॉल स्टार्टअप. तो एज अ स्मॉल स्टार्टअप, योर होल आइडिया ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इज जस्ट गॉन, क्योंकि आप एज अ स्मॉल स्टार्टअप यू आर वर्किंग एंड यू आर कॉम्पेंसेटिंग फॉर द लैक ऑफ एम्प्लॉइज इन योर बिजनेस. तो आप उन सब का काम कर रहे हो एंड यू आर कॉम्पेंसेटिंग फॉर देयर लॉस ऑफ लाइक वर्क. बट एज अपोज टू दैट, अगर आप एक ट्रेडिशनल जॉब में काम कर रहे हो, नाउ डेज तो अब तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है अगेन आफ्टर कोविड. तो देयर इज वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, देयर इज यू कैन एक्चुअली लाइक जंप टू द स्टोर एज वेल. एग्जैक्टली, पेड लीव, एंड यू डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप. अगर आप एक बार गए तो आप गए, क्योंकि दैट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी. इन अ जॉब यू हैव समवन टू होल्ड योर हैंड थ्रू आउट योर जर्नी अंटिल यू डिसाइड टू अगेन बी एन एंटरप्रेन्योर. सो माय पॉइंट इज कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट बैड. व्हाट आई एम सेइंग इज टू रीच टू द पोजीशन कि जहां एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए रिस्की नहीं है, यू हैव टू फर्स्ट सी द एनवायरनमेंट ऑफ अ जॉब. लेट्स बी प्रैक्टिकल. जो हमारे लिसनर्स हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली उसमें जंप कर जाएं, या फिर आपको एक जॉब लेनी पड़ेगी फिर आप उसमें जाएं? तो मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिकली सोच रहे होंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही जवाब आएगा कि नहीं, मैं एक जॉब करूंगा फिर मैं बिजनेसमैन बनूंगा, है ना. तो ऑलवेज इट्स बेटर टू गो फॉर द लेस रिस्की ऑप्शन इन एबल टू अचीव द मोर रिस्की वन. सो एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे आपने बोला चैलेंजेस होते हैं, एंड ऑफकोर्स देर आर मेनी लॉन्ग आवर्स, क्योंकि आप सोलली रिस्पॉन्सिबल हो अबाउट योर होल कंपनी, राइट. लेकिन आपका वर्कलोड एटलीस्ट आपके कंट्रोल में होता है, क्योंकि जॉब में यू आर फोर्स टू सिट इन द ऑफिस फ्रॉम 9 to 5, एंड एज यू मैंशन, ओके देर आर पेड लीव, देर आर वर्क फ्रॉम होम, एंड वर्क फ्रॉम होम इज ऑल्सो द बिगेस्ट वे ऑफ डूइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप. वेन यू हैव अ कंपनी इन
0: especially in the starting stages. Aap jaake hamesha office mein, you wouldn't even have an office. Most of the successful start

0: startups have started in your own home. So of course, it's a very very flexible schedule. At least aap 9 to 5 apne office ke boss ke paas baithe hue nahi ho. You can do your own thing. And the second thing is, boss aapko bahut force karke bolega ki you have to do this work by midnight, right? And you are forced to do that. But agar aap ek startup run kar rahe ho, you have the option of doing it because aapka wo it is like an inspiration, it's a motivation for you kyunki aap apna khud ka startup build kar rahe ho. So you want to do that. It is a willing thing and not being forced upon you ki you have to do it, right? Because when you started the company, it was your decision. No one is forcing you to go and start a startup, right? As I mentioned earlier as well, layoffs ka stress hota hai aur kabhi bhi aapke haath mein koi situation handle karne ke liye, matlab you have a lot of stress in your hands. And matlab most of the people right now, also studies show that 48% of people who are also employed right now, Indian employees who are very much employed, they have a stable job right now, they are still looking for, they are still job hunting on the side, kyunki unko abhi bhi fear hai ki matlab mera job stable nahi hai. But at least if you're a businessman, you have that insurance ki matlab main jo kaam kar raha hu uska, I have the full confidence ki it will work out, and if it doesn't, I have a backup plan. Kyunki of course we are not telling anyone to also second point that you mentioned about going into a job first and then going into entrepreneurship to look at the job market, right? Of course aapko pehle pura planning and research ke saath, maybe you go into the market, you see how things work out over there, and then aap business mein jump karoge. No one is going straight up into the business. But what is the end goal? The end goal is to run something of your own, not to work for someone else. So of course the first step for a beginner to be to get a job, but then after that the end goal will always remain to be accountable for your own freedom.
1: तमाम गवाहों और मुद्दों को सुनने के बाद अब जज इस बात पर पहुंचे हैं कि आप दोनों के पास 30-30 सेकंड हैं. अब दोनों कटघरे में खड़े हैं, अपने क्लोजिंग आर्गुमेंट्स आपको देने हैं इन दोनों पर्सपेक्टिव पे, ट्रेडिशनल जॉब पर या फिर बात हो एंटरप्रेन्योरशिप पे. तो 30 सेकंड है आप दोनों के पास, एक एक करके आप अपने क्लोजिंग आर्गुमेंट दीजिए. आप दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स आज कोर्ट में पेश किए हैं. अब वक्त है सही फैसले का कि क्या जज सही फैसला कर पाएगा, क्या जज साहब को एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करनी चाहिए या इसी तरह से ट्रेडिशनल जॉब करते रहना चाहिए. इसके फैसले पर हमारी जनता भी पहुंचेगी हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662217 पे. तो अगर हम ट्रेडिशनल जॉब की बात करें तो आलिया आप क्या कहना चाहेंगे, 30 सेकंड है आपके पास.
2: जी ओके, तो मैं इस एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहती हूँ अबाउट मेंटल हेल्थ. हम सबका जो प्राइमरी एम है कि हम हेल्थी रहें, हैप्पी रहें, सैटिस्फाइड रहें. ओके, स्टडीज शो दैट 42% ऑफ बिजनेस ओनर्स एक्सपीरियंस्ड बर्नआउट इन द पास्ट मंथ. 24% अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं बर्नआउट. 27% struggle with loneliness, and most dramatically 73% of entrepreneurs spend less time with friends, 60% less time with their spouses, 58% with their children, and loneliness averages between 7.6 out of 10.
1: मुझे लगता है कि 30 सेकंड में जो सबसे हार्ड और जबरदस्त क्लोजिंग आर्गुमेंट हो सकती है वो पेश कर दी है. नाउ दृष्टि आपकी बारी है.
0: हाँ, तो जस्ट सम अप, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हमको एक इम्पैक्ट देता है, एक फ्रीडम देता है और एक अडैप्टेबिलिटी देता है टू गेट फ्यूचर रेडी स्किल्स. और हाँ, रिस्क है, लेकिन कम से कम ये रिस्क हमारे हाथ में है, एज आई हैव बीन मेंशनिंग दिस एंटायर टाइम. और आप एक ऐसा इम्पैक्ट बिल्ड कर सकते हो कि आप सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं वर्क कर रहे हो, आप एक पूरे कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे हो. आपके जितने भी एम्प्लॉयज है, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन यू एंड यू आर गिविंग देम दैट सैटिस्फैक्शन ऑफ रनिंग देयर फैमिली. एंड जस्ट कमिंग टू द क्लोजिंग लाइन, द स्टैटिस्टिक्स दैट आलिया गेव राइट नाउ, मतलब ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन मेंटल हेल्थ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. बट जो वर्कर्स भी है उनके भी, एज आई हैव मेंशन, 47% इवन दो दे आर एम्प्लॉयड, उनके पास इतना वर्कलोड का स्ट्रेस होता है बिकॉज दे आर स्केयर्ड कि कभी भी मेरा जॉब जा सकता है. सो ऑफ कोर्स देयर इज टू sides of a coin, but at the end of the day, the end goal should always be to have freedom. So that's why I would say entrepreneur.
1: बहुत ही उम्दा, आपने थोड़ा ज़्यादा time ले, लेकिन बहुत ही अच्छा. हाँ, last point कुछ.
2: Last point, yes.
1: वकील साहब कुछ कहना चाह रहे? जी जी बताएं.
2: देखिए, हमारे सारे जो listeners हैं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि employees को depression नहीं होता.

0: अगर आपको स्टेबिलिटी पसंद है, तो अगर आपको एक स्केड्यूल पसंद है,
1: हाँ.
0: तो आप जरूर जाइए ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए. बट अगर आप फ्रीडम क्रेव करना चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाइए. बट इट्स एट योर ओन रिस्क.
1: एग्जैक्टली. तो मुझे पहले लगा था कि दृष्टि ने ज्यादा वक्त लिया, 30 सेकंड से ज्यादा, लेकिन अब मुझे पता चल गया है 2 मिनट ले लिया है आलिया ने.
0: सॉरी.
1: ओके, वेल डन गाइस. कटघरे में आज दो लोग थे, एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रेडिशनल जॉब. दोनों लॉयर ने, आलिया ने, दृष्टि ने, अपनी अपनी तरफ से जितने भी सबूत और गवाह पेश किए हैं, इसके जज अब आप हैं. हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662217 पे बताएं कि कौन विनर रहा. लेकिन अगर मेरी तरफ से मुझसे अगर पूछा जाए, तो मुझे लगता है कि दोनों जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए हैं दोनों ने, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि किसी एक तरफ नहीं रहा जा सकता. एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अपने रिस्क हैं. वहीं से ट्रेडिशनल जॉब करने वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हैं. एमडी बने हैं, सीईओ बने हैं,
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं आज. और उन्होंने शुरुआत बहुत छोटे से करी है, आप मुझे ही देख लीजिए. लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हर जॉब में, हर एंटरप्रेन्योरशिप में अपने तरह का रिस्क है. अब ये आपको डिसाइड करना है, आप क्या फैसला लेते हैं. हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662217 पे ले सकते हैं. फिलहाल हमें, आलिया को और दृष्टि को इजाजत दीजिए. मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक इसी शो में, जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल. FM 107 पे दो नए कलाकार और जबरदस्त डिबेट करने वाले स्टूडेंट से. सुनते रहे FM 107, दिल से दही से.

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: चेक टाइम चेक एफएम 107 सुन रहे हैं आप मैं हूं आपकी फरमीता इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में हुए शाम के 4:01 यानी इट्स टाइम फॉर
3: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: यस माय देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है और बिल्कुल आज का ब्रांड न्यू एपिसोड हमारे रिक्वेस्ट शो का क्या होने वाला है देखो जाहिर सी बात है कि ये आपका पर्सनल म्यूजिकल शो है एंड यहाँ पर आपके पसंद के गाने हम प्ले करते हैं वेल आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस कि मैडम ये वाला गाना वो वाला गाना एंड जाहिर सी बात है एक घंटे का टाइम है हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिक्वेस्ट हम यहाँ पर प्ले कर पाएं लेकिन इन केस अगर किसी की रिक्वेस्ट प्ले नहीं हो पा रही है तो दिल छोटा ना करें क्योंकि हर दिन संडे टू थर्सडे शाम 4-5 आपकी ए फॉर अमिता द रिक्वेस्ट शो पर आती है अलग अलग थीम्स लेकर ताकि आपको भी वैरायटी मिले और आपके पास भी मौका हो अपने पसंद के गाने सुनने का तो आज की थीम क्या होने वाली है आज थीम होने वाली है वो स्पार्क्स यानी वो रेयर स्पार्क्स की वो कपल्स की जिन्होंने फिल्मी दुनिया में धूम मचा दी आई शुड रियली से जैसे कि अगर हम बात करें रणबीर कपूर कोंकणा सेन की शाहरुख खान ऐश्वर्या राय की या फिर शाहरुख खान माधुरी दीक्षित की मतलब कुछ ऐसे जो ऑन स्क्रीन कपल्स हैं जिनको हम वीडियोज़ में भी देखें तो बड़ा अच्छा लगता है और उनके गाने बहुत

सुपर डुपर हिट हैं जो हमारे दिलों पर राज करते हैं. तो आज की थीम है वो बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल जिसके गाने आपको पसंद है. तो सोचिए आपका फेवरेट गाना और शेयर कीजिए 666-2107 पर अपने नाम के साथ, या चाहे तो किसी खास को डेडिकेट भी कर सकते हैं. और पहला गाना, उफ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. दिल तो पागल है फिल्म का गाना. एंड जाहिर सी बात है, जब बात करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपल्स की, तो मुझे शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की पेयरिंग भी बहुत अच्छी लगती है. वैसे इस गाने में अगर इसके वीडियो की बात करें तो माधुरी दीक्षित भी है और करिश्मा कपूर भी. अब आप चूज कीजिए किसे आप ज्यादा पसंद करते हैं. फिलहाल गाना एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ा के. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: वेलकम वंस अगेन एफएम 107. क्या बात है, सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. और क्या कहना, मतलब ये गाने सुनते हुए दिल जो खुश हो रहा है ना, उफ, चार चांद लग जाते हैं, है कि नहीं.
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107. दिल से देसी.
0: हाँ जी, द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. हाँ तो बताओ जल्दी जल्दी, आपने सोचा कि नहीं सोचा कि कौन से गानों की रिक्वेस्ट आज करनी है. देखो, आज बहुत ही सिंपल हमने थीम रखा है कि वो फिल्मी दुनिया के ऑन स्क्रीन कपल्स जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती है, उनके कोई स्पेशल सॉन्ग्स दैट यू रियली लव और आपका दिल करता है कि उन्हें बार बार सुने या जब मौका मिले तो उनके वीडियोज बार बार देखें, तो जरूर शेयर करें 6622107 पर, 6622107 पर. और अभी सबसे पहली रिक्वेस्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. ये रिक्वेस्ट आई है आसिफ की और वो सुनना चाहते हैं, ये म्यूजिक सुनते ही ओहो समझ में आ जाता है गाना कौन सा है. इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग, किया किया फ्रॉम द मूवी वेलकम. और क्या कमाल की पेयरिंग थी, मतलब एक तरफ कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार है, दूसरी तरफ नाना पाटेकर, अनिल कपूर एंड मल्लिका शेरावत है. आई सो लव इट. तो बहुत ही शानदार रिक्वेस्ट है, ये गाना पूरा पूरा हम सुनाएंगे. और उसके बाद मोहम्मद की रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट वो डेडिकेट कर रहे हैं अपनी बेटर हाफ को. एंड द सॉन्ग इज मौजा ही मौजा. क्या बात है, क्या बात है, फ्रॉम द मूवी जब वी मेट. एंड इसकी पेयरिंग भी बड़ी कमाल की रही, मतलब शाहिद कपूर एंड देन और कौन है बताओ जल्दी से, करीना कपूर. मतलब इनकी केमिस्ट्री को देख के लगा कि अगर ये साथ में काम करें तो और भी फिल्में अच्छी हिट हो सकती थी, बट दे हैड देयर पर्सनल रीजंस. तो जनाब अब ये दोनों ही गाने पूरे पूरे आपकी राहों में आने वाले और आप भी अपने गानों के बारे में सोचें, हमें जल्दी जल्दी मैसेज करें 6622107 पर. और अभी बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी.

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Ladies and gentlemen, Your attention, please.
4: गानों की पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप 10 में और कौन सा गाना हुआ इस हफ्ते लीग से बाहर। सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: Wake up. Hey, do hawala mein kabir.
1: Yehi kahunga. Subah subah.
0: Wake up. Har hafte Sunday to Thursday subah 6 baje se sirf FM 107 par. Dil se desi. Aap sun rahe hain The Request Show. A for Amita ke saath. Only on FM 107. Dil se desi.
2: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. हाँ जी, तो द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है एंड आई कैन सी योर रिक्वेस्ट. काफ़ी इंटरेस्टिंग पेयरिंग वाली रिक्वेस्ट आपने शेयर की है. मतलब आज की थीम बड़ी सिंपल है कि जैसे हमें फिल्मी सितारों से बड़ी मोहब्बत होती है तो कुछ फिल्मी कपल्स बड़े अच्छे लगते हैं. जैसे कि हम शाहरुख खान काजोल की बात करें या फिर शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित की बात करें. आई मीन आई रियली लव शाहरुख, इसीलिए उनके बारे में बात करिए. बट ऐसे आप ज़रूरी नहीं है कि आपको शाहरुख ही पसंद हो, आपको कोई भी एक्टर एक्ट्रेस पसंद हो सकती है. तो ऑन स्क्रीन आपको उनकी पेयरिंग बहुत अच्छी लगती है, प्लस उनके गाने भी अच्छे लगते हैं. तो वो गानों वाला थीम है आज. तो कौन से वो गाने हैं जरूर शेयर कीजिए 666-22-107 पर. और अभी हम चलते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ. सो इम्तियाज अली साहब ने रिक्वेस्ट की है और जिस तरह से उन्होंने लिखा है मुझे लगता है यही वो गाना है जो वो सुनना चाहते हैं. दैट इज फ्रॉम द मूवी तुम्हारी सुलू. एंड ये है मानव कौल और विद्या बालन की खूबसूरत पेयरिंग वाला गाना. बन जा तू मेरी रानी, गुरु रंधावा की आवाज में. इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक. तो यस, ये पूरा गाना हम आगे आपके लिए प्ले करने वाले हैं. उसके बाद निहात की रिक्वेस्ट है एंड वो बैंग बैंग फिल्म से ये गाना सुनना चाहते हैं. And the song is Oof, Oof, Oof. So Harshdeep Kaur और Benny Deol का great combination है. And इस फिल्म में Hrithik Roshan and Katrina Kaif की बड़ी rare pairing है. और आपको पता है कि वैसे stunt की दुनिया में तो अक्षय कुमार का नाम काफ़ी चलता है, but इस particular फिल्म में Hrithik Roshan ने fly boarding वाला stunt किया है. And he is the only one जिसने अभी तक ऐसा किया है. तो चलिए, ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आ रहे हैं और आप क्या करें, आप भी अपनी डेडिकेशंस हमसे शेयर कीजिए ना. और आपको वो कौन सा फिल्मी कपल पसंद है, क्यों पसंद है, उसका गाना क्यों पसंद है, आप शेयर कर सकते हो. सो 666-22-107 पर जरूर शेयर करें. मैं आपकी एफ और अमिता आपकी साथ बनी रहूंगी द रिक्वेस्ट शो पर. सो स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
2: जेन सी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा।
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
4: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी, देसी। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके ए फॉर अमिता एंड द रिक्वेस्ट शो पर। अब अगली खूबसूरत सी रिक्वेस्ट किसकी है, चलिए देखते हैं। सो नसीम की रिक्वेस्ट है और वो साजन फिल्म से सुनना चाहते हैं मेरा दिल भी कितना पागल है, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज। ओ हो हो, एंड आई शुड टेल यू कि साजन फिल्म वो फिल्म थी जिसमें पहली बार सलमान खान एंड संजय दत्त की पेयरिंग की गई थी एज ब्रदर्स। और फिर जो लीडिंग लेडी थी उसमें माधुरी दीक्षित से पहले आयशा जुल्का आने वाली थी, तो फर्स्ट डे उन्होंने शूटिंग में काम किया, शूट किया और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। दिस इज हाउ माधुरी दीक्षित की एंट्री हुई। और ये खूबसूरत गाना आप पूरा पूरा सुनेंगे कुछ ही देर में, और इसके बाद आप सुनने वाले हैं, गेस करो कौन सा गाना है। वंस अगेन कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज, बाजीगर ओ बाजीगर। फयाज सैयद की रिक्वेस्ट है एंड आई शुड टेल यू कि ये आइकॉनिक बॉलीवुड कपल है शाहरुख खान एंड काजोल, और इनकी पहली जब मुलाकात हुई थी ना तो वो बड़ी स्मूथ नहीं हुई थी। एक न्यू ईयर पार्टी में ये मिले और शाहरुख खान काजोल से बात कर करके थक गए थे, तो उन्होंने उनके मेकअप आर्टिस्ट को बोला कि ये किस तरह की एक्ट्रेस है जो इतनी बात करती है, एंड सी इन दोनों की पेयरिंग आज भी अव्वल है। तो चलें, ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आ रहे हैं, और आपकी प्लेलिस्ट का कौन सा वो गाना है जो फिल्मी दुनिया के ऑन स्क्रीन कपल को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, यू रियली लव दैट कपल, हाँ तो शेयर कीजिए 6662107 पर। और अभी हम सुनते हैं साजन फिल्म के इस बेहतरीन से गाने को। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप। क्या बात है जनाब, द रिक्वेस्ट शो पर क्या खूबसूरत रिक्वेस्ट्स आप कर रहे हैं एंड आई रियली लव ऑल द रिक्वेस्ट। मतलब फिल्मी दुनिया के जो कपल्स हैं उनकी पेयरिंग को लेकर जो गानों की रिक्वेस्ट आपने की है, उफ माशाल्लाह मजा आ गया। वेल अभी मुझे रिक्वेस्ट आई है निहात की और वो अपने भाई मुस्तफा के नाम ये गाना करना चाहते हैं एंड द सॉन्ग इज रुआ फ्रॉम द मूवी टाइगर 3 और पेयरिंग भी बड़ी सॉलिड है भाई। ये हमारे सलमान खान एंड कैटरीना कैफ है। सच में इनकी जोड़ी बड़ी प्यारी लगती है ऑन स्क्रीन, चाहे सीरियस फिल्म हो या कॉमेडी रोल हो, दे रियली लुक अमेजिंग। सो यस, रुआ इज द सॉन्ग जो कि थोड़ा सा टची है, इमोशनल है, इट विल कम ऑन योर वे। और उसके बाद मोहम्मद बिलाल की रिक्वेस्ट है कि अमिता वीर ज़ारा फिल्म का कोई भी गाना आप सुना दीजिए। तो ये रहा
2: जानम
1: प्रीति जिंटा एंड शाहरुख खान की पेयरिंग। मतलब इन दोनों को जब ऑन स्क्रीन देखो ना, लिटरली ये फीलिंग आती है कि ये बहुत ही सुलझी हुई पेयरिंग है। एक शरारती है तो दूसरा काफ़ी इंटेंस है और हर चीज़ को संभाल लेता है कि नहीं। तो चलिए ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आ रहे हैं और उसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे क्विज टाइम। तो कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर दिल से देसी।

0: और जनाब मैं यहाँ हूँ द रिक्वेस्ट शो पर एफ एम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी एफ अमिता. देखो वक्त बिल्कुल भागे जा रहा है तो इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा. तो अभी वक्त हो चला है
1: क्विज टाइम.
0: तो क्विज टाइम पर आज गाना बीच से नहीं, आज गाना शुरुआत से आपको सुनाया जाएगा. हाँ जी, तो आपको बताना है कि ये गाना जो है इसके वीडियो में एक्टर एक्ट्रेस कौन है. यस, इस गाने की पेयरिंग आपको पहचाननी है कि इस गाने में एक्टर एक्ट्रेस कौन है. अगर आप पहचान लेते हैं तो ये गाना पूरा पूरा आपके नाम हो जाएगा. सो 666-22-107 पर अपने नाम के साथ हमसे शेयर करें. और अगली रिक्वेस्ट है, ओहो, अलीशा चिनॉय की आवाज, मोहम्मद फारूक की रिक्वेस्ट है एंड कमबख्त इश्क है फिल्म का नाम. एंड करीना कपूर और अक्षय कुमार की बात करें तो ये जो ऑन स्क्रीन पेयरिंग है ना, ऐसा लगता है बिल्कुल ताबड़तोड़ है और कोई किसी से कम नहीं है कि नहीं. सो लेट्स एंजॉय, स्टे ट्यून्ड.

वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक बेबो, जो कि अभी आपने एंजॉय किया एफएम 107 पर. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. एंड द रिक्वेस्ट शो पर आपके हिट हिट गाने पसंद के प्ले हो रहे हैं. एट द सेम टाइम क्विज टाइम पर मैंने आपको एक गाना सुनाया और कहा कि गाना पहचानो, इस गाने में जो एक्टर एक्ट्रेस है वो कौन है. तो हमारे लिसनर्स लगता है थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हैं. सो सही जवाब है फरहान अख्तर एंड दीपिका पादुकोण. और जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम है फलक, मोहम्मद, बिलाल, फैजान, जमील. तो भाई ये गाना अब आपके नाम हो रहा है. और इसी के साथ मैं कहूंगी कि अब आप मुझे दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त हो गया मेरे जाने का. द रिक्वेस्ट शो पर आपकी मेरी मुलाकात अब कल तो नहीं, कल तो वीकेंड है, अब सीधा अगले हफ्ते होगी. तब तक के लिए क्या करना है, हमारे एफ एम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए. और जाते जाते कहना तो बनता है, हमें राई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू एफ एम 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट. मैं हूं आपकी आरजे महावश. इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की. यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है. आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरासत को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें. कतरी दस्तरखान पर मिठाइयों का अपना एक खास मकाम है. खाना खत्म होने के बाद या किसी खुशी के मौके पर मीठी चीज पेश करना अपनाइयत और इज्जत का इजहार होता है. मिठाई सिर्फ जायके की चीज नहीं बल्कि मेहमान नवाजी और खुशी बांटने का एक प्यारा तरीका भी है. कतरी मिठाइयां आमतौर पर सादा अज्जा से तैयार होती हैं, लेकिन उनका जायका बहुत दिलकश होता है. चावल, दूध, खजूर

अंगूर, आटा, शहद, चीनी, साफरान, इलायची और अरबी मसाले उनमें अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन अज्जा की खुशबू और मिठास मिलकर एक ऐसा जायका पैदा करती हैं जो महफिल को यादगार बनाती है। लुकेमार खलीज की मशहूर मिठाइयों में से एक है। ये छोटी छोटी गोलियां नुमा होती है जो आमतौर पर आटे से बनाई जाती है और तलने के बाद शीरा या शहद डाला जाता है। बाहर से हल्की सी खस्ता और अंदर से नरम लुकेमात अक्सर कहवे के साथ पेश की जाती हैं। लुकेमात का ताल्लुक खास तौर पे खुशी के मौके से जुड़ा होता है। रमजान, ईद, घर की दावत या किसी खानदानी मुलाकात में ये दस्तरखान की जीनत बन सकती हैं। इसकी छोटी छोटी गोल शक्ल और मीठा जायका बच्चों और बड़ों सबको पसंद आता है। फिर साथ खजूर की मिठाइयाँ भी कतर के दस्तरखान का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। खजूर को कभी अकेला, कभी बादाम या दूसरे मेवे के साथ और कभी मिठाई के तौर पर पेश किया जाता है। खजूर की कुदरती मिठास की वजह से ये कम या ज्यादा सादगी के साथ मुख्तलिफ तरीकों से तैयार की जा सकती है। दूध और चावल से बनने वाली मिठाइयाँ भी अरब खानों में मकबूल हैं। नरम बनावट, हल्की मिठास और इलायची या साफरान की खुशबू उन्हें खास बना देती है। ऐसी मिठाइयाँ अक्सर छोटी छोटी सी प्यालियों में पेश की जाती हैं और मेहमान के लिए एक खूबसूरत पेशकश साबित होती हैं। रिवायती मिठाइयों में खुशबू का भी अपना किरदार होता है। इलायची, साफरान और गुलाब जैसी खुशबुओं का इस्तेमाल जायके के साथ एक दिलकश एहसास पैदा करता है। जब मिठाई तैयार होती है तो उसकी खुशबू अक्सर घर के माहौल को खुशी से भर देती है। कतरी घरों में मिठाई बनाने का अंदाज और जायका एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। किसी घर में मिठास ज्यादा पसंद की जाती है, किसी में खजूर का जायका नुमाया होता है, जबकि किसी में मेवे या खुशबू पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इन छोटे छोटे से फर्कों की वजह से हर घर की मिठाई अपनी एक अलग पहचान बना लेती है। मिठाई बनाने का हुनर अक्सर घर की खवातीन से नई नस्ल तक पहुंचता है। माँ, दादी या नानी अपने तजुर्बे से बताती हैं कि अज्जा की मकदार कैसी रखनी है और मिठाई की बेहतर तरतीब कैसे बनानी है। ये एक ऐसा हुनर है जो सिर्फ तरकीब नहीं बल्कि खानदानी यादों और मोहब्बत को भी आगे पहुंचाता है। किसी मेहमान के लिए मिठाई तैयार करना मेजबान की तवज्जो और खुलूस का इजहार भी होता है। मेहमान को सिर्फ तैयार चीज नहीं दी जाती बल्कि उस वक्त की मेहनत, वक्त और मोहब्बत भी पेश की जाती है। इसीलिए घर की बनी हुई मिठाई को खास कदर मिलती है। ईद और दूसरी खुशी की तकरीबात में लोग रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं। सलाम, मुबारकबाद, कहवा और मिठाई इस मुलाकात का हिस्सा होते हैं। मिठाई की पेशकश खुशी को शेयर करने और रिश्तों में मिठास बढ़ाने का जरिया होती है। कतरी मिठाइयों का ताल्लुक दस्तरखान के आदाब से भी है। मेहमान के सामने सफाई से मिठाई रखना, हर घर की पसंद का ख्याल रखना और पेशकश के वक्त नरमी से बात करना अच्छे रवैये की अलामत है। पेशकश छोटी हो या बड़ी, असल खूबसूरती आदाब में होती है। आज के जदीद कतर में रिवायती मिठाइयों के साथ नई किस्म के जो डेजर्ट्स हैं वो भी मकबूल हैं। फिर भी लुकेमात, खजूर और दूध से तैयार होने वाली पुरानी मिठाइयाँ अपनी पहचान रखती हैं। कैफे, बाजार और सकाफती प्रोग्राम अपनी नई नस्ल और नए मेहमानों से करीब लाने का जरिया बनते हैं। मिठाइयों की ये रिवायत हमें सिखाती है कि मीठा सिर्फ जायका नहीं होता, मीठा रवैया, प्यारी गुफ्तगू और दिल से की गई पेशकश भी इतनी ही अहम होती है। आज के कल्चर मोमेंट का पैगाम ये है कि कतरी मिठाइयाँ वर्से, मेहमान नवाजी और खानदानी मोहब्बत का मीठा इजहार है। एक छोटी सी लुकामात या खजूर की मिठाई में भी खुशी की एक बड़ी कहानी छुपी होती है। ये रिवायत हमें याद दिलाती है कि जब चीजें दिल से शेयर की जाती हैं, तो हर मुलाकात और भी खूबसूरत हो जाती है। तो लिस्टनर्स, आज के

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107.7 पे, वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। अब वक्त है सबसे पहले तो आपको कुछ वेबसाइट्स बताने का जो बहुत ही कमाल की हैं। मैं इन्हें आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लैंग्वेज में बोलूंगा हिडन जेम। तो हिडन जेम आपको देने वाला हूं मैं। एंड लास्ट वेबसाइट इज क्रेजी। उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाला हूं, जिसके बारे में रिव्यू करना ही पड़ेगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, हालांकि मैं खुद कंसोल गेमर हूं। ओके, लेट्स बिगिन विद द वेबसाइट्स। ओके, सो वेबसाइट नंबर वन ऑन द लिस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट, और ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली जिनके स्पेशली घर पे बच्चे हैं। तो इसका नाम है POWcoloring.com, POW coloring, COLORING coloring.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो फ्री कलरिंग वेबसाइट है ये। मैं फ्री बोल रहा था, फ्री कलरिंग वेबसाइट, तो फ्री कलरिंग वेबसाइट है। इस पे बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड हर चीज आपको मिलेगी। आप बच्चों को, अगर आप सच में वो खाना नहीं खा रहे हैं, उनके हाथों में फोन जाना ही चाहिए, तो आप उन्हें ये एक्टिविटी दे सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेक्टिव, वेरी वेरी हेल्पफुल, और ड्राइंग के साथ साथ कलरिंग करने में जो मजा आता है ना इसमें, भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा था इस वेबसाइट को आपको बताने के लिए, एंड मुझे बहुत अच्छी लग गई। मुझे लगा यार इसमें तो मेरा टाइम बीत सकता है बढ़िया वाला, मजा आ गया भाई एकदम। तो आई एम प्रीटी श्योर बच्चों को तो डबल मजे आएंगे ही आएंगे। सो ट्राई दिस वन आउट, मैं बता देता हूँ, POW coloring.com। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक और मेजर सिखाने वाली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट का नाम है musica.com। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, MUSICCA, MUSICCA.com। अब इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको म्यूजिकल नोट्स, कॉर्ड्स, म्यूजिकल थ्योरीज, एक एक चीज आप डिटेल में खुद पढ़ सकते हैं। ये अपने आप में एक मुकम्मल टीचर है, और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत कमाल की वेबसाइट है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, मतलब मैं ये हर किसी को रिकमेंड करूंगा अगर किसी को सीखना है कि म्यूजिकल नोट्स कैसे रीड किए जाते हैं, क्या होते हैं, स्पेशली वो लोग जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना फोन नंबर किसी वेबसाइट पे देने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ ओटीपी के लिए अपना नंबर दूंगा तो दिक्कत ना हो जाए। तो इस वेबसाइट का नाम है receive-sms.io, receive-sms.io। इस वेबसाइट पे जाके आप एक टेम्पररी नंबर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री, और उसके बाद उस नंबर को यूज करके आपको अगर किसी वेबसाइट पे डर लग रहा है अपना नंबर अपलोड करने के लिए, तो आप ये वाला नंबर डाल के ओटीपी मंगा सकते हैं। वो ओटीपी वेबसाइट पे ही आपको नजर आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से एक प्रीमियम नंबर भी ले सकते हैं, उस प्रीमियम नंबर को लेके आप व्हाट्सएप पर भी यूज कर सकते हैं। That's how good it is. तो मुझे बहुत ही कमाल की चीज लगी। If you want to be much, much, much safer, तो ये वेबसाइट आपके लिए है। ठीक है? Now the review of the product, जो मुझे मतलब बुला रहा है अपने पास। All right, so news में and product of the week में बात करूंगा मैं।

0: ये जो है DLSS DLSS 5 है, जब से ही आया है और जब से इसका यूसेज होना शुरू हुआ है गेमिंग के मामले में स्पेशली, तो सब कुछ अलग दिखने लगा है। लोग हर गेम पे DLSS 5 लगाकर देख रहे हैं कि कितना रियलिज्म आ सकता है। ट्रस्ट मी, रियलिज्म तो भर के आ रहा है भाई, भर के आ रहा है, पर हर गेम पर अच्छा नहीं लग रहा भाई, हर गेम पर अच्छा भी नहीं लग रहा, बिकॉज गेम्स लाइक ओनिमुशा जो अभी इसी साल रिलीज हुआ, इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में रिलीज हुआ, उन पे ये DLSS 5 लगाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली, ये सिर्फ उन गेम्स में अच्छा लग रहा है जिनका थोड़ा सा वक्त बीत चुका है। मगर अगर करंट गेम्स की बात की जाए तो क्रिम्सन डेजर्ट पे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। और अगर पीसी गेमर्स ने अभी तक ट्राई नहीं किया, DLSS 5 थोड़ा सा कॉस्टली है, पर अगर आपने पीसी बना लिया तो ऑब्वियसली आपने बहुत खर्चा ऑलरेडी कर लिया है, तो इतने से खर्चे से कुछ नहीं होगा रमेश बाबू, ट्राई करके जरूर देखिएगा, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा। दिस वॉज टेक अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे साइनिंग आउट।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें। आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने कराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। हमने कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर मुझे यही दुआ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे भी रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, सब्र के साथ इनकी तरबियत करनी है, इनके साथ रहम करम का मामला करना है। वैसे अमूमी तौर पर, फितरी तौर पर माँ बाप हर कोई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और नरमी का ही मामला करता है, लेकिन बाज़

0: आई मॉम फैमिली स्कैम, यानी कि फैमिली इमरजेंसी फ्रॉड। ये स्कैम दोस्तों कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। ये स्कैम बहुत ही मतलब बेकार कह ले या बहुत ही मतलब लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, निंदनीय है। एक लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो निंदनीय है, क्योंकि ये सीधा माँ बाप के अपने बच्चे के लिए जो प्यार और फिक्र है ना उसका गलत फायदा उठाता है ये फ्रॉड। इसलिए ये बहुत ही बेकार और गलीज किस्म का है। इस फ्रॉड के अंदर क्रिमिनल्स बड़े बड़े चैटिंग प्लेटफॉर्म्स या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्कैमर किसी भी रेंडम या टारगेट किए गए पेरेंट को एक अनजान फोन नंबर से मैसेज भेजते हैं। मैसेज की शुरुआत बहुत ही इमोशनल और सिंपल होती है, जैसे कि हाय मॉम या हाय डैड, मेरा पुराना फोन खो गया है, पानी में गिर गया है, टूट गया है, इसलिए मैं ये नए वाले नंबर से ना टेम्परेरी नंबर लिया है, इससे मैसेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरा पुराना नंबर डिलीट मत करना, पर अभी के लिए ये नंबर सेव कर लो, है ना। जिनके पेरेंट्स जो है अलग रहते हैं, जिनके बच्चे अलग रहते हैं, एक शहर में नहीं रहते, तो उनके लिए ये जो स्कैम है ना, स्कैमर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है माँ बाप को भी स्कैम करना और बच्चों को भी स्कैम करना। वैसे माँ बाप जब भी ये मैसेज पढ़ते हैं तो उनका दिल अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद होता ही है। वो बिना सोचे समझे रिप्लाई दे भी देते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। बस स्कैमर को यही मौका चाहिए होता है। जैसे ही पेरेंट रिप्लाई करते हैं, स्कैमर कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाता है और बहुत ही जल्द असली मुद्दे पर आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने अभी जो बचे हुए पैसे थे उसका ये नया फोन खरीद लिया क्योंकि फोन खराब हो गया है, या किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी का बिल भरने के लिए वो आपसे कहता है, या फिर दोस्तों का उधार चुकाना है। दुनिया भर के जो ड्रामे हैं वो स्कैमर्स बताता है ताकि माँ बाप से पैसे वसूले जा सके, या उनका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, कार्ड खराब हो गया है। स्कैमर्स इतने प्रेशर के साथ बातें करते हैं कि पेरेंट्स डर जाते हैं और सोचते हैं कि उनका बच्चा किसी मुसीबत में फंस गया है। वो बिना किसी लंबी जांच पड़ताल के उस अनजान नंबर पर बताए गए बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ समय बाद जब उनकी बात उनके बच्चे के असली नंबर पर होती है, तब उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन इस तरह के धोखे से भी बचा जा सकता है, इसके भी तरीके हैं। वो चार तरीके क्या है जिससे आप बच सकते हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। और उम्मीद है कि इस तरह का स्कैम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। किसी भी तरह के स्कैम से बचने का सबसे पहला तरीका है असली नंबर पर कॉल करना, ईमेल पर मैसेज करना, है ना, डायरेक्ट उस शख्स से बात करना जिस शख्स के लिए कोई फ्रॉडस्टर आपसे बात कर रहा हो या आइडेंटिटी चेंज करके बात कर रहा हो। जैसे ही आपको किसी नए नंबर से बच्चा बनकर कोई मैसेज आए या कोई बात करे बिना उनसे चैट बढ़ाए, फौरन अपने बच्चे को पुराने और ओरिजिनल फोन नंबर पर कॉल लगाएं और आप हमेशा से जो जानते हैं उस नंबर पर कॉल लगाएं। अगर वो नंबर स्विच ऑफ है या बिजी है तो उनके दोस्तों को, हॉस्टल वार्डन को या उनके साथ रहने वालों को, उनको कॉल लगाएं, तब आपको क्लियर होगा। उसके अलावा पहचान की भी जांच, आइडेंटिटी की टेस्ट, उस नए नंबर पर चल रही चैट में कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो सिर्फ आप और आपके बच्चे के बीच में ही है, जैसे उनके बचपन के किसी किस्से के बारे में या घर के किसी रूल के बारे में। स्कैमर कभी भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, वो पकड़ा जाएगा और आपको पता हो। पैसा भेजने में जल्दी ना करें, किसी भी अननोन नंबर पर इमोशनल बातें सुनकर फंड ट्रांसफर बिल्कुल ना करें। इमरजेंसी के वक्त भी हमेशा दिमाग से काम ले, दिल से बिल्कुल नहीं। वॉइस नोट भी मांगे, ये भी एक तरीका हो सकता है, ऑल्दो आपको 100% वॉइस नोट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनसे कहें कि वो आपको एक शॉर्ट वॉइस नोट भेजें जिसमें वो अपना नाम ले। अगर स्कैमर कोई बहाना बनाए कि माय खराब है तो समझ जाइए कि ये 100% फ्रॉड है। दोस्तों ये कुछ तरीके हैं कि नए जमाने के जो नए स्कैम मैं बताता रहता हूँ उनसे आप कैसे बच सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो आज मैंने फ्रॉड के बारे में आपको बताया आपसे कभी नहीं होगा, कोई आपके पास मैसेज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो आपको बचना कैसे है ये आपको पता होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड में जहां पर हम नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट,
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: पीछे आने दो बहुत करीब आ गया बस शुरू ही होने वाला है आने दो हाँ करीब में आ गया है आओ गले लगाओ यारे बहुत अच्छा आदमी है यार गले लगाओ इसको ये तो हमारा दोस्त है इसको मोहब्बत से रखना है इसका नाम वीकेंड है बाबा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh FM 107 इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का 6:02 और शुरू हो गया है हमारा वीकेंड
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
4: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
2: और जब भी वीकेंड आए तो गले लगा लिया करो भाई खुले बाहों से स्वागत किया करो और बस दिल का करीब रखा करो इसी का तो इंतजार करते हैं पूरे हफ्ते यार अपन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु इस्तकबाल है आप सभी का एफएम 107 पे और अभी से लेकर 6 से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा ये शो है अनप्लग्ड इवनिंग जहां पर सवाल होंगे आपके जवाब होंगे मजे मस्ती वाले गाने होंगे अनप्लग्ड इवनिंग के ये बेहतरीन से लाजवाब गाने जो आपका दिल जीत लेंगे बहुत ज्यादा हाई वर्जन वाले गाने नहीं होते एकदम से ऐसा ये सब नहीं होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ठीक है आपको लेकिन स्लो जो बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं भरना चाहते हैं जो सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं उनके लिए ये गाने होंगे और लेकिन ये गाने भी बड़े गजब के और लाजवाब होते हैं अनप्लग्ड इवनिंग इसीलिए गाने का नाम भी या कहें शो का नाम यही है अगला मतलब पहला गाना जो आएगा वो कैलाश खेर की आवाज में आएगा लेकिन उससे पहले सवाल होना चाहिए सवाल
5: मेरे सवाल जवाब
2: है, बहुत दिन बाद प्ले किया है मेरे सवाल का आपको जवाब देना है सवाल आज का अभी आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक सवाल किया था विच इज़ अबाउट रिटायर और रीयूज है ना कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो खराब वगैरह हो जाता है तो आप क्या करते हैं वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है कुछ फ़र्क है इस सवाल में और सवाल ये कि अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट कोई नया सामान चाहिए होता है घर के लिए और वो ऐसा सामान है जो यू नो नया भी मिलता है मार्केट में लेकिन सेकेंड हैंड भी मिलता है तो आप क्या प्रेफर करते हैं आमतौर पर अगर आपको कोई सामान मिल रहा है अच्छे कंडीशन में तो आप क्या सेकंड हैंड में ले लेते हैं या फिर आप वो वाले कि नहीं भाई मेरे को फर्स्ट हैंड का नया एकदम चमकता धमकता ही सामान चाहिए आपका क्या मानना है आप क्या प्रेफर करते हैं ये ज़रूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे इफ़ यू नीड समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके घर के लिए तो आप प्रेफर क्या करते हैं नया एकदम ताज़ा तरी वाला या फिर आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीदते हैं इसका जवाब देने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 6622107 6

9702-107। नहीं देखो, मुझे पता है तुम्हारे घर में एक बेड रखा है जो है तो सेकंड हैंड ही ना। क्या मुझे लगता है 80% लोगों के घर में ऐसा है। उसका एक रीजन ये है कि आप किसी दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, बेड थोड़ी लेकर आओगे। लेकिन हमारे हमारे अपने मुल्क में होता है कि एक शहर से दूसरे शहर अगर जा रहे हैं, इवन यू नो हम रेंट का घर ले रहे हैं, तो भी हम एक चारपाई तो लेकर जाते हैं अपनी वाली। वो ना छोटा हाथी, उसमें बुक कर लेते हैं और उसी में जा रहा होता है अपना सामान। तो वो भी तो अपन ने किया ही है ना। गद्दा तो अपना ले ही जाते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो गद्दा तो ले जा रहे हैं, है ना। या अगर अच्छा वाला शिफ्टिंग कर चल रहा है जिसमें आप अपनी फैमिली को भी लेकर जा रहे हैं, तो फैमिली से न जाने कितने सामान लेकर जाते हैं आप अपने घर से। लेकिन जब आप एक नए मुल्क में ही आ रहे होते हैं, शहर से शहर चेंज नहीं हो रहा है, एक मुल्क चेंज हो रहा है, तो कई ऐसे सामान होते हैं जो आपको ऑब्वियसली मिल जाते हैं। जैसे कि आपके घर में आमतौर पे एसी जो है वो मिली हुई है, वो भी एक तरह से सेकेंड हैंड ही है, किसी ने तो इस्तेमाल करी है। भले अब वो सेंट्रलाइज्ड हो, भले वो जो है आपने चेंज कर लिया हो घर, और फिर यू नो किसी ने इस्तेमाल करा है, वो भैया देखो चेंज कर दो, ठंडा नहीं करता, उसने कुछ दिन रखा फिर चेंज किया। तो आमतौर पे तो यही होता है, किसी आप रेंटेड मकान में जाते हैं, यहाँ पर तो आपको एसी ऑलरेडी लगी मिलती है और वो किसी ने तो इस्तेमाल किया ही है। लेकिन उसके अलावा, क्योंकि यहाँ आने के बाद जिंदगी में मुझे लगता है कि 10% चीज़ तो ऐसी है ही, हर हाल में कितना भी आप नया सामान लेते हो, एसी तो आपको या बेड है या फर्नीचर है वो आपको घर पे लगा लगाया मिल जाता है, तो वो तो सेकंड हैंड है। अब कोई ऐसा भी नहीं कह सकता, अरे नहीं भाई देखिए हम तो बड़े लोग हैं और हम अपना ही इस्तेमाल करते हैं। नहीं भाई, अपना इस्तेमाल मैं उस पे भी कह सकता हूँ कि अगर आप असल में ऐसे हैं कि नहीं, जो फर्नीचर रखा वो भी हम बाहर फेंकवा देते हैं और फिर अपना लेकर आते हैं, माना आप बड़े अमीर आदमी हैं, घर में लगा जो स्विच है वो तो सेकंड हैंड है। अब बोलो ना, ये तो मानना पड़ेगा ना तुमको, तो कहीं ना कहीं तो आप फंसी रहे हैं। तो यही आज का सवाल भी है, नंबर है 666-22107। आपको बताना है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट की कोई नई चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप क्या प्रेफर करते हैं, सेकंड हैंड दूसरा ले लेंगे, या किसी ने दोस्त ने इस्तेमाल किया है उसके घर से ले लेते हैं, है ना, या ख़रीद लेते हैं। सेकंड हैंड मार्केट भी यहाँ पर बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा है। जितना नया सामान खरीदने का मार्केट है उतना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि एट द सेम टाइम अच्छा बड़ा मार्केट है, लोग अच्छा मार्जिन भी कमाते हैं। ऐसे में कई ऐसी मार्केट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे वो नजमा की मार्केट हो, चाहे वो सुकल हराज की मार्केट हो, है ना, चाहे वो मंसूरा की कोई मार्केट हो, मुशायरे में भी काफ़ी यू नो ऐसी मार्केटें हैं जहाँ पर सेकेंड हैंड का एक अलग ही माहौल है भाई साहब। और ऐसा भी नहीं, आप कह भी नहीं सकते एक्चुअली वो सेकेंड हैंड है, आप देखेंगे आपको लगेगा मैं यार ये तो नया एकदम तड़कता भड़कता, भाई वो पुराने को भी एकदम चकाचक नया बना देते, क्या कारीगर लोग हैं, देखो कहां तक आ गए। कारीगरों की बात हो रही है। बाकी आप जवाब दें, नंबर 666-22107। फिलहाल आपके मैसेज की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और कॉल 1180 से कॉल आ रहा है, भाई साहब हम कॉल नहीं ले पाएंगे, आप मैसेज कर दें, बाकी लोगों की तरह हम मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। नंबर तो आपको पता ही होगा, तभी तो आप कॉल कर रहे हैं। कैलाश बाबू को बुलाते हैं और वीकेंड पर कैलाश से शुरू करते हैं। तू जाने ना, ये गाना FM 107 पे आपके लिए, दिल से बेसी।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: प्रियांशी श्रीवास्तव और मानस अरोड़ा की आवाज में गाना सुना आपने एफएम 107 पे। हवी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। इस्तकबाल है आप सभी का एफएम 107 के शो में जिसका नाम है अनप्लग्ड इवनिंग। और आज का सवाल सिमिलर है, दो तीन दिन पहले एक सवाल पूछा था विच इज रीयूज या फिर रिटायर। वैसे ही आज का एक सवाल है, कई बार ऐसा होता है कि आप जो सामान रिटायर करते हैं वो एक्चुअली में रिटायर नहीं होता है, वो किसी और के इस्तेमाल में आ जाता है और हम भी दूसरों के रिटायर किए हुए सामान कई बार इस्तेमाल में ले आते हैं। इससे ये होता है कि कतर का जो विजन है वो विजन बना रहता है और उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं और यू नो हम रीयूज़ कर लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि कचरा जो है ना वो और ज़्यादा ना बढ़े। जो डस्टबिन बना दिया है ना हमने पूरे अर्थ को, वो और ज़्यादा डस्टबिन ना बने। इसी पर आज का एक सवाल है और सवाल ये है कि जब आपको कोई नए प्रोडक्ट की या नई चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप असल में क्या करते हैं, आप नया खरीदते हैं या फिर आप करते ही हैं कि यार यू नो एक अच्छे मार्केट से जाके जैसे कि नजमा है, सुकल हराज है, वहाँ से जाके एक सेकंड हैंड प्रोडक्ट खरीद लें। हर इंसान अलग तरह से सोचता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर रहने के बाद अगर आप मुल्क ही छोड़कर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो असल में जो प्रोडक्ट है वो सेकंड हैंड इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों की कार जो है वो यू नो सेकंड हैंड होती है। और अब ये भी है कि कई लोगों का मानना है अरे सेकंड हैंड लफ्ज़ गलत है। अरे यार इसमें ठीक है, मतलब आपने दोबारा इस्तेमाल करी एक और क्या लफ्ज़ हो सकता है, रीयूज है ना। तो आप वो सामान खरीदते हैं जो असल में किसी ने अगर यूज़ कर लिया और उसके इस्तेमाल की नहीं है, है ना। इवन मैंने एक वीडियो भी हाल ही में देखी थी, वहीं से मेरे को ये सवाल आया था। ये कोई एक अमीर औरत है सोशल मीडिया पे जो बहुत ही अमीर एक सोसाइटी में रहती है। तो वो अमीर सोसाइटी करती क्या है कि कुछ कुछ सामान ना जो उनका इस्तेमाल नहीं है या फिर जो थोड़ा सा भी ख़राब हो गया, थोड़ा सा निशान पड़ गया, तो वो अमीर सोसाइटी वो सामान निकाल के बाहर रख देती है। उसमें शीशे होते हैं, लोगों की साइकिलें होती हैं, सोफ़ा होता है, बेड होता है, चेयर्स वगैरह हैं, अच्छे अच्छे फर्नीचर हैं और एकदम मतलब आपको कहीं से दिखेगा भी नहीं यार वो ख़राब है। तो लोग वो ना अमीर जो सोसाइटी के लोग रहते हैं वो बाहर रख देते हैं और वो औरत जो अमीर सोसाइटी में रहती है वो निकलती है, कार निकालती है और जो जो उसको सामान अच्छा लगता है वो रख लेती है और फिर बाकी आगे बेच देती है। तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा वो ऐसे अमीर बन रही है क्या सामान दूसरों का बेच के मतलब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है और उसकी वीडियो मुझे बड़ी पसंद आई। अब हो सकता है क्योंकि मैंने आज बात करी है और भाई एल्गोरिथम सब पकड़ ले रहा है, आपके भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से अब ये वीडियो आ जाएगी। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, आप क्या प्रेफर करते हैं, नया आइटम अगर आपको कोई नीड है या फिर आप सेकंड हैंड की तरफ बढ़ते हैं। और वैसे भी 80% या मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नया खरीदते हैं लेकिन बावजूद उसके 10-20% चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी में दूसरे मुल्क में रहने के बाद सेकेंड हैंड होती ही होती है। बाकी बात करें मैसेज के बारे में, ये है मैसेज फजील भाई को, सलाम वालेकुम असलम। अशफाक साहब ने हालांकि गाने की बात करी है, कैलाश अच्छे सिंगर है लेकिन मेरे ख्याल में ये गाना, फिर इमोजी डालना चाहते थे डाला नहीं उन्होंने शायद। इमरान भाई कहते हैं गुड इवनिंग, इफ इट्स समथिंग टू ईट आई विल बाय अ न्यू वन। हाँ यार बिरयानी कोई सेकंड हैंड दे भी नहीं रहा यार तुम्हें अब ये थोड़ा ही होता कि अरे वो बिरयानी हमें नहीं खानी है तुम खाओगे क्या घर पे हो सकता है। अब तो मैं ये तो बड़ी अजीब बात हो गई इमरान साहब, लेकिन मैम ये आगे इन्होंने और भी बातें लिखी हैं। आगे लिखते हैं कि आई विल बाय अ न्यू वन अगर कोई खाने की चीज़ नहीं है तो, सॉरी इफ इट इज समथिंग टू ईट आई विल बाय न्यू वन। ओके ओके ठीक है। जैसे कि प्लेटें वगैरह अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, किचन का कोई ऐसे सामग्री है तो आप जो है नहीं चाहते कि यार वो किसी के इस्तेमाल की चीज़ें हों, और आम तौर पे तो यही लोग करते हैं। मुझे लगता है 99% लोग यही करते होंगे कि अगर किचन की कोई चीज़ है, किचन का कोई सामान है, उसे नया ही खरीदते हैं। फिर उसके बाद लिखा है इफ इट समथिंग टू यूज लाइक अ बेड और अ चेयर द ओल्ड वन इज बेटर, इमरान भाई ने लिखा है। हाँ ये बात भी काफ़ी हद तक सही है। वैसे मेरे घर में भी मोस्टली जो सामान है जो खाने पीने के रिलेटेड है, किचन का सामान हो तो यही होता है, नया होता है। एसी हाँ सेकंड हैंड ही है, किसी ने तो यूज़ करी, सेंट्रलाइज्ड है ना भाई कुछ कर नहीं सकते भाई लेकिन मेरे अब जैसे हमारा एक ज़माना था जब हम अभी भी मिडिल क्लास ही हैं, कोई अमीर थोड़ी बने बस मुल्क ही चेंज हुआ है और एसी वाली कार आ गई है इतना ही चेंज है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि यार घर पे अगर अपने मुल्क में तो हम लोग का कार लेने का मन हुआ बट अब्बा ने कहा है बेटा कार लेंगे तो नहीं लेंगे, और अपनी वो वाला है, वो वाली गरीबी है कि अमीर भी नहीं हो पा रहा है कार भी लेनी है ये कैसी वाली अमीरी है भाई, ये गरीबी और अमीरी दोनों है कि कार तो लेना है बट सेकंड हैंड एसी में घूमना है, लेकिन जिसने इस्तेमाल कर लिया भाई वो ले लो, वो हो नहीं पाया। लेकिन अब्बा का हमेशा कहना था, इवन बाइक के लिए भी कई बार होता था, जब होता है ना आप 18 साल के होते हैं 19 साल के होते हैं तो आपको अपना हाथ सेट करना होता है बाइक वगैरह पे, फिर होता है कि अरे वो कार ले ले, ओ सॉरी बाइक ले ले, तो अब्बा कहते हैं बेटा नई बाइक ले लो, अम्मा नहीं अब्बा वो बाइक जो ठुक जाएगी तो फिर उसका खर्चा बहुत है, नहीं। तो अब्बा हमारे इस चीज़ के बड़े खिलाफ रहते थे कि कोई सामान लेना नया लो। और एक भाई ने ये बात कही भी है और मुझे लगता है कि यार ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। इनका नाम साबिर है, कहते हैं ब्रो न्यू प्रोडक्ट विल लास्ट लॉन्गर, बेटर इफ़ यू लॉन्ग यूज़ पिक न्यू। तो अगर कोई ऐसा सामान जो लंबे वक्त के लिए इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उसको नया ही खरीदें, है ना, तो नया प्रोडक्ट लंबा चलता। और एग्जैक्ट सेम वर्ड हमारे अब्बा के होते थे कि सेकंड हैंड खराब होगा, फिर बनवाओगे, फिर पैसा लगवाओगे, जितने का खरीदा फिर तुम 3-4 बार पैसा लगवाओगे, उतना ही कॉस्ट आ जाती है, तो इससे अच्छा है कि तुम नया ही खरीद लो। और नया खरीदने का पैसा नहीं होता था तो अब्बा कहते थे इंतजार करो बेटे, ऐसे थोड़ी मिल जाती कोई चीज़। अब अब्बा ने इंतजार करने के चक्कर में जो मेरा काटा है जेब, तो वो बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक के लिए कटा है। बाकी मुझे इमरान भाई की ये बात समझ में आई कि इट इज समथिंग, इफ इट इज समथिंग टू यूज लाइक अ बेड और चेयर तो आप पुराना खरीद सकते हैं। बाकी एक और ये मैसेज है साहिल साहब का, कहते हैं यार नया लेके पैसे क्यों खराब करना, दो आइटम लेके कुछ पेमेंट बचा के घर भेजना सही है। टू आइटम लेके नया लेके पैसे क्यों खराब करना, सेकेंड हैंड, अच्छा ओके टू, सॉरी मेरा भाई, मेरी गलती, मेरे को ही समझना चाहिए, आपकी गलती है तो क्या हुआ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये मेरी गलती है। फिर टू लिख के भाई मैं सेकेंड हैंड लिखना चाह रहे होंगे, मैं नहीं समझ पाया, सेकेंड हैंड आइटम लेके कुछ पेमेंट बचा के घर भेजना सही है साहिल भाई।

0: विजनरी आदमी है यार, ये बात तो मानना पड़ेगा। लेकिन आप जो पेमेंट घर पे पहुंचेंगे, फिर घर पे पहुंचने के बाद वहां कोई नया आइटम खरीद लेगा। ओहो दुनिया गोल है मित्र। साहिल भाई थोड़े अभी बच्चे हैं, नहीं समझ पाए ये दुनिया को। साहिल भाई आप यहाँ तो सेकंड हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घर में सब कुछ नया नया आ रहा है, आप देख लो, फ्रिज भी आ रही नहीं है ना, फिर एसी भी नहीं आ रही है, बाबा आप नहीं नुकसान चल रहा है, ये कैसी अमीरी है। बाकी उस्मान उरकजई कहते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम, तू जाने ना मेरे बादशाह एक वादा तो, अरे मेरा भाई नहीं प्ले कर सकते। क्यों कोड़े वाले आदमी को एक्टिवेट करना चाहते हो? हमारा कोड़े वाला आदमी कुंभकर्ण है, सोता रहता, वो अच्छा सो रहा है, क्यों जगाना चाहते हो भाई? एक बार उसका हाथ चलना शुरू हो गया, वो बॉडी गर्म हो जाती है भाई, फिर पीटेगा, फालतू पीटेगा, है ना। तो वो कोड़ा उसका रखा रहने दो, मत तेल लगवाओ उसके कोड़े में, हमको सटाक से दो चार दे देगा। आगे अशफाक साहब कहते हैं भाई बिरयानी भी मिलती है, अगर आप रात एक बजे के बाद जाओगे तो बिरयानी भी मिलेगी। अरे यार मेरा भाई कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर यार। लेकिन ये वाला बढ़िया था गुरु। बिरयानी भी मिलती है अगर रात एक बजे, तो सेकंड हैंड नहीं, वो तो है तो नीचे तो भले खुरचन मिले। अबे भाई मेरे को खुरचन से याद आया, पता नहीं लोग क्या समझते, एक तो मैं कानपुर में रहता हूँ, पता है वहां पर एक खुरचन बर्फी मिलती है, और सही में उसको जानबूझ के जलाया जाता है, क्योंकि असल में लोगों को खुरचन पसंद है वहां पे। कैसे कैसे लोग हैं यार, ये कैसे लोग है भाई, इनको खुरचन पसंद है। और कुछ लोगों को खुरचन यानी कि नीचे के जमे हुए चावल पसंद है, जले हल्के हल्के जले हुए चावल, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट कर, मतलब सही में कहीं से भी वो चावल खराब नहीं होंगे बिरयानी की, ये बात तो सत्य है। ऊपर वाले ने कहा है कि हम तुम्हें खाना देंगे। खाने का एक भी अनाज खराब नहीं जाएगा, वो है इसलिए कुछ लोग खुदा ने बना दिए कि जो जला हुआ भी खा ले रहे भाई। अशफाक मियां एकदम सही बोलते हैं आप। बाकी सलाम आया शेख साहब का, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, वेस्ट बे में रहने वाले गरीब थोड़ी, ओफो यार ऐसा नहीं है, ये कोई बात थोड़ी है, सेंट्रलाइज्ड एसी तो है सेकंड हैंड ना। हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ हल्का हल्का। लेकिन देखो क्या है ना, इंसान ना गरीब ऐसे गरीब ना होए है कि उसके पास पैसे है ना, इंसान सोच से गरीब होए है। वहाँ की सोच गरीब होए है, वह अपने काम से गरीब होए है। समझ रहे एमके भाई, तो मैं अपने काम से गरीब हूँ भाई, तो मजा आता है बस, क्योंकि मेरे पास जो कार है भाई, मैं मेरा वो है कि भाई ऐसी भयंकर भारी भरकम कार लो कि आप बढ़िया चला के जाओ, तो रेत वेत में घुस जा, कहीं अंदर अंदर चली जाओ, उसको कहीं भी फंसा दो कीचड़ वीचड़ में, उसके बाद भी उसको सेकंड गियर में डालो बगैर एक्सेलरेशन के, वो निकले जा रही है, एकदम खुल्ला डुल्ला कार है ना, उसको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, वो कह रही है मतलब एक दांत में उसने तीली चबाई हुई है या फिर बिरयानी के चावल छुटा रहा है वो टूथपिक से। हमारी कार ऐसी होनी चाहिए कि टूथपिक से चावल छुटा रहा और फिर कीचड़ से गाड़ी निकाल ली। एक कार होती है चाइनीज भाई, वो रेत में जाने के बाद ऐसी बेहोश हो जाती है कि साहब मैं नहीं चल पाऊंगा साहब, मेरे से नहीं होगा साहब, प्लीज साहब मेरे को बख्श दो, चाइनीज हूँ साहब, माना कि मैं सस्ती मिल जाती, इसका मतलब ये थोड़ी रेत में खोज दो। तो इसलिए मैं सेकंड हैंड लिया भाई। तो भाई रेत में जाने वाला आदमी, मैं चाइनीज लेके लग्जरी लेकर क्या करूंगा जब मेरे को रेत में ही जाना है। बाकी आगे एक और ये मैसेज है मोइनुद्दीन अंसारी का, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम, मुझे तो सेकंड हैंड ही सामान बहुत पसंद आता है। और ये बात बिल्कुल सही है भाई, अगर आपको सेकंड हैंड सामान लेना, कोई इसमें प्रमोशन तो है ही नहीं, आप नजमा चले जाएं, बहुत तमाम दुकानें हैं, मैं आपको गारंटी कह सकता हूं आपको समझ में ही नहीं आएगा कि नया और पुराना क्या है, यहां पर तो फर्क आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप दुकानदार से खरीद रहे हैं, डीलर, एक भाई ने कहा भी है शायद डीलर से, कहाँगे वो वाले भाई, कहाँगे खैर कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे तो हम बताएंगे। और ये बात बिल्कुल सही करा है कि सेकंड हैंड पसंद है, और मेरा भी मानना है यार कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा मिल रहा है जिसमें रीयूज कर सकते हैं आप, और सरकार तो कह ही रही भाई रीयूज करो प्लीज, तो आप रीयूज ज़रूर करें। आगे ये मैसेज है एक और भाई का, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरा भाई, नेम है सुहेल त्यागी, यूपी 12, हाय हाय क्या बात है, मुझे भी बिरयानी की खुरचन बहुत पसंद है। अरे वाह देखो आ गए भाई। हाय हाय हमारे कानपुर में एक जगह है बब्बू खुरचन उनका नाम है, वो स्वीट्स हाउस है उनका ना, वो मिठाई बेचते हैं, बब्बू खुरचन उनका नाम है भाई, बहुत फेमस है यार वो, तो खुरचन ही बेचते हैं। सोचो यार, और वो बहुत अमीर आदमी है भाई, उनके पास महंगी वाली गाड़ी है, मतलब जो यहाँ पर लोग खरीद भी नहीं रहे ना वो वहां पर है लोगों के पास, मतलब 4x4 नहीं है वाली बट ऐसा स्टैंडर्ड है भाई, लेदर सीट्स वाली, ठीक है, तो वो उनके पास है यार। खुरचंद, सोचो खुरचंद बेच के मिठाइयां कोई अमीर हो ही जा रहा है, और वो सिर्फ सुहेल त्यागी जैसे भाइयों के वजह से, क्योंकि भाई को खुरचंद पसंद है, लेकिन अच्छा है, कई लोगों को पसंद ही आती है, थोड़े जले हुए चावल हो मन कर जाएगा, रहने दो यार, बिरयानी आज खा ही लूंगा, आज तो थर्सडे भी आया यार, आज तो घर में खाना नहीं बनेगा। शे अगर फान साहब कहते हैं, खतर में फर्स्ट ईयर सूख हराज में सेकंड हैंड बाय करते थे, गोल करके बैठ के क्लोथ्स के ढेर पर टूट पड़ते थे, अमीरी इतनी थी। अरे नहीं, ये भी एक तरीका है रीयूज करने का भाई। बाकी सलाम लिखा है शेख साहब का, वालेकुम अस्सलाम। फिर एक और मैसेज है, सलाम वालेकुम। हाँ, ये वो वाले भाई हैं, देखो मिल गए। इफ हेल्थ रिलेटेड है तो न्यू, आतिफ भाई इनका नाम है, अगर हेल्थ से रिलेटेड है कोई चीज तो नया लो भैया, लेकिन अगर नहीं है तो सेकंड हैंड इज गुड बट फ्रॉम डीलर्स। तो ये बात तो है, अगर आपको नजमा से सामान लेना नजमा से, या फिर या तो आज तो प्रमोशन ही होगा, आज सेकंड हैंड बहुत बिकेंगे तो उसके अलावा सूखराज भी है, वहां से भी आप ले सकते हो और आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेकंड हैंड है। अगर हेल्थ रिलेटेड है तो सामान नया लो, है नहीं पता चला, अरे भैया डॉक्टर साहब वो सुई लगा देते, हाँ लीजिए ये लगा, अरे नहीं नहीं वो सेकंड हैंड वाली लगा दो भाई साहब वो कब्रिस्तान के लिए गड्ढा खोदना था, अरे वो ऑलरेडी खुदा हुआ उसी में डाल दो इनको भाई साहब लेकिन ये तो सेकंड हैंड गड्ढा है, हाँ इसी को इसी का इंटरेस्ट था, उसी से तो मरा है सेकंड हैंड से तो भाई साहब हेल्थ अगर आपकी मुतासिर हो रही है किसी चीज से, किसी सेकंड हैंड सामान से, तो सेकंड हैंड की तरफ नहीं जाना है, बाकी आप नए की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल 6:31 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और थोड़ा वक्त आ गया है कि हम खत जो है वो आपसे लिखवा लें, और खत आज आपके उस आइटम के लिए होना चाहिए, गलत मत समझो यार, सुनो पूरी बात पहले, घर में रखे हुए उस प्रोडक्ट उस आइटम की होनी चाहिए जिसने आपका लंबे वक्त तक साथ दिया है, लंबे वक्त से साथ दिया है, उसके बारे में खत लिखो आज। या अगर आपके साथ वो आइटम वो प्रोडक्ट नहीं है तो भी आप लिख सकते हैं, नंबर है 666-22107। कैसे? आपको डियर फ्रिज अगर आपके जहन में है, ठीक है, या सेकंड हैंड फ्रिज अगर है तो सेकंड हैंड के लिए ही होनी चाहिए, या फिर बेड, मेरे पास भी एक था यार बेड लेकिन वो टूट गया तो मैंने बेच दिया बहुत बेकार निकला भाई, वो सिर्फ 6 महीने ही चल पाया था। तो अगर बेड है तो बेड, फ्रिज है तो फ्रिज, क्रिकेट बैट है, या फिर आपके पास एसी है ना, डिशवॉशर है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, आपकी कार है ना, तो कोई भी सामान अगर आपके पास सेकंड हैंड है, उसने बहुत लंबे वक्त तक आपका साथ दिया है, तो एक प्यारा नोट तो होना ही चाहिए, डियर व्हाटएवर, जो भी वो सेकंड हैंड प्रोडक्ट है जिसने लंबे वक्त तक आपका साथ दिया है, उसका नाम लिखे और फिर एक खत हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दे, नंबर 666-22107 6-6-6-2-2-107। वो डॉक्टर साहब एक आए हैं हमारे मार्केट में सेकंड हैंड सीरीज लेके, बताओ अगर लगवाना हो तो खत जरूर लिखो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर 666-22107। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद आपके मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-888-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: क्रिकेट हो
3: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स फोर रन।
2: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूजडे एट 1 PM।
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर, दिल से देसी।
2: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए

क्या बात है, आतिफ असलम की आवाज में तेरा हुआ ये गाना। और जब बात आतिफ असलम की हो तो भाई कैसा भी वो गाना गा दे यार, वो आवाज उनकी गजब की होती है। और अनप्लग्ड ये गाना तेरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 6:46 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और एक खत आज आपको लिखना था अपने उस घर के रखे हुए सामान पे जो बहुत लंबे वक्त से आपका साथ दे रहा है यार, जो आपने सेकंड हैंड जरूर खरीदी लेकिन बहुत लंबे वक्त तक आपका साथ दिया। सो मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे पहला मैसेज बहुत ही सबसे छोटा, अगर अभी तक मैं एक महीने से तो शो कर रहा हूँ तो सबसे छोटा अगर कोई मैसेज है तो वो यही है। किस भाई ने मैसेज किया है, ये है इमोल राय, इन्होंने कहा है डियर बाइक थैंक्स। भाई अगर आपकी बाइक होती ना यार और बोल सकती तो वो खुश होती, और अगर बोल सकती तो वो बोलती है बहुत ही बढ़िया यार। बाइक से तो एक अलग मोहब्बत होती है ना मर्दों को। और मुझे भी याद है मेरी एक बाइक थी, हालांकि नई थी, मैंने उसको सेकंड हैंड बेच दिया है, तो वो डियर बाइक थैंक्स बोलेगा मेरा दूसरा वाला दोस्त जिसको मैंने बेची है, बट बहुत मोहब्बत है उसको भी बाइक से और मुझे भी, तो मैंने उसी को बेची है जो ख्याल रख पाए। और मैं जब जाता हूँ ना कानपुर तो मैं उसे इस्तेमाल भी करता हूँ। ओके, एक और ही मैसेज है एमके भाई का, लिखा है लव यू भाई। आए हाय, दिल गलती कर बैठ, क्या बात है भाई यार। ऐसा अब मेरे को थोड़ा डर भी लगने लगा जब कोई बोलता है ना लव यू भाई करके, मेरे को डर लगने का। ऐसा तो नहीं कि उधार चाहिए भाई थोड़ा थोड़ा मैं डर जाता हूँ। बाकी एक और ही मैसेज है और खत लिखा है भाई ने मोहब्बत वाला, लिखा है जमाल साहब ने, डियर दोस्तों सेकेंड हैंड दोस्ती है लेकिन बहुत लंबी चली है। देखो मैं घर के किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था और जमाल साहब देख रहे हैं। अभी इंसान को, मर्दों को क्या ही बताओगे आप कि आपको खत लिखना है, इमोशनल खत लिखना, वो मजे में ही रहते हैं हमेशा। मर्द समाज से दो वक्त पे थोड़ा सा सैड फील करते हैं, एक जो बहुत करीबी हो थोड़ा दूर हो जाए तब, और जब वो घर पे हो तब थोड़ा सैड होते, बाकी हर वक्त खुश रहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान देखो भाई। इवन जिनसे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं उनके सामने भी वो खुश रहते हैं, बस ज़्यादा नहीं बोलो फजील भाई। बाकी एक और ये मैसेज है, कहा है अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं रास्ते में था और ट्रैफिक में था तो सॉरी हाजिरी लगा दो, बस लग गई है मेरा भाई, थोड़ा लेट ही सही। आसिफ इनका नाम है भाई, मेरे पास एक बाइक है फलाना 100 भाई, अभी जाके मैंने बेच दिया क्योंकि मुझे ख़रीदना है कार इंशाल्लाह। ओहो क्या बात है आसिफ भाई ने, वो यार बाइक मत बेचा करो, बाइक से एक अलग मोहब्बत है। अब वो बता भी कौन रहा जिसने खुद बेच दी। अच्छा मैंने बेची इसलिए क्योंकि वो इस्तेमाल होगी नहीं तो इंजन बैठ जाएगा। तुम्हारे घर में तो कोई होगा ना आसिफ भाई, मेरे घर में अब्बा नहीं चला, मेरे अब्बा चलाते थे स्कूटी उस वक्त उनके पास हैवी वाली थी लेकिन फिर पता नहीं क्यों उनको स्कूटी समझ में आई, फिर उनने स्कूटी बेच दी किसी और को फिर अब वो नहीं लेकर आए अपनी बाइक, उनका कहना बाइक ही सही है। तो अगर आपके घर में कोई चलाने वाला है तो दे दो भाई, बेचो नहीं, बेचो नहीं, बाइक तो मोहब्बत है मर्दों की, धोनी भाई को ऐसी थोड़ी लोग पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और एक भाई ने लिखा है वेयर इज काकी, आमिर जफर ने लिखा है काकी, काकी को कोई बाइक पे बैठा के ले गया अब उन्हीं से अब वो दिख जाए कहीं आपको तो बता देना, मैं खुद भी नहीं जानता भाई, मैं भी मैसेज वगैरह नहीं कर रहा हूँ यार। और काकी को अलाउ नहीं है क्योंकि वो जैसे एक दो दिन आने की कोशिश करी उन्होंने तो हमारे जो कोड़े वाले भैया उन्होंने खदेड़ लिया उनको बहुत बुरी तरह से उनको खदेड़ लिया गया, तो और वो भी दूर से ही ऑफिस में एंट्री गेट से ही उनको खदेड़ लिया गया। फिर एक और ये मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं डियर फ्रिज, अच्छा भाई आपकी स्पेलिंग एफ से शुरू, डियर फ्रिज थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी सो लॉन्ग। क्या बात है, आप फ्रिज के अंदर ही सोते हैं क्या मेरा भाई, ऐसी क्या मोहब्बत है भाई बता ही दो ना कि काकी इंडिया चली गई हैं। हुसैन साहब, एमडी हुसैन इनका नाम है यार, मेरे को आइडिया कुछ नहीं है, मैंने उनको मैसेज करना छोड़ दिया है। उस आदमी को मैसेज क्यों ही करना, सॉरी उस औरत को मैसेज क्यों ही करना जिसको इतनी अकड़ में रहना है, मैं भी मैसेज नहीं करता वो भी मैसेज नहीं करती है, दोनों की अकड़ बराबर बनी रहती है। फिलहाल जल्दी से एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कहते हैं डियर, अच्छा ये वही वाला मैसेज है साहिल भाई का, डियर 32 इंच टीवी तुम खराब हो तो 65 इंच लेना है बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात है, कभी कभार होता है ना कि दादी का इंतजार करते हैं, दादी बस आप हैं तो रुके हुए हैं वरना ये प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए
और यार ये अभी मैं सोच भी रहा था, अभी जब मैं एक्चुअली शो कर रहा था, जब भी मैं सोच रहा था कि यार घर में कभी कभार ऐसा होता ना कि आप चाहते हैं कि यार ये तो बहुत लंबा चल गया, भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना लंबा चलेगा, अब खराब हो तो नया ले, अब वो खराब भी नहीं होके दे रहा। और साहिल भाई ने एकदम वही बात भी कह दी कि 32 इंच देख रहे हो, 32 इंच तुम्हारा इंतजार हो रहा है, कब तुम निकल लो, 65 इंच की तैयारी में है भाई। लेकिन अच्छा है, ये तरक्की, यही तरक्की तो सबसे ज़्यादा खुशगवार होती है एक मर्द के लिए, और क्या ही है। बाकी एक और ये मैसेज किस भाई का है, अब ये काकी कौन है, मोहम्मद भाई को पता ही नहीं काकी कौन है। अरे भाई साहब थोड़ा लेट आए होंगे आप, आपने असली ज़िंदगी के मज़े मतलब फिर आपने छोड़ ही दिया है। अगर किस्मत रही आपकी, दुआ करिए काकी आएंगी तो आपको पता चलेगा वो कौन है। वो एक ऐसी औरत है भाई जिसने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी है। नाज़िया की सबसे अच्छी दोस्त थी काकी, नाज़िया के बहुत करीब थी, और नाज़िया जो है उनको, नाज़िया इस मतलब नाज़िया लाइक उनको इतना ज़्यादा पसंद करती थी कि वो जहर भी दे सकती थी। मतलब ऐसा कि जेल जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस औरत को ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया मोहम्मद साहब। फिर एक और मैसेज है, हम लोग मराठी में बोलते काकी आंटी को, हाँ वो होता है, मेरे को आइडिया है। बाकी कहते हैं भाई आज हैप्पी वीकेंड है तो लास्ट में एक गाना बजा दो। अरे कोड़े वाला आदमी बैठा हुआ है यार, तुम तो मेरी चमड़ी उखड़वा के ही मानोगे। बाकी अमीर जफर कहते हैं कि आदमी के जबान से सच निकल ही जाता है, ये बात तो काफ़ी हद तक सही है। मैं क्या करूँ भाई, मेरी जबान की वजह से ही मैं किसी दिन बड़े मुसीबत में आऊँगा। बाकी इंसान अच्छा हूँ, मैं इंसान अच्छा हूँ, मेरी जबान खराब है भाई साहब। अब क्या करें यार, अब काकी के साथ रहते रहते इंसान बर्बाद बेकार हो ही जाता है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, आपके खत लाजवाब थे साहिल भाई की, इंशाल्लाह 65 इंच की टीवी आ जाएगी। बाइकर को बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे संडे को, और ये संडे की मुलाकात शाम को 6 बजे FM 107 पे आपके खत के साथ, आपकी बातों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

की तारीख के एक ऐसे बैट्समैन के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ लीडरशिप कंसिस्टेंसी बल्कि एक अनोखा स्टैटिस्टिक्स के जरिए आज भी क्रिकेट फैंस के दिलों में राज कर रहा है और इनका नाम है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। डोनाल्ड ब्रैडमैन इनफैक्ट देखा जाए क्रिकेट के रेफरेंस में डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम हमेशा बड़े ही इज्जत के साथ लिया जाता है। क्रिकेट की तारीख में कई रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो फैंस और एक्सपर्ट्स को हैरान कर देते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स वक्त के साथ टूट जाते हैं जबकि कुछ इतने मुश्किल होते हैं कि उन तक पहुंचना भी नामुमकिन लगता है। इन्हीं रिकॉर्ड्स में सबसे नुमाया नाम ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी बैट्समैन सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का है जिनका टेस्ट क्रिकेट बैटिंग एवरेज 99.96 था। यह सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि तमाम स्पोर्ट्स हिस्ट्री के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स में शुमार किया जाता है। आज भी जब क्रिकेट के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स की बात होती है तो ब्रैडमैन का 99.96 बैटिंग एवरेज सबसे ऊपर नजर आता है। ये ऐसा रिकॉर्ड है जो तकरीबन एक सदी गुजरने के बावजूद अपनी जगह पर कायम है और शायद आने वाले कई सालों तक कायम रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद कई ऐसे मारूफ बल्लेबाज आए, बहुत स्कोर्स किए, सेंचुरीज भी बनाए, इंक्लूडिंग ज़हीर अब्बास, सुनील गावस्कर, विवियन रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कितने भी नाम ले लीजिए, सब आए गए, लेकिन ये रिकॉर्ड 99.96 का जो एवरेज है किसी ने भी तोड़ नहीं पाया, छू तक नहीं पाया। अच्छा, ये थोड़ा सा आप डोनाल्ड ब्रैडमैन का तारुफ करवाते हैं। सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन की पैदाइश 1908 में ऑस्ट्रेलिया में हुई। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट से गहरा लगाव था। कहानी मशहूर है कि वो टेनिस बॉल और पानी के टैंक के साथ प्रैक्टिस करते थे जिसने उनकी रिफ्लेक्सेस और हैंड आई कोऑर्डिनेशन को गैर मामूली बना दिया था। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यू नो दैट हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो क्रिकेट में हम कहते हैं। जब डोनाल्ड ब्रैडमैन ने प्रोफेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो क्रिकेट की तारीख के सबसे अजीम बल्लेबाज बन जाएंगे। उन्होंने अपने करियर के दौरान जो कंसिस्टेंसी दिखाई वो आज तक किसी दूसरे बल्लेबाज के लिए मिसाल बनी हुई है। दैट्स अ हदफ, दैट्स अ टारगेट, एवरी बैट्समैन ट्राइज टू टच दैट रिकॉर्ड ऑफ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। लेकिन वही कहते हैं ना कि एवरेस्ट में चढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, नॉट दैट कि आप बहुत ही ग्रेट माउंटेनियर हैं, ग्रेट स्किल्स हैं आपके पास, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पाएंगे। नीड नॉट नेसेसरली आपने सेंचुरीज कितने बना लिए, नीड नॉट नेसेसरली आपने रन्स, बैक फुल ऑफ रन्स बनाते जा रहे हैं, वो तो सचिन ने भी किया है, सुनील गावस्कर ने भी किया, ज़हीर अब्बास ने भी किया, विराट कोहली ने भी किया, लेकिन ये एवरेज इज डिफरेंट। अच्छा, 99.96 एवरेज है क्या, ये आपको थोड़ा सा तफसील से बता देता हूँ। क्रिकेट में बैटिंग एवरेज किसी बल्लेबाज की परफॉर्मेंस को नापने का एक अहम पैमाना होता है। इसे टोटल रन्स को डिसमिसल्स की तादाद पर डिवाइड करके निकाला जाता है। आमतौर पर अगर किसी बल्लेबाज का टेस्ट एवरेज 50 हो तो उन्हें वर्ल्ड क्लास माना जाता है। अगर एवरेज 60 के करीब हो तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझा जाता है। मगर डोनाल्ड ब्रैडमैन का एवरेज तो 99.96 था, जो दूसरे तमाम ग्रेट बल्लेबाजों से बहुत बहुत आगे है। ये सोचिए कि एक बल्लेबाज हर मर्तबा क्रीज पर आकर तकरीबन सेंचुरी स्कोर कर रहा हो। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्रैडमैन का रिकॉर्ड क्रिकेट का सबसे मुश्किल रिकॉर्ड है। गावस्कर ने भी तो सेंचुरीज पे सेंचुरीज, सचिन तेंदुलकर ने भी सेंचुरीज पर सेंचुरीज, विवियन रिचर्ड्स ने भी सेंचुरीज, ज़हीर अब्बास ने भी सेंचुरीज, विराट कोहली भी सेंचुरीज, बहुत सारे सेंचुरीज, लेकिन एवरेज इज समथिंग डिफरेंट। डोनाल्ड ब्रैडमैन ने सिर्फ 52 टेस्ट मैचेस खेले। इन मैचेस में उन्होंने 6,996 रन स्कोर किए। उनका हाई स्कोर 334 था और उन्होंने अपने करियर में 29 टेस्ट सेंचुरीज बनाई। और डोनाल्ड ब्रैडमैन का ही रिकॉर्ड सुनील गावस्कर ने तोड़ा था टू बिकम द हाईएस्ट टेस्ट सेंचुरियन इन द टेस्ट क्रिकेट। 29 सेंचुरीज तोड़कर 30 सेंचुरी स्कोर किया था सुनील गावस्कर 1987, लेकिन एवरेज को पकड़ नहीं पाए। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 80 इनिंग्स में 29 सेंचुरी स्कोर की। आज के दौर में कई बल्लेबाज 150 या 200 इनिंग्स खेलकर भी इतनी सेंचुरीज नहीं बना पाते।
अच्छा एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि ब्रैडमैन की बैटिंग सिर्फ रन्स तक महदूद नहीं थी, उनकी स्ट्राइक रोटेशन, शॉट सिलेक्शन और कंसंट्रेशन भी लाजवाब थी। वो बॉलिंग अटैक्स को इतनी आसानी से डोमिनेट करते थे कि कई दफा बॉलर्स उनके खिलाफ बेबस नजर आते थे। दैट वॉज द मास्टरी ऑफ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, इज द फास्टेस्ट बॉलर ड्यूरिंग हिज टाइम, जहां पे ना तो चेस्ट गार्ड ना तो एल्बो गार्ड कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं कि ये चार रन्स का फासला क्या। डोनाल्ड ब्रैडमैन के जो 99.96 एवरेज की कहानी का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है उनका आखिरी टेस्ट मैच, और ये जो चार रन्स का फासला है, वो सोचे कि 100 एवरेज भी हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। 1948 में इंडिया के खिलाफ अपनी आखिरी टेस्ट मैच में ब्रैडमैन को अपना करियर एवरेज 100 तक पहुंचाने के लिए सिर्फ चार रन्स की जरूरत थी। पूरी दुनिया की नजरें उन पर लगी हुई थी, फैंस को यकीन था कि वो आसानी से ये माइलस्टोन हासिल कर लेंगे, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर एरिक हॉलिस ने उन्हें दूसरे ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। एंड ये दैट वाज अ शॉकिंग थिंग केम फ्रॉम एवरीवन इंक्लूडिंग इंग्लैंड प्लेयर्स भी चौंक गए कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन आउट हो गए। ब्रैडमैन बिना कोई रन बनाए आउट हो गए, एंड दैट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग दैट हैड हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। उनको सिर्फ चार रन की जरूरत थी लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। कभी कभार होता है कि आपको सेंचुरीज पे सेंचुरीज आप स्कोर कर जाते हैं, कभी कभार ये भी होता है कि 99 रन पर भी आप आउट हो जाते हैं। किस्मत किस्मत की बात है, और इसी वजह से उनका फाइनल एवरेज 100 के बजाय 99.96 रहा। ये क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे मशहूर लम्हों में से एक माना जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ब्रैडमैन और उनके मुकाबले के बल्लेबाजों के साथ। जब हम ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दूसरे ग्रेट बैट्समैन के एवरेज के साथ कंपेयर करना जरूरी है। आज के दौर के अजीम बल्लेबाज भी आमतौर पर 50 से 60 के दरमियान एवरेज रखते हैं। कुछ एक्सेप्शनल खिलाड़ी जो हैं वो 60 के करीब पहुंचते हैं, लेकिन ब्रैडमैन का 99.96 एवरेज इन सबसे बहुत बहुत ज़्यादा है। यानी ब्रैडमैन और दूसरे लेजेंड्स के दरमियान जो फर्क है वो उतना ही बड़ा है जितना एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और एक एवरेज इंटरनेशनल प्लेयर के दरमियान होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुनील गावस्कर वाज एन एवरेज और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली या बाबर आजम ये एवरेज बल्लेबाज है। वो जो क्लास है, क्लास इज डिफरेंट। वो जो कंसिस्टेंसी है, तो कंसिस्टेंसी का ही एक फैक्टर है, और इसीलिए कई स्पोर्ट्स एनालिस्ट कहते हैं कि ब्रैडमैन का स्टैटिस्टिकल डोमिनेंस किसी भी स्पोर्ट के एथलीट से ज्यादा इंप्रेसिव है। और आज मानते भी हैं एक्सपर्ट्स कि नॉट दैट ही प्लेड क्रिकेट, आई मीन स्पोर्ट्स की एंगल से बात करें तो जो कंसिस्टेंसी है, देखिए स्पोर्ट्स पर्सन को कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत होती है। विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ एनी स्पोर्ट, चाहे एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो। जो वो लगातार मुसलसल अब खेलते जाते हैं और एक टारगेट लेकर, एक मुसलसल एक आपके सामने एक गोल है कि इसी गोल को अचीव करना है, जो गोल सेंचुरीज का भी हो सकता है, वो गोल यू नो परफेक्शन का भी हो सकता है, वो गोल रन्स का भी हो सकता है। और यहाँ ब्रैडमैन ने अपने स्टैटिस्टिक्स यानी बैटिंग एवरेज को मुसलसल मजबूत बनाए रखा है, दैट इज समथिंग वेरी इंप्रेसिव। अच्छा इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बॉडी लाइन सीरीज का जो चैलेंज था। बॉडी लाइन सीरीज इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एशेज सीरीज को बॉडी लाइन सीरीज कहा गया था, और उस वक्त इंग्लैंड वांटेड टू डोमिनेट ऑस्ट्रेलिया बिकॉज इंग्लैंड को हमेशा हार मिलती रही है, और हमेशा एशेज सीरीज में दे वर ऑन द बैक फुट। सो जब वो दौरा कर रहे थे एंड ऑस्ट्रेलिया में, तो इंग्लैंड के पास एक नया तरकीब आया, इंग्लैंड के कप्तान के पास डगलस जर्डन के पास, कि अब ऑस्ट्रेलिया को कैसे हम हराएं। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए डॉन ब्रैडमैन को रोकना पड़ेगा और साथ ही साथ उनके जितने भी यू नो सबसे टॉप बैट्समैन हैं उनको भी रोकना पड़ेगा। तो फास्ट बॉलिंग, बॉडी लाइन यानी बॉडी को अटैक करो, यानी आपके जिस्म में हर तरह की गेंद फेंक दो आप, शॉर्ट पिच, बाउंसर्स, कुछ भी। और बाउंसर्स के कोई रूल वगैरह उस टाइम होता नहीं था, आईसीसी डिडंट एग्जिस्ट देन, एंड इसी वजह से दैट सीरीज पर्टिकुलर सीरीज वॉज इनफेमसली कॉल्ड द बॉडी लाइन सीरीज। और ये बैटमैन के करियर का सबसे मुश्किल 1932-1933 की ये बॉडी लाइन सीरीज थी। इंग्लैंड ने ब्रैडमैन को रोकने के लिए एक नई बॉलिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, जिसे अभी जो मैंने आपसे कहा बॉडी लाइन कहा गया है, मतलब जिस्म को निशाना बनाकर आपको रोका जाएगा।
हमें जबरदस्ती है।

I mean, it's like physically you are assaulting someone. Lekin with a gain, with a ball, with a red cherry, jo cricket mein hum istemal karte hain, isko hum red cherry bhi bolte hain. Aur is strategy mein bowlers batsmen ke jism ko target karte the aur leg side par fielders lagaye jaate the. Matlab thoda sa nick lag jaye, thoda sa aapke elbow lag jaye, and that will give them a catch or sometime, you know, square leg par ya gully par wicketkeeper ke paas kuch bhi ho sakta tha aur hua bhi tha. ये टैक्टिक इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि दोनों ममालिक के दरमियान सियासी तनाव तक पैदा हो गया था. इस सब के बावजूद ब्रैडमैन ने सीरीज में रन स्कोर किए और साबित किया कि वो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं. बॉडी लाइन सीरीज क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे मशहूर चैप्टर्स में से एक है और ब्रैडमैन उस कहानी के मरकजी किरदार थे. अच्छा, हम बात कर रहे हैं गेम चेंजर की और गेम चेंजर में आज हम डोनाल्ड ब्रैडमैन के बारे में बात करें. इनफैक्ट डोनाल्ड ब्रैडमैन के बैटिंग एवरेज के बारे में हम बात करें, 99.96 के बारे में, जो कि आज भी अनब्रोकन है. तो अभी जानते हैं कि ब्रैडमैन की बैटिंग का राज क्या था. कई लोग ये सवाल करते हैं कि ब्रैडमैन इतने कामयाब क्यों थे. एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कॉन्सेंट्रेशन थी, फोकस. वो घंटों तक बैटिंग कर सकते थे बिना किसी गलती के और इसके अलावा उनके फुटवर्क बहुत तेज थी और वो गेंद की लाइन को बहुत जल्द ही समझ लेते थे. सचिन के लिए भी कहा जाता था, सचिन को कंपेयर भी किया गया विद सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, बट वही है, एवरेज आपके पास नहीं है तो सचिन तेंदुलकर कैन नॉट बी अ डोनाल्ड ब्रैडमैन. फॉर मी पर्सनली आई फील सो. ये जबरदस्ती का एक यू नो इक्वेशन कर देते हैं, हाँ सचिन इज लाइक डोनाल्ड ब्रैडमैन, मीडिया का एक अंदाज है. तो ब्रैडमैन का शॉट सिलेक्शन भी लाजवाब था. वो रिस्क और रिवॉर्ड के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन कायम रखते थे. इसी वजह से वो ना सिर्फ रन स्कोर करते थे बल्कि लंबी पारी भी खेल सकते थे. आप लोगों का सवाल ये हो सकता है कि क्या ये रिकॉर्ड कभी टूट सकता है. आज के क्रिकेट में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये ब्रैडमैन का 99.96 एवरेज कोई भी तोड़ देगा, तोड़ सकता है. अक्सर एक्सपर्ट्स का जवाब होता है नहीं तोड़ सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं तोड़ सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है. और हमने देखा भी है, देखिए ब्रैडमैन के बाद मैंने जैसे शुरू में कहा कई ऐसे मारूफ बल्लेबाज आए हैं, क्लासी बैट्समैन, रन्स पे रन, बैकफुल ऑफ रन्स, हर कोई आए गए लेकिन 99.96 आज भी इंटैक्ट है. मॉडर्न क्रिकेट में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स खेलने पड़ते हैं. टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ ओडीआई और T20 भी मौजूद हैं. इस वजह से खिलाड़ी के लिए सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना मुश्किल हो गया है. इट्स अ वेरी यू नो आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अहम इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों आज के बल्लेबाज डोनाल्ड ब्रैडमैन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा. क्योंकि तीन डिफरेंट फॉर्मेट्स है क्रिकेट में, फोकस करना हर एक डिफरेंट फॉर्मेट्स को इट्स डिफरेंट, इट्स अ चैलेंज. इसके अलावा बॉलिंग अटैक्स भी बहुत मजबूत हो चुके हैं और टीम्स वीडियो एनालिसिस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं. इसीलिए ब्रैडमैन का एवरेज आज के दौर में और भी ज्यादा नामुमकिन नजर आता है. कई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रैडमैन का 99.96 एवरेज सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि तमाम स्पोर्ट्स का सबसे इम्प्रेसिव स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है और हैवी, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस और गोल्फ में भी लेजेंड्स ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन किसी एथलीट ने अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स से इतना बड़ा फर्क कायम नहीं किया जितना ब्रैडमैन ने किया. इसीलिए जब भी ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स की बात होती है तो डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम हमेशा सबसे आगे नजर आता है. अच्छा सर, डोनाल्ड ब्रैडमैन की लेगेसी के बारे में थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे. सर डोनाल्ड ब्रैडमैन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे दोस्तों, बल्कि एक्सलेंस की मिसाल थे. उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ने उन्हें दुनिया भर में एथलीट्स के लिए रोल मॉडल बना दिया. ऑस्ट्रेलिया में तो वो उनको माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में तो बाकायदा उनके उनके जितने भी यू नो क्रिकेटिंग ग्लोरीज हैं, जितने भी क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स हैं, उसको याद किया जाता है एंड विथ रेस्पेक्ट. एंड साथ ही साथ इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने, बैट्समैन ने, लोग तो क्या बैट्समैन क्रिकेटर, सुनील गावस्कर, यू नो ही वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल ऑफ डोनाल्ड ब्रैडमैन. ज़हीर अब्बास, ही वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल. ज़हीर अब्बास को एशिया का डॉन ब्रैडमैन कहा जाता था बिकॉज रन बनाते थे, भर भर के रन बनाते थे हर पिचेस पर.
वहीं गावस्कर सुनील मनोहर गावस्कर जो इंडिया के मारूफ बल्लेबाज ओपनिंग बल्लेबाज रह चुके हैं, उन्होंने डोनाल्ड ब्रैडमैन का 29th टेस्ट रिकॉर्ड सेंचुरी जो था उसको भी तोड़ा था. एंड साथ ही साथ ही स्कोर्ड यू नो द एक टाइम तक ही रिमेन द हाईएस्ट रन स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट सुनील मनोहर गावस्कर जो कि एलन बॉर्डर ने तोड़ा. एलन बॉर्डर ने भी बहुत सारे रन बनाए. एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के थे. उसके बाद सचिन तेंदुलकर आते हैं, उसके बाद विराट कोहली भी आते हैं. सब आते हैं, सब देखते हैं, सब रिटायर भी हो जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड ऑफ डोनाल्ड ब्रैडमैन आज भी अटूट है, यानी अनब्रोकन है. 99.96 द मैजिकल स्टैटिस्टिक्स 99.96 का जो बैटिंग एवरेज है आज भी अनब्रोकन है. एंड आई थिंक अगले 100 साल तक भी अनब्रोकन रहेगा बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग. जब तक यू नो टेक्नोलॉजी भी आ जाए, बेहतरीन बल्लेबाज भी आ जाए. मैं अपने ओपिनियन जो है अपना ओपिनियन जो है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने सालों तक अभी हुआ नहीं कुछ, अब आने वाले टाइम में क्या होगा. बिकॉज क्रिकेट हैज़ बिकम वेरी बिजी. क्रिकेट हैज़ बिकम सो फास्ट, सो टेक्निकली सुपीरियर, क्योंकि आप एक गेम नहीं खेल रहे हैं, आप दूसरे और गेमों में आपको ध्यान देना पड़ता है. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ODI भी है, T20 क्रिकेट भी है. ऑस्ट्रेलिया में उनका मकाम इतना बुलंद है कि उन्हें नेशनल आइकॉन माना जाता है. क्रिकेट के हर दौर में नए बैट्समैन उनके रिकॉर्ड से कंपेयर किए जाते हैं. क्रिकेट के हर दौर में नए बल्लेबाजों के उनके रिकॉर्ड से कंपेयर किए जाते हैं, लेकिन कोई भी उनके करीब नहीं पहुंच सका. आपको एग्जांपल दिया मैं थोड़ी देर पहले, और आज भी जब कोई बल्लेबाज सेंचुरी स्कोर करता है या कोई नया रिकॉर्ड बनाता है तो ब्रैडमैन का नाम ज़रूर लिया जाता है. डोनाल्ड ब्रैडमैन का 99.96 टेस्ट बैटिंग एवरेज क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है. डेफिनेटली यस. ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स का मजमुआ नहीं है दोस्तों, बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट, कंसिस्टेंसी और ग्रेटनेस की निशानी है. तकरीबन एक सदी गुजर जाने के बावजूद कोई भी बल्लेबाज इस रिकॉर्ड के करीब नहीं पहुँच सका. इसीलिए ब्रैडमैन का नाम हमेशा क्रिकेट की तारीख में सबसे बुलंद मकाम पर हमेशा रहेगा. जब भी क्रिकेट के ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड का जिक्र होगा, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का 99.96 बैटिंग एवरेज हमेशा एक बेंचमार्क के तौर पर याद रखा जाएगा, और शायद ये रिकॉर्ड आने वाली नस्लों के लिए भी अनटचेबल रहे. बिल्कुल रहेगा, बिकॉज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन वॉज सच एन एक्सेप्शनल बैट्समैन कि मतलब होता ना कि आप मैंने कभी कभार इस तरह के बल्लेबाज आपको देखने को मिलता है. इस तरह के बल्लेबाजों को आप हमेशा देखते नहीं है. मतलब यू नो इट्स रेयर टू हैव दिस काइंड ऑफ यू नो बैट्समैन, दिस टाइप ऑफ एथलीट्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स. और वही होता है, आई मीन मैंने जब कहा कि गावस्कर भी आए, ज़हीर अब्बास भी आए, और क्लाइव लॉयड भी, सचिन तेंदुलकर भी, आज के मॉडर्न जनरेशन के यू नो विराट कोहली भी, लेकिन गावस्कर, डोनाल्ड ब्रैडमैन या सचिन तेंदुलकर, डोनाल्ड ब्रैडमैन, ज़हीर अब्बास, डोनाल्ड ब्रैडमैन अगर कंपैरिजन करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब मामूली बैट्समैन मामूली बैट्समैन, लेकिन अगर बैटिंग एवरेज की बात करें तो ना गावस्कर, ना सचिन तेंदुलकर, ना कोई कोई भी आसपास नहीं है, कोई भी आसपास नहीं. बिकॉज बैटिंग एवरेज ही एक्चुअली यू नो इट एनालाइजेज योर ओवरऑल परफॉर्मेंसेज इन द टेस्ट क्रिकेट. जब यू नो 2001 में व्हेन ही पास्ड अवे 25 फरवरी एट द एज ऑफ 92, तब दुनिया भर में लोगों ने यू नो रिस्पेक्ट दिया, यू नो लोगों ने ओबिचुअरी भी लिखी, और ओबिचुअरी में ये भी बताया गया कि कैन वी गेट अनदर डोनाल्ड ब्रैडमैन, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान से क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया से क्यों ना हो, इस तरह का कोई बल्लेबाज आ सकता है. इस ओबिचुअरी में देयर आर फाइनर पॉइंट्स टू डिस्कस ऑन हिज क्रिकेटिंग एबिलिटीज, उनके क्रिकेटिंग हॉलमार्क्स को याद किया जा रहा था. तो इसमें यह भी एक सवाल था कि क्या हमें डोनाल्ड ब्रैडमैन जैसे कोई एक बल्लेबाज मिलेगा. देखिए बड़ा ही डिफिकल्ट एक सवाल है कि बैट्समैन बल्लेबाज आते तो हैं, लेकिन भाई जैसे मैंने इस प्रोग्राम में शुरू से लेके यू नो अभी तक मैं बता रहा हूँ, जो कंसिस्टेंसी, जो आम प्लेयर और चैंपियन के दरमियान जो फासला है, दैट थ्रेड लाइन जो है, जो थिन लाइन जो है, वो है कंसिस्टेंसी. नॉट जस्ट आप कितने रन बना रहे हैं, नॉट जस्ट आप बहुत ही सेंचुरीज बना लिए, बहुत ज़्यादा तादाद पे आपने सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जिस बारे में बात करते हैं कंसिस्टेंसी,
वो कंसिस्टेंसी हर किसी बल्लेबाज में नहीं है. गावस्कर में डेफिनेटली वी हैव सीन गावस्कर के साथ कंसिस्टेंसी वाज द ही यूज्ड टू स्कोर लॉट ऑफ रन. सचिन तेंदुलकर के पास भी, जावेद मियांदाद के पास भी, यू नो जाहिर अब्बास के पास भी कंसिस्टेंसी. लेकिन कम इनिंग्स में ज्यादा रन बनाना ये एक एक एक काबिलियत है जो कि डॉन ब्रैडमैन के पास था. लंबी पारी

0: सकते थे। अनेक इनिंग्स में सोचिए क्या क्या रन उन्होंने बनाए, एंड उसी के बलबूते पर उनका एवरेज इतना मजबूत रहा होगा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा उनके स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा और मजीद हम अगर यू नो चेक करें तो पता चलता है कि 234 फास्ट क्लास मैचेस में 28,067 रन बना चुके थे, एंड उसमें भी 95.14 यानी 95.14 औसत यानी एवरेज, वो भी देखिए सोचे 95.14, क्या कमाल का बैटिंग करता था बंदा। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 117 सेंचुरीज, 69 हाफ सेंचुरीज, और इन टेस्ट क्रिकेट में तो आपको बता चुका हूँ कि 29 सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज 13, एंड टॉप स्कोर रहा उनका 334 इन टेस्ट क्रिकेट। हाँ, बल्लेबाजी तो उन्होंने किया और साथ साथ बॉलिंग भी करते थे। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, हम उनके बैटिंग एवरेज की बात कर रहे हैं, बॉलिंग में भी वो काफ़ी माहिर थे, एंड राइट आर्म लेग ब्रेक करते थे, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते थे, एंड उसमें उन्होंने 2 विकेट्स भी लिए इन टेस्ट क्रिकेट, और फर्स्ट क्लास में 36 विकेट्स, मामूली बात नहीं है, एंड विकेट्स लेना एक बहुत बड़ी बात है, एंड क्रिकेट में आप टेस्ट क्रिकेट में अगर विकेट्स ले रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, अरे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन बॉल करने आ रहे हैं, देखिए तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ऑफ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की बॉलर भी रह चुके हैं और 2 विकेट्स भी ले चुके हैं इन टेस्ट क्रिकेट, मजेदार बात है। एंड टोटल कैचेज उन्होंने लिए है 32, सो इट ऑल्सो शोज दैट ही वॉज एन एस्ट्यूट फील्डर, एंड दिस इज वॉट मेक्स सर डोनाल्ड ब्रैडमैन एन यूनिक क्रिकेटर, यूनिक एथलीट, जिसके बारे में आज भी क्रिकेट राइटर्स, एक्सपर्ट्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डिस्कस करते हैं, लिखते हैं, रेफरल पॉइंट दिया जाता है, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन जैसा कोई है नहीं, डज एनीवन बैट लाइक सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह कि कंपैरिजन हम कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर को कंपेयर कर दिया हमने, ठीक है कि भाई ये सर डोनाल्ड ब्रैडमैन जैसे हैं, सुनील गावस्कर को भी कंपेयर कर दिया गया था एक जमाना पहले कि ये डोनाल्ड ब्रैडमैन जैसे हैं, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को उस टाइम फ्लाइट्स यानी एरोप्लेन में बैठ के टीम जो टेस्ट टीम्स जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाती थी तो दे नेवर टुक द फ्लाइट्स, जहाज यानी पानी वाली जहाज में बैठ के जाते थे, और सोचिए कितना टाइम लगता था, सी सिकनेस और क्या क्या क्या क्या क्या क्या। तो डोनाल्ड ब्रैडमैन यू नो इन फैक्ट वन ऑफ द टूर्स में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन बिकेम सिक, एंड शायद ये भी रीजन रहा होगा कि 52 टेस्ट मैचेस, जस्ट 52 टेस्ट मैचेस, एंड उस 52 टेस्ट मैचेस में ना कमाल कर दिया दोस्तों, कमाल कर दिया। आज के दौर में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन खेलते और 150 या 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच, अगर सोचिए कि वो एवरेज मेरे ख्याल से अराउंड 200, बिकॉज क्वालिटी इज परमानेंट, क्वालिटी इज परमानेंट, हमेशा ये बात को याद रखिएगा। और 20 साल वो खेलें टोटल, यू नो 20 साल क्रिकेट खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट मिलाकर, उस कॉन्सिस्टेंसी को उस लेवल तक रखना नामुमकिन है, दैट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक कहानी वक्त के साथ मशहूर हुई कि ब्रैडमैन की आंखों में आंसू आ गए थे जिसकी वजह से वो गेंद को मिस कर गए, लेकिन ब्रैडमैन ने अपनी पूरी जिंदगी इस दावे की तरदीद की। उनके लिए ये सिर्फ गलत फहमी नहीं थी बल्कि उनके करियर के आखिरी लम्हे के हवाले से फैलने वाली एक ऐसी कहानी थी जो हकीकत से ज़्यादा लोगों की इमेजिनेशन का हिस्सा बन गई। जी, मैं बात कर रहा था ब्रॉन ब्रैडमैन की आखिरी इनिंग्स के बारे में जहां पे वो बोल्ड आउट हो गए थे फॉर अ नॉट यानी जीरो पर। लेकिन दोस्तों डॉन ब्रैडमैन की कहानी सिर्फ उनके क्रिकेट करियर या उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैटिंग एवरेज तक महदूद नहीं थी, वो एक कॉम्प्लेक्स और बहुत पुरअज़म शख्सियत थी। उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सी संजीदगी और खुद पर सख्त कंट्रोल नज़र आता था। वो ज़्यादा करीबी ज़ाती ताल्लुकात रखने वालों में से नहीं थे और अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी अगर देखा जाए काफ़ी हद तक प्राइवेट रखते थे। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी डॉन ब्रैडमैन ने खेलों की दुनिया से अपना रिश्ता ख़त्म नहीं किया। वो 3 दिहाइयों तक एडमिनिस्ट्रेटर, सेलेक्टर और राइटर की हैसियत से क्रिकेट में अपना नुमाया मकाम बरकरार रखने में कामयाब रहे। यानी बैट और बॉल से उनका सफ़र ख़त्म होने के बाद भी उनका असर क्रिकेट के फैसलों, टीम सेलेक्शन और खेल के हवाले से होने वाली बहस में जारी रहा। ब्रैडमैन की सबसे खास बात यह थी कि रिटायरमेंट के बाद भी उनकी राय को इंतहाई अहमियत दी जाती थी, बिकॉज डॉन ब्रैडमैन, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, जब क्रिकेट के किसी अहम मसले पर उनकी ओपिनियन सामने आती तो फैंस, खिलाड़ी और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स उसे तवज्जो से सुनते। वो सिर्फ एक रिटायर्ड क्रिकेटर नहीं थे वो क्रिकेट की एक अथॉरिटी बन चुके थे। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में जब वो लोगों से कुछ दूर और गोशा नशीन हो गए थे, तब भी उनका मकाम कम नहीं हुआ। उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस कम होती गईं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से उनकी इम्पोर्टेंस बरकरार रही। ऑस्ट्रेलिया में उनका मकाम एक कौमी आइकन के तौर पर मजबूत होता गया। 1997 में टेस्ट क्रिकेट से उनके रिटायरमेंट के तकरीबन 50 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड ने उन्हें ग्रेटेस्ट लिविंग ऑस्ट्रेलियन करार दिया। ये सिर्फ एक सियासी शख्सियत का बयान नहीं था, ये इस बात का इजहार था कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट से कहीं ज्यादा मानी रखते थे। उनका नाम ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी, स्पोर्टिंग एक्सलेंस और नेशनल प्राइड के साथ जुड़ चुका था। ब्रैडमैन की शोहरत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी तस्वीर डाक टिकट और सिक्कों पर भी शाया हुई। उनकी जिंदगी और करियर को लेकर भी एक म्यूजियम भी कायम किया गया, और ये म्यूजियम उस वक्त बनाया गया जब डॉन ब्रैडमैन खुद इस दुनिया में थे। फिर 27 अगस्त 2008 को उनकी पैदाइश की 100th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर रॉयल ऑस्ट्रेलियन मिंट ने उनकी तस्वीर वाला $5 का कमेमोरेटिव गोल्ड कॉइन जारी किया। ये भी इस बात की निशानी थी कि ब्रैडमैन का मकाम सिर्फ क्रिकेट रिकॉर्ड्स की किताबों में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन कल्चर और हिस्ट्री में भी था। और फिर 2009 में उन्हें उनकी वफात के बाद ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के पहले मेंबर्स में शामिल किया गया। यानी डॉन ब्रैडमैन का असर सिर्फ उनके क्रिकेट खेलने तक महदूद नहीं था, रिटायरमेंट के बाद भी वो क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी शख्सियत रहे जिनकी राय, विरसा और मकाम को ऑस्ट्रेलिया और पूरी क्रिकेट दुनिया में इंतहाई अहमियत दी जाती रही। दोस्तों, उनका करियर खत्म हो गया था, उनका बैट खामोश हो चुका था, लेकिन उनका नाम क्रिकेट की तारीख में और भी बुलंद हो चला गया। और शायद इसी को कहते हैं असल लीगेसी। एक ऐसा क्रिकेटर जो अपने दौर में रिकॉर्ड्स बनाता है, लेकिन रिटायरमेंट के कई सालों बाद, कई डेकेड्स बाद भी लोग उनका नाम मिसाल के तौर पर लेते हैं। डॉन ब्रैडमैन सिर्फ एक बैट्समैन नहीं थे, वो एक बेंचमार्क थे, एक ऐसा मायार जिसके साथ क्रिकेट की अजीम तरीन बैटिंग परफॉर्मेंसेस को आज भी कंपेयर किया जाता है। तो इसी के साथ आज हमारा ये गेम चेंजर प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होते हैं। अगले बार एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। गेम चेंजर सीजन 2।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Hello and welcome to our segment called Smart Money. Main hoon aapki dost, aapki host, Nasia. दोस्तों आज के इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ द राइज ऑफ कैशलेस लिविंग एंड आर वी रेडी. देखिए आज के इस डिजिटल दौर में दुनिया तेजी से कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है. कैशलेस सोसाइटी से मुराद ऐसी सोसाइटी है जहाँ लोग फिजिकल कैश यानी नोट्स और कॉइन्स कम इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल पेमेंट मेथड ज्यादा यूज करते हैं. इन मेथड्स में डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मोबाइल वॉलेट्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है और कहीं ना कहीं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स शामिल हैं. टेक्नोलॉजी ने पेमेंट को इतना आसान बना दिया है कि अब शॉपिंग, बिल पेमेंट्स और मनी ट्रांसफर सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं. पहले लोग अपने वॉलेट्स में कैश रखते थे और हर ट्रांजेक्शन के लिए नोट का इस्तेमाल करते थे यानी फिजिकल करेंसी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज मोबाइल फोन ने एक डिजिटल वॉलेट बना दिया है. लोग QR कोड स्कैन करके पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग

करते हैं और अपने बैंक अकाउंट्स को मोबाइल ऐप के जरिए मैनेज करते हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट समझते हैं कि फ्यूचर में कैश का रूल या फिर रोल और कम हो सकता है। देखिए, कैशलेस लिविंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कन्वीनियंस, है ना? जब आपके पास कैश ना हो तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ये कितना कन्वीनियंट है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, सुपरमार्केट में हैं, कोई ऑनलाइन स्टोर है, पेमेंट करना कितना आसान हो जाता है। सिर्फ कार्ड स्वाइप किया और आपका काम हो गया। इससे टाइम बचता है और ट्रांजेक्शन प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। एक और एडवांटेज है सिक्योरिटी। आज किसी के पास ज्यादा कैश हो तो भाई चोरी वोरी का भी तो खतरा बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे कैशलेस करेंसी का ये अपना अलग ही फायदा है। लेकिन हाँ, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं और अकाउंट पासवर्ड और सिक्योरिटी फीचर्स से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ्रॉड्स और स्कैम्स बढ़ भी रहे हैं, इसी वजह से लोग जो हैं वो डिजिटल पेमेंट को कैश के मुकाबले सिक्योर भी समझते हैं और कुछ लोग इसे अभी भी सिक्योर नहीं समझते। लेकिन हाँ, कैशलेस सिस्टम बिजनेसेस के लिए भी बेनिफिशियल है। उसका बड़ा फायदा ये है कि जब पेमेंट्स डिजिटली रिसीव होते हैं तो कैश हैंडलिंग का बर्डन कितना कम हो जाता है। एक सोशल एस्पेक्ट रखती है, हर शख्स के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट एक्सेस या फिर डिजिटल लिटरेसी नहीं होती। सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर ऐसे लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, कभी कभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। अगर पूरी सोसाइटी कैशलेस हो जाए तो शायद लोग फाइनेंशियल सिस्टम से टेम्परेली एक्सक्लूड भी हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल एजुकेशन और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी कैशलेस वर्ल्ड में पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ डिजिटल पेमेंट यूज करना काफी नहीं है, बल्कि यूजर्स को अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करना, बजट मेंटेन करना, सेविंग गोल सेट करना, मोबाइल एप्स चेक करना, ये सब बहुत रिस्पॉन्सिबली करना है। आज क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसीज की डिस्कशंस भी कैशलेस फ्यूचर को और ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। बस आखिर में मैं यही कहूंगी कि देखिए, कैशलेस लिविंग ने कहीं ना कहीं कन्वीनियंस को, स्पीड को, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया है। डिजिटल पेमेंट्स की वजह से डेली लाइफ बहुत आसान हो गई है, लेकिन इसके साथ ओवर स्पेंडिंग, साइबर सिक्योरिटी रिस्क और डिजिटल लिटरेसी के चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि कैशलेस सोसाइटी आ रही है या नहीं, बल्कि ये कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियली अवेयरनेस, स्मार्ट बजटिंग और ऑनलाइन सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दें तो कैशलेस वर्ल्ड उनके लिए ज्यादा सेफ और बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वेल, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107।

0: 107 presents Tech Update.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। अब वक्त है सबसे पहले तो आपको कुछ वेबसाइट्स बताने का जो बहुत ही कमाल की हैं। मैं इन्हें आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लैंग्वेज में बोलूंगा हिडन जेम। तो हिडन जेम आपको देने वाला हूं मैं, एंड लास्ट वेबसाइट इज क्रेजी। तो उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ, जिसके बारे में रिव्यू करना ही पड़ेगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, हालांकि मैं खुद कंसोल गेमर हूँ। ओके, लेट्स बिगिन विद द वेबसाइट्स। ओके, सो वेबसाइट नंबर वन ऑन द लिस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट, और ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली जिनके स्पेशली घर पे बच्चे हैं। तो इसका नाम है POWcoloring.com, POW coloring, COLORING coloring.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो फ्री कलरिंग वेबसाइट है ये। फ्री बोल रहे थे, फ्री कलरिंग वेबसाइट, तो फ्री कलरिंग वेबसाइट है। इस पे बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड हर चीज आपको मिलेगी। आप बच्चों को, अगर आप सच में वो खाना नहीं खा रहे हैं, उनके हाथों में फोन जाना ही चाहिए, तो आप उन्हें ये एक्टिविटी दे सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेक्टिव, वेरी वेरी हेल्पफुल, और ड्राइंग के साथ साथ कलरिंग करने में जो मजा आता है ना इसमें, भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा था इस वेबसाइट को आपको बताने के लिए, एंड मुझे बहुत अच्छी लग गई। मुझे लगा यार इसमें तो मेरा टाइम बीत सकता है बढ़िया वाला, मजा आ गया भाई एकदम। तो आई एम प्रीटी श्योर बच्चों को तो डबल मजे आएंगे ही आएंगे। सो ट्राई दिस वन आउट, मैं बता देता हूँ, POW coloring.com। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक और मेजर सिखाने वाली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट का नाम है musica.com। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, MUSICCA, MUSICCA.com। अब इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको म्यूजिकल नोट्स, कॉर्ड्स, म्यूजिकल थ्योरीज, एक एक चीज आप डिटेल में खुद पढ़ सकते हैं। ये अपने आप में एक मुकम्मल टीचर है, और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत कमाल की वेबसाइट है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, मतलब मैं ये हर किसी को रिकमेंड करूंगा अगर किसी को सीखना है कि म्यूजिकल नोट्स कैसे रीड किए जाते हैं, क्या होते हैं, स्पेशली वो लोग जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना फोन नंबर किसी वेबसाइट पे देने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ OTP के लिए अपना नंबर दूंगा तो दिक्कत ना हो जाए। तो इस वेबसाइट का नाम है receive-sms.io, receive-sms.io। इस वेबसाइट पे जाके आप एक टेम्पररी नंबर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री, और उसके बाद उस नंबर को यूज करके आपको अगर किसी वेबसाइट पर डर लग रहा है अपना नंबर अपलोड करने के लिए, तो आप ये वाला नंबर डाल के OTP मंगा सकते हैं। वो OTP वेबसाइट पे ही आपको नजर आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से एक प्रीमियम नंबर भी ले सकते हैं, उस प्रीमियम नंबर को लेके आप व्हाट्सएप पर भी यूज कर सकते हैं। That's how good it is. तो मुझे बहुत ही कमाल की चीज लगी। If you want to be much, much, much safer, तो ये वेबसाइट आपके लिए है। ठीक है? Now the review of the product, जो मुझे मतलब बुला रहा है अपने पास। Alright, so news में and product of the week में बात करूंगा मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसने आके गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला दिया है, कपा दिया है ये कहूंगा मैं। ये जो है DLSS 5 है। जब से ही आया है और जब से इसका यूसेज होना शुरू हुआ है गेमिंग के मामले में स्पेशली, तो सब कुछ अलग दिखने लगा है। लोग हर गेम पे DLSS 5 लगाकर देख रहे हैं कि कितना रियलिज्म आ सकता है। ट्रस्ट मी, रियलिज्म तो भर के आ रहा है भाई, भर के आ रहा है। पर हर गेम पे अच्छा नहीं लग रहा भाई, हर गेम पे अच्छा भी नहीं लग रहा, बिकॉज गेम्स लाइक ओनिमुशा जो अभी इसी साल रिलीज हुआ, इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में रिलीज हुआ, उन पे ये DLSS 5 लगाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली। ये सिर्फ उन गेम्स में अच्छा लग रहा है जिनका थोड़ा सा वक्त बीत चुका है। मगर अगर करंट गेम्स की बात की जाए तो क्रिम्सन डेजर्ट पे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। और अगर PC गेमर्स ने अभी तक ट्राई नहीं किया, DLSS 5 थोड़ा सा कॉस्टली है, पर अगर आपने PC बना लिया तो ऑब्वियसली आपने बहुत खर्चा ऑलरेडी कर लिया है, तो इतने से खर्चे से कुछ नहीं होगा रमेश बाबू, ट्राई करके जरूर देखिएगा। मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा। दिस वॉज टेक अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे साइनिंग आउट। टेक अपडेट।
0: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम सलाम करते हैं उन पहलवान को जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया की कुश्ती की तारीख का एक अजीम नाम था। एक ऐसा पहलवान जिनके सामने बड़े से बड़े चैंपियन भी उतरने से पहले सोचता था। नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श, लेकिन दुनिया उन्हें गामा पहलवान के नाम से जानती है और उनका टाइटल था रुस्तम ए जमाना। दोस्तों, गामा पहलवान की पैदाइश 1878 में पंजाब के गांव जबवाल में हुई। उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहां कुश्ती सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक रिवायत थी। उनके वालिद मोहम्मद अजीज बख्श खुद एक मशहूर पहलवान थे और उन्होंने बचपन ही से गामा की ट्रेनिंग शुरू कर दी। गामा का कद जो था वो तकरीबन 5'7" का, लेकिन उनकी जिस्मानी कुव्वत और स्टैमिना देखकर बड़े बड़े पहलवान हैरान रह जाते थे। कहा जाता है कि अपने लंबी करियर के दौरान गामा ने हजारों दंगलों में शिरकत की और उनकी अनबीटन रेप्यूटेशन ने उन्हें लेजेंड बना दिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में गामा ने जोधपुर के एक स्ट्रेंथ कंपटीशन में अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल एबिलिटी का सबूत दिया। इस कंपटीशन में सैकड़ों पहलवानों ने हिस्सा लिया था और गामा ने सबको मुतासिर किया। That was the talent, an inborn talent that he had. फिर जब वो जवान हुए तो उनका मुकाबला अपने वक्त के मशहूर पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ जो बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन इस ड्रॉ ने गामा की शोहरत को कम नहीं किया बल्कि लोगों को यकीन हो गया था कि ये नौजवान पहलवान मुस्तकबिल में दुनिया के सबसे बड़े चैंपियंस को चैलेंज करेगा, और यकीनन उन्होंने किया। फिर आया सन 1910, गामा लंदन पहुंचे जहां उनका मकसद था दुनिया के बेहतरीन रेसलर्स को चैलेंज करना। उन्होंने यूरोपीय और अमरीकी पहलवानों के खिलाफ मुकाबले किए और अपनी स्ट्रेंथ और टेक्निक से सबको हैरान कर दिया। उनका सबसे मशहूर मुकाबला स्टैनिलॉस सिप्सको के साथ हुआ जो उस वक्त दुनिया के सबसे मशहूर हैवीवेट रेसलर्स में शुमार होते थे। गामा ने सिप्सको को चैलेंज किया और पहले मुकाबले में उन्हें गिराकर अपनी सुपीरियर रेसलिंग एबिलिटी का सबूत दिया, और यह मुकाबला बाद में दोबारा हुआ जहां गामा की जीत ने उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन को और मजीद मजबूत कर दिया। दोस्तों, गामा को बाद में टाइगर का टाइटल भी दिया गया, एक ऐसा टाइटल जो उनकी फाइटिंग स्टाइल और शिकार की तरह ओपोनेंट पर झपटते हुए अंदाज को जाहिर करता था। लेकिन गामा की कुव्वत सिर्फ कुश्ती के रिंग तक महदूद नहीं थी। उनका ट्रेनिंग रूटीन भी किसी आम इंसान के लिए सोचना मुश्किल है। अब जरा सुन लीजिए, वो रोजाना हजारों बैठक और दंड लगाते, कुश्ती की प्रैक्टिस करते और अपने स्टैमिना को बरकरार रखने के लिए सख्त फिजिकल ट्रेनिंग करते थे। उनकी डाइट भी कुछ उनकी स्ट्रेंथ की तरह मशहूर थी। दूध, बादाम, मक्खन, गोश्त और दूसरी गजाई चीजें उनके रोजमर्रा के खाने का हिस्सा थी। यानी उनके फिजिकल स्ट्रेंथ का एक मशहूर वाकया मैं आपको बताऊं कि बड़ौदा जो शहर है इंडिया में, गुजरात में, उससे जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने एक बहुत भारी पत्थर उठाया था और ये पत्थर बाद में गामा के नाम से मंसूब कर दिया गया और उनकी लेजेंडरी स्ट्रेंथ की निशानी बन गया। 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने गामा पहलवान को सिल्वर मेस यानी चांदी का गुर्ज भी तोहफा किया और गामा की शोहरत का असर सिर्फ साउथ एशिया तक नहीं रहा। मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली भी गामा के ट्रेनिंग मेथड से मुतासिर थे और उन्होंने गामा की एक्सरसाइजेस को अपनी ट्रेनिंग में शामिल किया। लेकिन गामा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू उनकी इंसानियत थी। गामा पहलवान ने अपनी जिंदगी में जो मकाम हासिल किया वो आज भी कुश्ती की दुनिया के लिए एक मिसाल है। रुस्तम हिंद, रुस्तम जमाना, और एक ऐसा नाम जो रेसलिंग की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा, गामा पहलवान।
कहते हैं आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स एक ऐसे चैंपियन की कहानी जो सिर्फ अपनी ताकत की वजह से अजीम नहीं बना बल्कि अपनी मेहनत डिसिप्लिन हिम्मत और इंसानियत की वजह से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई गामा पहलवान रुस्तम ज़माना अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत खुश रहें सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें

107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते रहते हैं। और आज भी हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं द हाई मॉम फैमिली स्कैम, यानी कि फैमिली इमरजेंसी फ्रॉड। ये स्कैम दोस्तों कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। ये स्कैम बहुत ही मतलब बेकार कह ले या बहुत ही मतलब लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, निंदनीय है। एक लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो निंदनीय है, क्योंकि ये सीधा माँ बाप के अपने बच्चे के लिए जो प्यार और फिक्र है ना उसका गलत फायदा उठाता है ये फ्रॉड। इसलिए ये बहुत ही बेकार और गलीज किस्म का है। इस फ्रॉड के अंदर क्रिमिनल्स बड़े बड़े चैटिंग प्लेटफॉर्म्स या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्कैमर किसी भी रेंडम या टारगेट किए गए पेरेंट को एक अनजान फोन नंबर से मैसेज भेजते हैं। मैसेज की शुरुआत बहुत ही इमोशनल और सिंपल होती है, जैसे कि हाय मॉम या हाय डैड, मेरा पुराना फोन खो गया है, पानी में गिर गया है, टूट गया है, इसलिए मैं ये नए वाले नंबर से ना टेम्परेरी नंबर लिया है, इससे मैसेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरा पुराना नंबर डिलीट मत करना, पर अभी के लिए ये नंबर सेव कर लो, है ना। जिनके पेरेंट्स जो है अलग रहते हैं, जिनके बच्चे अलग रहते हैं, एक शहर में नहीं रहते, तो उनके लिए ये जो स्कैम है ना, स्कैमर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है माँ बाप को भी स्कैम करना और बच्चों को भी स्कैम करना। वैसे माँ बाप जब भी ये मैसेज पढ़ते हैं तो उनका दिल अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद होता ही है। वो बिना सोचे समझे रिप्लाई दे भी देते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। बस स्कैमर को यही मौका चाहिए होता है। जैसे ही पेरेंट रिप्लाई करते हैं, स्कैमर कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाता है और बहुत ही जल्द असली मुद्दे पर आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने अभी जो बचे हुए पैसे थे उसका ये नया फोन खरीद लिया है क्योंकि फोन खराब हो गया है, या किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी का बिल भरने के लिए वो आपसे कहता है, या फिर दोस्तों का उधार चुकाना है। दुनिया भर के जो ड्रामे हैं वो स्कैमर्स बताता है ताकि माँ बाप से पैसे वसूले जा सके, या उनका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, कार्ड खराब हो गया है। स्कैमर्स इतने प्रेशर के साथ बातें करते हैं कि पेरेंट्स डर जाते हैं और सोचते हैं कि उनका बच्चा किसी मुसीबत में फंस गया है। वो बिना किसी लंबी जांच पड़ताल के उस अनजान नंबर पर बताए गए बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ समय बाद जब उनकी बात उनके बच्चे के असली नंबर पर होती है, तब उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन इस तरह के धोखे से भी बचा जा सकता है, इसके भी तरीके हैं। वो चार तरीके क्या है जिससे आप बच सकते हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। और उम्मीद है कि इस तरह का स्कैम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। किसी भी तरह के स्कैम से बचने का सबसे पहला तरीका है असली नंबर पर कॉल करना, ईमेल पर मैसेज करना, है ना, डायरेक्ट उस शख्स से बात करना जिस शख्स के लिए कोई फ्रॉडस्टर आपसे बात कर रहा हो या आइडेंटिटी चेंज करके बात कर रहा हो। जैसे ही आपको किसी नए नंबर से बच्चा बनकर कोई मैसेज आए या कोई बात करे, बिना उनसे चैट बढ़ाए फौरन अपने बच्चे को पुराने और ओरिजिनल फोन नंबर पर कॉल लगाएं, और आप हमेशा से जो जानते हैं उस नंबर पर कॉल लगाएं। अगर वो नंबर स्विच ऑफ है या बिजी है तो उनके दोस्तों को, हॉस्टल वार्डन को या उनके साथ रहने वालों को, उनको कॉल लगाएं, तब आपको क्लियर होगा। उसके अलावा पहचान की भी जांच, आइडेंटिटी की टेस्ट, उस नए नंबर पर चल रही चैट में कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो सिर्फ आप और आपके बच्चे के बीच में ही है, जैसे उनके बचपन के किसी किस्से के बारे में या घर के किसी रूल के बारे में। स्कैमर कभी भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, वो पकड़ा जाएगा और आपको पता हो। पैसा भेजने में जल्दी ना करें, किसी भी अननोन नंबर पर इमोशनल बातें सुनकर फंड ट्रांसफर बिल्कुल ना करें। इमरजेंसी के वक्त भी हमेशा दिमाग से काम ले, दिल से बिल्कुल नहीं। वॉइस नोट भी मांगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। ऑल्दो आपको 100% वॉइस नोट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनसे कहें कि वो आपको एक शॉर्ट वॉइस नोट भेजें जिसमें वो अपना नाम ले। अगर स्कैमर कोई बहाना बनाए कि माई खराब है, तो समझ जाइए कि ये 100% फ्रॉड है। दोस्तों ये कुछ तरीके हैं कि नए जमाने के जो नए स्कैम मैं बताता रहता हूँ उनसे आप कैसे बच सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो आज मैंने फ्रॉड के बारे में आपको बताया, आपसे कभी नहीं होगा, कोई आपके पास मैसेज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो आपको बचना कैसे है ये आपको पता होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड में, जहां पर हम नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

घर पे होते हैं बट डोंट वरी भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा

0: वेल, ये म्यूजिक सुनने के बाद दोस्तों आपको यकीन हो गया होगा, मतलब पूरा श्योर हो गया होगा कि किस मूवी के बारे में आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फजील, इस्तकबाल है आप सभी का और ये शो है रिव्यू ऑफ द वीक, जहां पर हर हफ्ते आपको एक नई मूवी के बारे में पता चलता है और मैं बताता हूँ रिव्यू के साथ कि आपको क्या इस मूवी को देखना चाहिए या फिर नहीं। स्टार रेटिंग के साथ साथ क्रिटिक्स का भी मानना होता है कि क्या ऑडियंस को मूवी देखना है या नहीं, और फिर आप अपने मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने बोर हो रहे हैं, कि क्या आप एक ऐसी मूवी भी देख सकते हैं जो एकदम ही बेकार है क्योंकि बोर बहुत हो रहे हैं, या फिर कितनी भी ज्यादा आपकी इंगेजमेंट हो या कितनी भी ज्यादा आप इंगेज या यू नो कहीं पर बिजी हो, मूवी अच्छी है भाई साहब, वक्त निकालना है रात के 12 बजे ही सही, आप डिसाइड करते हैं ये तो। लेकिन सब FM 107 के शो में सुनने के बाद, यानी कि रिव्यू ऑफ द वीक सुनने के बाद,
1: एब्सोल्यूट सिनेमा
0: म्यूजिक से आपको आज पता चल गया होगा किस मूवी के बारे में आज बात होगी। आज बात होने वाली है जबरदस्त मूवी, ये एक जमाने में सीरीज में आई थी लेकिन अब आई है एज अ मूवी और कतर में मौजूद है, इसका नाम है मिर्जा। तो दोस्तों किसी मूवी के बारे में मैं बात करना शुरू करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं उस मूवी के हाइप के बारे में।
2: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से, मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से, और टिकती है डर पे।
0: फैंस के दरमियान क्या बज था और सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर क्या था? वेल, मिर्जापुर मूवी को लेकर फैंस के बीच असलियत में हाइप तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। कई लोगों को तो पता भी नहीं था कि ये मूवी रिलीज हो गई है या होने वाली है या ऐसी कोई मूवी आ भी रही है। जैसे मुझे एक लड़के का नाम है, उसको पता ही नहीं था, फजील उसका नाम था कर लेकिन ये मूवी आने के बाद रील्स पर, शॉर्ट्स पर, स्टोरीज पर सब इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी वजह से ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी नॉन स्टार लेड ओपनिंग डे फिल्म बन गई है। एडवांस टिकट प्री सेल्स बहुत ज्यादा होने की वजह से सिनेमाज बिल्कुल फेस्टिवल जोन्स में बदल गए। फैंस खास तौर पर अपने फेवरेट डिसीज्ड कैरेक्टर जैसे कि मुन्ना भैया की बड़ी स्क्रीन पर थिएट्रिकल रिटर्न को लेकर बेहद एक्साइटेड है।
3: हमें क्यों नहीं भेजे आप ये डील करने के लिए,
0: और जश्न मना रहे हैं कि भैया ये मूवी तो बाबा देखनी है, और अलग अलग लेवल, मीम के लेवल पर भी जश्न हो रहा है भाई। अगर फिल्म के मूड और एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये हाई ऑक्टेन क्राइम थ्रिलर ग्रिट और गहरे फैमिली फ्रिक्शन का एक बेहतरीन ब्लेंड पेश करती है। पूरी फिल्म में एक टेंशन बनी रहती है जो केओटिक वायलेंस और डार्क सटायरिकल ह्यूमर के बीच घूमती रहती है। ये एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां पावर एक नशा है और सर्वाइवल के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मेजर ट्रेड प्लेटफॉर्म पर इसको 3.5 रेटिंग मिली है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो इसे 5 में से 3.5 मिला है, जो कि स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल रेटिंग है, जबकि हार्डकोर जो फैंस है ना, वो सोशल मीडिया पे इसे 5 में से 4, 5 में से 4.5 स्टार देकर बैठ चुके हैं और वो नॉस्टैल्जिया फील भी कर रहे हैं, और कई लोग तो इसे 10 में से 9.5 दे चुके हैं, जो आमतौर पे जैसे IMDb वगैरह है वो अच्छी खासी रेटिंग दे चुके हैं। तो ये गजब की मूवी है, इसे आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन इस फिल्म को देखने से पहले बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन का फन फैक्ट क्या है, बिहाइंड द सीन का सीन क्या है, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, सिनेमाटोग्राफी, साउंड, सब जल्दी जल्दी हम बात करेंगे, ठीक है। ये लैंडमार्क फीचर फिल्म इंडियन एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री में एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे पहली स्ट्रीमिंग प्रॉपर्टी है जो कामयाबी से एक मेजर थिएट्रिकल रिलीज में कन्वर्ट हुई है। यानी कि पहले इसका सीजन आया करता था, एपिसोड दर एपिसोड आप देखते थे, 8-10 सीजन होते थे, लेकिन अब ये मूवी में आ गई, इतनी सक्सेस हो गई, तो सच में कुछ तो अनोखा था इसमें, चाहे वो स्टार कास्ट को लेकर बात हो, चाहे वो मूवी के राइटिंग के बारे में बात हो। भाई साहब, अरे गुड्डू से लेकर आप बाकी के जो स्टार हैं, फैजल की अगर हम बात करें तो किसने जबरदस्त एक्टिंग नहीं करी, सबने एक से बढ़कर एक काम किया।

0: इस स्पेसिफिक टाइमलाइन शिफ्ट को सीमलेसली हैंडल करने के लिए एक बड़ा बदलाव भी किया गया, जहां एक्टर जितेंद्र कुमार ने ओरिजिनल अर्ली स्ट्रीमिंग डेज के विक्रांत मसे को रिप्लेस करके बबलू पंडित का रोल प्ले किया है। गुड्डू पंडित उनके भैया थे, बड़े वाले थे, विक्रांत मसे थे। तो अब इसमें एक्चुअली पंचायत के जितेंद्र कुमार है। थोड़ा अटपटा लगेगा बट आप देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये कैसे आ गए, ये तो मर गए थे, लेकिन जब आप सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सबसे पहली सीरीज के 1 से लेकर 7 की जो एपिसोड्स थे ना उसके बीच की ये कहानी है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये कहां से चल रही। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं गुरमीत सिंह। उनका विजन इस मूवी को पूर्वांचल की फंडामेंटल पावर डायनेमिक्स को बड़े थिएट्रिकल कैनवस पर अपस्केल करना था। सीधा सा एक जेनरिक सीक्वल बनाने के बजाय उनका पूरा फोकस नैरेटिव को सीजन 1 के अर्ली एपिसोड के बीच ग्राउंड करने पर था, ताकि कैरेक्टर्स के रॉ साइकोलॉजिकल लेयर्स को तबाही से पहले अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जा सके। फिल्म की शूटिंग को ऑथेंटिक बनाने के लिए मुंबई के इंडोर साउंड स्टेजेस के साथ साथ वाराणसी के एंशियंट घाट्स का यूज भी किया गया। इसके अलावा विजुअल स्केल को मजीद बड़ा करने के लिए राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर के एरिड लैंडस्केप्स में भी स्वीपिंग स्केड्यूल्स शूट की गई हैं, तो ये कुछ आपको अनोखा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन, सिनेमाटोग्राफी और साउंड के बारे में भी। दोस्तों बड़े स्क्रीन पर लॉन्ग डेड कैरेक्टर्स को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ी बट वो कामयाब रहे। जिसमें सीक्रेटिव लुक टेस्ट करने की बात करें तो उसमें डायरेक्टर एक्टर सब कामयाब रहे। अली फजल ने गुड्डू के अनहिंज्ड गुस्से और फ्यूरी को एक नए तरीके से रीइन्वेंट किया है, और उनका हल्किंग प्रेजेंस फ्रेम पर पूरी तरह डोमिनेट करता है। मतलब जब वो आते हैं ना तो ऐसा बल्कि लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये अपना भाई होता तो मजा ही आ जाता, अपने को कोई परेशानी नहीं करता था। फिर
1: दिल वाले हैं हम, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
0: उसी को अगर हम दूसरी तरफ देखें, रवि किशन है ना, वो भी क्या यार, उनने जो काम किया है वो एक सीजन का लेकर गए हैं यार पूरा। उन्होंने जो इस मूवी में काम किया है 3 सीजन के बराबर काम कर दिया।
2: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
3: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
2: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
0: रवि किशन जैसे नए एडिशन ने तो अपनी छाप इस मूवी में एकदम अलग छोड़ी। सिनेमाटोग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो बड़ी स्क्रीन पर आते ही सिनेमाटोग्राफी को एक नया अपग्रेड मिला है, जहां फ्लैट लाइटिंग की जगह गॉर्जियस हाई कंट्रास्ट फ्रेमिंग यूज किया गया है। साउंड डिजाइन इतना बेहतरीन है कि हर एक गनशॉट की ऑडियो रेजोनेंस थिएटर में बैठे लोगों को हिलाकर रख देती है। इसका आइकॉनिक बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल थंडरस है, जो कैरेक्टर के स्टाइल्ड हैवी स्लो मोशन स्वैगर और चलने के अंदाज को बेहतरीन तरीके से एलिवेट कर देता है। गजब का है भाई। लेकिन किसी भी मूवी के स्क्रिप्ट अगर हल्की रह गई, किसी भी मूवी के स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हो अगर हल्कापन रह गया, तो फिर तो मूवी जो है वो मजा नहीं रहती। देखो स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है कि एक्टर उस तरह से कन्वे कर पाए। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, और साथ ही परफॉर्मेंस की डिस्कशन भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी साल 2018 के दौरान सेट की गई है, जो एक एम्बेडेड प्रीक्वल नैरेटिव के रूप में चलती है, जहां एक यंग और इंटेंसली एम्बिशियस त्रिपाठी क्राइम फैमिली को फोकस किया गया है। कालीन भैया के रूथलेस बेटे जो हैं मुन्ना भैया और राइजिंग पंडित ब्रदर्स के बीच का अनइजी ट्रूज जो है एक बड़े डेडली फ्लैश पॉइंट पर पहुंच जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक अजीब आदमी या कहें एक गुंडा आदमी वो एंटर होता है, जो कि ऑब्वियसली रवि किशन है, और वो अनवांटेड सब्सटेंस लेकर एंटर होता है, जो इनके क्राउन यानी कि इनके ताज और पूरे एम्पायर के लिए एक गहरा एक्सटर्नल ट्रैप जो है वो खड़ा कर देता है। परफॉर्मेंसेस के मामले में पंकज त्रिपाठी हमेशा की तरह फिल्म की जान है, जो अपने बुरे या कहे सिनिस्टर डायलॉग्स को बहुत ही मास्टरफुल और क्वाइट कंपोजर के साथ डिलीवर करते हैं। दिवेंदु ने इनसिक्योर और अनप्रेडिक्टेबल मुन्ना भैया के रूप में एक सीन, मतलब हर एक सीन को स्टील तो किया ही है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और मुझे लगता है यही वजह है कि मिर्जापुर जैसी जो मूवी है उसमें सारे कैरेक्टर इस तरह से कास्ट किए गए हैं कि जब जब वो स्क्रीन पर आए हैं तो उन्होंने इम्पैक्ट डाला है और कैमरे को कैप्चर किया है। कैप्चर कैमरे ने नहीं किया,

उन्होंने कैमरे को कैप्चर किया। उनके साथ रवि किशन ने वाइब्रेंट और मैग्नेटिक एनर्जी ऐड की है। तो यहाँ पर भी एक अगेन देखो, इतने सारे कास्ट है, इनके बराबर का एक कास्ट लेकर आना पड़ेगा। इतने सारे विलन है, एक और ऐसा विलन लेकर आना पड़ेगा जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दे, और रवि किशन इसमें खरे उतरे। क्या गजब का उनका काम है। त्रिपाठी के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो इस मूवी में रवि किशन ही थे, और गजब का उन्होंने काम करके दिखाया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्रिटिक्स के बारे में कि इस मूवी को देखते हुए क्रिटिक्स का क्या कहना है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को फ्रेंचाइजी का एक इंगेज करने वाला सिनेमेटिक ट्रांसलेशन बताया, जिसकी स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज और इलेक्ट्रिफाइंग एक्शन की काफी तारीफ भी की है। हालांकि फिल्म के लगभग 200 मिनट के लंबे रन टाइम और जैसलमेर का जो सीक्वेंस है उसके दौरान पेसिंग इश्यूज की वजह से थोड़ी क्रिटिसिज्म भी हुई है, क्योंकि वहां नैरेटिव थोड़ा ब्लूटर्ड लगने लगा था। लेकिन इन सब के बावजूद फैंस एंटिसिपेशन और मैसिव एडवांस बुकिंग की बदौलत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ऑफिशियल सुपर हिट बन चुकी है। अब देखिए यहां पर दो चीज है। एक होता है कि हाँ यार ये मूवी बहुत अच्छी है, ओटीटी पे इसने बहुत अच्छा काम किया, दुनिया में इसमें बहुत, अब जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कई ऐसी मतलब एक जनरेशन तो उसे बहुत ही पसंद करती है, आज भी उसके बारे में बात होती रहती है, उसके मीम्स जो हैं वो शेयर होते रहते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल सुपरहिट नहीं थी, है ना, उसने पैसे नहीं कमाए, असल तो बात ये है, और आज भी अब क्या पैसे ही कमाएगी। लेकिन मिर्ज़ापुर ऑफिशियल सुपरहिट तो है ही है, इसके मीम्स तो तब से बन रहे हैं जब पहला सीजन आया, उसके अलावा अभी तक इसका जो वर्चस्व है या इसका जो ऑरा है वो बना हुआ है। उसके अलावा अब ये मूवी आ गई, उसमें रवि किशन ने जो काम किया है ये बहुत लंबे वक्त तक मुझे लगता है इस जनरेशन के साथ भी रहेगी, 10-12 साल तो रहेगी रहेगी, और ऑब्वियसली बात है फिर ये ऑफिशियल सुपरहिट तो बनी चुकी है। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 93 करोड़ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलेक्शन किया है। अब ये भी नहीं है कि इसमें बहुत बड़े कोई स्टार हो, है ना, तो उसके बावजूद अगर 93 करोड़ कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाहे पंकज के बारे में बात हो, चाहे रवि किशन के बारे में बात हो, चाहे वो गुड्डू पंडित हो इसमें, है ना, तो बहुत अली फजल यानी कि या विक्रांत मसे जैसे जो प्लेयर थे पहले के, इतना पैसा उन पर इन्वेस्ट नहीं किया गया है कि इस मूवी को चलाने के बाद ऐसा लगे कि यार नुकसान हो जाएगा। 93 करोड़ ऑब्वियसली फायदे में आ चुकी है ये मूवी, तो अच्छा खासा काम तो कर चुकी है अगर ऑडियंस ने इसे पसंद किया है तो। उसके अलावा ये प्रूव करता है कि स्ट्रीमिंग जो फ्रेंचाइजीज हैं अगर ये सही से बनाई जाए तो वो थिएट्रिकल रिलीजेस पर भी पूरी तरह डोमिनेट कर सकती हैं, और ये डोमिनेट करके दिखाया है मिर्ज़ापुर के इस खास मूवी ने। तो भाई अब बात कर लेते हैं मोटा माटी के वर्ड क्या है, मूवी देखनी चाहिए या नहीं। अरे यार इतनी तारीफ हो गई तो मतलब पूछने का तो बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वर्डिक्ट में हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। मिर्ज़ापुर मूवी का फाइनल बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कामयाबी का सबूत है, जिसने मार्केट में ऑफिशियली सुपरहिट का स्टेटस हासिल कर लिया है। फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर दोस्तों जो दीवानगी है, जो हाइप है या जो हाइप थी, उसकी वजह से एडवांस टिकट बुकिंग्स ने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तो तोड़ दिए, लेकिन जब ये मूवी आई उसके बाद वर्ड्स ऑफ माउथ यानी कि लोगों ने जब तारीफ करी तो ये मूवी और भी ज्यादा चली। सिनेमाज में रिलीज होने के बाद थिएटर्स बिल्कुल किसी फेस्टिवल जोन की तरह लग रहे हैं, जहां हर जगह फैंस का जश्न चल रहा है। इस फिल्म ने पूरी तरह साबित कर दिया है कि अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बड़े शोज को डिजिटल स्क्रीन से उठाकर बड़े सिनेमा स्क्रीन पर लाया जाए, वो भी तरीके से, तो वो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह डोमिनेट कर सकती है। अगर मुझे कहना हो तो मैं चाहूँगा यार यू नो द फैमिली मैन और पंचायत जैसी कोई मूवी जो है वो भी आ जाए, जैसे मिर्ज़ापुर आई। फिनेंशियल एनालिटिक्स की अगर हम बात करें ना इस मूवी के बारे में, तो 93 करोड़ तो आ गया है, और रवि किशन से लेकर चंदू पंक्चर तक इन सब ने गजब का काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा रिव्यू दिया इसने, चंदू के बारे में तो कहीं बात ही नहीं करी, ये कहां से कैरेक्टर आ गया। वेल, मैं कह रहा हूं कि आप इस मूवी को देखेंगे तभी आप जान पाएंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर स्पॉइलर दे दूंगा मैं आपको तो जरूरी है कि आप इस मूवी को देखें, क्योंकि ये कैरेक्टर यानी कि चंदू जो कैरेक्टर है ये भी गजब का कैरेक्टर है, बहुत ही लाजवाब है। आपने इसको जरूर देखा होगा, मैं 100% आपको कहता हूँ, आपने किसी डिजिटल यू नो पेज पर देखा होगा या फिर आपने रील में देखा होगा, ये भी जबरदस्त कैरेक्टर है, इसका असली नाम है सत्येंद्र सोनी। वेल, इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मूवी के बारे में रिव्यू देते हुए, और एक नए तरीके से हम बात करेंगे मूवी के स्टार रेटिंग, हाइप के बारे में, और साथ ही स्पॉइलर फ्री
प्लॉट भी आपसे

0: शेयर करेंगे। तब तक मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488

0: को हर दिन और हर लम्हा हिदायत की ज़रूरत है, इसीलिए अल्लाह ने हमें ये दुआ हर नमाज में सिखाई। कोई बंदा दिन में कई मरतबा अपने रब से अर्ज करता है, हे अल्लाह अगर तू मेरा हाथ ना पकड़े तो मैं भटक जाऊँगा। एक और अजीम सबक ये भी है सामिन किराम के सिरात मुस्तकीम को समझने के लिए अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमने दुआ की सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब कुरान खुद बताता है कि इनाम याफ्ता लोगों में अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन शामिल हैं। इसलिए जितना हम नूह अलैहिस्सलाम को जानेंगे उतना सब्र सीखेंगे, जितना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानेंगे उतना इखलास सीखेंगे, जितना मूसा अलैहिस्सलाम को जानेंगे उतना हक के लिए खड़े होना सीखेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को जानेंगे उतनी रहमत और हिकमत सीखेंगे, और जितना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझेंगे उतना ही सिरात मुस्तकीम हमारे सामने वाज़ह होता जाएगा। तो जैसे कि सामने किराम सूरह फातिहा का अख्तिताम होता है, यह सूरह फातिहा अपने अख्तिताम पर दो ख़तरनाक रास्तों से बचने की तालीम देती है, एक मग़दूब अलैहिम और दूसरा दौलीन, यानी एक गुरु वो है जिसके पास इल्म था लेकिन अमल न था, दूसरा गुरु वो जिसके पास अमल था लेकिन सही इल्म न था। और यही वजह है कि इस्लाम हमें इल्म और अमल दोनों की दावत देता है। समय कराम नजात का रास्ता वही है जहाँ इल्म भी हो और अमल भी। यहाँ एक बात काबिल गौर है, हमारी मसाजिद, मदारिस और कुरान के हलकों में हिफ्ज़ कुरान और तजवीद की तालीम यकीनन बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसके साथ साथ तदब्बुर कुरान भी ज़रूरी है। तो यही दरअसल कुरान का असल मकसद है कि कुरान सिर्फ ज़बान पर जारी होने के लिए नहीं नाजिल हुआ, कुरान ज़िंदगियों की इस्लाह के लिए नाजिल हुआ है, कुरान इंसान को अल्लाह तक पहुँचाने के लिए नाजिल हुआ है। एक बड़े ताबई अब्दुर्रहमान सलमी रहमतुल्लाह एक हैरत अंगेज़ बात नकल करते हैं। वो फरमाते हैं, हमें कुरान पढ़ाने वाले सहाबा इकराम बताया करते थे कि वो 10 आयात सीखते थे, फिर इन आयात में मौजूद इल्म और अमल को सीखते थे, उसके बाद ही अगली आयात की तरफ बढ़ते थे। वह उनके नज़दीक कुरान का मकसद सिर्फ याद करना नहीं था बल्कि समझना और समझकर उस पर अमल करना भी था। सामने किराम, आज हम अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या हमारा कुरान से ताल्लुक़ सिर्फ तलावत तक महदूद है, या हम उसके पैगाम को भी समझने की कोशिश करते हैं? क्या हम रोज़ाना कुरान पढ़ते वक्त ये सोचते हैं कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है? क्या हम अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं? अगर हम ये सवालात खुद से पूछना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान हमारे लिए सिर्फ एक किताब ही नहीं रहेगा बल्कि ज़िंदगी का रहनुमा बन जाएगा। ए अल्लाह हमारे दिलों को कुरान के नूर से रोशन फरमा, कुरान को हमारी ज़िंदगी का कायद बना, कुरान को हमारे गमों की दवा, हमारे दिलों की बहार और हमारे रास्तों की रोशनी बना। ए अल्लाह हमें इल्म नाफ़े अता फरमा, अमल सालेह अता फरमा, इखलास अता फरमा और हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रख। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, आमीन या रब्बल आलमीन। इन्हीं दुआओं के साथ सूरह फातिहा पर हमारी ये मुबारक नशिस्त अपने अख्तिताम को पहुँचती है। स्टूडियो से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

रफ्तार मेरी जिंदगी का एक सिंपल सा उसूल है, या तो भीड़ में सड़ो या स्पीड से बढ़ो।

0: दोस्तों हमारी ट्रैफिक सेफ्टी तभी बेहतर हो सकती है जब हम सब कानून का एहतराम करें। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल 43 के मुताबिक अगर कोई व्हीकल ट्रेलर या सेमी ट्रेलर टो कर रही है तो उसे लेफ्ट लेन यूज करने की इजाजत नहीं होती। लेफ्ट लेन फास्ट मूवमेंट्स और ओवरटेकिंग के लिए होता है। जब कोई हैवी व्हीकल या टोइंग व्हीकल लेफ्ट लेन में आ जाती है तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है और इमरजेंसी व्हीकल्स को भी रास्ता नहीं मिलता। इसलिए कानून ये कहता है कि ट्रेलर टो करते वक्त हमेशा राइट हैंड साइड पर रहें, किसी भी व्हीकल को ओवरटेक ना करें, अपनी स्पीड और डिस्टेंस का ख्याल रखें और याद रखें कि ये सिर्फ कानून ही नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम सब मिलकर लेन डिसिप्लिन मेंटेन करें तो हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी को यकीनी बना सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज की दुआ। इस सिलसिले में हम कुरान सुन्नत की वो चुनिंदा दुआएं पेश करते हैं जो अपने दिल और जान को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर करती हैं। आज की दुआ है नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, जो आजिजी, अदब और बंदगी का आला तरीन नमूना है। ये दुआ नूह अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की जब अपने बेटे के बारे में सवाल करने पर अल्लाह ताला ने उन्हें तंबीह फरमाई थी। नूह अलैहिस्सलाम फौरन अपनी खता पर झुक गए और कहा,
2: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
1: رب إني أعوذ بك اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں أن أسألك ما ليس لي به علم कि मैं तुझसे वो चीज मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं और जो तेरे हिकमत के खिलाफ हो। वइल्ला तगफिरली वतरहमनी, और अगर तू मुझे माफ न करे और मुझ पर रहम न करे, अकुम मिनल खासिरीन, तो मैं नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाऊंगा। ज़मीन, ये दुआ जाहिर करती है कि इल्म इलाही के मुकाबले में बंदा हमेशा आजिज है और उसे अपनी राय या ख्वाहिश पर भरोसा करने के बजाय अल्लाह की हिकमत पर एतमाद करना चाहिए। आइए हम सब दिल की आजिजी के साथ ये दुआ पढ़ें।
2: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
3: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
4: कभी ऐसा होता है ना, आप बेड पर होते हो, लाइट्स ऑफ होती है, बॉडी थकी हुई होती है पर दिमाग फुल स्पीड में चल रहा होता है। कल का काम, आज की बात, एक रैंडम रील और फिर फोन पर एक और स्क्रॉल, और हम सोचते हैं चलो थोड़ा और जाग लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप की। सच ये है कि नींद को हम अक्सर लग्जरी समझ लेते हैं, जैसे जब सब काम निपट जाए तब नींद मिलेगी, पर स्लीप कोई रिवॉर्ड नहीं होता, ये एक रिक्वायरमेंट होती है। नींद वो टाइम होता है जब बॉडी एक्चुअली पूरा काम करती है। दिन में हम जो डैमेज करते हैं अपनी बॉडी को, स्ट्रेस से, स्क्रीन टाइम से, थकान से, रात को बॉडी उसे रिपेयर करती है। तो प्रॉपर स्लीप के बिना माइंड क्लियर नहीं होता, इमोशंस थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और छोटी छोटी बातें काफी हैवी लगने लगती है। इनफैक्ट क्या कभी आपने नोटिस किया है, जब नींद पूरी होती है तो पेशेंस नेचुरली बेटर होता है, और जब नींद कम

0: सामान लगता है ये कोइंसिडेंस नहीं है वेल स्लीप का डायरेक्ट कनेक्शन मूड फोकस मेमोरी और इम्यूनिटी से होता है अगर नींद रेगुलरली डिस्टर्ब हो रही है तो बॉडी क्वाइटली स्ट्रगल कर रही होती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात नींद की कमी का असर सिर्फ थकान पर ही नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग पर भी पड़ता है इसलिए जब हम अपनी नींद को स्किप करते हैं तो हम सिर्फ रेस्ट नहीं स्किप कर रहे होते बल्कि क्लैरिटी भी स्किप कर रहे होते हैं वेल अक्सर लोग कहते हैं मैं कम नींद में भी काम कर लेता हूँ हो सकता है पर काम और वेलबींग सेम चीजें नहीं होती क्वालिटी स्लीप का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे सोना नहीं होता इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट टाइम पर सोना स्क्रीन को थोड़ा पहले साइड में रखना और बॉडी को सिग्नल देना अब रिलैक्स कर सकते हो वेल छोटी सी रूटीन चेंज भी स्लीप को बेटर बना सकती है जैसे सोने से पहले लाइट्स को डिम रखना फोन को बेड से दूर रखना या बस एक डीप ब्रेथ लेना बिल्कुल ऐसे नींद बॉडी का नेचुरल रिसेट बटन होता है और जब हम उसे इग्नोर करते हैं तो बॉडी भी धीरे धीरे सिग्नल भेजना शुरू कर देती है तो आज एक जेंटल रिमाइंडर अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए ये लेजीनेस नहीं है ये सेल्फ रिस्पेक्ट है जब आप अच्छी नींद लेते हो तो नेक्स्ट डे काफी फ्रेश होता है और आप जिंदगी को थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हो इसलिए याद रखिए स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं बल्कि हीलिंग है और जब नींद ठीक होती है तो सेहत और सुकून दोनों नेचुरली फॉलो करते हैं साथ ही डोंट फॉरगेट योर हेल्थ मैटर
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti Maximum music, maximum fun
2: on FM 107 Dil Se Desi

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamualaikum. आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट. मैं हूं आपकी आरजे महबश. इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की. यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है. आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें. कतरी दस्तरखान पर मिठाइयों का अपना एक खास मकाम है. खाना खत्म होने के बाद या किसी खुशी के मौके पर मीठी चीज पेश करना अपनाइयत और इज्जत का इजहार होता है. मिठाई सिर्फ जायके की चीज नहीं बल्कि मेहमान नवाजी और खुशी बांटने का एक प्यारा तरीका भी है. कतरी मिठाइयां आमतौर पर सादा अज्जा से तैयार होती हैं, लेकिन उनका जायका बहुत दिलकश होता है. चावल, दूध, खजूर, आटा, शहद, चीनी, जाफरान, इलायची और अरबी मसाले उनमें अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं. इन अज्जा की खुशबू और मिठास मिलकर एक ऐसा जायका पैदा करती हैं जो महफिल को यादगार बनाती है. लुकेमार खलीज की मशहूर मिठाइयों में से एक है. ये छोटी छोटी गोलियां नुमा होती हैं जो आमतौर पर आटे से बनाई जाती हैं और तलने के बाद शीरा या शहद डाला जाता है. बाहर से हल्की सी खस्ता और अंदर से नरम, लुकेमात अक्सर कहवे के साथ पेश की जाती हैं। लुकेमात का ताल्लुक खास तौर पे खुशी के मौके से जुड़ा होता है. रमजान, ईद, घर की दावत या किसी खानदानी मुलाकात में ये दस्तरखान की जीनत बन सकती हैं। इसकी छोटी छोटी गोल शक्ल और मीठा जायका बच्चों और बड़ों सबको पसंद आता है. फिर साथ खजूर की मिठाइयां भी कतर के दस्तरखान का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। खजूर को कभी अकेला, कभी बादाम या दूसरे मेवे के साथ और कभी मिठाई के तौर पर पेश किया जाता है. खजूर की कुदरती मिठास की वजह से ये कम या ज्यादा सादगी के साथ मुख्तलिफ तरीकों से तैयार की जा सकती है. दूध और चावल से बनने वाली मिठाइयां भी अरब खानों में मकबूल हैं। नरम बनावट, हल्की मिठास और इलायची या ज़ाफ़रान की खुशबू उन्हें खास बना देती है. ऐसी मिठाइयां अक्सर छोटी छोटी सी प्यालियों में पेश की जाती हैं और मेहमान के लिए एक खूबसूरत पेशकश साबित होती हैं। रिवायती मिठाइयों में खुशबू का भी अपना किरदार होता है. इलायची, ज़ाफ़रान और गुलाब जैसी खुशबुओं का इस्तेमाल जायके के साथ एक दिलकश एहसास पैदा करता है. जब मिठाई तैयार होती है तो उसकी खुशबू अक्सर घर के माहौल को खुशी से भर देती है. कतरी घरों में मिठाई बनाने का अंदाज और जायका एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है. किसी घर में मिठास ज्यादा पसंद की जाती है, किसी में खजूर का जायका नुमाया होता है, जबकि किसी में मेवे या खुशबू पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है. इन छोटे छोटे से फर्कों की वजह से हर घर की मिठाई अपनी एक अलग पहचान बना लेती है. मिठाई बनाने का हुनर अक्सर घर की खवातीन से नई नस्ल तक पहुंचता है. माँ, दादी या नानी अपने तजुर्बे से बताती हैं कि अज्जा की मकदार कैसी रखनी है और मिठाई की बेहतर तरतीब कैसे बनानी है. ये एक ऐसा हुनर है जो सिर्फ तरकीब नहीं बल्कि खानदानी यादों और मोहब्बत को भी आगे पहुंचाता है. किसी मेहमान के लिए मिठाई तैयार करना मेजबान की तवज्जो और खुलूस का इजहार भी होता है. मेहमान को सिर्फ तैयार चीज नहीं दी जाती बल्कि उस वक्त की मेहनत, वक्त और मोहब्बत भी पेश की जाती है. इसीलिए घर की बनी हुई मिठाई को खास कदर मिलती है. ईद और दूसरी खुशी की तकरीबात में लोग रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं. सलाम, मुबारकबाद, कहवा और मिठाई इस मुलाकात का हिस्सा होते हैं. मिठाई की पेशकश खुशी को शेयर करने और रिश्तों में मिठास बढ़ाने का जरिया होती है.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम सलाम करते हैं उन पहलवान को जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया की कुश्ती की तारीख का एक अजीम नाम था। एक ऐसा पहलवान जिनके सामने बड़े से बड़े चैंपियन भी उतरने से पहले सोचता था। नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श, लेकिन दुनिया उन्हें गामा पहलवान के नाम से जानती है और उनका टाइटल था रुस्तम ए जमाना। दोस्तों, गामा पहलवान की पैदाइश 1878 में पंजाब के गांव जबवाल में हुई। उनका ताल्लुक एक

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJA फॉर अमिता के साथ AI लॉक्ड पर। एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJA फॉर अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम।

से अब कोई मदद तुम्हें नहीं मिलनी। मेरी आयात सुनाई जाती थी तो तुम रसूल की आवाज सुनते ही उल्टे पांव भाग निकलते थे, अपने घमंड में उसको खातर ही में न लाते थे, अपने चौपालों में उस पर बातें छांटते और बकवास किया करते थे। तो क्या इन लोगों ने कभी इस कलाम पर गौर नहीं किया, या वो कोई ऐसी बात लाया है जो कभी इनके असलाफ के पास ना आई थी, या ये अपने रसूल से कभी वाकिफ ना थे कि अनजाना आदमी होने के बायस उससे बिदकते हैं, या ये इस बात के कायल हैं कि वो मजनून है? नहीं, बल्कि वो हक लाया है और हक ही उनकी अक्सरियत को नागवार है, और हक अगर कहीं इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो जमीन और आसमान और उनकी सारी आबादी का निजाम दरहम बरहम हो जाता। नहीं, बल्कि हम उनका अपना ही जिक्र उनके पास लाए हैं और वो अपने जिक्र से मुंह मोड़ रहे हैं।

क्या तू उनसे कुछ मांग रहा है? तेरे लिए तो तेरे रब का दिया ही बेहतर है और वो बेहतरीन राज़िक है। तू तो उनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो राह रास से हट कर चलना चाहते हैं। अगर हम इन पर रहम करें और वो तकलीफ जिसमें आजकल ये मुब्तला है दूर कर दें, तो ये अपनी सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएंगे। इनका हाल तो ये है कि हमने उन्हें तकलीफ में मुब्तला किया, फिर भी ये अपने रब के आगे न झुके और न आजजी इख्तियार करते हैं। अलबत्ता जब नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि हम इन पर सख्त अजाब का दरवाजा खोल दें, तो यकायक तुम देखोगे कि इस हालत में ये हर खैर से मायूस है। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की कुव्वतें दी और सोचने को दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है। गर्दशे लालो नहार उसी के कब्जे कुदरत में है। क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? मगर ये लोग वही कुछ कहते हैं जो इनके पेश रौ कह चुके हैं। ये कहते हैं, क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाएंगे तो हमको फिर जिंदा करके उठाया जाएगा? हमने भी ये वादे बहुत सुने हैं और हमसे पहले हमारे बाप दादा भी सुनते रहे हैं। ये महज अफसाना हाय बारीना है।